को सिविल बनाओ। वो हमें सिविल चक्षु देने आया है। संसार में हर व्यक्ति के नेत्र क्रिमिनल हो गए हैं। वो देह को देखता है, देह की ओर आकर्षित होता है। दैहिक दृष्टि रहने के कारण उसके विचारों में भी वासनाएं समाई रहती हैं। हर मनुष्य की नजर से, हर मनुष्य के मस्तक से गंदगी के वाइब्रेशन से चारों ओर फैलते हैं। लेकिन बाबा की ये श्रेष्ठ इच्छा है कि हमसे चारों ओर पवित्रता के श्रेष्ठ वाइब्रेशंस फैलें, ताकि हम प्रकृति को पावन कर सकें, ताकि हम वातावरण में पवित्र वाइब्रेशंस फैला सकें, ताकि हम देवकुल की आत्माओं को जगा सकें। क्योंकि जितनी हमारी प्योरिटी बढ़ती है, देवकुल की आत्माओं में भी प्योर संस्कार इमर्ज होते हैं। पवित्र आत्माओं की ओर उन देवकुल की आत्माओं का आकर्षण होता है। तो हमें बहुत ज़्यादा महत्व देना है अपनी प्योरिटी को, अपना अभ्यास इतना ज़्यादा बढ़ा देना है कि हर एक के मस्तक में हमें चमकती हुई पवित्र आत्मा ही नजर आए। यद्यपि दिखाई तो देह देता है, लेकिन हम उस चीज़ को देखें जो अदृश्य है, हम उसे देखें जो इन आँखों से नहीं दिखती, और इस तरह अपनी प्योरिटी की शक्ति को बहुत ज़्यादा बढ़ाते चलें। ये समय ही ऐसा है जब इस संसार को और प्रकृति को हमारे प्योर वाइब्रेशंस की बहुत जरूरत है। और हम सभी को ये भी ज्ञात हो कि पवित्र आत्माओं पर ही भगवान का प्यार बरसता है। पवित्र आत्माएं उसको आकर्षित करती हैं और उसका ध्यान भी उन आत्माओं की ओर बहुत रहता है, क्योंकि पवित्र आत्माएं इस सृष्टि का श्रृंगार हैं। तो सारा संसार जो कुछ देखता है, हमें वो सब कुछ नहीं देखना है। हमें तो वो सब कुछ करना है जो अब बाबा की इच्छा है। तो बहुत मन से, सच्चे मन से हम संकल्प कर लें, हमने पवित्रता का मार्ग स्वेच्छा से चुना है, यही अब हमारा मार्ग है, इस पर ही हमें निरंतर चलना है। हमें इसमें कोई समझौता नहीं करना है, भले ही संसार कितना भी गंदा हो। माँ बाप भी इसके लिए बहुत जोर देते हों, क्योंकि वो तो इसे अपना वर्षा समझते हैं, वो तो इसे अमृत समझते हैं। पर भगवान ने कह दिया, ये काम महाशत्रु तो विष तुल्य है, इसने ही तुम्हारे जीवन को जहरीला बनाया है, अब इस अंतिम जन्म में तुम इसका त्याग कर दो। तो अपने में दृढ़ता ले आए कि हमें उन राहों पर नहीं चलना है जिन पर संसार चल रहा है। अनेक युवक और युवतियों को भी आप देख सकते हैं जो काम वासना के वश होकर अपने जीवन को नरक तुल्य बना चुके हैं, जिनके पास न अब शांति है, न सुख है, न ग्रस्त जीवन का आनंद है, न विकारों का ही सुख है, न ईश्वरीय सुख है, सब कुछ जिन्होंने नष्ट कर दिया है। हमें इस मार्ग को नहीं अपनाना है, हमें इससे अलग हट जाना है। संसार में अनेक युवक युवतियां गंदगी के मार्ग पर अग्रसर हैं। वो प्यार को ही सब कुछ मानते हैं, जिससे प्यार हो जाता है उसमें वो अंधे हो जाते हैं, और जब 6 मास के बाद ही उन्हें डाइवोर्स दिया जाता है, जब उनके माँ बाप भी उन्हें स्वीकार नहीं करते, तो वो अपने को इस भरे हुए संसार में अकेला पाती है। उसका मन उदासी से भर जाता है और उसके सामने मरने के अलावा कोई भी चारा नहीं रहता। तो हम अपने जीवन को ऐसे अंधकार की ओर कदापि न ले चलें। हमारा बहुत महान जीवन है, ये जीवन भगवान के काम आ जाए, ये जीवन संसार के काम आ जाए। अब हमें ऐसा अपने को पावन बनाना है। तो आज सारा दिन अभ्यास करेंगे, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ और परम धाम में है पवित्रता के सागर, उनकी पवित्र किरणें मुझ में समा रही हैं। और साथ साथ मुझ पवित्रता के फरिश्ते को अब देव स्वरूप में जाना है, दिव्य जीवन अपना लेना है। तो अपने फरिश्ते स्वरूप को
और अपने देव।

0: आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हॉस्पिटल्स में एडमिट होने वाले ज्यादा केसेस रोड एक्सीडेंट्स यानी सड़क दुर्घटना की वजह से होते हैं। इसलिए अपनी रफ्तार पर नियंत्रण रखें, सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सुप्रभात में आपका स्वागत रेडियो मधुबन पर। जो भी शक्ति आपको लक्ष्य की ओर ले जा सकती है, वह कहीं बाहर से खरीद कर लानी नहीं पड़ती, वह तो आपके अंदर ही है। इस एक शक्ति के अनेक रूप हैं, जिन्हें आप पहचान नहीं पाते। जोड़ने की शक्ति, सृजन शक्ति, संकल्प की शक्ति, दृढ़ विश्वास की शक्ति, इन सबसे बड़ी शक्ति है आपकी नवीनता, आपकी मौलिकता। इन सब विशेषताओं से ही आपका व्यक्तित्व बनता है। इसके पश्चात ही बहुत से लोग आपको अपना नेता मान सकते हैं, अग्रणी मान सकते हैं। अपने आप पर विश्वास रखें, अपने आत्मविश्वास को बनाए रखेंगे तो ही लोग आपकी जय जयकार करेंगे। इसके सहारे ही आप ऊंचे उठ सकते हैं, आपकी सफलता के द्वार भी खुल सकते हैं। आपके पास बुद्धि है, शक्ति है, फिर आप क्यों दूसरे लोगों की ओर देखते रहते हैं? क्यों दूसरों से अपने को छोटा समझते हैं? यह तो मानवता का ही अपमान है कि इंसान हर जगह, हर स्थान पर दूसरों से ही कुछ न कुछ मांगता रहे। ऐसे लोगों को मैं यह बता देना चाहती हूँ कि मांगे हुए विचार, उधार ली गई योजनाएं, दूसरों के किए गए निर्णय, अपने पर विश्वास न करके दूसरों पर विश्वास करना, छोटी छोटी बातों को समझने के लिए दूसरों से सहायता लेना, इससे आपके मन में सदा हीन भावना ही पैदा होगी। आज जब हम अपने चारों ओर नजर दौड़ाते हैं तो हमें साफ पता चलता है कि पुराने जमाने के तौर तरीके, पुराने फार्मूलों के आधार पर ही नई जिंदगी को जीना, यह सब कुछ क्या आपको आगे ले जाएगा? यकीन रखिए, यह सब कुछ तो आपको पीछे ही खींच सकते हैं, यदि आपके मालिक आपको इन पुराने तौर तरीकों को अपना लेने के लिए मजबूर करते हैं। तो आप अपनी बुद्धि को नष्ट करने की बजाय उनके यह बात मानने से साफ इनकार कर दें, नहीं तो आप एक पुरानी जंगली मशीन बनकर रह जाएंगे जो किसी भी काम की नहीं होती।

ओम शांति, मैं हूँ मोनिका पटेल और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी जो है इसी तरह से जो है हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जो है ईश्वरीय ज्ञान जो है ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय ज्वाइन करके प्राप्त करते रहिए मेरी तरह। और सदा सदा आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।

आप अपनी बुद्धि को क्यों नष्ट करना चाहते हैं? क्या आपको इस बात का पता नहीं कि इस संसार को नए नए तरीकों के कारोबार की अधिक आवश्यकता है? सारे संसार में लोग कारखानों, मिलों, फैक्ट्रियों में माल बनाते थे। सभी अपने अपने माल को बेचते थे। लेकिन आप उस आदमी को कैसे भूल सकते हैं जिसने यह सोचा था कि विज्ञापन के सिर पर तो हम अपने माल को घर घर पहुंचा सकते हैं। और आज आप देख रहे हैं कि पूरे विश्व में बढ़िया से बढ़िया माल बेचने के लिए बड़ी से बड़ी कंपनी को विज्ञापन का सहारा लेना पड़ता है। आज वही लोग अपने कारोबार में सफल हैं जो विज्ञापनों का सहारा लेते हैं। विज्ञापन के सहारे तो मिट्टी भी बेची जा सकती है। बढ़िया माल का तो कहना ही क्या है। यह रास्ता किसने खोला? केवल एक आदमी के मस्तिष्क ने। उसका लाभ भी आज पूरे विश्व के कारोबारी लोग उठा रहे हैं। इसे कुछ लोग यह भी कहते हैं कि पुरानी शराब नई बॉटलों में, यानी चीजें तो सब वही हैं, मगर विज्ञापनों ने उन्हें नया ढंग, नया रूप दे दिया है। जिन चीजों के नाम भी लोगों ने नहीं सुने थे, वे सब की सब हाथों हाथ बिकने लगी। यहाँ तक कि बच्चों ने भी उन चीजों का नाम रट लिया। इसे कहते हैं बुद्धि का कमाल। आज जिस मशीनरी को आप बहुत अच्छा समझते हैं, वही हो सकता है कि कुछ समय के पश्चात मिट्टी हो जाए। करोड़ों अरबों रुपयों की मशीनें जब पुरानी हो जाती हैं, तो बड़ी कंपनियां उन्हें सागर में फेंक देती हैं। जब भी नए मॉडल बाजार में आ जाते हैं, तो पुराने मॉडलों को मिट्टी के भाव बेचने पर मजबूर होना पड़ता है। मशीन कोई भी हो, जब वह पुरानी हो जाती है और उसके पश्चात नवीनतम मॉडल आ जाते हैं, तो बहुत तेजी से काम करते हैं। उन मशीनों से कहीं अधिक तेज काम होता हो तो वह मशीनें बेकार ही हो जाती हैं, अथवा उनकी कीमत कम हो जाती है। यह बात हम हर क्षेत्र में देखते हैं, यानी नए के आगे पुराना पिछड़ा नजर आता है। ऐसे कई लोग भी आज समाज में हैं जो नए मॉडलों की निंदा करते हैं। असल में वही लोग उन्नति के रास्ते का रोड़ा होते हैं। हमें नवीनता को स्वीकार करना चाहिए, बल्कि उसे और आगे बढ़ाना चाहिए। अगर हम पुरानी चीजों को ही पकड़ के बैठे रहेंगे, तो जमाना कहीं और आगे निकल जाएगा और हम वहीं के वहीं रह जाएंगे।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अपने भीतर के अंधकार को समझिए, क्योंकि वहीं से प्रकाश निकलेगा। और जो व्यक्ति खुद पर विजय पा लेता है, वह सबसे बड़ा विजेता बनता है। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

आधुनिक युग की शक्ति के आगे रूढ़िवाद दम तोड़ देता है। जो लोग समय के साथ नहीं बदलते, उन्हें समय स्वयं बदल देता है, अथवा समय उन्हें पीछे छोड़कर आगे निकल जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि जो लोग पुरानी वस्तुओं, रीति रिवाजों और कामकाज के पुराने तौर तरीकों को ही पसंद करते हैं, उनके लिए कोई स्थान नहीं रहता। हर अच्छी सभा सोसाइटी से वे कट हो जाते हैं। इनमें कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो नए विचारों के लोगों को पुराने युग रूढ़िवाद के उदाहरण देकर पीछे खींचने का प्रयास करते हैं। ऐसा करते समय वे यह बात भूल जाते हैं कि मानव जाति की प्रगति का सबसे बड़ा कारण ही आधुनिक युग है। आज मानव जाति को जीवन के जितने सुख प्राप्त हैं, क्या आपका रूढ़िवाद उन्हें दे पाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। रूढ़िवाद हमें जहाज और तेज गति से चलने वाली गाड़ियां, नई नई आधुनिक सुविधाओं से युक्त कारें, एयर कंडीशनर, पंखे, बिजली, टेलीफोन, जीवन के अनेक सुख कहां से देगा? यह सारे सुख आपको नवीनतम विचारधारा ने ही दिए हैं। ये सब के सब आविष्कार उन इंसानों ने ही किए हैं जो रूढ़िवाद के विरुद्ध थे। अतीत में भी और वर्तमान में भी संसार रूढ़ी मंजकों का ही कृतज्ञ है। यदि पुरानी प्रथाओं को तोड़ने वाले न होते तो आज कोई भी आदमी इतिहास को पढ़ने का प्रयत्न नहीं करता। इतिहास स्वयं में ही एक बेकार विषय बनकर रह जाता। रूढ़िवाद और आधुनिक युग सदा से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। पुरानी हर चीज इतिहास बन जाती है और यही इतिहास नए युग की प्रेरणा बनता है। आधुनिक विज्ञान के सामने रूढ़िवाद कहाँ टिक पाता है? आप देख रहे हैं, कंप्यूटर ने हर रूढ़िवादी का भ्रम तोड़ कर रख दिया है। सालों के काम दिनों में पूरा करना और कई कई सौ आदमियों का काम एक ही कंप्यूटर मशीन द्वारा पूरा करना, क्या यह कम बात है?

मैं जानकी हिमलानी, मैं अध्यापिका हूँ, कुछ कहना चाहती हूँ। लेफ्ट साइड में ही हमें चलना चाहिए और हमेशा तेज आते वाहनों से स्वयं को बचाना चाहिए। जो कार चलाते हैं उनसे भी मेरा ये निवेदन है कि जब भी आप कार चलाएं तो बेल्ट दे रखी है, सीट बेल्ट का उपयोग करें, इससे सुरक्षा बनी रहेगी। जान है तो जहान है। रेडियो मधुबन

नवीन प्रगति की इस तेज धारा ने पूरे रूढ़िवाद को एक झटके में बहाकर फेंक दिया है। मानव का अंतरिक्ष में प्रवेश और चांद पर जाकर एक नई दुनिया बसाने की ओर कदम बढ़ाने के सामने रूढ़िवाद क्या करेगा? रूढ़िवाद एक इतिहास है, एक अतीत है। इसे आधुनिक युग के रास्ते की दीवार मत बनाओ। वह तो अतीत की एक चिता है, एक ऐसे महापुरुष की चिता है जिसके ज्ञान रूपी प्रकाश से आप लाभ उठा सकते हैं। उस अतीत के ज्ञान के प्रकाश के सहारे आप आगे तो बढ़ सकते हैं, मगर इस चिता को ही मूलाधार मानकर उसे पकड़कर बैठे रहने का तो कोई लाभ नहीं। अतीत आपको कुछ नहीं दे सकता, वह तो केवल यादों की मिट्टी है जो अपनी इच्छा से अब हिल भी नहीं सकती। तो आप उसे सीने से लगाकर रोते हुए क्या पाएंगे? ऐसी कल्पना करना भी आपकी प्रगति के रास्ते का रोड़ा बन जाएगा। आगे देखिए कि क्या हो रहा है, पीछे झांकने से क्या मिलेगा। विश्व के महान आविष्कारक पुरानी प्रथाओं के गुलाम नहीं थे, उन्होंने पुरानी प्रथाओं को तोड़कर ही नई दुनिया में पांव रखा। क्या आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि उन रूढ़िवादियों और भोले भाले लोगों को लूटने वालों ने हर आविष्कारक को पागल तक कहा। कुछ एक को तो जेलों में भी बंद करवा दिया गया, मगर ऐसा करने से क्या वे लोग डर गए? नहीं।

यदि अपने उद्देश्य में सफलता चाहते हो तो नए विचारों से डरो मत। अपने अंदर इतना आत्मविश्वास पैदा कर लो कि लोग आपसे प्रेरणा लें। तो इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे सुप्रभात में। रेडियो मधुबन सुनते रहिए।

0: कनव हूँ, मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। कल जब मैं स्कूल से घर आ रहा था तो पता है मैंने क्या देखा? एक अंकल सड़क पे कचरा फेंक रहे थे। मैंने उनको जाकर बोला कि अंकल सड़क पे कचरा नहीं फेंकना चाहिए, तो पता है उन्होंने क्या बोला?
1: अरे बड़ा है मुझे सिखाने वाला।
0: उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और वो चले गए, लेकिन मैंने खुद ही कचरा उठाकर कचरे के डब्बे में डाल दिया।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। ये है कार्यक्रम सहज स्वास्थ्य। मैं हूं आपका दोस्त आरजे श्री। हम सभी के मंगल की कामना भारत में करते आए हैं। ये प्राचीन शांति मंत्रों में से एक है। जब हम सारी प्रार्थनाओं को पूर्ण करने के बाद ये कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, यानी किसी भी व्यक्ति को कोई दुख न हो, ऐसा हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। हम सर्वे संतु निरामय की बात करते हैं कि हर एक व्यक्ति, संसार का हर एक जीव निरामय हो या स्वस्थ हो, इस बात की कामना करते हैं। प्रार्थना में तो हम ये कामना करते हैं, मगर क्या हम अपने जीवन में इस कामना को पूर्ण करने के लिए कुछ कार्य करते हैं? क्या सिर्फ हम भगवान से अपने और दूसरों के मंगल और स्वस्थ रहने की कामना मात्र से काम हो जाएगा, या स्वस्थ बने रहने के लिए हमें कुछ और भी करने की जरूरत है? अगर प्रार्थना से ही काम बन जाता होता, अगर हम कुछ न करके सिर्फ प्रार्थनाओं से ही काम चला रहे होते, तो शायद आज इतने ज्यादा संख्या में अस्पतालों और चिकित्सकों की आवश्यकता हमें नहीं पड़ती। जरूर हम प्रार्थना तो कर रहे हैं, ईश्वर भी हमारी आस्था अटूट है, परंतु हम कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिसके कारण हम प्रार्थना तो निरामय होने की कर रहे हैं, मगर अपने आप को बीमार करने के लिए कुछ ऐसे कार्य और कर्म कर रहे हैं जिससे शरीर में व्याधियां उत्पन्न होती हैं। आइए आज स्वास्थ्य जगत से जुड़े हुए कुछ ऐसे ही विशेषज्ञों से बातचीत करते हैं जो हमें मार्गदर्शन देंगे कि हम क्या गलतियां कर रहे हैं और क्या हमें सुधार करने की आवश्यकता है कि हम स्वस्थ बने रहें। आज हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं डॉक्टर राहुल मोदी जी, जो पेशे से एक एलोपैथी डॉक्टर हैं, भारत के जाने माने ऑस्टियोपैथ हैं और स्पोर्ट्स मेडिसिन के क्षेत्र में लंबा अनुभव रखते हैं। भारत के प्राचीनतम प्रकृति चिकित्सा केंद्रों में से एक आरोग्य मंदिर गोरखपुर में प्रैक्टिस करते हैं, जहां पर उनके परिवार के अनेक पीढ़ियों ने लोगों को स्वास्थ्य लाभ दिया है और अब भी दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम में।
1: नमस्कार, ओम शांति।
0: सर्वप्रथम तो मैं इसी बात से शुरू करना चाहूंगा, ये भारत के सबसे मशहूर प्रार्थनाओं में से एक है कि हम विश्व के, संसार के हर एक जीवी के मंगल के लिए कामना करते हैं, हर एक जीव जंतु का मंगल हो, इसके लिए हम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हो, ये बात कहते हैं। और इसके साथ अगली ही लाइन सर्वे संतु निरामया, यानी सर्व, सभी के सभी निरामय हो, रोग मुक्त हो, वो सभी स्वस्थ हो, ये कामना करते हैं। प्रश्न उठता है कि जब हम प्रार्थना तो करते हैं स्वस्थ रहने की, क्या सिर्फ प्रार्थना मात्र से काम होगा, या स्वस्थ रहने के लिए हमें कुछ और भी करने की और कर्म करने की जरूरत है जो हमें स्वास्थ्य लाभ दे?
1: सबसे पहले तो देखिए, आपने जो बात की वो ये बता रही है कि हम भारतीयों की कितनी अच्छाई है कि हम अपने बारे में न सोच के हम सबके बारे में सोच रहे हैं, और ये हमारी देश, हमारी परंपरा की अच्छाई है कि हम सब लोगों ने मैं को हम से रिप्लेस किया है, और हम जो प्रार्थना भी कर रहे हैं वो सब निरोगी हो इसकी बात कर रहे हैं। और इस प्रार्थना का जो मूल है उसमें ये कहीं भी नहीं बात कोई है कि सबको पैसा मिल जाए या मुझको पैसा दे दो भगवान। हमने स्वास्थ्य की बात की है, हमने हेल्थ की बात की है। इंग्लिश में भी कितनी सारी बातें हैं, हेल्दी बॉडी हैज हेल्दी माइंड, इफ यू वॉन्ट अ हेल्दी बॉडी अ हेल्दी नेशन, मतलब सारी हेल्थ की ही बात की है। और ये माना गया है कि अगर आप स्वस्थ होंगे तो आप अपनी सुरक्षा भी कर लेंगे, अपने देश की सुरक्षा भी कर लेंगे, अपने समाज की सुरक्षा भी कर लेंगे। तो सबसे ऊपर इसीलिए हेल्थ को रखा गया है, स्वास्थ्य को रखा गया है। हमने प्रार्थना तो कर ली कि हम स्वस्थ रहें, पर कहते नहीं है कर्म भी करना पड़ेगा। हम लोग रोज भगवान के सामने अगर बैठे, सुबेरे सुबेरे नहा धोकर अगरबत्ती जला लें, पुष्प चढ़ा दें, उनको प्रसाद चढ़ा दें कि हे प्रभु मुझे बहुत सारा धन दे दो, हे प्रभु मुझे ये दुनिया दिखा दो, हे प्रभु मुझे यहाँ भेज दो, और मैं चुपचाप कमरे में वापस जाके सो जाऊं, तो मुझे कैसे कुछ मिलेगा? इसमें एक छोटा सा जोक भी है भैया, मुझे बताया जाता है कि एक ऐसे ही व्यक्ति रोज लक्ष्मी जी के सामने प्रणाम करता था, हे लक्ष्मी माँ मुझे लॉटरी जिता दो, हे लक्ष्मी माँ मुझे लॉटरी जिता दो। तो एक महीना, दो महीना, तीन महीना, तो तीसरे चौथे महीने के बाद एक बार माँ लक्ष्मी अवतरित हुई, बोली मूर्ख तुम रोज मुझसे कह रहा है कि मुझे लॉटरी जिता दो, पर क्या तुमने लॉटरी खरीदी?
0: लॉटरी टिकट तो खरीदना पड़ेगा।
1: तो अगर हम टिकट खरीदेंगे नहीं तो लॉटरी कैसे जीत सकते हैं? और अगर हम स्वास्थ्य की बात अगर हम करेंगे तो हमें शरीर से भी कुछ करना पड़ेगा। हमें टहलना पड़ेगा, हमें घूमना पड़ेगा, हमें अच्छे वातावरण में रहना पड़ेगा, हमें संयम से भोजन करना पड़ेगा और संयम से रोज भोजन करना पड़ेगा, संयम से रोज एक्सरसाइज करना पड़ेगा। हम ये नहीं कर सकते कि हम आज करें और कल ना करें। तो मेरा ये कहना है कि आपको सब काम ठीक से करना पड़ेगा अपने शरीर के लिए। अगर आप स्वास्थ्य चाहते हैं तो आपको उचित कसरत और भोजन पर संयम करनी पड़ेगी और अपने मन के लिए थोड़ा बहुत मेडिटेशन, योग, प्राणायाम करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें।
0: प्राय यही चीज देखने को मिलती है डॉक्टर साहब। हम चाहते तो हैं कि भाई हम स्वस्थ रहें, हम शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें, मानसिक भावनात्मक रूप से स्वस्थ रहें, मगर हम उसके लिए कुछ करते नहीं हैं। प्राय हम जो मिल रहा है वो खा रहे हैं, जैसा चाहिए वैसा सोच रहे हैं। और जैसे आपने कहा कि मेडिटेशन, ध्यान, प्राणायाम इत्यादि कुछ ना कुछ करना चाहिए। अक्सर जब ये चीजें कही जाती लोग ये कह देते अरे हमारे पास तो टाइम नहीं है। जब ये चीज कहा जाता है कि नहीं थोड़ा सलाद खा लो, ये खा लो, तो बोलते अरे सलाद बनाने के लिए बहुत टाइम लगेगा। तो लोग रीजंस दे देते हैं, और क्या ये रीजंस जो देते हैं, जो वजह बताते हैं कि भाई इसकी वजह से हम ये नहीं कर पाएंगे, क्या इसकी वजह से हम बीमार पड़ने के लिए एक कदम और आगे बढ़ रहे हैं?
1: हाँ, हम बहाना बनाने में हम पूरे आदमी, हम सब लोग बहुत तेज हैं। हाँ, कहना नहीं चाहिए, भगवान की सर्वोत्तम अगर कोई रचना है तो वो मनुष्य है, और मनुष्य अपने लिए सबसे ज्यादा लाचार व्यक्ति है। और मतलब हमसे ज्यादा सजग तो प्राणी है। जिन भी लोगों के घर में अगर कुत्ता या बिल्ली जिन्होंने पाल रखे होंगे, वो ये देखेंगे कि अगर वो बीमार पड़ेगा तो सबसे पहले खाना छोड़ देगा। आप ये देखिए, आज हमारे पास हर विधा, हर ब्रांच के डॉक्टर हैं। जो जंगल में शेर रह रहे हैं, हाथी रह रहे हैं, बंदर रह रहे हैं, हिरन रह रहे हैं, मगरमच्छ रह रहे हैं पानी में, उनके पास कौन सा डॉक्टर है? जो इतनी बड़ी बड़ी और इतनी छोटी छोटी मछलियां समुन्द्र में तैर रहे हैं, उनके पास कौन सा डॉक्टर है? प्रकृति ही उनकी माँ है और वो प्रकृति के ही हिसाब से चल रहे हैं। वो आप देखिए ना, जंगल में कौन सा जानवर प्रोसेस्ड फूड खा रहा है या पैक्ड फूड खा रहा है? वो तो वही खा रहा है जो उसे प्रकृति दे रही है। और हम भैया, मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा हूं, मगर हमारी तो ये मानसिकता है, आज का काम कल करो, कल का काम परसों, अभी इतनी भी जल्दी क्या है, अभी पड़े हैं बरसों। आप कह दीजिए जिम जाना है, एक्सरसाइज करना है, योगा करना, कल से करेंगे। इस समय अगर बहुत ठंडक है तो लोग कहेंगे यार कौन सुबेरे सुबेरे रजाई से निकलेगा, कहीं निकले तो कहीं बीमार ना पड़ जाए, ये ठंड है भाई, रजाई में भी थोड़ा पड़े रहते हैं, जब ठंड कम होगी तब पहले निकलेंगे। भैया अगर वातावरण सुबेरे का टेम्परेचर 10 डिग्री हो, तब भी मेरे पिताजी आज 74 साल की उम्र में बिना चप्पल के नंगे पैर मट्टी पर टहलने रोज जा रहे हैं। गर्मी का मौसम हो, सुबेरे सुबेरे का भी अगर जो टेम्परेचर हो 28 डिग्री 30 डिग्री हो, तब भी मेरे पिताजी नंगे पैर मिट्टी पे घूमने जा रहे हैं। वो रोज जा रहे हैं, सिर्फ बारिश में नहीं जा पाते हैं क्योंकि बारिश में मिट्टी पे नहीं चला जाता, आपके फिसलने का डर है, तो वो घर पे टहलते हुए मिल जाएंगे। तो आप ये देखिए कि वो कोई भी चीज जो मतलब उन्होंने अपनी दिनचर्या में कोई बदलाव नहीं किया है, वो कोशिश करते हैं कि वो हल्का भोजन करें, वो कोशिश करते हैं रोज एक्सरसाइज करें। तो अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हमें रोज एक्सरसाइज, रोज संयम से भोजन करना पड़ेगा।
0: संयम और भोजन, एक्सरसाइज या हमारी कसरत, इन चीजों पे जब हम ध्यान देते हैं और इन चीजों को हम हर दिन एक रूटीन बनाते हैं, तब हम स्वास्थ्य की ओर अपने कदम को बढ़ाते हुए जाते हैं। हर दिन स्वास्थ्य के लिए मंगल की कामना करना, निरामय रहने की प्रार्थना करना अच्छी बात है, मगर उस प्रार्थना को कार्यान्वित करना भी हमारे हाथ में है, और उसे कैसे किया जाता है आपने चीज बताई। पिछले एपिसोड में जब हम बात कर रहे थे तो आप ये बता रहे थे कि कॉन्स्टिपेशन को अगर हम सही समय पर सही तरीके से ट्रीट नहीं करते, उसकी ओर ध्यान नहीं देते, तो उससे अलग कॉम्प्लिकेशंस शरीर में उत्पन्न होने लगती हैं। आपने पाइल्स की बात की, बावासीर की बात कही थी, इसी विषय पर मैं कुछ और जानकारियां लेना चाहता हूं। आप ये बात कह रहे थे कि पाइल्स को जब व्यक्ति जब उसको समझ में आता है उसको पाइल्स हुआ है, तो बहुत सारे लोग बहुत प्रयास करते हुए नजर आते हैं कि कई लोग कई तरह की चीजें कराने के लिए ये चीज देखते हैं। एलोपैथी में अक्सर लोग ऑपरेशन कराने के लिए जाते हैं। ऑपरेशन के लिए भी लोगों को कहा जाता है कि नहीं, पहले आप दवाइयां लीजिए, उससे आप इसे ठीक कर सकते हैं, अगर नहीं होगा तो बाद में देखा जाएगा, इत्यादि चीजें बोली जाती हैं। तो ऐसे में ये समझना जरूरी है कि बवासीर या पाइल्स को ठीक करने के लिए इलाज के तरीके क्या हैं, क्या क्या अलग अलग चिकित्सीय पद्धतियां इस बात पर कहती हैं।
1: सबसे पहले पाइल्स जो है वो मोटा मोटी दो तीन तरह की होती है, एक जो अंदर और एक जो बाहर। बाहर वाली को पकड़ना ज्यादा आसान है, क्योंकि जब आप अपना गुदा द्वार साफ करते हैं तो आपको महसूस होता है कुछ है वहां पे और आपको तुरंत मालूम चल जाता है। अच्छा, इसके बाद जो ब्लीडिंग, मतलब जिनसे खून निकल रहा था, खूनी बवासीर जैसे कहते हैं या ब्लीडिंग पाइल्स कहते हैं, उसको भी पकड़ना आसान है, क्योंकि जिस दिन खून निकलता है और आदमी को जब अपना खून दिखता है तो वो एकदम घबरा जाता है, गरीब बाप रे खून निकल गया। वो मस्से को अवॉइड करता रहता है, मगर जैसे ही खून देखता है तुरंत दौड़ के डॉक्टर के पास जाता है। और ये हमारी देखिए प्रकृति की कितनी अच्छाई है कि वो जैसे ही खून देखेगा, खून से जो भय होता है वो तुरंत, और आदमी के मन में आता है अरे बाप रे खून बह गया, अब तो मैं मर ना जाऊं, चलो तुरंत डॉक्टर के पास। तो ये सबसे अच्छी बात है कि अगर आपको मस्सा महसूस हो रहा है या खून निकल रहा है तो तुरंत आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब आपने उपचार की बात की, तो पिछले एपिसोड में मैंने कहा था कि बवासीर रोग नहीं है, रोग का लक्षण है। और सबसे कॉमनली ये जो है वो अगर आपको लंबा कॉन्स्टिपेशन हो तब हो रहा है। और जो पिछले एपिसोड में मैंने बात की थी कि कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए अगर हम उसको ठीक कर लेंगे तो हम हो सकता है कि तुरंत बवासीर को भी ठीक कर लेंगे। तो सबसे पहला इलाज, अगर हर पैथी को हटा दीजिए, हर विधा को हटा दीजिए, वो है पानी पीना। अगर आप ठीक से पानी पिएंगे तो आपका जो मल है वो कड़ा नहीं होगा, उसमें ताकत आपको नहीं लगानी पड़ेगी और आपका जो पेट है वो ठीक से साफ हो जाएगा। और जहां वो नॉर्मली साफ होने लगेगा आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं होगी, आप जोर नहीं लगाएंगे। अब कॉन्स्टिपेशन में होता क्या है, आप पहली बात तो जोर ज्यादा लगाते हैं तो मसों में उन मांसपेशियों में ताकत, मतलब वो अपनी जगह से हिलती खुलती बंद होती है। और दूसरा, जब पानी कम हो जाता है तो आप जो कड़ा मल है वो रगड़ते हुए चीजों को बाहर निकलता है। तो सबसे पहला काम कि आपको पानी पीना चाहिए। दूसरा, कॉन्स्टिपेशन ठीक करने के लिए हम कहते हैं कि आपको हाई फाइबर डाइट लेना चाहिए, मतलब ज्यादा खुज्जे वाला भोजन आपको करना चाहिए। बवासीर में हम बोलते हैं हाई फाइबर की जगह कंट्रोल्ड फाइबर का भोजन करना चाहिए, कि इतना भी हम फाइबर न ले लें कि जिससे वो भी उस क्षेत्र को रखड़ने लगे। एक सबसे सिंपल बात ये समझिए कि जब प्राकृतिक चिकित्सा एक बात और बोलती है कि जब आंतों में बहुत गर्मी आ जाएगी तो भी आपको बवासीर हो जाएगा। आंतों में गर्मी क्यों आ गई, आप ज्यादा काम कर रहे हैं। ज्यादा क्या काम कर रहे हैं, आप आंतों को रोज कह रहे धक्का दो, निकालो, पेट साफ करो, पेट साफ करो, पेट साफ करो, और हो ही नहीं रहा है। तो आंतों की गर्मी को शांत करना भी बहुत जरूरी है। और इसका सबसे जो प्रकृति चिकित्सा में है वो है मिट्टी की पट्टी पेट पे रखने से आंतों की गर्मी शांत होती है। पुराने प्राकृतिक चिकित्सालयों में गुदा द्वार पे भी मिट्टी को गोला बना के रखा जाता था, पर इसे मॉडर्न मेडिसिन ने इसका एक सिंपलर तरीका बताया है कि मिट्टी में इन्फेक्शन ना हो जाए, उसमें गंदगी, कैसी मिट्टी मिली आपको, और आजकल साफ सुथरी अच्छी मिट्टी मिलना बड़ी मुश्किल चीज हो गई है, तो वो है आपको पानी में बैठना। इसको इंग्लिश में सिट बाथ का कहते हैं, और एक बड़ा सिंपल है कि आप किसी भी टब में ठंडा पानी या नॉर्मल पानी डालकर उसमें बैठिए, और आप जैसे ही उसमें बैठेंगे, आपकी गुदा द्वार की सिकाई होगी, और जहां आपकी गुदा द्वार की सिकाई होगी वहां आपको आराम मिलने लगेगा। कुछ लोग इसमें हल्का गुनगुना पानी भी इस्तेमाल करते हैं, मगर आप नॉर्मल वाटर या हल्का गुनगुना पानी लेकर अपने जो मल का द्वार, आप एक पानी को एक टब में लेकर आप उसमें बैठ सकते हैं। बहुत से लोगों को बवासीर कोई एक पर्टिकुलर फल या कोई एक पर्टिकुलर सब्जी खाने से भी होता है जो उनको परेशान करती है। अगर हम देखें तो मैं किसी फल का नाम और किसी सब्जी का नाम यहां लेना नहीं चाहूंगा, उसका सिर्फ ये रीजन है कि कल से अगर आदमी को शक पैदा हो जाएगा कि शायद मुझे इसकी वजह से हो तो नहीं हो रहा है, तो आप खुद ढूंढिए कि आप कोई एक पर्टिकुलर फल या एक पर्टिकुलर आप सब्जी खा रहे हैं और उसको खाने से आपको अगर परेशानी हो रही है तो आपको उसका त्याग थोड़े दिनों के लिए कर देना चाहिए। हम लोगों ने यहाँ प्राकृतिक चिकित्सालय में एक चीज और देखी है कि चोकर समेत आटे की रोटी खाने से बवासीर में और कॉन्स्टिपेशन में आराम होता है, और कुछ लोग जब इसको नहीं खा पाते हैं तो उन्हें हम गेहूं का दलिया खिलाते हैं। बहुत अच्छे से अगर हरी सब्जियां उन्हें खिलाएं, जैसे पालक है, बथुआ है, तरोई है, परवल है, पात गोभी है, मूली है, पपीता है, पका केला है, खरबूजा है, फलों में खरबूजा, सेब, नाशपाती, दूध पिलाने से इनसे भी कॉन्स्टिपेशन में और बवासीर में आराम मिलता है। हम लोग वैसे चिकित्सा में दालों को अवॉइड करने को कहते हैं क्योंकि दालें थोड़ी गर्मी पैदा करती हैं, तो उस गर्मी से कभी कभी बवासीर उभर जाता है। तो जो सबसे अच्छा चीज है जो कॉन्स्टिपेशन एंड पाइल्स दोनों में आराम देता है वो है मुनक्का, अंजीर और किशमिश। इसको जितना आपने मुनक्का लिया इससे इसको दुगने या तिगुने पानी में इसको अच्छे से धोकर इसको रखिए, ये 12 से 14 घंटे तक भिगाइए, सुबेरे भिगा दीजिए और शाम को आप इसको खा सकते हैं। अगर आप इसको खाएंगे तो ये ताकत भी देता है, आपको अच्छा फाइबर भी देगा, और इससे आपको जो है आपकी जो समस्या है उसमें भी आपको आराम मिलेगा। बहुत सारे लोगों में इसबगोल की भूसी भी हम लोग इस्तेमाल करने को कहते हैं, पानी में इसबगोल मिला सकते हैं आप, छाछ में मतलब दूध पानी और दही थोड़ा सा मिलाकर आप अगर इसका प्रयोग करिए तो वो आपको आराम देगा। प्रकृति चिकित्सा में आंतों को ठंडक पहुंचाना, गुदा द्वार को ठंडक पहुंचाना, और भोजन में कंट्रोल्ड फाइबर या ऐसी चीजें जिससे आपको हेमरॉइड या पाइल या बवासीर हो सकता है उसको हटा देना आपका इलाज है। जब ये सारी चीजें करके आपको नहीं आराम मिलता है तो फिर हम उपवास कराने की बात करते हैं, क्योंकि जब पेट में कुछ जाएगा ही नहीं तो आपकी आंतें जो हैं वो अगर मिट्टी की पट्टी और एनिमा आपको दिया जाएगा तो आपकी आंतें को कम काम करना पड़ेगा, उनको ताकत कम लगेगी और वो अपने आप हील कर पाएंगे। तो अगर आप सप्ताह में एक दो दिन का उपवास कर लें और मिट्टी की पट्टी एनिमा ले लें तो आपको कॉन्स्टिपेशन एवं बवासीर दोनों में आराम मिलेगा। ये सारी बातें जो हैं वो प्रकृति चिकित्सा एवं जो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के लोग हैं वो इस्तेमाल करते हैं। एलोपैथी में जब ये आउट ऑफ कंट्रोल ब्लीडिंग होने लगती है या वो मस्सा इतना बड़ा हो जाता है कि वो गुदा द्वार को जो है वो ढकने लगता है और बहुत परेशान करने लगता है, तब उसमें इस जो मस्सा है उसको सर्जरी से हटाया जाता है, मसे की गर्दन को एक रबर के बैंड से बंद करके उसको हटाया जाता है, या उसको जो कॉटरी से मतलब हम लोग उसको वहां से हटाकर जो उसकी समस्या है जो लोकल है उसको हटा देते हैं। मगर उसके बाद भी ये बोला जाता है कि आप भोजन पे कंट्रोल करेंगे, आप एक्सरसाइज करेंगे, आप अच्छा हाई फाइबर डाइट लेंगे और आप कोई भी ऐसा चीज नहीं खाएंगे जो बहुत प्रोसेस्ड हो, बहुत लो फाइबर हो, मैदा बहुत हो, जो चीजें आपकी आंतों के मूवमेंट को कम करती हैं उसको आप एकदम नहीं खाएंगे अगर आपको बवासीर की समस्या हो चुकी है।
0: ये बात समझ में आ रही है कि जब हम समस्या के कारण को समझते हैं तो उसके निवारण को समझना भी आसान है। इलाज के लिए पहले तो हम उन्हीं चीजों को ठीक करें जो इस समस्या को ले आने का कारण बनती हैं। और इस तरीके से जब हम अपने इलाज के दृष्टिकोण को देखते हैं तो हम न सिर्फ उस समस्या से उस समय के लिए निजात पाते हैं, मगर आगे वो समस्या लौट कर हमारे पास आए ही नहीं, वो बीमारी हम तक पुनः आए नहीं, इसलिए भी हम अपने आप को सुधार लेते हैं। इस सुधार से स्वस्थ रह पाना संभव है, ये चीज समझ में आती है। आज बहुत ही सुंदर ये चर्चा रही है जिसमें हम ये बात समझ रहे हैं कि हम अपने स्वास्थ्य के संबंधित अनेक जो बीमारियां देखते हैं उसका इलाज हमारे पास हमारे हाथों में है, और बहुत ही सरलता से और सहजता से इस चीज को हम समझ कर अपने स्वास्थ्य की ओर कदम बढ़ाते हैं तो अपने स्वास्थ्य को हम सहजता से पा भी सकते हैं। घड़ी इशारा करती है कि यहां रुकना होगा, मगर आज आप सभी श्रोता मित्रों को बवासीर और कॉन्स्टिपेशन कब्ज से जुड़ी हुई समस्याओं का निवारण कैसे किया जाता है इस पर सही मार्गदर्शन डॉक्टर राहुल मोदी जी ने दिया। आप सभी श्रोता मित्रों की ओर से मैं उनका धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका।
1: नमस्कार, ओम शांति।
0: दोस्तों, आज के सहज स्वास्थ्य में जो चीजें सुनी है वो सिर्फ जानकारी मात्र नहीं है, ये अनुभव कर अपने जीवन में लागू करने वाली चीजें हैं। अगर आपके घर परिवार में कोई भी व्यक्ति ऐसी किसी समस्या से परेशान है तो उनके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए इस जानकारी का इस्तेमाल करें, उन्हें मदद पहुंचाएं और बिना हिचकिचाहट के अपनी बीमारियां या समस्याओं को बताने के लिए लोगों को प्रेरित करें। आज के सहज स्वास्थ्य में इतना ही। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

अगर आपातकालीन स्थिति में किसी को अस्पताल ले जाना हो तो घबराइए नहीं, डायल कीजिए एम्बुलेंस का इमरजेंसी नंबर 102 या फिर 108। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सबका अवेकनिंग विद ब्रह्म कुमारीज में। अगर आपसे मैं आज ये सवाल पूछूं, तुझे क्या चाहिए जिंदगी, तो हो सकता है आपके पास ये जवाब हो कि मुझे फेम चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। लेकिन आज के इस दौर में मुझे लगता है ज़्यादातर हम में से ज़्यादातर लोग यही जवाब देंगे कि मुझे खुशी चाहिए, मुझे सुख चाहिए। हम इस पर कई बार बातें कर चुके हैं कि क्या सुख हमें बाहर से मिल सकता है, क्या खुशी हमें बाहर से मिल सकती है, क्या खुशी अपने अंदर ही नहीं है, अंदर कैसे तलाशें। और जो हम पूरी ये चर्चा कर रहे हैं उसमें पिछली बार हमने ये बात की थी कि एंगर यानी कि गुस्सा जो है उसके क्या कारण हैं और किस तरह की सिचुएशंस में हम एंगर को जस्टिफाई करते आए हैं। एंगर एक वेपन ज़रूर है लेकिन उससे कभी कोई मंजिल नहीं मिलती है, कभी भी वो जो हम चाहते हैं वो हमें नहीं दे सकता है। और आज बात करेंगे खुशी की कि हम में से ज़्यादातर लोग जो हैं वो जो कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी नहीं जान पा रहे हैं कि हमें खुशी चाहिए, लेकिन ज़्यादातर लोग कहते हैं कि हमें खुशी चाहिए। कैसे मिल सकती है वो खुशी, क्या है खुशी, हैप्पीनेस कैसे डिफाइन की जा सकती है और कौन से रास्ते पर चलकर हम उसे पा सकते हैं, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल। अ वेरी वार्म वेलकम सर।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार। और हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर शिवानी। अ वेरी वार्म वेलकम।
2: ओम शांति।
0: ओम शांति। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम जो अगर हम पिछली कड़ी में देखें तो हमने ये डिफाइन किया था कि एंगर के कारण क्या हैं और कहीं ना कहीं जो हम वेपन के रूप में, एक शस्त्र के रूप में उसे देखते थे वो नहीं है, उसे कभी हमें मंजिल नहीं मिलती है। एंगर का ही एंटीडोट या एंगर से दूर जाने का एक तरीका हैप्पीनेस है, ये आपने कहा था। तो क्या हम हैप्पीनेस को डिफाइन कर सकते हैं आज के इस वक्त में, क्या सुख को या खुशी को मैं डिफाइन कर सकता हूँ?
1: मैं समझता हूँ कि डेफिनेशन में इतना जाना नहीं चाहिए। देखो, आपको एक प्रश्न पूछता हूँ, प्यार की डेफिनेशन इम्पोर्टेंट है या प्यार इम्पोर्टेंट है?
0: प्यार,
1: आपको प्यार चाहिए? डेफिनेशन नहीं, डेफिनेशन कुछ भी हो, प्यार मिल गया संतुष्ट होंगे जीवन में। तो वैसे ऐसे ही है कि भी सुख की डेफिनेशन में जाएंगे तो कंफ्यूज होंगे। बस जनरल बात पता होनी चाहिए, हमें ध्यान में तो ये रखना चाहिए कि कौन सी बात आपको सुख देती है वह एक और इश्यू है, परंतु वह सुख सदा के लिए टिकता है या नहीं। या मुझे थोड़ा समय 2 घंटा सुख का अनुभव हुआ फिर दुख का अनुभव हुआ, ऐसी स्थिति हमारी न रहे। और एक जो लेवल है वह सदैव आनंद की स्थिति, मन आपका हल्का है, शांत है, खुशनुमा है, इस प्रकार की स्टेज आपकी जब टिक जाए, एक जिसको परपेचुअल हैप्पीनेस कहे, वह सबसे बेस्ट है।
0: एटर्नल हैप्पीनेस जिसे हम कहते हैं, हमेशा हम सुख का अनुभव
1: करते रहे।
0: लेकिन सिस्टर शिवानी, बात उसी पे आती है कि आज जब हम सब कुछ तलाश रहे हैं, जब हमारी सारी पुरानी धारणाएं जिसपे हम ये कहते थे कि इससे मुझे सुख मिलेगा, इससे मुझे खुशी मिलेगी, अब जब वो सारी मान्यताएं तोड़ने पे आए हैं, हम नए बिलीफ सिस्टम्स को ले रहे हैं या नए एहसासों को ले रहे हैं, ऐसे में जो जो बातें मैं अभी तक मान रही थी कि इससे मुझे खुशी मिलेगी, क्या मुझे वो चेंज करना पड़ेगा, अपना परसेप्शन चेंज करना है? खुशी बेसिकली, अगेन डेफिनेशन वाली बात नहीं, लेकिन एक एहसास है, वो एहसास कब तक कायम रहेगा और क्या वो सही मायने में मैं उसे समझ पाऊंगी?
2: हैप्पीनेस जैसे भाई साहब ने कहा, एक एहसास, एक फीलिंग है, एक एनर्जी है। जैसे गुस्सा एक एनर्जी है, खुशी भी एक एनर्जी है। जैसे कोई मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, वैसे कोई मुझे खुशी भी नहीं दिला सकता। ये एक एनर्जी है जो मेरे अंदर है, और बाहर की कोई भी फिजिकल चीज़, एक कार, एक बंगलो, एक डेजिग्नेशन, एक वेरी बिग सैलरी फिगर या एक व्यक्ति, वो मेरे अंदर उस एनर्जी को नहीं क्रिएट कर सकता है। दैट एनर्जी कैन ओनली बी क्रिएटेड बाय मी। बट व्हाट आई डू इज कि उस चीज़ को लेकर आई कैन क्रिएट दैट एनर्जी। यू नो, ये लैपटॉप है, तो लैपटॉप मेरे अंदर हैप्पीनेस नहीं क्रिएट कर सकता। ये एक फिजिकल चीज़ है, ये एक एनर्जी है, ये फिजिकल चीज़ उस एनर्जी को नहीं क्रिएट करता। बट द थॉट दैट आई क्रिएट, नाउ आई हैव अ लैपटॉप, यू नो, ये थॉट जो क्रिएट कर ली, ये थॉट वो पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट कर देता है। तो सबसे पहली रियलाइजेशन ये है कि कोई भी बाह्य चीज़ या व्यक्ति उस फीलिंग को नहीं क्रिएट कर रहा है, मेरी अपनी थॉट्स, क्योंकि हमने चेन में देखा कि थॉट गिव्स राइज टू फीलिंग, नथिंग एल्स। कोई भी और चीज़ वो फीलिंग नहीं क्रिएट कर सकती है। तो नाउ इट्स इन माई हैंड कि लैपटॉप लाने के बाद मैं उस अच्छी फीलिंग को क्रिएट करूँ, या बिना लैपटॉप के भी उसको क्रिएट कर लूँ, या वेट करती रहूँ, 1 साल सेव करती रहूँ कि जिस दिन लैपटॉप आएगा तब वो अच्छी वाली फीलिंग क्रिएट करूँ, यू नो इट्स इन माई हैंड कि मैं कितना देर खुश रहना चाहती हूँ. डू आई वॉन्ट देन नाउ वट इज हैपनेस वी हैव मेड इट वेरी टेम्प्ररी कि ये होगा तो खुशी. दैट्स बिकॉज जब वो चीज़ होती है हम अपने आप को उस तरह की अच्छी थॉट्स देते हैं, अच्छी फीलिंग आती है. लेकिन जब हमें समझ में आ जाता है कि ये मेरी अपनी क्रिएशन है एंड आई कैन क्रिएट इट वेन वेर एवर एंड फॉर हाउ एवर लॉन्ग आई वॉन्ट, सो देन इट्स माई चॉइस. सो नाउ इट्स योर चॉइस. आप जितनी देर खुश रहना चाहते हैं क्रिएटेड.
0: और अगेन बात वही आ जाती है कि फीलिंग कैन ओनली बी क्रिएटेड बाय थॉट. सो फाइनली एवरीथिंग एक्चुअली यू नो अगर हम देखें तो कम्स डाउन टू थॉट. तो खुशी की जो बात की है, जो हमने फीलिंग की बात करी है, वो हमारे थॉट्स पे डिपेंड करती है. थॉट्स जनरेट जो होते हैं. अब रॉन्ग बिलीफ्स पे हम जी रहे थे, वो हमारे थॉट जनरेट करते थे. बिलीफ्स बदल रहे हैं, नए बिलीफ्स लेकर आते हैं. तो क्या वो नए बिलीफ्स कॉन्स्टेंटली मेरे पुराने बिलीफ्स के साथ टकराएंगे और मैं उनको ओवरपावर कर पाऊँगा या कर पाऊँगी? और क्या मैं नए जो थॉट्स आ रहे हैं क्या मैं वो भी सही हूँ, सही लेकर चल रहा हूँ? बिकॉज अगेन वी हैड टॉक्ड अबाउट इट दैट द थॉट्स आर ग्रे. देयर इज नो ब्लैक एंड वाइट थॉट. कोई एक प्योर नेगेटिव या प्योर पॉजिटिव थॉट नहीं होता है. तो वो ग्रे में होता है. तो तभी मुझे लगता है कि वो फीलिंग्स जो हैं वो प्योर हैप्पीनेस या प्योर दुख वाली नहीं आती हैं. वो कहीं बीच में ही रह जाती हैं, कभी खुशी कभी गम वाली.
2: नहीं, लेकिन वो डिपेंड है ना आप कितनी देर उस तरह की थॉट को क्रिएट कर सकते हैं और कौन सी चीज़ वो खुशी आपसे. जैसे हम कहते हैं अभी हम खुश थे, अभी ये लैपटॉप खरीदा आई वॉज वेरी हैप्पी. उतनी देर में आप सामने से आए, आपने कुछ ऐसा बोल दिया कि अब खुशी नहीं है, अब गम है. ये भी मैंने ही क्रिएट किया था, ये भी मैंने ही क्रिएट किया. तो इट्स ऑल माई क्रिएशन. तो इट्स नॉट कभी खुशी कभी गम, बट इट इज़ लाइक आई हैव अ चॉइस कि मुझे कितनी देर के लिए वो अच्छी वाली थॉट क्रिएट करनी है. देर विल बी अ वेरिएशन. एक परफेक्ट 100 स्कोर नहीं है कि दिस इज द बेस्ट थॉट. लेकिन देर आर सो मेनी थॉट्स विच विल गिव मी दैट फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस. इट्स जस्ट दैट आई डेवलप दैट एटीट्यूड ऑफ क्रिएटिंग दैट राइट काइंड ऑफ थॉट. यू नो इट वोंट बी वन सिंगल थॉट, बहुत सारी थॉट्स हैं जो हमें वो एक अच्छी फीलिंग जनरेट कर सकते हैं. तो हम वो सारी तरह की थॉट्स क्रिएट करें. यू नो एक पोजिशन तक पहुँचना है. लोग खुश नहीं होते जब तक वो उस डेजिग्नेशन तक नहीं पहुंच जाते हैं. और फिर जिस दिन उस डेजिग्नेशन पर पहुंच जाएंगे, थोड़ी देर के लिए वो एक सो कॉल्ड के आई एम वेरी हैप्पी टुडे, एवरीबडी इज वेरी हैप्पी टुडे, बट आफ्टर 2-3 डेज नाउ आई हैव समथिंग एल्स. तो फिर इसीलिए फिर दैट्स माई चॉइस. देन आई एम अलाउिंग माई सेल्फ टू बी हैप्पी जस्ट फॉर अ कपल ऑफ डेज एवरी कपल ऑफ ईयर्स. उसके बाद मैंने अपना नेक्स्ट टारगेट रख दिया.
1: Success is not at the end of the journey, no, but success is a feeling of happiness on the path. वो जो रास्ता आप नाप वहीं पर हर मुकाम पर आपको सुख का अनुभव हो वह सचमुच सक्सेस है.
0: अगर हमारे thoughts हमारी happiness को govern करते हैं, because feeling को govern कर रहे हैं, and that feeling becomes important. मैं constant अपने जो thoughts हैं उन्हें check कैसे कर सकते?
1: उसको चेक करने के लिए आपको जागृत होना होगा. यहाँ पर भी अवेयरनेस की बात है, भले इस पर डिटेल में डिस्कशन होना चाहिए. कि अगर आप सदैव जागृत है कि मेरे मन में क्या चल रहा है, मुझे क्या फीलिंग्स हो रही है, वह जागृति होगी तो आप पकड़ सकेंगे. कि एक भी छोटा सा भी नेगेटिव थॉट आया समझ में आ जाएगा कि भी नेगेटिव आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली उसको स्टॉप कर सकते हैं. तो सबसे बड़ी मैं समझता हूँ ये प्रैक्टिस है.
0: मैं जागृत नहीं हूँ लेकिन मैं हैप्पीनेस चाहती हूँ. तो मैं वो जो पूरी जर्नी है उसमें भी तो कहीं ना कहीं हैप्पीनेस के साथ उस जागृत होने के जो पूरा प्रोसेस है उसमें चल सकती हूँ.
2: दैट्स सी अवेकनिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. और वो भी होता है कि जागृत होने के बाद भी बीच बीच में सो जाते हैं. यू नो इट्स नॉट, दिस इज नॉट लाइक एक बार आप जाग गए तो आप जाग गए. इट्स लाइक यू नो क्योंकि कई बार बड़ी बड़ी परिस्थितियाँ आ जाती हैं और आप फिर वही पुराने बिलीफ सिस्टम की तरफ चले जाते हैं. दूसरे ने मुझे परेशान कर दिया. एट दैट टाइम यू हैव टू क्विकली वेक योर सेल्फ अप. सो इट्स नॉट कि आप हमेशा जागे हुए हैं. आप बीच बीच में फिर वो ओल्ड बिलीफ सिस्टम कभी कभी वापस आ जाता है. बट इट्स ऑल अबाउट कितनी जल्दी आप अपने आप को फिर से याद दिलाते हैं कि यू फॉलन ऑफ टू स्लीप, वेक अप.
1: अवेयरनेस इज डिफरेंट आई थिंक. नहीं, एक जागृति अलग बात है.
2: हाँ, अवेयरनेस
1: जो बोल रहा हूँ वो अवेयरनेस कह रहा हूँ. इस समय मैं बैठा हूँ, है ना, मुझे क्या हो रहा है कि भी पैरों में क्या हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, शोल्डर्स को मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया, जो भी है उसके बारे में सजग हो जाना, दैट इज अवेयरनेस. और आप में अगर वह सजगता आ गई तो एक भी नेगेटिव विचार आएगा पता चल जाएगा और फिर उसको आप मोड़ सकते हैं. वन एक स्टेप है, परंतु वह जब तक जागृति नहीं है मोड़ना इम्पॉसिबल. और क्योंकि आज लोग अवेयर नहीं है, यहाँ तक कि आपको पूछे कि भी सवेरे क्या नाश्ता किया था याद है, कई बार आप देखेंगे आपको पता ही नहीं क्या किया, बिकॉज यू हैव नॉट टेकन योर ब्रेकफास्ट विथ अवेयरनेस. तो ऐसे सचमुच तो हर स्टेप अभी कैसे बैठे हो वो जागृति के साथ बैठो, क्या हो रहा है दिमाग में, क्या हो रहा है चेहरे में, क्या हो रहा है, वह जागृति हो तो आप कंप्लीटली पॉजिटिव थॉट्स में कन्वर्ट करना पॉसिबल.
0: दैट्स वंडरफुल एक्चुअली. सजगता के साथ अगर हम जिंदगी जीते रहे तो जैसे ही नेगेटिव थॉट आएगा एहसास तो हो ही जाएगा कि दिस इज समथिंग यू नो व्हिच इज नॉट गुड.
2: और इसके लिए शायद अगर बीच बीच में साइलेंस में हो जाए तो वो सजगता इजीली आ जाती है.
1: कि ब्रह्मा कुमारीज में हम अब तो हर घंटे ही अभ्यास करते हैं,
2: वही जस्ट अ मिनट, एक मिनट के लिए हर घंटे
0: की जो हम बात कर रहे हैं कि एक हर एक घंटे बाद खुद अपने आप से बात करने के लिए थोड़ी देर मौन में जाएं हम.
2: मौन एंड चेकिंग. सी मौन एक होता है कि फिजिकली आप चुप हो गए, बट दैट्स नॉट इनफ. फिजिकली चुप होकर करना क्या है, करना यह है कि मन में देखना है इस टाइम क्या चल रहा था, इज इट द राइट डायरेक्शन, इफ इट्स राइट इट्स फाइन, इफ इट्स नॉट स्टॉप चेंज.
0: लेकिन कई बार तो खुद उस वक्त जैसे चल रहा अभी आज मुझे अभी कहें आप बातें करते करते पॉज लेके और मैं ये सोचूं कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मुझे अंदर क्या चल रहा है.
2: नहीं, आप रुक कर देखेंगे तो धीरे से वो स्क्रीन के सामने बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्या चल रहा है अभी. सिर्फ पॉज करना है. शुरू शुरू में थोड़ा सा टाइम लगेगा देखने में क्या चल रहा है, क्योंकि आपने उस तरफ कभी देखा नहीं है. तो एकदम से देखेंगे तो बहुत धुंधला धुंधला सा दिखाई देने लगेगा, टू मच कन्फ्यूजन बहुत है. लेकिन जैसे जैसे ये प्रैक्टिस कर फिर भी करते रहिए, इवन अगर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है फिर भी करते रहिए, बिकॉज दिस इज अ प्रोसेस ऑफ स्लोइंग डाउन योर थॉट्स. अभी वो बहुत फास्ट है तो वो बिल्कुल कन्फ्यूजन लगता है, लेकिन ये पॉजेस करने से धीरे धीरे उसकी स्पीड भी कम होती जाएगी. और जैसे ही स्पीड कम होती जाएगी बहुत क्लियर दिखाई देगा कि क्या चल रहा है, एंड देन इट बिकम्स इजी टू चेंज. लेकिन अगर रुक के कभी देखा ही नहीं
1: तो
2: क्या चल रहा है, तो चेंज करने की मर्जी नहीं है.
0: टेकिंग अ पॉज एंड थिंकिंग अबाउट इट कि क्या चल रहा है, क्या नेगेटिव थॉट्स आ गए हैं.
2: नॉट थिंकिंग अबाउट इट. सी हियर दैट्स द डिफरेंस. डोंट थिंक एनीथिंग एट दैट टाइम. जस्ट स्टॉप एंड लुक
0: कि क्या हो.
2: यू नो डोंट क्रिएट न्यू थॉट्स. नो क्रिएटिंग न्यू थॉट्स थिंकिंग कि मैं. जस्ट स्टॉप एंड लुक. इट्स लाइक आई स्टॉप एंड लुक व्हाट आर यू वेयरिंग. सिमिलरली आई जस्ट स्टॉप एंड आई लुक व्हाट एम आई थिंकिंग. आई डोंट स्टार्ट थिंकिंग एनीथिंग डिफरेंट.
1: नो वॉच.
2: देयर इज अ डिफरेंस.
1: यही बात है. लुक जो कह रहे हैं वही बात है. व्हाट इज गोइंग ऑन. वॉच योरसेल्फ. इसने बहुत अच्छा कहा है कि ऑब्जर्व द ऑब्जर्वर. कि जो अंदर में ऑब्जर्वर है उसी को ऑब्जर्व करो.
0: एक्चुअली वो एक्सपीरियंस के थ्रू ही कर सकते हैं.
2: बस आप एक बार अभी करके देख लीजिए. हर एक सारे दर्शक अभी बैठकर देख सकते हैं. कुछ भी सोचना बंद कीजिए. जस्ट चेक कीजिए अभी क्या चल रहा है मन में.
1: और जब हम ये करते हैं तब और एक बात आती है कि when you watch then you realize कि you know somebody else is watching. I am not this body. फिर ये कहना नहीं पड़ेगा, ये तो समझाना पड़ता है कि

0: जो कितनी कितनी देर तक मुझे खुशी दे सकती है, दैट बिकम्स इम्पॉर्टेंट एट टाइम, यू
1: नो,
0: नो
1: इट मे
0: कि
1: बी इंटरेस्टिंग.
0: हाँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मैंने ये लैपटॉप खरीदा, मुझे थोड़ी देर के लिए खुशी हुई, मैंने कुछ और खरीदा, कुछ और चीज़ें की, वो व्यक्ति मेरे साथ मिल गया, ज़्यादा देर तक हुई. कौन सी ऐसी बात हो सकती है हमारी ज़िंदगी में जो उस राह तक हमें ले जाए जो इटर्नल होगी, इटर्नल हैप्पीनेस की बात हो?
1: थोड़ा सा सोचा इसके बारे में. कहते हैं कि भी आपको एक दिन के लिए अगर सुख चाहिए तो फिशिंग करने के लिए जाओ, तो हाँ, एक दिन आपको सुख मिलेगा. एक मास के लिए सुख चाहिए तो मैरिज करो.
0: अच्छा, बस एक महीने
1: देखना,
0: तक.
1: सचमुच आप स्टडी करना, वो जो हनुमान पीरियड है ना, तभी सुख होता है. उसके बाद फिर से बस खुशी गम वाली स्थिति स्टार्ट हो जाती है. उसके बाद नहीं, फिर तक रियलिटी को फेस करना पड़ता है. फिर कहते हैं कि भी एक साल के लिए हैप्पीनेस चाहिए तो इनहेरिट अ फॉर्च्यून, ना, कहीं से पैसे मिल जाए तो एक साल तक आपको सुख मिलेगा. कहते हैं जीवन भर आपको सुख चाहिए तो हेल्प समवन, इन्वॉल्व योर सेल्फ इन अ कॉज हायर देन योर सेल्फ. और कहेंगे कि अनेक जीवन के लिए आपको अगर सुख चाहिए तो राजयोग का अभ्यास करो, ताकि वह संस्कार बनेंगे. ये जो सारा प्रोसेस संस्कार बनेंगे, इस जीवन में तो मैं सुख का अनुभव करूंगा ही, परंतु आने वाले अनेक जीवन में भी सुख का अनुभव होगा.
0: क्योंकि वी अंडरस्टैंड दिस कि ये जर्नी जो है ये कंटिन्यूस है, मतलब वही लिबास हम बार बार बदल लेते
1: बदलते
0: हैं,
1: हैं.
0: लेकिन आत्मा जो है उसका स्वरूप तो वही रहता है, और वो फिर कार्मिक डेप्थ साथ साथ चलते हैं. क्या जो हमारी हैप्पीनेस है, जो पूरी ये जर्नी है, ये भी कहीं ना कहीं हमारे कार्मिक, क्योंकि कई बार क्या होता है, अनएक्सपेक्टेडली समबडी गिव्स मी अनहैप्पीनेस, आई डोंट इवन नो यू, लेकिन आप के साथ मेरा काम करना मुझे अनहैप्पीनेस दे रहा है. आप कुछ कर गलत नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, या कोई चीज़ कोई बात मुझे अनहैप्पीनेस दे रही है. इज इट बिकॉज ऑफ ए टाइम्स वी कैन से दैट दिस कार्मिक डेथ?
2: इट इज, सी, एवरीथिंग इज अ कार्मिक अकाउंट. एक्चुअली हर चीज जो हो रही है, हर इंटरेक्शन जो हो रहा है, हर शब्द जो हम एक दूसरे से बोल रहे हैं, दिस इज समवेयर कनेक्टेड. तो वो कार्मिक अकाउंट है, लेकिन हम हर चीज़ में उसको कार्मिक अकाउंट. सी, वी डोंट वांट टू यूज एनी वेपन जहां हम अपने आप को फिर लिबर्टी देना शुरू कर देते
0: कि
2: हैं.
0: ऐसा तो होना
2: इन्होंने
0: ही
2: ऐसा किया, कार्मिक अकाउंट है मेरा, यू नो, मुझे, नो, इट्स नॉट ट्रू. उन्होंने जो किया, देन अगेन इट कम्स टू द सेम थिंग, उन्होंने जो किया वो कार्मिक अकाउंट था, अब आपके ऊपर है. अगर आप स्टेबल रहेंगे उस परिस्थिति में तो वो कार्मिक अकाउंट सेटल हुआ. लेकिन अब अगर आप डिस्टर्ब हो गए और आपने फिर वो, यू नो, नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव वर्ड्स बोले, फिर अब आप एक नया कार्मिक अकाउंट स्टार्ट कर रहे हैं जिसको फिर आपको रीसेटल करना पड़ेगा. तो हम लोग कई बार ये चेक करते रहते हैं कि हम एक कार्मिक अकाउंट सेटल कर रहे हैं या हम एक कार्मिक अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं. ये बहुत इम्पोर्टेंट है. तो जहाँ हम इंटरनली स्टेबल हैं, चाहे बाहर कुछ भी हो रहा है, तो एक कार्मिक अकाउंट सेटल हो रहा है. क्योंकि सेटलमेंट, जहाँ जैसे मैंने कर्जा लिया था किसी से और मैं कर्जा आज लौटा रही हूँ, तो लौटाते समय बहुत अच्छी फीलिंग आती है, तो दैट इज स्टेबिलिटी. लेकिन जहाँ मैं कर्जा ले रही हूँ तो वो एक बोझ हो जाएगा कि मैंने एक कर्जा लिया. तो जहाँ स्टेबिलिटी है अंदर, कार्मिक अकाउंट सेटल हो रहा है. जहाँ डिस्टर्बेंस है अंदर, एक नया कार्मिक अकाउंट क्रिएट हो रहा है.
0: तो अनहैप्पीनेस क्रिएट हो रही है किसी व्यक्ति के कारण, मेरी ज़िंदगी में अनहैप्पीनेस क्रिएट हो रही है. कई बार देखा गया ऑफिस में जब हम काम कर रहे होते हैं, या कहीं पे भी घर में मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ का जो एक मेजर अनहैप्पीनेस का एक रिश्ता कई बार डेवलप होता है, बेटा और बच्चा और यू नो फादर एंड सन का बेसिकली कई बार देखा गया है, देर इज़ अ मेजर टसल गोइंग ऑन. तो क्या वो अगेन इज इट अ कार्मिक?
2: इट इज़ अ कार्मिक अकाउंट. सो हाउ डू आई सेटल इट नाउ? क्योंकि एट अ वेरी हायर लेवल, लेकिन मेडिटेशन टीचेस अस अ वे टू सेटल इट. कि हम जैसे जब योग में बैठते हैं, जब मेडिटेशन करते हैं, हम पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं ना, वी आर चैनलाइजिंग आवर थॉट्स. तो तब हम उस व्यक्ति को, या कहें उस आत्मा को, इमर्ज करते हैं. यू नो, आई इमर्ज दैट पर्सन इन माय माइंड, एवरीथिंग इज इन माय माइंड. तो आई इमर्ज दैट पर्सन इन माय माइंड एंड गिव वेरी पॉजिटिव थॉट्स कि नहीं, मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जैसे हैं बहुत अच्छे हैं, आप जो भी कुछ करेंगे आप मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं. वी डू दैट एट द एनर्जी लेवल. एंड ये अगर हम कर लेते हैं, अगर हम वर्ड्स से ये करने की कोशिश करें तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होता, क्योंकि हमारा ईगो ये बहुत बड़ा बैरियर बीच में आ जाता है.

0: लेकिन हम अगर थॉट पावर पे ये कर लेते हैं तो हमने एक्सपीरियंस किया है कि बिल्कुल बिगड़े हुए रिलेशनशिप्स में भी यू नो इट जस्ट स्टार्ट्स ऑल ओवर अगेन, क्योंकि आप उस आत्मा तक उस एनर्जी को पहुंचा रहे हैं. वो बोल से बोल कर करने की ज़रूरत नहीं है, गिफ्ट देकर या कुछ बाह्य चीज़ करके करने की ज़रूरत नहीं है. आप हर रोज़ कुछ दिनों तक इसको प्रैक्टिस कीजिए कि हर रोज़ उस आत्मा को इमर्ज कीजिए और उसको ये प्योरिटी पॉजिटिविटी की एनर्जी यू नो डेलिबरेटली मेक एन एफर्ट टू सेंड दैट एनर्जी ऑफ पॉजिटिविटी कि हो सकता है हम दोनों के बीच कुछ हुआ होगा, लेट्स फिनिश इट नाउ. अब नहीं, अब हम और एक दूसरे को ये तकलीफ इस पेन से नहीं लेके जा सकते हैं. आई फॉरगिव यू, यू नो इफ इन केस somebody has done something to you. So very important is हम thought power से वो vibration भेजते हैं, I forgive you, आपने कुछ नहीं किया है. And in other cases, please forgive me, you know, whatever, depending on the case. ये energy level पर अगर हम कर लेते हैं, thought level पर, relationships में बहुत एक, you know, you will find a different relationship. It really works. तो इसको थोड़े दिन के लिए, महीना दो महीना या जब तक वो नहीं होता है, and एक तो इसको meditation के दौरान करें और दूसरा जैसे ही वो व्यक्ति आपके सामने आता है, just emerge that thought all over again without saying or doing anything. Just look at the soul and say, it's okay, everything is fine between, internally. This is not, you know, superficially. ये बहुत conviction के साथ, and this is what you want. It's not superficial. You want that relationship to work. And positivity, not attachment. Attachment वाला नहीं work करेगा. It's that positive relationship with the soul. It works.
1: इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने कार्मिक डेब्ट्स इसी जन्म में जहाँ हमें एहसास हो हम सेटल कर सकते हैं और हम अपने डेस्टिनी को भी बदल सकते हैं. प्रारब्ध को बदलने के बाद जो कही जाती है, डॉक्टर साहब अगर ऐसा होता है कि हमारे सामने कोई व्यक्ति ऐसा आ जाता है जो नहीं कहीं ना कहीं हमें अनहैप्पीनेस दे रहा है, तो क्या ये पूरा का पूरा कहीं कोई केमिकल रिएक्शन भी है कि व्हाई देयर आर पीपल जस्ट हम देखते ही हमें उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं और कई बार टोटल अनहैप्पीनेस क्रिएट हो जाती है उसमें?
2: मोर देन केमिकल रिएक्शन मैं कहूंगा कि उनका जो ऑरा है वो आपके साथ मैच नहीं हो रहा है. लेकिन ऑरा तो प्रैक्टिकली हम देख सकते हैं. क्रिलियन फोटोग्राफी के द्वारा फोटोग्राफ लिया जाए तो डिफरेंट लेयर्स आती है, राइट लेफ्ट टॉप में. ऐसे ही दूसरा एक है जिसको कहा है PIP कैमरा, पॉली कॉन्ट्रास्ट इंटरफेरेंस फोटोग्राफी. यहाँ सर गंगाराम हॉस्पिटल में भी यह कैमरा है. हमने कुछ रिसर्च भी की इसके ऊपर. उसने एक छोटी सी बात जो इससे रिलेटेड आपको बताना चाहता हूँ, एक हमने इनोवेटिव बात सोची कि एक व्यक्ति को का हाथ ऐसे रखो और उसका PIP का फोटोग्राफ लिया गया तो सारे उसके लेयर्स आ रहे थे. दूसरे को कहा तुम्हारा भी करो, उसके भी लेयर्स आए. फिर दोनों को कहा आप नजदीक लाओ ऐसे और फिर फोटोग्राफ लिया. तो एक यूनिक चीज है सामने आई, भले एक एक्सपेरिमेंट था परंतु बहुत अच्छा लगा कि एक व्यक्ति का समझो यहाँ पर येलो रेज आ रहे थे तो जब दूसरे ने ऐसे रखा तो इसके येलो शिफ्ट हो गए.
1: ओके.
2: और इसका इसके जो रेज थे वहां आ गए.
0: और दूसरे के क्या थे मतलब?
2: वो जो भी थे
0: तो उसकी ऑरा ने इनके ऑरा पे इफेक्ट किया.
2: तुरंत मुझे इंटरफेरेंस हुआ कि दिस पर्सन इज मोर पावरफुल, इसका ऑरा पावरफुल है, जिसने इसको इंटर इन्फ्लुएंस किया तो इसका शिफ्ट हो गया. तो ऐसे हमें भी करना चाहिए.
1: तो
2: हम अपने ऑरा को इतना पावरफुल
1: कैन वी चेंज आवर ऑरा आल्सो,
2: वी कैन मेक इट पावरफुल.
1: हां
2: यू नो मेडिटेशन से चेंज होता ही है,
0: होगा ना,
2: थॉट से ही होगा. जो आत्मा की स्थिति है वो वास्तव में तो एनर्जी फील्ड है कहेंगे कि हमारे में एक तो आत्मा है, दूसरा ये शरीर है और जो आत्मा के वाइब्रेशन शरीर में जाते हैं वही ऑरा क्रिएट करते हैं. कि जो शरीर से बाहर भी आएंगे क्योंकि अणु अणु उस वाइब्रेशंस को बाहर ट्रांसमिट करेगा तो वही वास्तव में ऑरा है. तो आत्मा की स्थिति अगर इम्प्रूव हो, अब ज्यादा शांति का अनुभव करो, सुख का अनुभव करो, तो आपका ऑरा भी इम्प्रूव होगा. तो ये करना चाहिए
1: आत्मा कि हम अपने टेक ओवर कर ले जब, तो आपका ऑरा और स्ट्रांग हो जाता
0: है। नहीं नहीं, आत्मा तो है ही, आत्मा टेक ओवर नहीं करेगी, आत्मा ने थॉट्स की क्वालिटी को चेंज किया। जब ये किरलियन फोटोग्राफी लेते हैं तो जिन लोगों की बहुत नेगेटिव थॉट्स होती है, बहुत टॉक्सिक थॉट्स होती है, तो उनका ये पूरा एरिया वो लाइट का ग्रेश की तरफ आता है, ग्रे कलर, डार्क पर्पल, ब्लैकिश। और जिनकी बहुत प्योर और पॉजिटिव थॉट्स है उनका येलो, क्रीम, व्हाइट आएगा। एनर्जी लेवल तो है ही, लेकिन वो जितनी प्योरिटी की तरफ होगा वो ऑरा लाइट कलर का होगा। इसलिए आप देखिए देवी देवताओं के लिए, धर्म पिताओं के लिए वो व्हाइट सर्कल जो हम दिखाते हैं, दैट इज द ऑरा, प्योर सोल का,
1: जिसे कहा जाता है। ओके, तो अगेन हमने पूरा ये जो हमारी बातचीत रही आज, इसमें कई सारे एस्पेक्ट सामने आए कि हैप्पीनेस अगेन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर्स। आज हम हैप्पीनेस की बात कर रहे थे, खुशी की बात कर रहे थे, वो फीलिंग है जो कहीं ना कहीं हम हमेशा के लिए भी कभी खुशी कभी गम ना करके अपने साथ रख सकते हैं, और उसके लिए पॉजिटिव थॉट्स बहुत ज़रूरी है। और जो एक बहुत ही खूबसूरत एहसास हमें हुआ आज की, कहीं ना कहीं हर एक घंटे में अगर आप अपने थॉट्स को चेक कर लें खुद कि क्या हम सही डायरेक्शन में हैं, क्या हमारे थॉट्स सही डायरेक्शन में हैं, सो दैट विल हेल्प। एंड अगेन, कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है अगर जो कहीं ना कहीं हमें अनहैप्पीनेस क्रिएट कर रहा है, हम अपने कार्मिक डेब्ट्स भी आत्मा के स्तर पर पहुंच के उसके साथ कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं या सॉल्व कर सकते हैं, सेटल कर सकते हैं। इसमें ऑरा भी काफ़ी मायने रखता है। आज की इस बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: थैंक यू।
1: बहुत कुछ जाना आज हमने अपने बारे में, कुछ ऐसे एहसास जो अभी तक नहीं हुए थे, धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे ये हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाएंगे, दिनचर्या का एक हिस्सा बन जाएंगे। और तब हम जब कहते हैं कि मेडिटेशन करनी चाहिए, तो ज़िंदगी जो है वही मेडिटेशन बन जाएगी। आपके पास कोई सवाल है, कोई ऐसी बात है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आपका स्वागत है। आप हमें ईमेल पर या फ़ोन पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 9873666555 और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com। इसी के साथ अब दीजिए इजाज़त, अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में फिर होगी मुलाकात।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: जब हम भगवान को दोष देना शुरू कर देते हैं, दैट इज नॉट फेयर, बिकॉज पिता है, हम बच्चे हैं, वो कभी नहीं ये डिसाइड करेगा कि एक बच्चा ट्रेन ब्लास्ट का विक्टिम हो जाए और दूसरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। एक पिता कभी ये नहीं कर सकता है। और अगर परमात्मा ये कर भी रहा है तो देन वी कैन क्वेश्चन ऑन व्हाट बेसिस। परमात्मा हमारी जीवन की यात्रा नहीं डिसाइड कर रहा है, हमारे अपने किए हुए कर्म, एंड दैट्स व्हाई थॉट्स लीड्स टू डेस्टिनी। उसमें सब थॉट्स जो अभी किए, जो बहुत सारे पहले, लेकिन वही थॉट्स अब उस डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं। अब जो हुआ हादसा, वो पिछले किसी कार्मिक अकाउंट की वजह से हुआ, लेकिन उस हादसे के बाद अब क्या करना है, एटलीस्ट दैट इज इन माई कंट्रोल नाउ।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हर दिन उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करें जो आपके पास हैं। ये आपके भीतर संतोष का बीज बोता है। मैं हूं आपका हम सफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: पांच YouTube वीडियो को लाइक करके पांच लोगों को स्क्रीनशॉट भेजने से पर वीडियो 500 रुपए अर्न करे।
1: क्या बात कर रहा है?
0: हाँ देख,
1: तुझे क्या लगता है ये जेन्यून है?
0: अरे हमें कहाँ पैसे देने हैं, ट्राई करके देखते हैं ना। ला देख। अरे हाँ यार, मुझे 500 रुपए मिल गए, इट मीन्स ये जेन्यून है।
1: अरे अब तो मुझे भी ये करना है।
0: 20,000 रुपए में प्राइम मेंबरशिप लेने से 50,000 तक अर्न कर सकते हैं। क्या बात है यार।
2: अरे ठहरो, ये क्या करने जा रहे हो?
0: ऑनलाइन टास्क से पैसे कमा रहे हैं।
2: अननोन लिंक पर क्लिक करके पैसे देकर ऐसा नहीं करना चाहिए। SMS, WhatsApp, ईमेल या टेलीग्राम पर आने वाले किसी भी अननोन लिंक को क्लिक ना करें। ऑनलाइन टास्क के जरिए ज्यादा पैसा कमाने के लालच देने वाले विज्ञापनों से दूर रहें। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है।

ये गाना गुजराती में जो गाया है, मुझे ऐसी लगने लगी है कि मैं कब प्रभु परमात्मा से मिलूं, और मैं जब तक प्रभु से नहीं मिलूंगी तब तक मुझे चैन नहीं।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: उन्होंने धोखा दिया, उन्होंने मुझे नीचे खींचा, उनकी वजह से ऑफिस में मेरा नाम खराब हो गया, उनकी वजह से पूरे सर्कल में मेरा नाम खराब हो गया। वो उन्होंने किया, मैंने उनके प्रति कितना गुस्सा, कितनी नफरत, कितना हर्ट, कितनी इरिटेशन क्रिएट की, या मैंने क्षमा कर दिया, ये चॉइस किसके पास है। अगर कोई हमारे साथ गलत करे और बड़ा वाला गलत करे, क्या उनके लिए अच्छा सोचना पॉसिबल है?
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया करके रेलवे परिसर में धूम्रपान न करें, यह वर्जित है। इसके लिए आपको 200 रुपए तक का जुर्माना या फिर जेल भी हो सकती है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद और विधानसभा में महिला आरक्षण लागू करने के लिए सभी दलों से सहयोग की अपील की। इससे देश के नीति निर्धारण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। प्रधानमंत्री की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग की घोषणा। अगले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रशिक्षण दिया जाएगा। 50 से अधिक देशों से होकर गुजरी सूर्यपथ तिरंगा वैश्विक रिले सैन फ्रांसिस्को में संपन्न। सरकार ने छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति की जानकारी देने वाली योजना शुरू की। और दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने ई स्पोर्ट्स विश्व कप शतरंज का खिताब बरकरार रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया है। 80वें स्वतंत्रता दिवस पर कल नई दिल्ली में लाल किला पर ध्वजारोहण के बाद उन्होंने कहा कि भारत आज बहुत बड़े सपने के साथ आगे बढ़ रहा है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में देश के करोड़ों नागरिकों ने संकल्प और समर्पण के साथ देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि इस दौरान देश में इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल विनिर्माण के क्षेत्र में कई गुना उत्पादन बढ़ा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते उपयोग का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की युवा शक्ति AI के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रयास कर रही है।
1: हमने पिछले दिनों AI इम्पैक्ट समिट किया था। AI का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
0: प्रतियोगी परीक्षाओं में समाज के हर वर्ग की उपस्थिति को सुगम बनाने के लिए श्री मोदी ने कहा कि मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए सरकार निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था कर रही है।
1: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं। उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
0: राष्ट्र निर्माण में बेटियों के योगदान को सबसे अधिक महत्वपूर्ण बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बेटियां अब हर क्षेत्र में सबसे आगे दिख रही हैं। उन्होंने लोगों से महिलाओं के सामर्थ्य के पुजारी बनने का आह्वान किया। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से महिला आरक्षण विधेयक पारित कराने में सहयोग की अपील की।
1: जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, वे भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए।
0: खेलों में भारत के बढ़ते प्रतिनिधित्व पर श्री मोदी ने कहा कि जो खेले वो खिले मंत्र के अंतर्गत भारत खेलों की दुनिया में अपनी विशेष पहचान बना रहा है।
1: जिन विधाओं में आज भारत खेलता नहीं है, जिन विधाओं में भारत क्वालिफाई नहीं करता है, भारत उस पर बल देगा। और इसके लिए हम टैलेंट हंट का एक अभियान भी चलाना चाहते हैं। 5 से 15 उम्र के बच्चों में खेल प्रतिभा ढूंढने के लिए गांव-गांव, शहर-शहर, स्कूल-स्कूल एक टैलेंट हंट का अभियान चलाया जाएगा। बच्चों की प्रतिभा को देखा जाएगा और फिर उनको स्पेशल ट्रेनिंग दे करके देश के लिए खेलने वाले अच्छे खिलाड़ी बनाए जाएंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने पर ही विकसित भारत का संकल्प पूरा हो सकेगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच व्यक्तिगत संबंधों के कारण भारत अमेरिका संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देशों के लोगों के बीच मित्रता इस मजबूत और दूरदर्शी साझेदारी की नींव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं देने वाले वैश्विक नेताओं का आभार व्यक्त किया है। बधाई देने वालों में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू भी शामिल हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह को धन्यवाद देते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत करने के लिए दोनों देश मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भूटान के प्रधानमंत्री छेरिन तोब्गे की शुभकामनाओं के लिए आभार व्यक्त करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत भूटान के साथ विशेष और मजबूत साझेदारी को बहुत महत्व देता है। पहली बार आयोजित सूर्यपथ तिरंगा वैश्विक रिले कल संपन्न हो गई। ये रिलीफ फिजी से शुरू होकर अमरीका तक 54 देशों और कई क्षेत्रों से होकर गुजरी। ये पहल हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आयोजित की गई थी। फिजी में भारतीय उच्चायोग से शुरू हुई इस रिले में एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक तिरंगे का संदेश दुनिया भर में पहुंचाया गया। रिले का समापन सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास में हुआ। इस दौरान वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का भी उत्सव मनाया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने विदेशी संपत्तियों से जुड़े छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना नियम 2026 अधिसूचित कर दिए हैं। इस योजना के अंतर्गत पात्र करदाता निर्धारित कर या शुल्क का भुगतान करके कुछ अघोषित विदेशी संपत्तियों या विदेशी आय की घोषणा कर सकेंगे।
2: छोटे करदाता की विदेशी संपत्ति डिस्क्लोजर स्कीम एक बार की स्वैच्छिक घोषणा योजना है, जो फाइनेंस एक्ट 2026 के चैप्टर 4 में शामिल है। यह योजना करदाता को एक तय कर का भुगतान करके कुछ ऐसी विदेशी संपत्तियों या विदेशी आय की जानकारी देने की सुविधा देती है, जिनका पहले खुलासा नहीं किया गया था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने करदाताओं में जागरूकता बढ़ाने के और स्कीम को बेहतर ढंग से समझने में मदद करने के अपने लगातार प्रयासों के तहत इस स्कीम को और इसके नियमों पर एक विस्तृत डॉक्यूमेंट जारी किया है। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन तमिलनाडु की 2 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। उपराष्ट्रपति चेन्नई, चेंगलपट्टू, तिरुवरूर और तंजावुर में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। श्री राधाकृष्णन आज चेंगलपट्टू में SRM विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगे। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज राजस्थान के अलवर में सरस डेयरी परिसर के नए संयंत्र की आधारशिला रखेंगे। वे विभिन्न दुग्ध संघों के डेयरी प्रसंस्करण और पशु आहार संयंत्रों का भी उद्घाटन करेंगे। इस दौरान राजस्थान के 17 जिलों में 6,262 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अभ्यर्थियों का आंदोलन और तेज हो गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों ने विरोध के नए कार्यक्रमों की घोषणा की है।
3: JPSC JSSC आंदोलन के अगले चरण के तहत आज झारखंड के सभी 24 जिलों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला दहन किया जाएगा। छात्र नेताओं ने बताया कि उनका आंदोलन 22वें दिन में प्रवेश कर चुका है और उनकी प्रमुख मांगे अब भी लंबित हैं। रांची में पुतला दहन कार्यक्रम अल्बर्ट टिक्का चौक पर आयोजित किया जाएगा। छात्र JPSC की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और JSSC CGL परीक्षा रद्द करने के साथ साथ कथित अनियमितताओं की CBI जांच की मांग कर रहे हैं। JPSC JSSC रिफॉर्म मंच ने राज्य सरकार को 18 अगस्त तक सकारात्मक पहल करने का अल्टीमेटम दिया है। प्रदर्शनकारियों ने पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग भी उठाई है। उन्होंने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है और कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर वहीं से आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान आज से 15 सितंबर तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। एक रिपोर्ट।
4: इस वर्ष उद्यान में सजावटी ग्रीष्मकालीन मौसमी पुष्पों के साथ देशज और स्थानीय प्रजातियों का विशाल संग्रह प्रदर्शित किया गया है। ये पुष्प भारत की समृद्ध पुष्प विरासत को दर्शाने के साथ साथ उद्यान की जैव विविधता को भी समृद्ध करते हैं। अमृत उद्यान आगंतुकों के लिए मंगलवार से रविवार तक खुला रहेगा। अमृत उद्यान में प्रवेश निःशुल्क है और आगंतुक उद्यान में भ्रमण के लिए राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। इसके अलावा केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन से अमृत उद्यान के प्रवेश द्वार तक शटल सेवा उपलब्ध रहेगी। यह सेवा सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक प्रत्येक 30 मिनट के अंतराल पर संचालित होगी। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज राज्य में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस योजना का उद्देश्य राज्य भर के पात्र नागरिकों को अच्छी स्वास्थ्य सेवा आसानी से उपलब्ध कराना है।
2: लगभग 15 लाख परिवारों को इससे लाभ मिलने की उम्मीद है, जिसमें प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का नगद उपचार शामिल है। आयुष्मान भारत कार्ड प्रत्येक पात्र परिवार के सदस्य को निःशुल्क जारी किए जाएंगे। राज्य के कुल 1,307 निजी और 627 सरकारी अस्पताल इस योजना के अंतर्गत उपचार प्रदान करेंगे। लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने से 3 दिन पहले से लेकर छुट्टी मिलने के 15 दिन बाद तक योजना का लाभ प्राप्त करने का अधिकार होगा। आयुष्मान भारत योजना के लिए पात्र न होने वालों के लिए आज मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना भी शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत लगभग 80 लाख परिवारों को लाभ मिलने की उम्मीद है। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: उड़ीसा की बैतरानी नदी में बाढ़ से राज्य के उत्तरी क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित है, एक रिपोर्ट।
5: उत्तरी ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है, क्योंकि बैतरणी नदी में बाढ़ की चौथी लहर आ गई है। भद्रक जिले के अखुआपदा में नदी खतरे के निशान 18.33 मीटर को पार कर गई है और आज सुबह 7 बजे तक 18.38 मीटर पर बह रही थी। जाजपुर जिले के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं, जबकि भद्रक जिले के कई गाँव अलग थलग पड़ गए हैं। राजघाट पर सालंदी नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है, जहां खतरे का स्तर 17 फीट है और नदी 16.50 फीट पर बह रही थी। गेंगुटी और कोकिला नदियां भी उफान पर है। IMD ने मयूरभंज और बालेश्वर के लिए रेड वार्निंग और 6 जिलों के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की है। मंगलवार तक भारी बारिश जारी रहने की संभावना है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह ने अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। शतरंज में विश्व के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने लगातार दूसरी बार ई स्पोर्ट्स विश्व कप का खिताब बरकरार रखा है। फ्रांस के पेरिस में खेले गए फाइनल में कार्लसन ने बेलारूस के ग्रैंडमास्टर डेनिस लाजाविक को 2-0 से हराया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
6: धन्यवाद मुकेश। 80वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, शक्ति की सप्तधारा का आह्वान। प्रधानमंत्री ने लाल किला के प्राचीर से कहा, 7 शक्तियां भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगी। नवभारत टाइम्स का शीर्षक,
7: मैं हूं सुमन, साउथ इंडिया का एक्टर और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी जी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
6: जनसत्ता के अनुसार दिमागी नक्सल अराजकता और हिंसा

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
1: नमस्ते, ओम शांति। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है विशेष प्रोग्राम में, बातें मुलाकातें कार्यक्रम में। आशा करता हूँ आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए, आज हमारे साथ विशेष सुशांत सर, बड़े अच्छे लेखक भी हैं, कवि भी है और कहानीकार भी है, और साथ ही साथ लोकसभा में अपनी विशेष सेवाएं दे रहे हैं। तो हम लोग उनसे बातचीत करेंगे आज के इस शो में। तो आप सभी की तरफ से सुशांत सर का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप?
2: ठीक हूं, शुक्रिया।
1: जी आइए, हमारे सुभाष जी ने याद भेजा है बातें मुलाकातें प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करके। और चलिए, कुछ क्वेश्चंस भी उन्होंने भेजा है और हमने कहानी किस्मत के शब्द लिखा है, तो उसी से जुड़ा हुआ उनका सवाल है। और मैं चाहूंगा कि किस्मत शब्द का एक कहानी जो है हमें पढ़ने को मिला, सर का वेबसाइट पे है उनका, तो किस्मत इस कहानी को उन्होंने बड़े अच्छी तरह से नरेट किया था, तो मैंने उसी पर ये टाइटल दिया है। तो आइए आज उनसे बातें करेंगे, लेकिन उसके पहले निवेदिता जी से मैं चाहूंगा कि एक गीत के द्वारा सुशांत सर का स्वागत।
3: मैं आज एक सॉन्ग सुनाऊंगी जो लता जी का गाया हुआ है, तो वो फिल्म सॉन्ग, लेकिन हम उसे भगवान को सामने रख के सुनाऊंगी।
1: बिल्कुल बिल्कुल।

0: निवेदिता जी बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आइए सुशांत सर कैसे हैं आप?
1: मैं बिल्कुल ठीक हूँ रमेश भाई।
0: जी, और मैं चाहूंगा कि वर्तमान परिवेश में आप क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा वो बताइए करंट सिनेरियो के बारे में,
1: हाँ,
0: वर्तमान में क्या
1: मैं
0: कर रहे
1: अभी लोकसभा सचिवालय में भाषांतरकार
0: हैं?
1: हूँ, यानी इंटरप्रेटर हूँ,
0: अच्छा,
1: और सेक्रेटेरिएट में ये जो हाउस, लोकसभा का हाउस चलता है, सदन चलता है, तो उसमें मैं बूथ में बैठकर माइक के आगे हेडफोन लगा के, और जैसे हमारे, जैसे मान लीजिए मोदी जी भाषण दे रहे हैं, तो अगर मैं अंग्रेजी बूथ में हूं तो मैं जो दक्षिण भारतीय एमपीज हैं, सांसद हैं, उनके लिए अंग्रेजी में साथ के साथ अनुवाद करता हूँ, साइमल्टेनियस
0: अच्छा,
1: इंटरप्रिटेशन। तो
0: अरे
1: ये
0: वाह
1: काफी कठिन काम है, काफी चैलेंजिंग काम
0: जी,
1: है, तो ये मैं अंजाम देता हूँ। मैं तीनों भाषाओं से भाषांतरण कर सकता हूँ, इंटरप्रिटेशन, हिंदी से अंग्रेजी में,
0: अच्छा
1: अंग्रेजी से हिंदी में, और पंजाबी से हिंदी अंग्रेजी में, और हिंदी अंग्रेजी से पंजाबी में। तीन भाषाओं
0: अच्छा
1: का
0: अच्छा
1: मुझे अच्छा ज्ञान है जी।
0: वाह वाह क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। वर्तमान समय में आप एज ए इंटरप्रिटेटर के रूप में काम करते हैं,
1: हाँ,
0: भाषांतरण के
1: मैं
0: लिए,
1: एडिशनल
0: धन्यवाद।
1: डायरेक्टर की पोस्ट पे हूँ
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत
1: जी,
0: स्वागत। और कहानी
1: शुक्रिया।
0: किस्मत की हमने बात की है, तो ये जो स्टोरी आपने, स्टोरीज और ये जो राइटिंग का काम है, वो कैसे आपकी
1: जी
0: शुरुआत हुई, लेखन कार्य कब से आपने शुरू किया, थोड़ा सा बताइए।
1: हाँ, मैं काफी छोटी उम्र से, मेरे पिता जो हैं वो शिक्षक रहे हैं, वो कॉलेज में पहले पढ़ाते थे, फिर विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर थे, और उनकी बड़ी समृद्ध लाइब्रेरी रही है। तो उस लाइब्रेरी में जब मैं चौथी पांचवी में पढ़ता था, तभी श्रेष्ठ लेखक होते हैं जैसे मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव और अन्य, तो इन लोगों को मैं पढ़ता था, निर्मल वर्मा, तो इनको पढ़ मैं छोटी उम्र से ही पढ़ रहा था। फिर जैसे चौथी पांचवी में पढ़ा, कुछ समझ नहीं लगी, आठवीं नौवीं में फिर पढ़ा, उसके बाद फिर पढ़ा बीए में जाके, तो कई बार पढ़ते पढ़ते इस तरह मुझे लिखने का शौक हुआ। मैं कविताएं भी पढ़ता था, कहानियां भी पढ़ता था, उपन्यास भी पढ़ता था, और दोनों भाषाओं में, हिंदी में और अंग्रेजी में पढ़ता था, और मैं लिखता भी दोनों भाषाओं में, अंग्रेजी में भी और हिंदी में भी। बस इस तरह से शुरुआत हो गई। मैं कक्षा 10वीं से, 9वीं 10वीं से हिंदी में लिखने लगा था, अंग्रेजी में तो उससे पहले से लिखता था
0: जी
1: जी।
0: जी बहुत बढ़िया, आपने अपने बारे में बताया। अब आइए, मैं चाहूंगा कि जैसे कि अभी बहुत सारी चीजें होती हैं, तो आप अपने बचपन की कुछ यादें हमें ताजा कराइए।
1: हाँ, मेरा बचपन जो है वो मुंगेर में बीता, बिहार में है। मेरा जन्म पटना में हुआ था, पिताजी वहां काम करते थे, और फिर मुंगेर में बचपन बीता, भागलपुर में बचपन बीता, और उसके बाद जब मैं 10 वर्ष का था तो पिताजी अमृतसर आ गए पंजाब में, और तब से वहीं रहा, बड़ा हुआ, फिर उसके बाद दिल्ली में जॉब लग गई तो दिल्ली आ गया। तो बचपन मेरा काफी खेल कूद में, शरारती तो था ही मैं, और पेड़ों पे चढ़ना और गुलेल से मारना चिड़ियों को या अन्य चीजें, और कंचे खेलने, तो ये सब मैं जो भी बचपन में था तो सारे काम करता था। पतंगबाजी का बहुत शौक था, तो पतंगे उड़ाता था, और इस तरह से जो है एंजॉय करता था।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और जीवन में, जैसे कि हर व्यक्ति के जीवन में अलग अलग संघर्ष होते हैं, अलग अलग एक
1: जी
0: अपनी
1: जी
0: कहानी होती है हर व्यक्ति की,
1: जी
0: तो आपके लाइफ में संघर्ष वाला जो समय था, वो कब और किस लिए था?
1: हाँ, मुझे असल में, मैंने पहला एमए अंग्रेजी में कर लिया था 89 to 91 में, 1991 में, और फिर 92 से 94 में दिल्ली विश्वविद्यालय आ गया। पहला एमए तो अंग्रेजी में गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर से किया था, फिर दिल्ली विश्वविद्यालय से मैंने भाषा विज्ञान, जैसे लिंग्विस्टिक्स कहते हैं, उसमें दूसरा
0: जी
1: एमए किया, और उसके साथ ही मुझे डीएवी कॉलेज जालंधर में लेक्चरर के पद पर, मेरी व्याख्याता के पद पर नौकरी लग गई। तो मैंने 2-3 साल पढ़ाया वहां डीएवी जालंधर में अंग्रेजी व्याख्याता, लेकिन मुझे रास नहीं आया पढ़ाना, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगा, या कुछ यूं कहें कि मनमाफिक नहीं था। तो फिर
0: अच्छा
1: मैंने जो पक्की नौकरी थी वो रिजाइन कर दी, तो इस्तीफा देकर मैं अखबार में चला गया, चंडीगढ़ चला गया। चंडीगढ़ में अखबार में भी मैंने 6 महीने साल नौकरी की, और इसी तरह फुटकर नौकरियां की। तो 96 में जो मैंने छोड़ा था वो फिर मुझे पक्की नौकरी सन 2000 में 4 वर्ष के बाद मिली। इस बीच में मैं कई छोटी मोटी नौकरियां करता रहा, लेकिन संतुष्टि नहीं मिल रही थी। फिर ये शासकीय सेवा में, सरकारी सेवा में मुझे लोकसभा सचिवालय हिमालय में सन 2000 में मिला, तो ये चार वर्ष संघर्ष के वर्ष थे और संघर्ष ने मुझे मांझा अच्छे से तराशा और निखर कर ही मैं आया और आगे आया। अच्छा ही रहा, इससे सीखने को बहुत कुछ मिलता है, अनुभव जो होता है वो समृद्ध होता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आज के समय में हमारे युवा साथी जो है करियर को लेकर काफी फोकस्ड रहते हैं, तो आपको अपना करियर में कुछ फोकस था क्या कि क्या करना है कैसे करना है?
1: देखिए मैंने क्योंकि ह्यूमैनिटीज या आर्ट्स पढ़ा था तो आर्ट्स की पढ़ाई की थी, तो साइंस तो मेरी अच्छी थी नहीं और इसलिए मैंने वो पहले ही छोड़ दी थी 10वीं के बाद। तो मुझे पता था कि मुझे जो है भाषा में, क्योंकि मुझे अंग्रेजी अच्छी लगती थी, हिंदी अच्छी लगती थी, पंजाबी अच्छी लगती थी, तो मुझे भाषा में ही अपना भविष्य तलाशना था। तो मैंने जो है वो फिर नेट क्लियर कर लिया था एमए करने के बाद, अंग्रेजी में जीआरएफ भी क्लियर कर लिया था और एमफिल वगैरह भी कर रहा था दिल्ली विश्वविद्यालय से। तो उस दरमियान फिर जो है ये मुझे लगा कि लेक्चरशिप जो है वो बढ़िया रहेगी, तो फिर मुझे जॉब भी मिल गई। जब नौकरी मिल गई मुझे डीएवी जालंधर में, मैं चला गया। लेकिन 2-3 साल काम करने के बाद जो संतुष्टि होती है, जॉब सेटिस्फेक्शन, वो नहीं मिल रही थी, तो फिर वो छोड़कर मुझे तलाशना पड़ा इधर उधर कि कहाँ मिलेगी, तो ये चक्कर था। इसलिए अगर आप व्याख्याता बनना चाहते हैं तो उस जमाने में और आज भी मेरे ख्याल नेट क्लियर करना ही पड़ता है, और अगर आप शोध करना चाहते हैं एमफिल पीएचडी वगैरह और उसमें पैसे भी मिले आपको, तो आप जीआरएफ भी क्लियर करते हैं, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। तो यही सब है जो व्याख्याता के पद पर जो लोग काम करना चाहते हैं, भाषा के प्रति या अपने विषय के प्रति जो लगाव होगा उनको, तो उस दिशा में वो फिर लेक्चरर बन सकते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, इन्होंने पूछा है, सुभाष जी याद कर रहे हैं, सर हु इज ग्रेट, किस्मत और कर्म, व्हाई?
1: जाहिर है कर्म, कर्म
0: नॉलेज से किस्मत बदल सकता है, प्लीज आंसर एक्सप्लेन।
1: मुझे नहीं पता स्पिरिचुअल नॉलेज से बदल सकता है कि नहीं, शायद जरूर बदलता होगा, लेकिन कर्म करने से मुझे हमेशा लगता है कि कोई सुपर पावर है, कुछ है जो कर्म का अच्छा फल देगा। आप अच्छे कर्म करेंगे अच्छा फल मिलेगा, को कर्म करेंगे तो अभी नहीं तो बाद में आपकी चल के जो है उसका दुष्परिणाम सामने आएगा कभी ना कभी। तो अंग्रेजी में कहते हैं गॉड्स मिल्स ग्रिंड स्लोली बट ग्रिंड एक्सीडिंगली फाइन, जो मिलना होता है वो कई बार विलंब से मिलता है, देर से मिलता है, लेकिन मिलता है। और जो कुकर्मी लोग होते हैं वो कई बार आप देखते हो फल फूल रहे हैं, लेकिन फिर भविष्य में जो है उनके साथ भी कुछ बुरा ही होता है। तो मेरा अपना मानना है कि जैसे कर्म करेंगे वैसा जो है फल आपको देर सवेर मिलेगा ही, इसलिए हमें सत्कर्म करने चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताया कि हमें कर्म पर विश्वास करना चाहिए, किस्मत पर नहीं।
1: बिल्कुल।
0: व्यक्ति दुखी हो जाता है तो वो अपनी किस्मत को दोष देते हैं, लेकिन उसके कर्म हमेशा साथ रहते हैं, तो अच्छे कर्म करना।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। किस्मत जिसको कहते हैं वो तो बदलती रहती है ना भाई सब, तो समय के साथ किस्मत भी बदलती है, कभी राजा से रंक हो जाते हैं, रंक से राजा हो जाते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप कर्म तो करें, कर्मण्येवाधिकार अस्ति मा फलेषु कदाचन, तो फल की आप चिंता ना करें, बल्कि समय आने पर जरूर आपको फल की प्राप्ति भी होगी, ऐसा मेरा मानना है। तो इसलिए कर्म करें, कर्म पर दृढ़ विश्वास रखें।
0: चलिए सुभाष जी, आशा करता हूँ आपको जवाब मिल गया होगा, और बड़ा अच्छा सवाल आपने भेजा। तो आइए सुशांत सर, मैं चाहूंगा कि एक कविता आप सुनाइए, बढ़िया सा आपकी पसंदीदा।
1: कविता सुनाऊं, छोटा सा कुछ याद आता है मैं सुना देता हूँ। रसोई के चाकू से लेकर परमाणु बम तक सभी अस्त्र शस्त्र बेमानी है। रसोई के चाकू से लेकर परमाणु बम तक सभी अस्त्र शस्त्र बेमानी है। प्रतिदिन हम उपेक्षा से एक दूसरे की हत्या करते हैं, तथ्य इसका छोटा सा शीर्षक है तथ्य। रसोई के चाकू से लेकर परमाणु बम तक सभी अस्त्र शस्त्र बेमानी है। प्रतिदिन हम उपेक्षा से एक दूसरे की हत्या करते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, उपेक्षा से ही हम बहुत सारी चीजें करते हैं, और निश्चित तौर पे कोई भी शस्त्र जो है जिससे नुकसान हो रहा है वो कभी भी लाइफ में अच्छा माना नहीं जाएगा।
1: अब देखिए ना, आप किसी को जानते हैं, और जब उस व्यक्ति को काम था तो आपके आगे पीछे मंडराता था, अब सामने से वो चला आ रहा है तो आप उसे विश करते हैं, उधर से वो जवाब भी नहीं देता है, उसने उपेक्षा से आपके अस्तित्व का कत्ल कर दिया है, तो संवेदना ये कहती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपका, और कई बार ये चीजें अनुभव में आता है, लेकिन फिर भी अगर हम लोग पहले वाली बात को याद रखने से शायद वो चीजें वापस हम लोग उसको न्यूट्रल कर सकते हैं, अदरवाइज बड़ी मुश्किल होगी। कर्म जो है वो इम्पोर्टेंट है हमेशा।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
0: बिल्कुल, गीता में भी कहा कि कर्म करते जा खिलाफत की
1: बिल्कुल
0: इच्छा
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: और
1: हमारे तो धर्म
0: पर्यावरण,
1: ग्रंथ ही कहते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये धर्म ग्रंथ की जो भी अतिशयोक्ति नहीं कहेंगे हम लोग, लेकिन वो प्रैक्टिकल लाइफ की, जीवन को हमेशा जो है न्यूट्रल रखने की बात कर और आपको
1: बिल्कुल
0: तनाव रहित जीवन जीने के लिए आगे प्रेरित कर। क्योंकि आप अच्छा कर
1: जरूर
0: रहे हो, ये सोच रहे हो कि मुझे इसका फल अच्छा मिलना चाहिए, तो अपेक्षाएं जा भी है वहां पर मुश्किल होगा, वहां दुख, और अपेक्षा छोड़कर आप सीधे न्यूट्रल होकर काम करते हैं और ईश्वर को समर्पण कर देते, तो मेरे ख्याल से वो सारी चीजें जो तनाव है या दूसरों के प्रति ईर्ष्या या घृणाभाव है
1: हाँ,
0: वो खत्म हो जाता है।
1: मतलब आप उसे स्पिरिचुअलिज्म भी कह सकते हैं,
0: बिल्कुल
1: एक
0: बिल्कुल,
1: दार्शनिकता, आप सुपर पावर, गॉड,
0: हाँ
1: स्पिरिचुअल
0: हाँ
1: पावर कुछ भी कह
0: बिल्कुल,
1: सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ऐसी हस्ती हैं, कुछ कोई ऐसी चीज है जो कि आपको जीवन में आस्था रखने पर बल देती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: जी
0: और विधिवत आस्था ज्ञान के माध्यम से आस्था रखने से उसकी सिद्धि भी प्राप्त
1: बिल्कुल
0: होती है।
1: बिल्कुल सही
0: तो
1: बात,
0: दोनों जो है तत्वों के साथ साथ उसे प्रैक्टिकल अनुभव करते जाए, हर व्यक्ति का अपना ट्रायल
1: जी
0: एंड
1: जी
0: एरर एक्सपीरियंस है, तो उन
1: जी
0: चीजों को
1: जी जी
0: अपनाना चाहिए हमें, और उसका उपयोग
1: जरूर
0: आपके लिए कितना तो ज्ञान उपयोगी पड़ता है वो इम्पोर्टेंट है। अगर आपके लिए वो
1: जी रमेश,
0: बिंदु काम कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे आपका जीवन बदल सकता है और आपको उसमें आगे बढ़ने का भी चांसेस मिलता है। आइए, मैं चाहूंगा कि जैसे आपकी जो साहित्य से जो जुड़ाव है, निश्चित तौर पे कुछ साहित्यकारों को आपने पढ़ा होगा, कुछ लेखकों को पढ़ा होगा, तो
1: हाँ
0: उनके बताइए तो जो आपको बहुत प्यारे लगते हैं और
1: मैं शुरुआती दौर में मैं निर्मल वर्मा जी से बहुत प्रभावित हुआ, उनकी लेखनी से, और मुझे लगता है कि किशोरावस्था में और जब बिल्कुल यौवन की दहलीज पे होते हैं तो निर्मल वर्मा को जब हम पढ़ते हैं तो वाकई हम उनसे, उनकी भाषा प्रांजल भाषा है, उनकी शैली, उनका जो तरीका है, उनका कथन, उस सबसे बेहद प्रभावित हम होते हैं। निर्मल वर्मा को मैंने बहुत पढ़ा और उनसे प्रभावित हुआ, और मोहन राकेश को मैंने बहुत पढ़ा, उनसे प्रभावित हुआ, कमलेश्वर जी को पढ़ा, उनकी कहानियों से प्रभावित हुआ। तो फिर कविता में मैंने कुंवर नारायण जी, राजेश जोशी जी, अरुण कमल जी, उदय प्रकाश जी, बहुत सारे, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी, और भी कई हैं, तो सबको पढ़ा और सबसे कुछ ना कुछ ग्रहण किया। मेरा मानना है कि सभी साहित्यकार श्रृंखला की कड़ियां होते हैं, तो उन्हीं से बनके श्रृंखला पूरी बनती है, एक दूसरे से हम सीखते भी हैं, सिखाते भी हैं। मेरा ऐसा मानना है कि शून्य में कुछ भी नहीं होता है।
0: बिल्कुल
1: जी
0: बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। और इसके साथ में और कौन है जो आपको बहुत प्रभावित करते हैं आपकी लाइफ में या
1: विश्व
0: फिर?
1: साहित्य में आप देखें तो कविता में शिम्बोर्स्का है, पोलैंड की कवयित्री, जीनियव हर्बर्ट हैं, ये लोग पोलिश कवि और कवयित्रियों से मैं बहुत प्रभावित रहा। और आप अपने देश के तो मैंने नाम गिनाई दिए कुछ, और विदेशी कहानियों में मैं क्योंकि अनुवाद भी करता हूँ, मेरी अनुवाद की 7-8 पुस्तकें हैं, अनूदित, विश्व की अनूदित कहानियों की, तो उनमें मैं मार्केज है, जैसे गैब्रियल गार्सिया मार्केज हो गए, यासुनारी कावाबाटा हो गए, मुराकामी हो गए, इस तरह के बहुत हैं, ये सब जो हैं, और लैटिन अमेरिकी राइटर जो हैं, लेखक हैं, उनकी कहानियां बेजोड़ होती हैं, जैसे रोजा है, उसकी कहानी है, थर्ड बैंक ऑफ द रिवर, नदी का तीसरा किनारा, और इस तरह की बेजोड़ कहानियां हैं, बड़ा मजा आता है उनको पढ़ के। मार्केज से, गैब्रियल गार्सिया मार्केज से मैं बहुत प्रभावित हुआ, उनकी बहुत सारी कहानियों को मैंने अनुवाद किए हैं। तो विश्व साहित्य में भी मैं जो है यूरोपीय, हमारे सार्त्र है, काफ्का है, कामू है, उन सब से प्रभावित रहा, और जापानी लेखकों से प्रभावित हुआ, मुराकामी है, यासुनारी कावाबाटा है, चीनी जो ली शुन, उनसे प्रभावित हुआ, और भी काफी, मतलब उन लोगों का पढ़ा, बहुत अच्छा लगा, और मैंने हिंदी पाठकों के लिए उनका अनुवाद भी किया है, उनकी कहानियों का।
0: अरे वाह,
1: जी
0: बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया बहुत सारी बातें बताने के लिए, और बड़ा अच्छा
1: जी जी
0: लगता है जब हम लोग दूसरों की बातें सुनते हैं या पढ़ते हैं, तो निश्चित तौर पे वो हमारे मानस पटल पर कहीं ना कहीं एक छाप छोड़। तो आइए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, अगर निवेदिता जी आप ऑनलाइन हैं तो एक गीत सुनाइए।

0: थैंक यू, ओम शांति।
1: ओम शांत। बहुत ही प्यारा संगीत आपके लिए आपका। और आइए फिर से मैं आप सभी को जोड़ना चाहूंगा सुशांत जी से। सुशांत जी, जैसे
2: जी
1: व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी चीजें आती हैं जाती हैं, और कई
2: जी
1: बार जो जैसे युवा हैं करियर फोकस नहीं कर पाते हैं, और कुछ लोगों का
2: जी
1: करियर
2: जी
1: फोकस क्लियर रहता है, वो बचपन से ही उन चीजों को देखते आते हैं और उनको सपोर्ट भी वैसी चीजें। अब मिडिल क्लास वाले या फिर थोड़ा सा उससे नीचे रेशा, वो बच्चे फोकस नहीं कर पाते या उनको अपना क्या बनना है वो भी नहीं पता चल। तो ऐसे बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप भी एक ऐसे दौर से गुजरे हैं, तो निश्चित तौर पे आपका
2: जी
1: मार्गदर्शन भी काफी अच्छा।
2: हाँ, देखिए अब तो करियर काउंसलर भी आ गए हैं। हमारे जमाने में ऐसा नहीं था, जब मैं 80 या अर्ली 90s के डेकेड में था, दशक में था, तो अब
1: जी
2: करियर काउंसलिंग होती है, तो ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो आपको गाइड कर सकते हैं। हमारे जमाने में जो बड़े बुजुर्ग थे, मेरे पिता क्योंकि स्वयं पढ़े लिखे और प्रोफेसर थे, तो उन्होंने भी काफी गाइड किया, मुझे मार्गदर्शन दिया, और अन्य मेरे गुरुओं ने भी, जो कॉलेज में मेरे शिक्षक रहे, विश्वविद्यालय में रहे, उन्होंने भी काफी गाइड किया। तो आप चूंकि प्रोफेशनल पेशेवर ये काउंसलर भी हैं, जो आपको बताते हैं ऐसा कि आप किधर सफल हो सकते हैं, तो उनसे भी लेना चाहिए, बड़े बुजुर्गों से और अन्य जो है लोगों से जो आपकी मदद कर सकते हैं, उनसे भी आपको काफी मार्गदर्शन मिलने की संभावना रहती है। और बाकी जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, स्कूल में हमें शायद उतना ना पता चले, लेकिन जब हम कॉलेज में जाते हैं या आगे जाते हैं, तो हम धीरे धीरे एक मार्ग, जैसे कोई खिड़की जो है वो खुलने लगती है, आपको पता चल जाता है कि एक राह निकल के आ रही है सामने और मुझे उधर जाना है। जी
1: बिल्कुल बिल्कुल। एक और बात पूछना चाहूंगा, जैसे कि अभी लोकसभा में आप हैं और भाषा ट्रांसलेट कर, तो वहां पर
2: जी
1: मैंने
2: इंटरप्रिटेशन कर
1: टीवी में जैसे देखते हैं हम लोग, काफी शोरगुल होता है जब भी संसद में कुछ लिखा
2: दो।
1: जाता है,
2: जी
1: तो उन सभी चीजों को कैसे मैनेज करते हैं, क्या होता है एक्चुअली में वहां पर?
2: हाँ, ये कठिन काम होता है, और हमें प्रशिक्षण भी दिया जाता है पहले 6 महीने जब हम आते हैं, तो कैसे मैनेज करना है इसको। तो अब कई बार जो है अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स भी बोल दिए जाते हैं वहां पर,
1: बिल्कुल
2: असंसदीय,
1: बिल्कुल
2: गैर संसदीय शब्द जो हैं, तो वो कई बार देखिए वो रिटर्न रिकॉर्ड में तो नहीं आता, क्योंकि जो अध्यक्ष महोदय होते हैं, स्पीकर होते हैं, वो एक्सपंज कर देते हैं उसको, लेकिन हम
1: बिल्कुल
2: चूंकि साथ साथ कर रहे हैं उसी समय, तो हमें तो बोलना ही पड़ेगा, तो हम तो उसी ढंग से जो है ये बिल्कुल एक जो अंगारे के पथ पे चलने के बराबर है, और उसी पे जो है मार्ग तलाशते हुए सही ढंग से प्रयास रहता है कि हम जो है उसको सही ढंग से काम कर सके, ईमानदारी के साथ कर सके जो कहा गया है उसको।
1: बिल्कुल बिल्कुल। इस चुनौती को आप मेरे ख्याल से रोज फेस करते
2: बिल्कुल
1: होंगे।
2: बिल्कुल, ये जैसे बोलते हैं ना कि हर बार जब हम बूथ में जाते हैं, तो 20 मिनट या आधे घंटे की हमारी टर्न होती है, रोस्टर सिस्टम होता है, रोटेशन में चलता रहता है, तो हर 2 घंटे पे 2.5 घंटे पे एक बारी आती है, और अन्य साथी होते हैं, कोई आपको रिलीव करता है, फिर उसको को आप रिलीव किसी को करते हैं, तो इस तरह से ये चलता रहता है, एक चेन होती है, और उसी चेन का आप हिस्सा होते हैं जो है इंटरप्रिटेशन, भाषा भाषांतरण जो है उसमें। और क्योंकि ये साइमल्टेनियस है, साथ साथ चल रहा है, तो मूल वक्ता से दो तीन जो है वर्ड, ये शब्द हम पीछे चलते हैं, और दो चार, और उसमें एंटिसिपेशन भी करना होता है कि क्या बोलने जा रहे हैं वो, और धीरे धीरे आप जो है अनुभव के आधार पर चीजें सीखते हैं, अपनी गलतियों से भी सीखते हैं, हालांकि गलतियों की गुंजाइश होती नहीं है। जी
1: बिल्कुल बिल्कुल। ये एक चीज अच्छी बताई आपने कि हर समय आपको जो है अलर्ट रहना बहुत जरूरी होता है।
2: बिल्कुल, ये लाइव एग्जाम होता है, लाइव टेस्ट होता है, हर बार जब हम बूथ में जाते हैं तो एक जैसे परीक्षा दे रहे हैं हम उस पर।
1: बिल्कुल। जी। और जैसे अभी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके पास होंगे, और चीजें जब ये जैसे शुरू होता है सदन, फिर हाई टेम्पर हो जाता है,
2: जी
1: फिर उसको खूब कैसे करते हैं, ब्रेक
2: सदन में
1: लेते
2: हर
1: हैं
2: तरह
1: जैसे।
2: की चीजें होती हैं, कभी हाई टेम्पर भी होता है, यानी गुस्से के बीच में नोक झोंक चल रही होती है, कभी लाफ्टर भी होता है, हंसी मजाक भी होता है, हर तरह के क्षण आते हैं, हर तरह के पल आते हैं, और हम उनको जो है यथासंभव अपनी तरफ से ईमानदारी से उसका भाषानुवाद करते हैं, भाषांतरण करते हैं उसका।
1: चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताया कि कैसे वहां पर काम होता है।
2: जी
1: और
2: जी
1: अलावा जैसे कि अभी हम लोग लोग बहुत सारी जगह जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल्स या कॉलेजेस वगैरह है, कहीं ना कहीं कुछ चीजें तो बैलेंस करके ही चलना पड़ता है, कुछ चीजें रुक जाती हैं। तो क्या वहां से कुछ अगर स्कीम निकलती है या कोई योजना बनती है तो उसको इंटीरियर तक वो चीजें पहुंची है या नहीं पहुंची है, उसका कुछ अपने को रिपोर्ट्स या कुछ वापस रिटर्न कुछ मालूम पड़ता है?
2: हाँ, ये जो हमारा लोकतंत्र है वो बड़ा बहुत बढ़िया उसमें बंदोबस्त किया गया है। चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं। जब कोई कानून पारित होता है, फिर पहले लोकसभा में पारित होगा, फिर राज्यसभा में होगा, उसके बाद राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर होते हैं, फिर वो कानून अमली जामा ले लेता है। तो जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, हमारे आईएएस ऑफिसर्स हैं, मंत्रालयों में जो लोग हैं, अधिकारीगण हैं, उनका काम होता है कि वो धरातल पर इन कार्यक्रमों को लाएं कानून के दायरे में जो है, और उनकी मदद से ही ये सब हो पाता है। और उनको बुलाया जाता है, कमिटियां बनी हुई हैं हर विषय की, जैसे रक्षा संबंधी समिति है या कृषि संबंधी समिति है या अन्य समितियां हैं, तो वो हर विषय के समिति 50-60 समितियां हैं लोकसभा की भी अपनी, और उनमें जितने आईएएस अधिकारी हैं या

0: जाए, जो भी नीतियां हैं वो जनता तक पहुंच सके, तो इस ढंग से ये काम होता है।
1: जी। एक और बात मैं पूछना चाहूंगा, जैसे कि अब कितना टाइम हो गया आपको इस फील्ड में काम करते हुए यहाँ पर लोकसभा
0: मैं
1: में?
0: सन 2000 में लोकसभा में सचिवालय में मैं यहाँ जो है भाषांतरकार लगा था, तो इंटरप्रेटर लगा था, साइमल्टेनियस इंटरप्रेटर, अंग्रेजी हिंदी और पंजाबी तीनों भाषाओं में जो है काम करने के लिए प्रशिक्षण मिला 6 महीने, और उसके बाद मैं फायरिंग लाइन में भेज दिया गया, यानी हॉट सीट पर बिठा दिया गया। तो इसलिए 20-22 वर्ष हो गए अब मुझे, है ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल। इसमें क्या क्या चेंजेस आपने देखा, बदलाव? जैसे माना बहुत सारी चीजें चेंज हो रही हैं आपके आते आते, अभी 2 दशक तो पूरा कर लिया आपने, इन 2 दशकों
0: हाँ,
1: में
0: अब
1: आपको क्या
0: देखिए
1: क्या?
0: विभिन्न सरकारें होती है, विभिन्न दलों की। भारतीय जनता पार्टी के वाजपेयी जी को मैंने देखा, उनकी शैली अलग थी, उनका उनका नेतृत्व जो है बिल्कुल अनूठा था, अलग था। फिर मनमोहन सिंह जी को, माननीय मनमोहन सिंह जी को देखा 10 वर्ष उनके भी, तो उनकी भी अपनी शैली थी, अपनी अपना तौर तरीका था, और अपने ढंग से वो काम करते थे। और उसी तरह अब फिर मोदी जी आ गए हैं, तो उनको भी देख रहे हैं, तो बढ़िया काम, सब लोग मिलजुल कर, सभी पार्टियों के, जिस दल की सरकार होती है या जिस गठबंधन की सरकार होती है, तो अपने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सबकी कार्यशैली अलग होती है, अपने अपने हिसाब से, जो उनका मैनिफेस्टो होता है उस हिसाब से वो काम करते हैं। और बड़ा अच्छा लगता है, अलग अलग किस्म का अनुभव होता है देश को भी। और लोकतंत्र है हमारा, तो जनता जब खुश होती है तो सत्ता में ले आती है, जनता ना खुश होती है तो सत्ता से पद सत्ताच्युत कर देती है, तो ये चलता
1: अच्छा,
0: रहता है।
1: टेक्नोलॉजी में क्या क्या इजाद, नए चीजों का यूज करना शुरू हो गया? पहले जैसे कि वोट अपन जाते तो वोटिंग में भी काफी चेंजेस आए, है ना, मशीनरी आ गई।
0: हाँ, अब देखिए ना, वोटिंग में तो आप जानते ही हैं, अब इलेक्ट्रॉनिक ईवीएम्स आ गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो पहले तो जब मैं छोटा था बचपन में और किशोरावस्था में, मुझे अभी भी याद है कि वो बैलेट होते थे कागज वाले, और उन बैलेटों की काउंटिंग में जो गिनती होती थी उसमें 3 3 दिन लगते थे, 2.5 दिन, 3 दिन। और दूरदर्शन, उन दिनों दूरदर्शन ही था 80 के दशक में,
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो हाँ दूरदर्शन तब फीचर फिल्में दिखाया करता था, और लोग बैठकर फिल्में देखते थे, बीच बीच में वो आता था काउंटिंग का। तो जमाना बदल गया है, अब तो आधे दिन में ही जो है परिणाम आ जाते हैं, ईवीएम्स की काउंटिंग हो जाती है, और शाम होते होते पूरा ही सब संपन्न हो जाता है एक ही दिन में। तो इस तरह की चीजें तो है ही है, और हर हर क्षेत्र में इस तरह की नई नई इजाद हो रही हैं चीजें, और हर जिनका स्वागत है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हाल ही में आपने कौन कौन सी चीजें लिखी हैं और अपने साहित्य से क्या क्या चीजें आप कर रहे हैं, इसके बारे में बताइए।
0: हाँ, मैंने जैसा बताया, मैं कवि भी हूँ और कथाकार भी हूँ, और मैं साहित्यिक अनुवाद करता हूँ विश्व की श्रेष्ठ कहानियों के, मूल रूप से तो कहानियों में मेरी बहुत रुचि है। और मेरी 8 किताबें, मेरी कुल 20 किताबें अब तक प्रकाशित हो चुकी हैं, जिसमें 8-9 कथा संग्रह हैं, 7-8 के करीब अनूदित, विश्व की अनूदित कहानियां हैं, और 3-4 काव्य संग्रह हैं। अंग्रेजी में भी एक काव्य संग्रह आ गया है, और एक कथा संग्रह जो है वो आने वाला है। तो इस दिशा में मतलब मैं काम, जब भी फुर्सत मिलती है, मैं करता रहता हूँ। मैं कहूँ कि मिशन मोड पे मैं काम करता हूँ, ये मेरा पैशन है, तो यही मेरा जीवन है। जैसे मैं खाना खाता हूँ, सांस लेता हूँ, जीता हूँ, वैसे इस साहित्य सेवा भी करता हूँ, पढ़ता लिखता रहता हूँ।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो समय कैसे निकाल लेते हैं आप साहित्य के लिए, तब आपका
0: समय
1: जो है?
0: तो बंधुआ, समय तो ऐसा है कि यदि आप में धुन हो, जुनून हो कुछ करने का, है ना, तो समय निकल ही जाता है। अब जैसे दफ्तरों में क्या होता है कि लोग बाग, सरकारी दफ्तरों की बात कर रहा हूं, तो जो काम है वो तो करना ही होता है, लेकिन काम के साथ साथ लोग चुगली, निंदा, एक दूसरे की जड़ काटना, है ना, पीठ पीछे बैकबाइटिंग करनी, ये सब काम चलता रहता है, उसमें अमूल्य समय नष्ट करते हैं लोग, या झक मारना, सो जाना अपनी टेबल पे, कुछ भी होता है। तो
1: सही बात
0: यही
1: है।
0: मैं बता रहा था कि घर परिवार में देखिए जिम्मेदारियां तो है, दफ्तर की जिम्मेदारियां हैं, घर परिवार की जिम्मेदारियां हैं, लेकिन उसी के बीच में अगर आपके अंदर जुनून है, धुन है और पैशन है और मिशन मोड में काम कर रहे हैं तो आप अपने लिए समय निकाल ही लेते हैं। तो वैसे ही
1: बिल्कुल
0: मैं कुछ
1: बिल्कुल।
0: कर लेता हूँ जी।
1: अभी जैसे कि हम लोग विश्व को एक अलग एग्जाम्पल भारत देश जो है दे रहा है, वैक्सीनेशन में एक अच्छा जो है हमने काम किया है।

0: जी जी
1: भारत जो है अपनी जो पॉजिटिविटी है भारत की, आप उनमें से कौन कौन सी चीजें बता सकते
0: ये
1: हैं?
0: बड़ा अच्छा काम हो रहा है, और मुझे लगता है कि सभी सरकारों ने पहले से, चाहे मैंने तो वाजपेयी जी का काल देखा है, तब भी बहुत अच्छा अच्छा काम हुआ। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का काल देखा, उसमें भी बढ़िया काम हुआ, और अभी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं तो उनके मार्गदर्शन में भी अच्छा काम हो रहा है। और मुझे लगता है कि सेल्फ रिलायंस है और सेल्फ डिपेंडेंस है, तो ये चीजें जो है आत्मनिर्भर बनने की दिशा में भी काफी काम हो रहा है, और बहुत बढ़िया है ये चीजें। आत्मनिर्भर बनना हर क्षेत्र में, और प्रोत्साहित करना नई प्रतिभा को, चाहे वो खेल कूद हो या अन्य चीजें हो, अन्य क्षेत्र हो, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात है, और जो काफी कुछ भविष्य हमारा जो है वो सुनहरा ही होगा, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। हम सब लोग मिलजुल कर राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए काम करें, तो ऐसी
1: बिल्कुल
0: मेरी आकांक्षा भी है।
1: जी। चलिए सुशांत जी, आपकी लाइफ जर्नी तो लोकसभा एक्सपीरियंस और नॉलेज, विचार, पोयम, बातें बहुत अच्छी लगी। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। सुभाष जी ने मैसेज किया है, और बाबूलाल
0: उनका भी
1: प्रॉपर्टी
0: धन्यवाद।
1: डॉक्टर रमेश भाई, ओम शांति। सुशांत जी की जो साथ, जो कथा संग्रह व इसके माध्यम से लोगों के बीच में जैसे बताने का और सुनाने का ये जो काम कर रहे हैं, और बड़ा ही अच्छा लग रहा है, और अच्छी उपलब्धि के लिए उन लोगों को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। और ये जाते जाते मैं चाहूंगा कि एक और चीज जो आपको अगर याद हो, कोई भी कहानी या फिर आप कविता जो भी सुनाना चाहे तो एक सुनाइए।
0: देखिए, मैं इस समय किसी और जगह आया हुआ हूँ, घर पे नहीं हूँ, और ना मेरे पास कहानी की किताब है ना कविता की
1: हाँ
0: किताब है, तो अभी मैं कुछ सुना नहीं पाऊंगा आपको। अभी ऐसा है कि एक मैंने एक कहानी सुनाई थी जो आपके पास उपलब्ध है, तो वो आप
1: बिल्कुल
0: सुनवाएं लोगों को, है ना, हमारे श्रोताओं को। हाँ तो
1: बिल्कुल। चलिए, मैं बहुत अच्छा लगा मुझे आप ये समय के साथ साथ इन चीजों को कर रहे हैं, और अभी आप साहित्य नहीं है, लेकिन मैंने एक कहानी पढ़ी, कहानी जो है किस्मत वाली शब्द का, आपका जो है कहानी,
0: जी जी जी जी आपने बताया
1: रेलगाड़ी जो है चलने लगती है, और जैसे रेलगाड़ी चलने लगती है तो आप स्टेशन छूट जाती है, और फिर आप आजू बाजू का जो पूरा सीन सीनरी है, पेड़ पौधे हैं, जंगल
0: जी
1: है, उस लगते हैं, और उस बीच में आप जो है दूसरा स्टेशन आता है, तो उस समय आप अपने जो है आपके पास में जो किताबें हैं उसको लेकर आप पढ़ने में मगन हो, लेकिन उसी बीच में एक बगल में एक सज्जन व्यक्ति होता है, वो अपने बच्चे को जो है एक जगह सीट पर बिठा देता है और हाथ देकर भविष्य बताने का प्रयास करता है, और धीरे धीरे जैसे वो भविष्य बताने लगता है तो सभी को लगता है कि भाई कुछ अच्छी चीजें हो रही हैं, तो ट्रेन में जितने भी यात्री हैं उनका आकर्षण उस तरफ चला जाता है, और वो भीड़ उस व्यक्ति की तरफ देखने लग रहे हैं, और बहुत लंबी लाइन कतार शुरू हो जाता है कि एक के बाद एक व्यक्ति आता है हाथ दिखाने के लिए उसके पास, और
0: जी जी
1: फिर कुछ व्यक्ति लोग जो है उस पूरे समूह में, कुछ लोग बोलते हैं ऐसे ढोंगी लोग बहुत आते हैं ऐसे वैसे वो बातचीत करते हैं, कुछ लोग ऐसा भी बोल देते पैसे कमाने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, ऐसा भविष्य खुली ऐसा देखा जाता, लेकिन उस सज्जन व्यक्ति वो किसी पे ध्यान नहीं देता और वो अपना काम करते जाता है, सभी के हाथ देखता है, और फिर कुछ चीजें ऐसी बता देता है कि आप अगर ये मंत्र जाप करेंगे तो आपका लड़का का जो है भविष्य उज्जवल होगा, और सूर्य का जाप करें इसका ये चीजें हैं तो ये चीज अच्छी हो जाएगी, सुबह सुबह जल्दी उठाकर उन्हें सूर्य मंत्र का पाठ करें, ऐसे सब तो उसका भविष्य अच्छा होगा और बहुत अच्छे नक्षत्र में पैदा हुआ बच्चा है। तो इस तरह की बातें सुनते ही सभी लोग जो है बाकी के लोगों को थोड़ा सा अच्छा फील होता है, और फिर एक सज्जन जो है उनसे उनके इस कार्य को देखकर उनको अच्छा लगता है, उनकी बातें ये उनके आश्चर्य का देख बाद वो जो बताते हैं, तो वो सज्जन 500 रुपए निकाल कर उस सज्जन को देने लगता, तो सज्जन उसको देखता है और कहता है कि मैं शौकिया तौर पे ये भविष्य देखता हूँ, मैं पेशा नहीं
0: जी
1: लेता,
0: जी
1: मैं पैसा नहीं लेता हूँ, ऐसा उनको पैसे वो मना कर दे, तो उसके बाद तो और लोगों का जो है विश्वास बैठ जाता है, तो और यूथ भी जो ऐसे वैसे बोले तो शांत हो जाते हैं, और वो फिर उसके पास हाथ दिखाने के लिए, देखते ही देखते आप इन सारी चीजों को देखते हैं और आखिरी स्टेशन आ जाते, आखिरी स्टेशन आते ही सारे जो डिब्बे में थे लोग वो सज्जन व्यक्ति को बाय करते हुए स्टेशन से उतरते हैं, और फिर आप भी अपना सामान पूरा लेते हैं, और वो सज्जन व्यक्ति भी अपना सामान, और देखता है कि उसका एक बच्चे को हाथ लगाता है उठाने की कोशिश करता है, और वो लड़का इधर उधर देखते हैं ऐ ऐ करता है, तो पता चलता है कि वो लड़का गूंगा है, और फिर वो भी उसको जैसे तैसे उठाते हैं और अपना सामान बैग वगैरह लेके आप भी उसके साथ में उतर जाते हैं, तो वो लगता है कि उस सज्जन व्यक्ति से पूछने की मना अंदर से जिज्ञासा होती है तो पूछते हैं आप कि भाई ये लड़का ऐसा कैसा, बोला बचपन से ही इसकी आवाज नहीं आ नहीं है, गूंगा बहरा है। और बोला इसका कोई इलाज नहीं करा है क्या? आप बोला इलाज बहुत कराया है लेकिन किस्मत के आगे किसी का चलता नहीं। तो उसके बाद दूर निहारते रहते हैं और कुछ भविष्य देखने वाले का, ज्योतिष देखने वाले के, इस लड़के का, इनकी किस्मत या इनका ज्योतिष कैसे, ये आपके मन में सवाल चलता है। तो निश्चित तौर पे ये कहानी जो है किस्मत वाली। ठीक है, जो मैं मुझे अच्छा लगा, मैंने इसको पूरी अच्छी तरह से पढ़ा और कहानी है।
0: शुक्रिया।
1: जी जी शुक्रिया
0: हाँ,
1: जी।
0: ये जो कहानी है, ये मैं असल में मैं दिल्ली से जा रहा था अमृतसर। अपने मेरा होम टाउन जो है वो अमृतसर है, मेरे पेरेंट्स वहीं सेटल्ड हैं,
1: जी।
0: तो वहीं मैं जा रहा था एक बार। और काफी पुरानी बात है, 25-30 साल पुरानी बात होगी। मैं शायद छात्र था, दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र था, घर लौट रहा था, मैं अमृतसर जा रहा था। और ये वाकई ये घटना घटी कि
1: अच्छा
0: ऐसा
1: अच्छा
0: एक सज्जन हाथ देखने लगे और फिर उनका बच्चा भी था, तो मुझे और सारा मैंने पूरा रिएक्शन देखा, सबका प्रतिक्रिया के, लोग कैसे दिखा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो
1: बिल्कुल
0: जो है वो मतलब इसमें 75-80% तो सत्य है, और बाकी मैंने अपनी इमेजिनेशन से जो है उसको एक दिशा दी है,
1: स्टोरी।
0: और अंत अंत भी मैंने उसको एक नई दिशा दे करके कुछ सार्थक मैसेज भेजने की कोशिश की, संदेश।
1: चलिए सुशांत सर, बहुत
0: अच्छा,
1: बहुत धन्यवाद।
0: मैं ये जो मेरे कुछ जो कथा संग्रह हैं उनके नाम,
1: बिल्कुल
0: तो जैसे
1: बताइए।
0: दलदल दलदल है, मैं कैसे हंसूं, ये कथा संग्रह है। उसके बाद जो हत्यारे है, कथा संग्रह। मेरी जो कथा संग्रह है, इस तरह के 7-8 हैं, और ये सभी अलग अलग प्रकाशकों से प्रकाशित हुए हैं। तो जैसे नेशनल पब्लिशिंग हाउस जयपुर, जिसका नाम बदलकर अब मलिक एंड सन्स कर दिया गया, वहां से पब्लिश है, वहां से प्रकाशित है। फिर यहाँ जो है उसके मालिक हैं आशीष मलिक, तो उनसे भी संपर्क किया जा सकता है जयपुर में। और
1: बिल्कुल
0: उसके बाद गौरीनाथ जी हैं, तो वो भी उनकी भी उनके प्रकाशन समूह है, और उन्होंने भी मेरी बहुत सारी जो है कविताओं का काव्य संग्रह और जो अनुदित कहानियां हैं वो सब प्रकाशित की हैं। और दलदल कथा संग्रह उन्होंने ही प्रकाशित किया है। तो वो साहिबाबाद में यहाँ रहते हैं, गाजियाबाद के पास अंतिका प्रकाशन है उनका, और
1: बिल्कुल
0: वहां से भी संपर्क कर सकते हैं लोग। और उसके बाद भारत पुस्तक भंडार है दिल्ली में, जहाँ की तिलक राज जी हैं, उनसे भी संपर्क कर सकते हैं, वहां से भी प्रकाशित हुई हैं। तो कई जगहों से प्रकाशित हुई हैं। मैं चाहूंगा कि मेरे जो पाठक गण हैं वो गूगल पे जाएं और गूगल पर जाकर उस पे मेरा नाम टाइप करें, सुशांत सुप्रिया, हिंदी में सुशांत सुशांत सुप्रिया। तो वो जब टाइप करेंगे तो उसमें साइट्स खुलती हैं, उनसे काफी सूचना मिलेगी आपको मेरे बारे में और मेरी रचनाओं के और किताबों के बारे में। जी,
1: बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सुशांत सर, थैंक यू सो मच अपनी जीवन
0: आभार
1: यात्रा
0: सर,
1: सुनाने
0: शुक्रिया,
1: और
0: नमस्कार।
1: बड़ा अच्छा लगा। नमस्कार
0: मुझे भी
1: जी,
0: जुड़ के अच्छा लगा आप लोगों से,
1: बिल्कुल बिल्कुल। और
0: नमस्कार।
1: सुशांत जी, आपने जो बातें बताई और जो बातें आपकी जीवन कहानी से जुड़ी हुई थी, एक संबल जो है जीवन कहानी आपने बताया अपनी, और लोकसभा में क्या होता है, किस तरह का फायरिंग वाला जो स्टेज है, हॉट सीट पर बैठते
0: जी
1: हैं और
0: जी
1: वोट
0: जी
1: प्राप्त करते हैं, तो बड़े ही अच्छी तरह से आप उसे मैनेज कर रहे
0: जी
1: हैं। और बिल्कुल उन सारी चीजों को देखते हुए भी अपने जीवन में आप लिखते हैं समय निकालकर, तो ये भी बड़ी बात है। तो आदमी चाहे जहाँ रुचि हो, जहाँ चाह हो, वह राह निकल के आता है, वो बातें आपसे सीखने को मिला। थैंक यू सो मच। चलिए दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। सलाम, नमस्ते, खमा गणेशा, जय हिंद, जय भारत, ओम।

समय सुबह का तब बनता है खास जब आती है उषा आशियाना के साथ। आप सभी को नमस्कार। राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, खम्मा गणी सा। कभी किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, कुछ भी कहने से पहले थोड़ा सोच विचार कर लेना चाहिए। कैसे, जरा विचार करेंगे। और जी हाँ, कान के रोग से बचना चाहते हैं तो बहुत ही सुंदर उपाय बताएंगे आपको। और आज सिखाने वाली हूँ कुल्फी, परंतु कौन कौन सी वाली वो आप आशियाना सुनेंगे तभी जान पाएंगे। और खुशनुमा जीवन की ढेर सारी बातें भी करेंगे। तो आज का प्रश्न भी बहुत ही जल्दी पूछने जा रही हूँ, बहुत ही सरल और सुंदर है। तो ये सब कुछ सुनेंगे आप आशियाना में। रेडियो मधुबन सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: फिर भी साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड में फंस जाना तो कॉल 1930 पर लगाना। ऑनलाइन होने वाले धोखाधड़ी और साइबर फ्रॉड से पीड़ित होने पर गृह मंत्रालय भारत सरकार की अधिकृत वेबसाइट www.cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं।
1: पुनः आशियाना में आप सभी का स्वागत है। आइए अब आज के विचार की तरफ बढ़ते हैं। आज का सुंदर सा विचार इस प्रकार है, जो आप ध्यान से सुनेंगे, कि कभी किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, कुछ भी कहने से पहले थोड़ा सोच विचार जरूर कर लेना चाहिए। तो ये आज का विचार है, जिसका विश्लेषण हम इस प्रकार करेंगे एक दृष्टांत के साथ, कि एक गांव में एक अंधा व्यक्ति रहता था। वह रात में जब भी बाहर जाता, एक जली हुई लालटेन हमेशा अपने साथ रखता था। एक रात वह अपने दोस्त के घर से भोजन कर अपने घर वापस आ रहा था। हमेशा की तरह उसके हाथ में एक जली हुई लालटेन थी। कुछ शरारती लड़कों ने जब उसके हाथ में लालटेन देखी तो उस पर हंसने लगे और उस पर व्यंग बाण छोड़ने लगे। अरे देखो देखो, अंधा लालटेन लेकर जा रहा है, अंधे को लालटेन का भला क्या काम। उनकी बात सुनकर के अंधा व्यक्ति थोड़ा ठिठक गया और नम्रता से बोला, सही कहते हो भैया, मैं तो अंधा हूँ, देख नहीं सकता। मेरी दुनिया में तो सदा से अंधेरा रहा है, मुझे लालटेन का भला क्या काम। मेरी आदत तो अंधेरे में ही जीने की है, लेकिन आप जैसे आंख वाले लोगों को तो अंधेरे में जीने की आदत नहीं होती ना। आप लोगों को अंधेरे में देखने में समस्या हो सकती है, कई आप जैसे लोग मुझे अंधे से कहीं टकराने जाओ, कहीं आप जैसे लोग मुझे अंधेरे में देख ना पाए और धक्का दे दे तो मुझ बेचारे का क्या होगा, सोचो। इसलिए ये लालटेन आप जैसे लोगों के लिए लेकर चलता हूँ, ताकि अंधेरे में आप लोग मुझ अंधे को देख सको। अंधे व्यक्ति की बात सुनकर वे लड़के शर्मसार हो गए और उनसे क्षमा मांगने लगे। उन्होंने प्रण किया कि भविष्य में बिना सोचे समझे किसी से कुछ नहीं कहेंगे। तो कहने का भाव यही है मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, कि कभी किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और कुछ भी कहने के पूर्व अच्छी तरह सोच विचार कर लेना चाहिए। तो ये हुआ आज का सुंदर सा विचार, जिस पर जरूर गौर करेंगे और सुनेंगे पुनः एक प्यारा सा गीत। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

0: माय नेम इज लेफ्टिनेंट जनरल दत्तात्रेय शेकटकर, मैं एक सैन्य अधिकारी हूँ, निवृत्त सैन्य अधिकारी। मेरा ये निवेदन है यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ में कि माना कि इस जहाँ को हम गुलशन न कर सके, हमें मान्य है कि हम इस पूरी पृथ्वी को बगीचा नहीं बना सकते हैं, माना कि इस जहाँ को हम गुलशन न कर सके, बस कांटे ही कुछ कम कर दिए, निकले जिधर से हम, एक कांटा, एक कुरीति, एक कुप्रथा, एक गलत बात अगर यहाँ से निकल जाएगी तो ये माउंट आबू जो है, यहाँ का क्षेत्र जो है, पूरा राजस्थान है, ये स्वर्ग हो जाएगा। और यही मेरा निवेदन है, यही मेरे ईश्वर से प्रार्थना है।
1: आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में देंगे आपको बहुत ही सुंदर उपाय, कान के रोगों से कैसे बचाव करेंगे अपना, तो बहुत ही सुंदर उपाय आपको बताने जा रही हूँ। ध्यान से सुनेंगे कि देखिए, सप्ताह में एक बार भोजन करने से पहले कान में हल्का सुहाता गरम सरसों के तेल की 2-4 बूंदें डाल करके फिर आप भोजन करिए, कान में कभी तकलीफ नहीं होगी। फायदा क्या होता है इसका, जो बता रही हूँ आपको कि कान में कभी तकलीफ नहीं होगी, कानों में तेल डालने से अंदर का मेल उगल करके बाहर आ जाएगा, ठीक है। यदि सप्ताह 15 दिन में एक बार 2-4 बूंद तेल डाला जाए तो बहरेपन का भय नहीं रहेगा, दांत भी मजबूत होंगे। तो कितने अच्छे उपाय है, एक पंत कितने सारे काज। तो फिर से सुना रही हूँ इस नुस्खे को, ध्यान से सुनिएगा कि सप्ताह में एक बार भोजन करने से पहले, ऐसे मैं नहीं कह रही हूँ कि सप्ताह में एक ही बार भोजन करना है, भोजन आप रोज करिए ठीक है, लेकिन सप्ताह में ऐसा नियम बना दीजिए कि एक बार आप भोजन करने से पहले, सप्ताह में एक दिन कोई भी दिन फिक्स कर लीजिए, सोमवार, मंगलवार, रविवार, शनिवार, कोई भी दिन। और जब आप भोजन करते हैं सुबह के समय, तो आप ब्रेकफास्ट करते हैं फिर आप भोजन करते हैं ना, तो भोजन के समय, लंच के समय, उसके पहले कि भाई आप भोजन करने बैठ रहे हैं, तो उसके 5 मिनट पहले आप हल्का सुहाता गरम सरसों का तेल, बहुत गर्म नहीं हो, सुहाता ठीक है, तेल लीजिए सरसों का, और इसकी 2-4 बूंदे डालिए कान में। इससे क्या है कि कान में कोई भी तकलीफ अगर हो रही होगी तो वो ठीक हो जाएगी, और नहीं हो रही होगी तो कोई बात नहीं, तकलीफ होगी ही नहीं। और फिर कानों में तेल डालने से अंदर का मेल निकल करके बाहर आ जाएगा। यदि सप्ताह 15 दिन में एक बार आप 2-4 बूंद तेल डाले तो बहरेपन का भय नहीं रहेगा, और साथ ही साथ दांत भी मजबूत होंगे। और भी सुनेंगे आप उपाय कि यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन कानों में गुनगुना सरसों का तेल डाल करके कुछ विश्राम करता है तो उसके शरीर पर वृद्धावस्था के लक्षण जल्दी प्रतीत नहीं होंगे, ठीक है ना। देखिए, बुढ़ापा तो आएगा लेकिन समय से पहले नहीं आएगा, कुछ समय और भी टल जाएगा। बहुत सारे लोग आप देखते होंगे कि 50-60 की एज में ऐसे लगते हैं कि जैसे 40-42 साल के हैं ऐसे, ठीक है। तो अगर रोज ही कानों में गुनगुना सहता सरसों का तेल अगर डालते हैं कान में, तो इससे वृद्धावस्था के लक्षण शीघ्र प्रतीत नहीं होंगे, गर्दन का जो अकड़ जाने का रोग है वो उत्पन्न नहीं होगा, और न ही बहरापन आएगा, नेत्र ज्योति भी बढ़ेगी, और आंखें दुखती होगी तो ठीक हो जाएगी आंखें भी नहीं दुखेगी। कितना सारा फायदा है कि देखिए, आंखों की ज्योति बढ़ेगी, आंखों जो दुखती होगी वो दुखना भी बंद हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छा उपाय है, इसको आजमा सकते हो। और देखिए, कान और नाक के छिद्रों में उंगली या तिनका डालने से उनमें घाव होने या संक्रमण पहुंचने का भय रहता है, इसलिए कान व नाक रोगों से बचाव के लिए उनमें आप उंगली या तिनका नहीं डालिए, ठीक है। तो इनसे आपको बचाव करनी है। तिनका डालते हैं, मान लीजिए डालते डालते किसी का टल्ला लग गया और वो तिनका अंदर ज्यादा चला गया तो बोलिए क्या हालत होगी, इसलिए बहुत ही सोच समझ करके आपको ये कार्य करना है, उंगली और तिनका डालना नहीं है, ठीक है। इस तरह आप सरसों का तेल डालिए, कान की भी सफाई हो जाएगी, बहरापन कभी नहीं आएगा, आंखों की ज्योति बढ़ेगी, दांत मजबूत होंगे, ये सारे फायदे ही फायदे हैं जिसका आप उठा सकते हो सिर्फ कान में सरसों का सहता गुनगुना तेल डालने से, ठीक है। तो ये बहुत ही सुंदर उपाय आपको सुनाए हैं, तो इनको आप आजमा सकते हो और स्वयं को स्वस्थ रख सकते हो। और आइए अब आज के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का प्रश्न बहुत ही सुंदर है, ध्यान से सुनिएगा। राजस्थान में रोडवेज बसों में महिलाओं को कितना % छूट है? राजस्थान में जो रोडवेज बस चलती है ना, उसमें महिलाओं का कितना किराया लगता है? जवाब देने के लिए नंबर हमारे हैं 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और आज के प्रश्न का जवाब दे सकते हो. ठीक है, आइए अब एक गीत सुनने के बाद पुनः हम आशियाना में आगे बढ़ेंगे. तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन.

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में समय हो चला है आप सभी को नए नए व्यंजन सिखाने का। तो आज मैं व्यंजन तो नहीं सिखा रही हूँ, आप जानते हो, पहले ही मैं बता चुकी हूँ कि आज हम कुल्फी बनाना सिखाएंगे, लजीज कुल्फी। बहुत ही देखिए भाई, गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है, और कहते हैं ना कि मौसम के अनुसार चीज़ें खाने की अपने आप ही इच्छा हो जाती है, भले न चाहते हुए भी। जैसे सर्दी का मौसम है तो ऐसा मन होता है गर्म गर्म चीज़ें खाए, और गर्मी का मौसम होता है तो लगता है कि कुछ ठंडा ठंडा मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए सोचा कि चलिए आज आपको कुल्फी सिखा देती हूँ, ताकि कुल्फी आप बना करके घर में इसका आनंद लीजिए। हमेशा तो नहीं खरीद सकते ना, कभी कभी तो खरीदना भी चाहिए, बेचारे जो ठेले वाले उनको भी कमाई दीजिएगा। लेकिन जैसे क्वांटिटी में बनाना चाहते हो तो फिर आप घर पर बनाइए, ताकि सस्ती भी पड़ेगी, स्वादिष्ट भी रहेगी, स्वच्छता भी रहेगी। तो मैं आपको सामग्री जरूर लिखवाऊंगी लजीज कुल्फी का, परंतु आज के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। आज का प्रश्न बहुत ही सुंदर और सरल है कि राजस्थान में रोडवेज बसों में महिलाओं को कितने परसेंट की छूट मिली हुई है राजस्थान में। ठीक है, जवाब देने के लिए रेडियो मधुबन के नंबर है 94-14-15-14-15 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और आज के प्रश्न का जवाब दे सकते हो। आइए अब मैं आपको कुल्फी लजीज की सामग्री लिखवा रही हूँ, आप पेन और डायरी ले लीजिएगा और लिखिएगा। हाँ, मैं सामग्री आपको 12 कुल्फी की सिखा रही हूँ, ठीक है, कि अगर आप एक डजन कुल्फी बनाना चाहते हैं तो 5 कप दूध लीजिएगा और 1 टिन लेना है मिल्क मेड। अब आप लीजिए कॉर्नफ्लोर 2 बड़े चम्मच, कतरे हुए बादाम ले लीजिए 2 बड़े चम्मच, और पीसी हुई छोटी इलायची 1/2 चम्मच। फिर आप लीजिए 6 बूंद केवड़ा जल की, और कुछ धागे लेना है आपको केसर का। बस सामग्री इसमें ज़्यादा नहीं है, फिर से दोहरा रही हूँ, अगर आप एक डजन कुल्फी बनाना चाहते हैं तो 5 कप लीजिएगा दूध, 1 टिन लेना है मिल्क मेड, फिर आप लीजिए 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर के, और कतरे हुए बादाम 2 बड़े चम्मच लेना है, पीसी हुई छोटी इलायची आप ले लीजिए 1/2 छोटा चम्मच, और 6 बूंद केवड़ा जल की, केसर के कुछ धागे भी लेना है, भले 2-3 ले लीजिए। तो ये हो गई कुल्फी लजीज की सामग्री। अब मैं आपको बनाने का तरीका भी सिखा रही हूँ, सिंपल है, कोई ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं है। ध्यान से सुनेंगे कि दूध और मिल्क मेड को मिला करके आप उबालने के लिए रख दीजिए, ठीक है, और बीच बीच में आप अच्छी तरह हिलाते रहिए, चिपकना नहीं चाहिए भाई। दूध गर्म करते समय बस यही ध्यान रखना है कि चिपके नहीं, चिपकेंगे तो फिर वो ओजी ओजी स्मेल आएगी, तो फिर कुल्फी का मजा ही किरकिरा हो जाएगा। इसलिए कुछ भी, भले हम खीर बनाते हो, चाहे रबड़ी बनाते हो, चाहे कुल्फी बनाते हो, लेकिन इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और हमारे श्रोता बंधु जुड़ना चाहते हैं तो हम उनसे बात करके पुनः आपको कुल्फी बनाना सिखाएंगे। हेलो, हाँ जी नमस्कार, नमस्कार कमलेश बहन, ओम शांति, कैसे आपकी तबीयत है? जी जी जी, जल्दी ठीक हो जाएंगे आप, ठीक है,
2: बस आपकी दुआ चाहिए है मैं तो।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: आज के प्रश्न का उत्तर दे रही हूँ
1: जी।
2: 30% मिलता है महिलाओं को,
1: 30%, ठीक है,
2: 30% मिलता है, और अब 50 होने वाला है, सुना है।
1: अच्छा ठीक है कमलेश बहन, बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आपने जवाब दिया है, हम जरूर सुनाएंगे, ठीक है,
2: ठीक है
1: जी जी, आभार। तो ये थे कमलेश बहन माउंट आबू डुंडई गांव से, और मैं आपको सिखा रही थी कुल्फी लजीज। फिर से ध्यान दीजिएगा, दूध और मिल्क मेड को मिला करके उबालने के लिए रखिए, बीच बीच में आप अच्छी तरह हिलाते रहिए, फिर कॉर्नफ्लोर में आप 2 बड़े चम्मच पानी डाल करके इसका अलग से घोल तैयार करिए, और उबलते हुए दूध में 2-3 मिनट तक इसको भी डाल करके पकाइए। जब दूध गाढ़ा हो जाएगा तो आप गैस बंद कर दीजिए, और इसमें इलायची पाउडर डाल दीजिएगा, बादाम की घीरी और केवड़े की बूंदे भी डाल दीजिएगा, ठीक है, केवड़ा जल, फिर ठंडा होने दीजिए इसको। ठंडा होने पर कुल्फी के सांचों में डाल करके आप फ्रिज में 7-8 घंटे तक के लिए जमने के लिए रख दीजिए। तो सरल है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है, कुल्फी बनाने के कोई मुश्किल काम नहीं है। दूध और मिल्क मेड को मिला करके अच्छी तरह गर्म करना है, ठीक है, हिलाते रहना है साथ ही साथ। फिर जो कॉर्नफ्लोर लिया है उसमें आप दो बड़े चम्मच पानी डाल करके इसका अलग से घोल तैयार करिए, और इसका अलग से घोल तैयार करके फिर आप उबलते दूध में इसको भी डालिए और पकाइए। बस ध्यान रखना है गुठली नहीं पड़नी चाहिए। अब जब ये दूध गाढ़ा हो जाए तो आप गैस बंद कर दीजिए या भले भगोने को नीचे उतार दीजिए, और इसमें आप इलायची पाउडर, बादाम की गिरी, केवड़ा ये सब डाल करके एक बार हिला करके आप इसको ठंडा होने दीजिए। जब ये ठंडा हो जाए तो फिर कुल्फी जमाने के सांचे आते हैं, उन सांचों में आप भर दीजिए, ठीक है। लंबे लंबे सांचे आता है, आपने देखा होगा, उसमें भर करके आप फ्रिज में रख दीजिए। बस 7-8 घंटे तक इसको रहने दीजिए, 8 घंटे के बाद निकालिए आपको खाना हो तो, ठीक है। तो ये बन गए हमारे कुल्फी लजीज़। तो आप जब भी इच्छा हो जाए कि भाई मेहमान आए हैं और क्या करें, कुल्फी घर पर बनाए, तो फिर आप इस तरह बना सकते हो, या फिर आजकल तो मेहमान भी फ़ोन किए बिना आते ही नहीं, अचानक कोई किसी के घर पर नहीं जाता है, क्योंकि सभी जानते हैं कि कोई कहीं बाहर होगा तो हमारा समय वेस्ट हो जाएगा, इसलिए फ़ोन करके ही आते हैं कि हम आ रहे हैं, फलाने दिन आ रहे हैं, टिकड़े दिन आ रहे हैं। तो आपकी प्लानिंग पहले से ही बन जाती है कि वो आ रहे हैं तो क्या बनाएंगे, क्या नहीं बनाएंगे। तो इस तरह प्लानिंग के साथ आप कुल्फी भी बना करके दिन में जब भाई भोजन वोजन से फ्री हो जाओ, सो करके उठ जाओ, तब आप इस तरह कुल्फी बना करके इसका आनंद ले सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको और भी कुछ सिखाऊंगी, परंतु गीत सुनने के बाद। तो आज के प्रश्न की तरफ फिर से बढ़ते हैं। आज का प्रश्न है कि राजस्थान में रोडवेज बसों में महिलाओं को कितना परसेंट छूट है। जवाब देने के लिए नंबर हमारे है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और आज के प्रश्न का जवाब दे सकते हो। आइए अब गीत सुनेंगे, उसके बाद पुनः लौट रहे हैं, तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

0: क्या आपका फोन चोरी हो गया है? क्या आप जानते हैं कि अपना मोबाइल फोन कैसे ब्लॉक करें और ट्रेस करें? आप sanchar-saathi.gov.in पर संचार साथी की मदद ले सकते हैं। सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज के अंदर ब्लॉक योर लॉस्ट स्टोलन मोबाइल CEIR पर क्लिक करें। आपको केवल फोन नंबर, फोन का ब्रांड, फोन बिल, FIR कॉपी, फोन का IMEI नंबर की जरूरत है। पूरी जानकारी भरें और अपने चोरी हुए फोन के दुरुपयोग से बचें। किसी भी साइबर अपराध की रिपोर्ट cybercrime.gov.in पर करें। सतर्क रहें, साइबर सुरक्षित रहें।
1: आप सभी आशियाना के किचन में हो और आशियाना के किचन में बना रहे थे लजीज कुल्फी। आइए अब आपको सिखाते हैं तिरंगी कुल्फी। ठीक है, तीन रंग वाली कुल्फी आप कैसे बनाएंगे वो आपको सिखाएंगे। परंतु आज का प्रश्न बहुत ही सुंदर और सरल है, जो फिर से दोहरा रही हूँ। आप जुड़ सकते हो रेडियो मधुबन से और प्रश्न का जवाब भी दे सकते हो। तो आज का प्रश्न है कि राजस्थान में रोडवेज बसों में महिलाओं को कितना % छूट है? महिलाओं का कितना टिकट लिया जाता है राजस्थान की रोडवेज बसों में? ठीक है, जवाब देने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और आज के प्रश्न का जवाब भी दे सकते हो। और देखिए, हमारे श्रोता बंधु जुड़ना भी चाहते हैं रेडियो मधुबन से, उनसे बात करेंगे। हेलो
2: हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग।
1: हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग। नमस्कार दयाराम जी, कैसे हो आप?
2: बहुत ही अच्छा हूँ और आशा करता हूँ बाबा से सभी मधुबन रेडियो के आरजे और सभी ब्रह्म कुमारी और ब्रह्म कुमार अच्छे और बढ़िया है, और हमारे रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी मेरे प्यारे भाई बहनों को मेरा तहे दिल से प्यार भरा नमस्कार है, और आपको दीदी प्रणाम है। और
1: आपको भी नमस्कार।
2: बहुत ही अच्छा कार्यक्रम जी, अच्छा कार्यक्रम रहा सुबह से, और जो नुस्खे भी अच्छे बताए, गुल्फी बनाने की जो विधि बताई वो भी बहुत अच्छी है, हम भी बना पाएंगे
1: बिल्कुल।
2: और आज का प्रश्न भी सुंदर है, जो राजस्थान सरकार रोडवेज बस में महिलाओं के लिए कितनी छूट दी गई है, तो आज से पहले 30% थी, उसको बजट में मुख्यमंत्री बजट में बढ़ाकर 50% अभी कर दी है।
1: चलिए देखते हैं आपके प्रश्न का जवाब सही है नहीं है। आप बने रहिएगा आशियाना में, हम जरूर सुनाएंगे जवाब आपका। ठीक है
2: जी, दीदी नमस्कार।
1: जी नमस्कार, बहुत बहुत आभार। तो ये थे दयाराम जी लाखनी से, और अब आइए आशियाना के किचन में फिर से पधारिएगा। लजीज कुल्फी तो आप सभी ने सीख ली है, तिरंगी कुल्फी बनाते हैं। ठीक है, अब आप थोड़ा सा फोन के लिए धैर्यता रखिएगा, हम आपका फोन जरूर उठाएंगे, लेकिन ये कुल्फी आप पूरी सीख लीजिए, उसके बाद आप फोन कॉल्स करिएगा। ठीक है, तो तिरंगी कुल्फी के लिए सामग्री वो ही लेना है, थोड़ा सा ऐड ज़्यादा करना है जो मैं आपको बता रही हूँ, कि 5 कप दूध ले लीजिए जो हमने लजीज कुल्फी के लिए भी लिया है, फिर आप 1 टिन लीजिएगा मिल्क मेड, 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर लेना है और 4 बड़े चम्मच कटे हुए मेवा लेना है जिसमें आपको बादाम, काजू और पिस्ता

दूध, फिर मिल्क मेड लेना है एक टिन, 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर और 4 बड़े चम्मच कटे हुए मेवे, जिसमें आप बादाम, काजू और पिस्ता ले सकते हो। 1 छोटा चम्मच लेना है चिरौंजी और इलायची पाउडर ले लीजिएगा 1/2 छोटा चम्मच। सुगंध के लिए लेना है थोड़ा सा केवड़ा और थोड़ा सा फिर आप लीजिएगा पीला रंग और लाल रंग खाने वाला, ठीक है। अब मैं आपको तिरंगी कुल्फी बनाने के विधि बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। दूध में मिल्क मेड मिला लीजिए और कॉर्नफ्लोर में 2 बड़े चम्मच पानी डाल करके इसका घोल तैयार कर लीजिएगा। फिर आप ये गर्म करिए, गर्म करके इस कॉर्नफ्लोर वाले मिले हुए पानी को भी आपको डालना है और अच्छी तरह इसको पकाइए। अब आपको देखिए, दूध जो भी आप गर्म करते हिलाते हुए गर्म करिए ताकि नीचे चिपके नहीं, ठीक है। हिलाते रहिए, गर्म करते रहिए, कम से कम 25-30 मिनट आप गर्म करेंगे तभी यह गाढ़ा हो पाएगा, ठीक है। और फिर इसमें आप जब दूध गाढ़ा हो जाए तो जो हमने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं इसको कुतर के आप डालिएगा, बारीक जो के मैंने पहले ही बताया था कि इसको काटना है, काट करके आप डालिएगा। अब घोल को 3 हिस्सों में कर लेना है आपको, 3 जो भले आप बाउल में डालिए भले आप छोटी छोटी तपेली में डालिए, ठीक है, 3 हिस्से में करना है आपको। फिर एक में थोड़ा सा पीला रंग, एक में थोड़ा सा लाल रंग मिला देना है, एक को सफ़ेदी रखना है। अब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए फिर बस वही आप कुल्फी का सांचा लीजिए और उसमें आप पहले थोड़ा सा जैसे पहले लाल डाल रहे हो लाल कलर वाला, फिर थोड़ा सा सफ़ेद डालिए, फिर पीला रंग वाला दूध डाल दीजिए और फ्रिज में रख दीजिए। इस तरह सारे ही सांचों में आपको 3-3 कलर के डालना है, थोड़ा लाल, थोड़ा सफ़ेद, थोड़ा पीला, और 8 घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए, फ्रीजर में, ठीक है। 8 घंटे के बाद निकालिए तो ये तिरंगी कुल्फी तैयार हो चुकी है, बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी और देखने में भी अच्छी लगती है। और बच्चे तो क्या है, विशेष करके कलरिंग चीज़ें ज़्यादा पसंद करते हैं, अलग अलग कलर के होती है, अलग अलग फ्लेवर वाली होती है, तो बच्चे बड़े चाव से खाते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप कुल्फी में देखिए सामग्री थोड़ी सी ही बड़ी है लेकिन रूप ही उसका अलग हो गया है। तो फिर से विधि दोहरा रही हूँ कि आप दूध में मिल्क मेड मिला लीजिए, गर्म रखिए, फिर जो हमने कॉर्नफ्लोर लिया है उसमें थोड़ा सा पानी, 2 बड़े चम्मच पानी मिलाना है, इसका घोल तैयार कर लेना है। और जब ये दूध गर्म हो रहा होता है ना तो इसको भी आप डालिए और अच्छी तरह गर्म करिए। डालते समय ये ध्यान रखना है गुठली नहीं पड़े, ठीक है, अच्छी तरह हिलाइए। हिलाते हुए आप 25-30 मिनट आपको इस तरह खदखदाना है दूध को। जब आपको लगे कि दूध गाढ़ा हो गया है तब आप जो ड्राई फ्रूट्स लिए हैं कटे हुए ये भी आप डाल दीजिएगा, ठीक है। और फिर आप ये केवड़ा भी डाल दीजिए, इलायची पाउडर भी डाल दीजिएगा और अच्छी तरह हिला करके 3 पात्र में इसको भर दीजिए। और एक में पीला रंग मिलाना है, एक में लाल रंग मिलाना है और 1 पात्र को ऐसे ही रखना है सफ़ेद, ठीक है। जब ये ठंडे हो जाए तो फिर आप कुल्फी का सांचा में पहले लाल या भले पीला जो भी आपकी इच्छा हो एक कलर वाला डालिए, ठीक है। बीच में आप सफ़ेद डालिए, ऊपर आप फिर से दूसरा कलर वाला डालिए। जैसे नीचे पीला डाला है तो बीच में सफ़ेद, ऊपर लाल, जैसे नीचे लाल डाला है तो बीच में सफ़ेद, ऊपर पीला। तो इस तरह 8 घंटे के लिए आप फ्रीजर में रख दीजिए फिर संचय में भर के, ठीक है। और 8 घंटे के बाद आप निकालिएगा तो ये कुल्फी बन गई है तिरंगी कुल्फी। तो भाई कुल्फी बहुत ही स्वादिष्ट बन चुकी है, लजीज कुल्फी, तिरंगी कुल्फी। तो बस देर किस बात की, आप जो भी बनाते हैं बड़े भाव से, बड़े प्यार से, श्रद्धापूर्वक भोग जरूर लगाइएगा। क्योंकि एक तो क्या है कि भोग जब हम ईश्वर को लगाते हैं तो हमारा जो भाव होता है, जो विचार होता है, एकदम श्रेष्ठ हो जाता है, प्रभु के प्रति हमारा संकल्प चला जाता है, तो हमारी भावनाएं और भी शुद्ध हो जाती है। और शुद्ध भाव से जो हम स्वीकार करते हैं सचमुच में उसमें ताकत, ईश्वर के शक्तियां भर जाती है, ताकत बढ़ जाती है हमारी, तो हमारे भी मन एकदम सकारात्मक हो जाता है। इसलिए भोग जरूर लगाइएगा और भोग लगाने के बाद ही आप जो भी चीज़ बनाते हैं उसको आप स्वीकार करिए, बच्चों को, मेहमानों को भी आप पिरसिए, ठीक है। तो ये बन गई कुल्फी, तो कुल्फी का आनंद लीजिए। और साथ ही साथ मैं फिर से प्रश्न पूछ रही हूँ कि राजस्थान की रोडवेज बसों में महिलाओं को कितना परसेंट छूट है। जवाब देने के लिए रेडियो मधुबन के नंबर है 94-14-15-14-15 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और आज के प्रश्न का जवाब दे सकते हो। अब एक अल्पविराम लेकर के पुनः लौट रही हूँ, तो बने रहिएगा आशियाना में।

0: ओम शांति। नमस्कार, मैं आकाश मानिसार से नेशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन का एक वॉलंटियर मेंबर। आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में हमारे श्रोता बंधु सुरेश भाई पिंडवाड़ा से जुड़े हुए हैं। हेलो।
2: हेलो।
1: हाँ जी, नमस्कार, स्वागत आपका रेडियो मधुबन में।
2: आपका भी स्वागत है रेडियो मधुबन में, आशियाना प्रोग्राम में।
1: जी, तो मैं आज का विषय सुना रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा और उसका स्पष्ट करने की कोशिश करिएगा, ठीक है?
2: हाँ जी।
1: रेस चाहे गाड़ियों की हो या जिंदगी की, जीतते वही लोग हैं जो सही वक्त पे गियर बदलते हैं। क्या कहेंगे आप?
2: एक्चुअल में मैं बताना चाहूंगा, मेरे जिंदगी के अनुभव बताना चाहूंगा
1: जी,
2: कि रेस गाड़ियों की है मगर उस गाड़ी को कंट्रोल करना आना चाहिए, सबसे पहली बात तो वो है
1: जी,
2: ठीक है ना? क्योंकि जिंदगी की भी गाड़ी आप चला रहे हो मगर उसको एकदम कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो एक्सीडेंट जरूर होगा
1: जी।
2: और आपने जीत की बात की, तो देखिए जीत तो ऐसी है कि देखिए मतलब उसको अपने को मतलब जो ड्राइवर है उस गाड़ी का, जैसे कि गाड़ियों का है या अपने जिंदगी की गाड़ियों का अपन ड्राइवर है, तो अपन को ये भी नॉलेज होना चाहिए कि किस समय कौन सा गियर बदलना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि उसका अनुभव नहीं होता है, तो लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि कई दुर्घटना मतलब वहां पे मतलब कुछ लोग मतलब झगड़ रहे हैं तो वहाँ पे बीच में पड़ जाते हैं ना, तो वहाँ पे ज्यादा हो जाता है
1: जी,
2: तो संभालना जरूरी है उस गाड़ी को।
1: बिल्कुल।
2: तो ये अनुभव की गाड़ी है तो इसको संभालना जरूरी है
1: जी,
2: मैं तो यही कहना चाहूंगा। और बस इस गाड़ी को संभाल के चलिए, क्योंकि आप बस ट्रेन या कोई भी गाड़ी चला रहे तो हेलमेट या सीट बेल्ट की जरूरत होती है, मगर जिंदगी की गाड़ी ऐसी है कि इसमें ना तो सीट बेल्ट लगती है ना कोई लगती है, बस आपको मन को मतलब शांत करके उस गाड़ी को चलाना है
1: जी,
2: तो बस आपकी गाड़ी में जरूर आपकी जीत होगी, बस यही कहना चाहता हूँ।
1: बहुत सुंदर, तो आभार आपका, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने स्पष्ट किया है इस विषय को। तो आज का विषय बहुत ही सुंदर है मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, फिर से दोहरा रही हूँ कि रेस चाहे गाड़ियों की हो या जिंदगी की, जीतते वही लोग हैं जो सही वक्त पे गियर बदलते हैं। हमारे श्रोता बंधु जुड़ना चाहते हैं रेडियो मधुबन से, आइए उनसे बात करेंगे। हेलो।
3: नमस्कार दीदी, पालनपुर से फिरोज भाई बोल रहा
1: हूं। जी नमस्कार फिरोज भाई, कैसे हो आप?
3: बस एकदम अच्छे हैं। अरे दूसरा के आज का प्रश्न का जवाब है, समझो के आदमी के 100 रुपए है तो महिलाओं के 50 रुपए है।
1: ठीक है, तो आप कार्यक्रम सुनिए, हम आपका जवाब जरूर सुनाएंगे। और आज का विषय भी बहुत अच्छा है कि रेस चाहे गाड़ियों की हो या जिंदगी की, जीतते वही लोग हैं जो सही वक्त पर गियर बदलते हैं। क्या कहेंगे आप?
3: सही बात है
1: जी।
3: तो वो क्या अपना देखो, ये जिंदगी समझो के जो अभी अभी चल रहा है उसी मुताबिक से चलना चाहिए, अभी जो टाइम है उसी मुताबिक से चलना चाहिए, मैं तो वही समझता हूँ, समय के मुताबिक चलना चाहिए।
1: समय के अनुसार क्या चलना चाहिए? समय के अनुसार देखिए, विषय आप ध्यान से सुनिएगा कि चाहे रेस चाहे गाड़ियों की हो या जिंदगी की, जीतते वही लोग हैं जो सही वक्त पे गियर बदलते हैं।
3: हाँ सही बात है, सही बात है। तो समझो कि अपने गाड़ी की हो तो समझो कि आगे आ गया, बम्प आ गया
1: जी,
3: बराबर, तो ब्रेक मार दिया, वो भी ब्रेक कैसे मारना है, पीछे वाले को देखना है कि पीछे वाला अपने ऊपर चढ़ नहीं जावे, ठीक है, वो स्पीड में आ रहा है, ब्रेक एकदम मार दिया तो ऊपर चढ़ जावे अपने ऊपर
1: जी।
3: हाँ, वो संभाल के वो अपने करना पड़ता है। ऐसे ये जिंदगी का भी जो है समझो के खान पान में भी इसका अपना ये देखना चाहिए, चलो भी अपना स्वास्थ्य अच्छा रहे, उस मुताबिक से खाओ तो जिंदगी अच्छी रहेगी।
1: चलिए ठीक है,
3: हाँ जी,
1: बहुत बहुत आभार फिरोज भाई
3: जी।
1: तो देखिए, विषय बहुत ही अच्छा है मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, कि अगर हम समय पर गाड़ियों के गियर नहीं बदलेंगे तो एक्सीडेंट की संभावना रहेगी। ऐसे ही जिंदगी में उतार चढ़ाव बहुत आते हैं, लेकिन सही समय पर सही डिसीजन लेना बहुत जरूरी होता है। वो कहते हैं ना कि खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, और अगर दूसरों से बहस करेंगे तो और ही नए सवाल खड़े हो जाएंगे। और हम क्या करते हैं, सोचने में लगे रहते हैं या फिर बहसबाजी में लगे रहते हैं, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसा हो जाता, ये कोई निवारण नहीं है। हेलो, हमारे श्रोता बंधु फिर से जुड़ना चाहते हैं, चलिए उनका कट गया है, फिर से कोशिश करिएगा तो आपसे बात हो पाएगी कि भाई हम दूसरों से बहस करते हैं लेकिन बहस करने से क्या फायदा, जो हो गया सो हो गया। लेकिन चलिए मैं अपनी बात को बीच में ही रखना चाहूंगी क्योंकि हमारे श्रोता बंधु जुड़ना चाहते हैं। हेलो,
4: हाँ जी, नमस्ते सुरेश भाई बोलता
1: हूं। हाँ जी, नमस्ते नमस्ते सुरेश भाई, वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत आपका रेडियो मधुबन में।
4: बहुत अच्छी बात हो रही है, उसका विषय भी दिया है आज, जिंदगी में यही तो हो रहा है
1: जी,
4: देश चाहे जिंदगी की हो या गाड़ियों की
1: जी,
4: सही समय पे गेर बदलना जरूर होता है, जरूर चाहिए।
1: हाँ जी,
4: देखो आज कई लोग गाड़ियों की, मैं बात बताऊँ बाद में बताऊँ जीवन की, तो गाड़ियों तो कई लोग चलाते हैं लेकिन गाड़ी सही तरह से चलाएंगे तो सही है, वरना आज कितनी गाड़ियों भी पलट जाती है
1: जी,
4: और कई गाड़ी सामने आते एक दूसरे के सामने भेज जाती है, तो ऐसा भी होता है
1: जी।
4: तो सही समय पे जिंदगी में भी ऐसी ऐसी बात है कि हम सही समय पे जो हम नहीं समझते तो कहीं ना कहीं जिंदगी में मुसीबत भी आती है, कई प्रॉब्लम भी आता है, जैसे गाड़ी पलट जाती है ऐसे जिंदगी भी पलट जाती है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, सही समय पे हमको इस्तेमाल कर देना चाहिए। डॉक्टर देखो चल, आज हम अच्छी तरह से जी रहे हैं, अच्छा हमारे सभी अच्छा है, परिवार में सभी अच्छा है, हम अच्छी तरह से खुशी से जी रहे हैं, लेकिन खुशी से जीते हैं और हम ज्यादा कुछ ऐसा करेंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान तो हमको होगा। हमारे पास पैसा है तो हम सभी पैसे जो खर्च कर देंगे तो बाद में हमारे पास कुछ नहीं रहेगा,
1: और
4: सही समय पे पैसा भी बचाना है, सही समय पे सबको साथ भी देना है, एक दूसरे को जिंदगी में साथ भी रहना है, वही तो हम जिंदगी अच्छी तरह से जी सकते हैं
1: जी।
4: वरना जैसे गियर बदलना है, हम अच्छी है अच्छी तरह से जी रहे हैं और हम कुछ और कर देंगे, गियर बदलना चाहे कि कुछ और कर देंगे तो कहीं ना कहीं मुसीबत तो हमारे ही आएगी,
1: बिल्कुल
4: ऐसा नहीं करना है दीदी, इसीलिए तो कहते हैं कि रेस्ट चाहे जिंदगी की हो चाहे गाड़ियों की है, सही समय पे हमको गियर बदलना है, सही समय से अच्छी तरह से रहना है
1: जी,
4: सोच के रहना है, सोच के चलना है,
1: तभी
4: तो हम आसान से जिंदगी जी सकते हैं। दीदी नमस्ते।
1: जी नमस्ते, बहुत बहुत आभार आपका, और यहीं पर हम भी एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद पुनः लौटेंगे, तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन।

0: अरे क्या बात है, आज आप जल्दी आ गए।
1: हाँ विमला, आज डॉक्टर से तुम्हारे सोनोग्राफी के लिए अपॉइंटमेंट जो लिया है। जाओ जल्दी, तैयार हो जाओ।
0: सोनोग्राफी वो किस लिए?
1: मुझे लड़का चाहिए, लड़की नहीं। वैसे भी महंगाई बढ़ती ही जा रही है।
0: पढ़े लिखे होकर भी आप कैसी बातें करते हैं। मेरी सहेली कमला को ही देख लीजिए, वो अपने माता पिता का ख्याल अपने बूते अभी तक रख रही है। स्कूल में प्रिंसिपल है, अच्छे पोस्ट पर है, क्या कमी है? वो अभी तो एक लड़की ही है ना।
1: फिर तुम शुरू हो गई।
0: सच ही तो कह रही हूँ। अब अपने दोस्त अनिल को ही देख लीजिए, अपने माता पिता को घर से निकाल कर वृद्धा आश्रम में छोड़कर आ गया है।
1: हाँ तुम ठीक कह रही हो, मुझे माफ कर देना, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। भगवान अब मुझे लड़की ही देना, एक प्यारी सी नन्ही मुन्नी गुड़िया रानी, बिल्कुल विमला जैसी।
2: आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना कार्यक्रम में खुशनुमा जीवन की बातें हो रही है कि कैसे हम, मतलब गाड़ियों की रेस हो या जिंदगी की, जीतते वही लोग हैं जो सही वक्त पे गियर बदलते हैं। तो कैसे हम सही समय पर डिसीजन लेकर के अपने जीवन को खुशनुमा बनाएंगे या कैसे हम दुखी हो सकते हैं, देखिए दोनों ही पहलू हमारे हाथ में है। बस सही समय पर सही फैसला लेने की आवश्यकता है। हमारे श्रोता बंधु जुड़ना चाहते रेडियो मधुबन से, उनसे बात करेंगे। हेलो,
3: ओम शांति सर, नमस्कार, मैं रामा भाई वासना गुंपा।
2: हाँ जी ओम शांति, नमस्कार रामा भाई, कैसे हो आप?
3: बस मजे में, और रेडियो सुन रहा हूँ, अभी वो उस दिन चालू करवाया तो अभी फोन में सुन रहा हूँ।
2: जी जी जी जी, चलिए बहुत अच्छी बात है, चालू हो गया ना आपका रेडियो मोबाइल पर?
3: चालू हो गया।
2: चलिए बहुत अच्छी बात है।
3: बहुत अच्छा जवाब दिया है आपने, वो प्रश्न रखा था उसका।
2: जी प्रश्न आपने सुना है, फिर से दोहराऊं?
3: हाँ, और ये वो बस के लिए कहते हो, महिला के लिए तो वो भी तो कितना, 35 रुपए लेते हैं तो उसमें 10 रुपए करते हैं, 35 जगह 25 रुपए लगता है किराया महिलाओं को।
2: कितने परसेंट छूट है ये बताइए आप तो, राजस्थान रोडवेज बसों में महिलाओं को कितने परसेंट की छूट है?
3: ये 30% हो गया सर, अभी तो इतना है, अभी जो किराया बढ़ा है वो तो मालूम नहीं है, लेकिन
2: ठीक है। चलिए आज के विषय पर आप क्या कहेंगे?
3: अभी वो सभी ने, मैं वो यही कहता हूँ कि ये जीवन अपना और जीना सीखो, और बस ऐसे ही, और सूरज भाई ने बोला है तो वो सही है। चलो
2: हाँ जी हाँ जी, सुन रही हूँ मैं,
3: मेरा तो यही बस ये कहना है।
2: जी
3: ओम शांति, नमस्कार
2: जी,
3: सुनने वालों को, सुनाने वालों को, सभी को।
2: जी आपको भी नमस्कार,
3: नमस्कार।
2: जी शुक्रिया रामा भाई। तो ये रामा भाई वासना से थे और प्रश्न का जवाब इन्होंने दिया है, देखते हैं अभी बहुत जल्दी हम आप सभी को जवाब भी सुनाएंगे। अभी आप भी जुड़ सकते हो और प्रश्न का जवाब दे सकते हो कि राजस्थान रोडवेज बसों में महिलाओं को कितने प्रतिशत की छूट है, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि महिलाओं को कितना टिकट लगता है। तो जवाब देने के लिए रेडियो मधुबन के नंबर है 94-14-15-14-15। हेलो, हमारे श्रोता बंधु जुड़ना चाहते रेडियो मधुबन से, उनसे बात करेंगे। हेलो नमस्कार, आज के विषय बहुत ही सुंदर है, आप भी जरूर जुड़िएगा, आपके पास 2 मिनट है। रेस चाहे गाड़ियों की हो या जिंदगी की, जीतते वही लोग हैं जो सही वक्त पर गियर बदलते हैं। आज का विषय बहुत ही सुंदर है कि समय पर आप जो गियर बदलेंगे तो एक्सीडेंट की संभावना खत्म हो जाएगी। ऐसे ही जिंदगी में सही समय पर सही डिसीजन लेना जरूरी है। जैसे मान लीजिए बच्चों को इंटरव्यू देना जाना है जॉब के लिए, ठीक है, अब आज का इंटरव्यू है और बच्चे सोचेंगे अरे हो जाएगा ना, कल जाएंगे परसों जाएंगे, तो आप सोचिए कि क्या इंटरव्यू हो पाएगा, क्या उनको जॉब लग पाएगी, नहीं लग पाएगी। समय के अनुसार फैसला लेना बहुत जरूरी है, चाहे कोई भी बात हो। देखिए जिंदगी में बहुत सारे डिसीजन की आवश्यकता रहती है ना, बहुत सारे क्षेत्र होते हैं, बहुत सारी बातें होती है, घर परिवार में भी बहुत सारी बातें होती है कि कभी कभी ऑन द स्पॉट भी हमको फैसला लेने की आवश्यकता पड़ जाती है, लेकिन कभी कभी वो फैसला हम गलत ले लेते हैं तो जिंदगी भर हमें पछताना पड़ता है, और कभी कभी समय के अनुसार हम सही फैसला ले लेते हैं तो जिंदगी भर पछताने की बारी नहीं आती है। तो ऐसा ही है मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं की, थोड़ा सा सोचिए, ऐसा नहीं है कि नहीं सोचना है, लेकिन सोच समझकर समय के अनुसार जो भी फैसला लेते हैं उसको ध्यान से लीजिएगा। हेलो, हमारे श्रोता बंधु जुड़ना चाहते हैं, उनसे बात करेंगे। नमस्कार।
4: हेलो, नमस्कार जी मैडम जी।
2: हाँ जी नमस्कार कमलेश बहन, कैसे हो आप?
4: बस बढ़िया है मैडम जी, ठीक। आप कैसे हो?
2: हम एकदम अच्छे हैं, आप सभी की दुआओं से।
4: बस बाबा की दुआ है मैडम जी सबके साथ में।
2: वो तो है, ईश्वर की कृपा तो है,
4: भाइयों की दुआ है, बाबा की दुआ है, बस और क्या चाहिए।
2: जी जी जी बिल्कुल।
4: आज का विषय का मैडम जी थोड़ा कुछ बता रही थी मैं।
2: हाँ जी।
4: आज का विषय है कि जीवन एक गाड़ी है मैडम जी।
2: जी।
4: और आत्मा चलाने वाली है, और अपने को सोचना है किधर घुमाना है उसको, किस साइड अपने को घुमाना है, और किससे तुलना करनी है, अच्छे लोगों से करनी है या गलत लोगों से करनी है।
2: जी।
4: अगर गलत साइड जाओगे तो एक्सीडेंट होने वाला है, अपने को ये हैंडल अपने हाथ में है, कैसे चलाना उसको, बस मैडम जी इतनी है बस।
2: जी बहुत बहुत आभार कमलेश मैन, बहुत सुंदर आपने सुनाया है स्वीट एंड शॉर्ट शब्दों में कि किधर गाड़ी को ले जाना है वो अपने हाथ में है। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगी कि ध्यान रहे खुद का यू खोकर विश्वास, जिंदगी को मायूस ना कर, मंजिलें चारों तरफ है, रास्ते की तलाश कर, यही खुशनुमा जीवन का राज है। आइए यहीं पर अब हम इस विषय को समाप्त करते हैं और एक गीत सुनकर के पुनः लौट रहे हैं, तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन।

0: आप हो रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 एफएम हबरता रेडियो ने मुस्कुराता रेडियो
1: प्यारे श्रोता बंधुओं, समय हो चला है आप सभी से अनुमति लेने का। आज के कार्यक्रम तो आपने सुने ही है, काफी अच्छे रहे हैं। आज का सुंदर सा विचार जो आपने जाना है, जरूर आप ध्यान दीजिएगा कि बोलने से पहले 100 बार सोचना है, फिर किसी के सामने अपना मुख खोलना है, किसी का भी अपमान नहीं करना है। नुस्खे भी बहुत ही अच्छे दिए हैं कि अगर कान के रोगों से बचाव करना चाहते तो क्या करेंगे, तो आपने जाने हैं उपाय, ज़रूर आजमा सकते हैं। और भाई रेसिपी में तो आज आपने कुल्फी बनाना सीखा है, तो ज़रूर बना करके खाइएगा। और ज़्यादा बना लो ना तो चिंता मत करना, भेज देना रेडियो मधुबन में, ठीक है। खुशनुमा जीवन की बातें भी बहुत अच्छी हुई और आज का प्रश्न तो बहुत ही सुंदर था, जिसको मैं फिर से सुना रही हूँ कि राजस्थान में रोडवेज बसों में महिलाओं को कितने परसेंट की छूट है। जवाब दिया है सुरेश भाई जोटाना से, इनका जवाब सही है लेकिन क्या जवाब है वो मैं बाद में दूंगी। कमलेश बहन, इन्होंने कहा है 30% की छूट है, तो अभी तक 30% की छूट थी लेकिन अभी 1 अप्रैल से नियम बदल चुके हैं, मैं बहुत ही जल्दी जवाब दूंगी। दयाराम जी लाखनी से, इनका जवाब सही है। सुरेश भाई पिंडवाड़ा से, इन्होंने कहा है 20%, गलत जवाब है। फिरोज भाई पालनपुर से, इनका जवाब भी सही है। और रामा भाई वासना से, इनका जवाब है 10%, ये गलत है। सही जवाब है 50%। 1 अप्रैल से पहले 30% की छूट थी महिलाओं को और अब 50% की छूट है। तो सही जवाब देने वालों के लिए ढेर सारी तालियां। और आप सभी ने भी बहुत ही अच्छी कोशिश की, इसलिए भाई कोशिश की है तो तालियां भी बजनी ही चाहिए। आज का सुंदर सा विचार भी आपको सुना रही हूँ कि जब तक हम स्वयं को व्यर्थ से मुक्त होने की शिक्षा नहीं दिलाएंगे तब तक हम असली शिखर पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये हुआ आज का मीठा मोती। अब मैं आपको एक प्यारा सा भजन सुनाऊंगी, आप लेंगे भजन का आनंद और मुझे देंगे अनुमति। कल फिर मिलेंगे एक नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, गणिक खम्मा सा। रेडियो मधुबन सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: हेलो सर, मैं स्वाति बोल रही हूँ आपके खाई बैंक से। सर आपका एटीएम कार्ड एक्सपायरी होने वाला है सर।
1: सावधान रहें, ये एक स्कैम कॉल है। अपना ओटीपी या एटीएम पिन किसी के साथ भी शेयर ना करें।
2: रेडियो 107.8 FM सुन रहे हैं आप। कार्यक्रम है लव यू जिंदगी। और सच में किस टोन में हम किस बात को कहते हैं ना। लोग कह देते हैं अरे आज बड़े उदास हो, आज बड़े गंभीर हो। या कभी कभी सेम सेंटेंस को ही अलग अलग तरीके से कहने से हमारी भावना को पहचान जाते हैं। लेकिन हम अपनी भावनाओं को कितना पहचान, इसकी कोशिश कर रहे हैं हम, खुद को जान रहे हैं हम इस कार्यक्रम के माध्यम से जिसका नाम है लव यू जिंदगी। और हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे एक्सपर्ट्स। सबसे पहले स्वागत करते हैं ग्लोबल अस्पताल से हमारे साथ जुड़ गई हैं कल्पना जी, जो कि साइकोथेरेपिस्ट हैं, साथ साथ स्पिरिचुअल काउंसलर भी हैं। इनकी आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: शुक्रिया आरुषि जी, बहुत बहुत खुशी होती है जब हम अपने श्रोताओं से मिलते हैं और अपने मन की बात उनके साथ शेयर कर पाते।
2: और हमें भी बहुत खुशी होती है क्योंकि हमारे साथ एक नहीं दो एक्सपर्ट्स हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं श्रीनिधि जी, जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, साथ साथ जाने माने एंकर और आरजे भी है। श्रीनिधि जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
4: बहुत बहुत शुक्रिया आरुषि जी। जिंदगी के हमारे सभी श्रोता मित्रों को नमस्कार। कल्पना जी आपको नमस्कार। और जैसे जिंदगी में एक और एपिसोड है, जानते हैं कि हम अलग अलग विषयों पर चर्चा करते हैं। मेरे सारे विषय ऐसे हैं जो हम सबके दिलों के करीब, और कम बार ही ऐसा होता है जब हम समय निकाल कर इन चीजों पर सोचते हैं तो शायद ये कोशिश यही काम करती है कि हम उन चीजों को तवज्जो देना शुरू करें जो चीज एक्चुअल में हमारे लिए बेहतर है।
2: बिल्कुल, और इसी चीज की कमी होती जा रही है आजकल। समय नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमें समझ में आया था पिछले एपिसोड को, अगर दोस्तों आपने भी सुना होगा, कि हीलिंग की प्रक्रिया में समझ और समय दोनों बहुत जरूरी है। तो हम बातचीत कर रहे थे भावनाओं के बारे में, हीलिंग के बारे में, और हमने पिछले एपिसोड में ये जान लिया था कि कहीं ना कहीं कोई बैगेज है जो हम शायद बचपन से कैरी कर रहे हैं, जिसके साइंस नजर आते हैं। हो सकता है गुस्सा जल्दी आ जाता है, बेवजह रोना आ जाता है, या फिर चिड़चिड़ापन लगता है, अकेलापन लगता है, डर लगता है, ऐसे बहुत सारे साइंस है। दीदी आप बता रहे थे कि हम थोड़े और कुछ साइंस के बारे में बात करेंगे, सोशल साइंस के क्या क्या होते हैं जी, उसके बारे में जानना चाहेंगे।
3: तो हमने भावनात्मक संकेत देखे थे, बिना कारण उदासी, छोटी छोटी बातों पर रोना, अत्यधिक गुस्सा आना, चिंता, डर, अकेलापन। मानसिक संकेत हमने देखे थे, बार बार वही बातें सोचते रहना, ओवरथिंकिंग है, नेगेटिव सोच आना, आत्मविश्वास की कमी होना, खुद के निर्णय लेने में कठिनाई उत्पन्न होना। अब हम शारीरिक संकेतों की बात करते हैं। शारीरिक संकेतों में पहला संकेत जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है नींद ना आना। आजकल भी सोशल मीडिया के ज्यादा यूज की वजह से, मोबाइल के ज्यादा यूज की वजह से लोगों के नींद में डिस्टर्बेंस क्रिएट होता जा रहा है, तो ये शारीरिक संकेत बहुत खतरनाक है। दूसरा है कि सारा दिन थकावट बनी रहे, देर से सोना, देर से उठना, और फिर सारा दिन थके थके महसूस कर, सिर दर्द अधिक होना। मेरे पास बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं स्कूल कॉलेज जाने वाले, क्योंकि पढ़ाई भी है सो पढ़ाई करते समय उनका सिर दर्द होने लगता है या कभी पेट दर्द होने लगता है, और जब डॉक्टर को दिखाओ तो पता चलता है ऐसी कोई बात है नहीं जिससे उनका सिर दर्द हो सके, बट रात की नींद नहीं, थकावट है, सिर दर्द होना, शरीर में जकड़न से क्रिएट होना, भूख कम लगना या ज्यादा लगना, ये शारीरिक संकेत हमें दर्शाते हैं कि हमारी भावनात्मक इम्बैलेंस है। फिर व्यावहारिक या सामाजिक संकेतों में हम देख सकते हैं कि हम अचानक लोगों से दूर होने लगे, हमें लोग अपने आसपास अच्छे नहीं लगते, हम ग्रुप से अलग हो जाते हैं, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, हम अक्सर लोगों से बचकर मोबाइल में घुसे रहते हैं या सोशल मीडिया में चले जाते हैं। एक बार एक यूथ से मैंने प्रश्न पूछा, क्या हुआ भाई आजकल आप दिखाई नहीं देते, तो उसने जवाब दिया, मैम आप ऑनलाइन आ जाए।
2: अच्छा।
3: मैं हमेशा वहां अवेलेबल रहूंगा।
2: अवेलेबल तो हूँ लेकिन ऑनलाइन।
3: सो इसके साथ साथ नशे के प्रति आकर्षित, नशे के प्रति, और कभी कभी क्या होता है, खुद में कॉन्फिडेंस नहीं होता है तो हम लोगों को खुश करने में लगे रहते हैं, पीपल प्लीजिंग बिहेवियर शुरू हो जाता है, या तो कट ऑफ करते हैं या पीपल प्लीजिंग रहते हैं। तो ये सारे संकेत जो हमें नजर आते हैं, अब इसको हमें न्यूट्रलाइज कैसे करना है ये बात हम आगे देखेंगे, बट मैं इस पर श्री जी के भी विचार सुनना चाहूंगी। सो जब हम इनके उपचार की, अभी हमें संकेत का पता चला, क्या साइंस होते हैं वो पता चला, अब हम इसके उपचार की बात करें।
0: एक चीज मैं और जानना चाहूंगी यहाँ पे उपचार से पहले, अगर कि ये जो सारे आपने साइंस बताए, ये क्या कहीं ना कहीं बचपन से ही जुड़े हुए हैं, मतलब अलग अलग चीजों से जुड़े हैं, या जैसे किसी को माँ बाप का प्यार कम मिलता है, लगता है बड़े भाई बहन को ज्यादा मिला, या किसी के साथ टीजिंग होती है तो ऐसा होता है जिसके साथ टीजिंग हुई उसको ये वाला ज्यादा सिम्टम होगा, या जिसके साथ ये हुआ उसको ये वाला ज्यादा सिम्टम होगा, ऐसा कुछ होता है क्या कनेक्शन?
3: जी बिल्कुल, हमारे प्रेजेंट सभी प्रॉब्लम्स का अगर जड़ हम देखेंगे तो हमारे बचपन के एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई।
0: जैसे पीपल प्लीजिंग है तो उसका क्या कारण हो सकता है कि जो लोग कॉन्फिडेंस नहीं होता या दूसरों को ही खुश करने में लगे होते हैं, इसका क्या?
3: आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि जिस व्यक्ति के सारे अपने लोग उसको तिरस्कार करते होंगे, उसे प्यार नहीं करते होंगे, या उसे छोड़कर चले गए होंगे, या उसे हॉस्टल में डाल दिया गया होगा, उसको अकेलापन लग गया हो, जब उसके रिलेशनशिप टूटते जाते हैं तब वो सोचता है कि मेरा हर रिलेशन मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए वो हर एक व्यक्ति को प्लीज करने की कोशिश करता है ताकि वो उसके साथ बनाए।
0: ओके, तो उनको वो होल्ड ऑन करने की कोशिश करते हैं, पकड़ने की कोशिश करते हैं, फिर उसके लिए कुछ भी करना पड़ेगा।
3: जी बिल्कुल बिल्कुल, कुछ भी करना पड़े कर लेते, बट मुझे वो व्यक्ति का साथ चाहिए।
0: डर होता है कि वो भी छोड़ के ना चला जाए।
3: हाँ।
0: तो मतलब, और जिनके साथ बुलिंग ज्यादा हुई होती है, चिढ़ाया होता है, उनका किस प्रकार का सिम्टम, मतलब या साइन है?
3: बहुत गहराई तक, मेरे पास ऐसे कई यूथ्स आए जो कॉलेज में बुलिंग का शिकार हुए, उनका पूरा लाइफ और पूरा करियर बर्बाद, इतने अच्छे पढ़ने वाले ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, लेकिन कॉलेज में इस तरह गलत तरीके से उनकी रैगिंग हुई है, उस वजह से उनका पूरा लाइफ मेंटल बीमारी के कारण के शिकार हो गए हैं, और पढ़ाई भी रह गई, करियर भी रहे, और अभी हेल्पलेस होकर बैठे। सो बीच में ही मैं सभी श्रोताओं से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, चाहे वो जो स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, या ऑफिस में जाते हैं, किसी भी स्थान पर दूसरे को तंग करने की आदत को पहचान कर उसे तुरंत रोकें, क्योंकि आपके चिढ़ाने से, आपके तंग करने से, आपके बुली करने से या आपके रैगिंग करने से किसी की जिंदगी बर्बाद हो सकती है।
0: बिल्कुल दीदी, और ये बहुत सच बात है, बुलिंग होती है, मजाक लगता है लोगों को कि हम तो सिर्फ जोक कर रहे थे, प्रैंक जिसको बोलते हैं, प्रैंक कर रहे थे, पर वो दोनों लोग नहीं हंस रहे होते, एक ही हंस रहा होता है बस, सामने वाला तो बहुत रो रहा होता है, परेशान होता है। इस तरह की घटनाएं बहुत होती हैं आज भी। ये तो फिर जैसा आपने कहा साइंस अलग अलग है, किसी ट्रॉमा का कुछ और साइन है, किसी ट्रॉमा का कुछ और साइन है। जिस तरह से, एक और चीज आपसे पूछना चाहूंगी, जो नींद नहीं आने वाली बात है, ये ओवर थिंकिंग वाली बात है, ये क्यों होती है, मतलब ये कहाँ से शुरुआत होती है, इसकी नींव कहाँ से पड़ती
3: है? नींद का हमारा एक साइकिल होता है, जैसे जैसे अंधेरा होता है एटमॉस्फेयर में, हमारी आंखों में जो मेलानिन द्रव है वो क्रिएट होता है, उसकी वजह से हमको लगता है अंधेरा होता है, तब हमारी आंखें थोड़ी भारी हो जाती है और हमें नींद का आना हो जाता है। अब क्या हो रहा है कि रात तो हो जाती है बाहर, लेकिन हमारा स्क्रीन बंद नहीं होता है, चाहे वो टीवी का स्क्रीन हो, चाहे वो मोबाइल का स्क्रीन हो, जो हमारी आंखों में रोशनी देता रहे। तो एक बार मेरे नींद का साइकिल, हमारे शरीर का और मन का एक रिदम है, उस रिदम को अगर हम तोड़ देते हैं किसी कारण से, जिस समय सोना चाहिए, समझो रात को 10 बजे सोना चाहिए, पर एक या दो दिन मैंने वो रिदम तोड़ दिया और रात को 1-2 बजे सोना शुरू किया, मेरी बॉडी का सर्कैडियन रिदम टूट जाता और फिर मुझे दूसरे तीसरे दिन से 10 बजे नींद नहीं आती, तो फिर मैं शिकायत करती हूँ, अरे 10 बजे नींद नहीं आ रही। नींद न आने का कारण मैंने ही उसको डिस्टर्ब किया। तो और दो दिन अगर आप कोशिश करके उसी टाइम पर सोएंगे, फिर से उस रिदम में हम आ सकते। नींद न आने के कई और भी कारण होते हैं जिनको हम बाद में जानेंगे, लेकिन युवाओं के लिए जो मेन कारण है वो है स्क्रीन टाइम का बढ़ जाना, क्योंकि रात में उनको पर्सनल टाइम मिलता, उस समय कोई देख नहीं रहा होता है, कुछ काम नहीं होते हैं, तो उस टाइम पर मुझे देखना है
4: अक्सर ये चीज मेरे को सुनने को मिलता है जब युवा साथी कंप्लेन करते हैं और मैं उनको कहता हूँ कि आप अपना टाइम टेबल वापस रीसेट करो, तो वो बोलते हैं कि भाई नींद नहीं आ रही है इसलिए मैं मोबाइल देख रहा था। अब फिर मैं मोबाइल देख रहा हूँ, इसकी वजह से नींद नहीं आ रही है। दोनों में सत्य क्या है कि ये गोल गोल चक्कर है,
5: मुर्गी पहले या अंडा पहले। ये वही हाल है। परंतु यस, नींद के टाइम पर नींद करना इसलिए जरूरी क्योंकि अगर हमने सही नींद ली है तो ये सारे बैगेजेस जो है ना, केवल एक नींद करने से सारे बैगेजेस को हम विदा कर सकते हैं।
6: नींद इतनी पावरफुल है।
5: एक्जेक्टली, आप सही सुन रहे हैं, केवल एक नींद के ठीक करने, नींद हमारे लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। क्यों 8 घंटे की नींद का इम्पोर्टेंस है? दिन में 24 घंटे होते हैं, 8 घंटे या 10 घंटे हम काम करते हैं, बाकी के घंटे हम एंटरटेनमेंट या अपने शरीर का ध्यान रखने के लिए, लेकिन 8 घंटे सबसे लंबा समय नींद को दिया गया। क्यों? क्योंकि उस दौरान हमारा ब्रेन, हमारी बॉडी और हमारा माइंड रिचार्ज होते हैं, रिपेयर होते हैं, और वो रिचार्ज और वो रिपेयर कंपल्सरी, उसका कोई और ऑप्शन या अल्टरनेटिव नहीं।
6: शिंदी जी, आप कुछ कहना चाहेंगे?
4: कल्पना जी की बात से मैं सहमत हूँ। ये तो समझते हैं कि नींद का अभाव कितना बड़ा नुकसान कर सकता है शारीरिक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। हम ये कहते हैं, और शायद हमारे कई युवा साथी इस बात को पहले सुना होगा। श्रोता मित्रों, आपको ये जानकर हैरानी होगी, अगर एक व्यक्ति भोजन नहीं करता है, हमारे साथी शायद इस बात को जान के हैरान होंगे कि अगर एक व्यक्ति भोजन के बिना अगर उसको आप रखना चाहें तो कई लोगों को हमें हफ्ता 10-15 दिन तक स्टार्विंग पे रख सकते हैं, यानी वो बिना भोजन किए उपवास पे जीवन जी सकते हैं, सिर्फ पानी पे जिया जा सकता है। और ऐसे लोग हैं जिन्होंने कई दिन बिना भोजन के बिता दिए, सिर्फ पानी पर, फिर भी शरीर चलता रहा। अगर उसी के मुकाबले आप भोजन को भी काट दो और पानी को भी काट दो तो भी व्यक्ति बिना पानी के 2-3 दिन तो जी ही सकता है। कोशिश करके, अगर कई लोग ऐसे हैं जो 5-5, 6-6 दिन एक हफ्ता भी बिना पानी के सिर्फ हवा पे जीते रहे, मगर अगर आप एक इंसान को सोने ही न दो, अगर 4 दिन लगातार उसको सोने न दें आप, तो आप ये जानकर हैरान होंगे कि कई सारे लोग जिंदा नहीं रह सकते। नींद का अभाव मौत का कराता है आप, यानी ये इतना इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है और अनेकों एक्सपेरिमेंट्स ने इस बात सिद्ध किया हुआ है। हालांकि इनमें से ज्यादातर लोग नींद की इस महत्व को नहीं जानते। मैं कल्पना जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ, रूबरू हूँ, और विज्ञान इस बात की पुष्टि करता है कि नींद हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को, हमारे मानसिक स्वास्थ्य को, दोनों को ठीक रखने में मदद करता है। और समझ लें, आज आपने बहुत गुस्सा कर लिया, आज आपका मूड बहुत खराब है, आपने कुछ भी कर लिया, आप सो जाइए, सोने के बाद कुछ घंटे की नींद जब आप उठते हैं, आप एकदम रिलैक्स उठते हैं, तो एक प्राकृतिक रूप से मिले हुए तोहफे के रूप में आप नींद को देखें, जो आपको हील करने में मदद करता है, आपके वेलबींग को रिस्टोर करने में मदद करता है। अगर हमें वो मौका देना चाहिए, और अगर हम इस मौके को अपने आप को नहीं देते हैं, ये तोहफा जो हमारे पास है, अगर हम उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम अपने ही आपको हानि पहुंचा रहे हैं। ये बात सही है।
6: ओके, तो नींद का इतना महत्व है, ये तो समझ में आया, लेकिन कई बार लोग सोते तो है ही लेकिन बस लेट। कई बार हम 1 बजे सोते हैं तो नींद पूरी होती है, 7-8 घंटे भी होती है, क्योंकि हम 10 बजे उठ रहे हैं या 11 बजे उठ रहे हैं या 9 बजे उठ रहे हैं, तो 7-8 घंटे की तो नींद हो रही है। तो क्या वो सेम वर्क कर रही है या यहाँ भी अंतर हो जाता है? क्योंकि लोग बहुत इरिटेट होते हैं कई बार जब पेरेंट्स बोलते हैं, अरे टाइम पे उठो, टाइम पे सो, टाइम पे उठो, टाइम पे सो, तो बहुत कई बार ये चीज इरिटेट करती है एक्चुअली।
4: इससे पहले कि मैं जानता हूँ कल्पना जी इसका उत्तर बेहतर दे सकती हैं, मैं अपने अनुभव से ये बात शेयर करना चाहता हूँ। मैं एक आईटी कंपनी के लिए काम करता था, और क्योंकि आईटी कंपनीज ग्लोबल इंडस्ट्री है, वो ग्लोबली काम करती हैं, अलग अलग क्लाइंट्स आपके दुनिया के दूसरे दूसरे कोने में होते हैं, तो हमारे क्लाइंट्स कैनेडा में, और मुझे उनके टाइमिंग्स के अनुसार काम करने की जरूरत पड़ती थी। कभी कभार मैं शाम को 7:30 बजे काम करना शुरू करता था और रात के 2-3 बजे तक काम करना पड़ता था, और कभी कभार मैं रात को 2:30-3 बजे सवेरे उठकर काम करना शुरू करता था, और दोपहर के 12 बजे तक मुझे वो काम करना पड़ता था। ये टाइम टेबल ऊपर नीचे होता रहता है। हालांकि हमको ऐसा लगता है कि हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मतलब जब मैं रात को 1-2 बजे तक सोता ही हूँ, वीडियो ही देख रहा हूँ, तो फिर उस समय पर तो मेरे पास मोबाइल फोन और इंटरनेट का जमाना नहीं था जब मैं काम करता था। बट आजकल के युवा ये समझ सकते हैं कि आज हम रात को 1-2 बजे तक तो ऐसे भी सोते हैं, 12 बजे तक तो सोना होता ही है, तो 2 घंटा और काम कर लिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई, ऐसा लग सकता है।

0: छेड़ने की वजह से होता है। प्रकृति में हर एक जीव अपने अपने समय के अनुसार काम करता है, सबका एक सिस्टम बना हुआ है और उसी सिस्टम के अनुसार हमें चलने की जरूरत है।
1: लेकिन मतलब जैसे मैं स्कूल में पढ़ती थी तो मैं भी कई बार रात को पढ़ती थी, बड़ा पीसफुल लगता है, शांति होती है, कोई नहीं होता है डिस्टर्ब करने के लिए, 3-4 घंटे आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं या कुछ और कर सकते हैं। तो अगर ऐसा लग रहा है कि हमें ज्यादा पीसफुल लग रहा है उस टाइम पढ़ना या कुछ और काम करना, तो क्या करें फिर?
2: पढ़ने की जहां तक बात है वो थोड़े समय के लिए होता है, इसलिए कोई बात नहीं, उसके बाद आप अपने डेली रूटीन में आ जाते हो, रात की नींद आपकी पूरी हो जाती है। इम्पोर्टेंट रात की नींद का, जबकि प्रकृति भी अंधेरा करती है, आप दिन में 10 बजे तक 11 बजे तक सो रहे हैं, तो आप कोशिश करना, देखना, ट्रायल करना, उसके बाद भी आपको थकावट महसूस होती है, भले आप 10 घंटा सोए फिर भी आपको थकावट महसूस होती है, ऊर्जा नहीं रहती, एनर्जी नहीं रहती है, थोड़ा सा काम करके उठने का मन नहीं करता है बिस्तर से।
1: ये तो
2: ये सारी चीजें दिन के सोने में, रात के सोने में आप 10 बजे सो जाओ और सुबह 6 बजे उठो, ये है राइट टाइम सोने। हमारे पास कहीं प्रॉब्लम लेकर आते हैं, नाइट ड्यूटीज करते हैं, जब हम देखते हैं जो श्री जी ने सिम्टम्स बताए उनकी रात की काम करने की आदत की वजह से, वो सारे सिम्टम्स लेकर आते हैं, जब हम उनको पूछते हैं कि आपका काम क्या है, तो मैं सालों से नाइट ड्यूटी कर रहा हूँ। अब ये इसकी वजह से पूरा मानसिक, शारीरिक और ब्रेन का संतुलन बिगड़ जाता है। हम उनकी कंपनी को फिर सलाह देते हैं कि हफ्ते में केवल 3 दिन का नाइट करवाएं और बाकी दिन उनको डे में आने के लिए चांस दें। इसीलिए कई जो क्षेत्र है उसमें ये रूल है, जैसे नर्सिंग में, क्योंकि पेशेंट को अटेंशन देने की जरूरत है, दवाइयाँ ठीक से देने की जरूरत है, उनको 2 नाइट्स के बाद एक छुट्टी मिलती है और उसके बाद उनकी नाइट एक हफ्ते के बाद लगती
1: है, वो बैलेंस।
2: इसलिए रात का सोना मस्ट है, इम्पोर्टेंट।
1: ओके, तो जो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं, जो बात चली आती है कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, ये बातें यानी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मायने रखती हैं, और इसको चेंज करना हमारी हेल्थ के साथ हम जैसे खिलवाड़ कर रहे हैं। और आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही थी शुरू में कि हीलिंग कर देती है नींद, जो पुराना बैगेज है उसको भी हील कर देती है। श्रीनिधि जी, आप भी कुछ क्या कहना चाहेंगे उस, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी ये बात, हीलिंग नींद कर सकती है, मतलब हम कॉन्शियसली एफर्ट के बिना क्या इतना पॉसिबिलिटी है उस हीलिंग के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे?
0: बिल्कुल आरुषि जी, जब हम बॉडी के रिपेयर की भी बात करते हैं, ये बिल्कुल वैसा ही है कि जब गाड़ी अगर खराब हो गई है, या ये समझें कि भाई गाड़ी की सर्विसिंग कराने की जरूरत है, ऑयल चेंज करना है उसका, या मरम्मत करनी है, तो आप गाड़ी को गैराज में ले जाते हैं। अब आप गैराज में गाड़ी चलाते नहीं है, गैराज में गाड़ी खड़ी रहती है और उस पर जो काम होना होता है वो होता है। उसी प्रकार शरीर की गाड़ी का भी ऐसा ही है, जो हमारा मस्तिष्क, उसके लिए भी रिलैक्सेशन की जरूरत है और नींद रिपेयर का काम करता है, रिजुविनेट करने का काम करता है। तो नई स्फूर्ति, नई ऊर्जा देने के लिए प्रकृति ने जो समय बनाया है, उस समय के अनुसार हमें अपने क्लॉक को सेट करने की जरूरत है। मैं कहता हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, ये मेरे से नहीं हो सकता। मैं ये कहता हूँ कि आप करके देखें, जबरदस्ती ही सही, हर दिन आप कोशिश करें कि आप रात को जल्दी 10-11 बजे तक तो सो ही जाएं, और फिर 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता करके फिर बताएं कि आपके स्वास्थ्य में, आपके मनोस्थिति में क्या परिवर्तन आ रहा है। तो लोग जब उस परिवर्तन को देख लेते हैं तो अपने आप वो उस चीज को प्रायोरिटी दे। तो ये अनुभव वाली बात है, करके देखने वाली बात है। विज्ञान भी तो एक्सपेरिमेंट की बात करता है, हम बिना एक्सपेरिमेंट और उसके उस एक्सपेरिमेंट के बाद जो एक्सपीरियंस आता है उसके आधार पर विज्ञान को मानते हैं। तो यही चीज वैज्ञानिकों ने ऑलरेडी बता दिया है, साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, अनेक लोग इस चीज को वाउच करते हैं। तो हमें भी वो चीज करके देखने की जरूरत है, बिल्कुल ये ताकत है प्रकृति। और इसी चीज के लिए लोग कहते हैं, जब शरीर में व्याधि भी हो रही होती है तो लोग यही कहते हैं, डॉक्टर साहब नींद की गोली दे दो, नींद का इंजेक्शन लगा दो, सो जाएंगे तो ठीक हो जाएगा। और अक्सर ये देखा जाता है, व्यक्ति वेल रेस्टेड होता है तो उसके स्वास्थ्य में इजाफा होता है। कुछ ना करना ही अपने आप में हीलिंग प्रोसेस है। हम सोचते हैं कि क्या करें, इसके लिए क्या करें, उसके लिए क्या करें। कभी कभार रिलैक्स करना, कुछ नहीं करना, वो हीलिंग प्रोसेस में बहुत बड़ा कारगर उपाय साबित होता है।
1: तो कभी कभी कुछ ना करना भी जरूरी है। हमेशा पूछते हैं सवाल क्या करें, तो अभी कुछ नहीं करें बहुत जरूरी है, ये समझ में आया। और मुझे लगता है इस एपिसोड में तो हमने बहुत सारी नींद के बारे में बात कर ली है, और किस तरह

0: से नींद मदद करती है वो भी हमने समझा, और क्या क्या हीलिंग है, हम कैसे कैसे बैगेज कैरी कर रहे हैं, कैसे उसको हील करने की शुरुआत कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ जानेंगे आगे आने वाले एपिसोड्स में। फिलहाल जाते जाते दीदी आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अब नींद के बारे में क्योंकि बात हो रही है, तो क्या सोने के पहले हम कुछ मेडिटेशन कर सकते हैं जिससे नींद हमें अच्छी आए?
1: बिल्कुल कर सकती हूँ। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि मेडिटेशन की शुरुआत डीप ब्रीदिंग से होती है, रिलैक्सेशन से होती है। जब डीप ब्रीदिंग का हम एक्सपीरियंस करना शुरू करते हैं और बॉडी और माइंड को रिलैक्स करने की प्रैक्टिस करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा मन शांति का अनुभव करता है, विचार रुक जाते हैं, हमारी भावनाएं शांत होती हैं। उस रिलैक्स स्टेट में हमें गहरी नींद का आनंद लिया जा सकता है। तो 2 मिनट के इस मेडिटेशन में हम यही देखेंगे कि सोने से पहले हम कौन से ऐसे विचार करें जिससे हमारा मन भी शांत हो और ब्रेन भी रिलैक्स फील करे। तो मैं श्रोताओं से अनुरोध करूंगी कि वो किसी निश्चित स्थान पर बैठकर गहरी और लंबी सांस लेने का अभ्यास करें। गिनें अपनी सांसों को, लंबी सांस गहराई तक भीतर ले और लंबा सांस छोड़ें। पूरा ध्यान अपने सांसों पर एकाग्र करें। अपने संपूर्ण शरीर में रिलैक्सेशन को फील करें। एक एक बॉडी पार्ट को ढीला छोड़ दें। अपने सिर को और मस्तक को फील करें, कंप्लीटली रिलैक्स्ड। मन में विचार दोहराएं, मैं शांत स्वरूप हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, मैं बिल्कुल सुरक्षित, मैं प्रेम पाने और प्रेम देने के योग्य हूं। गहरी और लंबी सांस के साथ अपने आप को स्वीकार करें, सुरक्षित महसूस करें। चारों ओर से प्रकृति और परमात्मा के प्रेम से घिरा हुआ महसूस करें। और चलिए 1 मिनट के लिए हम गहरी नींद का अनुभव करें। खुद को ऑर्डर दे, मुझे 1 मिनट आंख बंद करके, सारे दरवाजों को बंद करके केवल गहरी नींद का अनुभव करूं। नींद मेरी फ्रेंड है, नींद मेरी दवाई है, नींद मुझे भीतर और बाहर से पूरी तरह से हील करती है। थैंक यू।
0: थैंक यू सो मच दीदी। नींद सबसे बड़ी हीलर है, चाहे शरीर हो चाहे मन, और दोनों की ही हीलिंग आज हमें करनी बहुत जरूरी हो गई है, चाहे बच्चे हैं, युवा हैं या बुजुर्ग हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है ये मेडिटेशन हम सबके लिए है। कोई सुन रहे हैं तो अपने घर वालों से भी ये जरूर शेयर करें और अभ्यास करें। जैसा श्रीनिधि जी ने भी बताया कि एक्सपेरिमेंट करके देखें कुछ हफ्तों तक, फिर आपको उसका असर खुद समझ में आएगा, उसका जीता जागता प्रूफ आप ही बन जाएंगे। और इसी वादे के साथ कि आप इसका प्रयोग करेंगे, इसी आशा के साथ फिलहाल लेते हैं इजाजत और अपने एक्सपर्ट्स को कहते हैं बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों का हमें समय देने के लिए, जुड़ने के लिए, गाइड करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: शुक्रिया।
2: थैंक यू।
0: और दोस्तों, मुलाकात होगी लव्य जिंदगी के अगली कड़ी में। तब तक रेडियो मधुबन से जुड़े रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जिंदगी को दिल खोल के कहिए कि लव यू जिंदगी।

0: कार्यक्रम वंदे मातरम। वंदे मातरम सुनने वाले सभी श्रोता बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। वंदे मातरम ऐसी नारी शक्ति पर आधारित है जिनके जीवन में काफी उतार चढ़ाव या कुछ अलग उनके जीवन की कोई कहानी होती है, लेकिन किसी को पता नहीं होता है कि नारी शक्ति के साथ जो घर में रह रही है या बाहर जो भी करती है तो उनके साथ इस तरह की परिस्थितियां भी आ सकती है। लेकिन इस कार्यक्रम के माध्यम से आप नारी शक्ति की शक्ति को भी पहचान सकते हैं, उसके स्ट्रगल को भी आप महसूस कर सकते हैं। तो ऐसी ही नारी शक्ति से आपको मिलवाने जा रही हूँ जिनका नाम है मधु राठौड़। आप गुजरात जूनागढ़ जिला बांटवा गांव के रहने वाले हैं। आपकी उम्र 52 वर्ष है। आपने 12th तक पढ़ाई की हुई है। सिलाई कढ़ाई बुनाई का आपको बहुत ही शौक है, कुकिंग का और विशेष करके सफाई का बहुत ही शौक है और अध्यात्म में गहरी रुचि रखती है। तो ऐसी नारी शक्ति से आपसे मिलवाने जा रहे हैं। मधु जी नमस्कार।
1: धन्यवाद जी,
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो मधुबन में।
1: धन्यवाद
0: मधु जी। चलिए, आपकी उम्र 52 है, मतलब 55 के आसपास पहुंच चुकी है। और कहते हैं ना, 55 में जब बचपन की बातें करते तो बड़ा अच्छा लगता है, क्या कहेंगे?
1: बहुत अच्छा लगता है। तो जैसे कि मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती थी
0: जी,
1: तब से मुझे कुछ ऐसे लगा, बचपन से तो वैसे माँ बाप, हम 5, 3 बहनें हैं, 2 भाई है, छोटा सा परिवार है और माता पिता है, दादी थी। फिर दादी तो अचानक से हार्ट अटैक आया और चली गई। उसके बाद सत्संग चला था घर में, जैसे कि तो सत्यनारायण की कथा हर 11 को होती थी। तो मम्मी सब कहती थी कि जाओ आप ना, सबको जो सगे संबंधी है उसको कहना कि हमारे यहाँ सत्संग है तो आ जाना। फिर सबको वो फूल लाना, प्रसाद लाना, वो सब मम्मी मुझे देती थी कि आप वो करो। फिर तो सब लाते थे, फिर ना बरसात आई, ये सब इकट्ठा करते हैं पैसा और उसका कुछ बड़ा करना था। तो मैं तो छोटी थी, तो एकदम बरसात आई तो सारा पैसा ऐसे पास रहता है, 25 पैसे का 30 पैसे का
0: जी
1: हाँ, तो वो सब इकट्ठा किया हुआ था और घर की जो कांधी कहते मतलब माड़िया कहते उसमें लगा था। तो बरसात आने की वजह से जोरदार वो बिक गया। फिर सब वो सुखाया बहनों ने, मेरी 2 बहनें हैं और भाभी है, सब सुखाया। फिर तो मम्मी ने और सत्संग की जो मंडली थी ना, बड़ी पहली बार मेरी मम्मी ने ही वो सत्संग चालू किया। तो कहते हैं कि अब ना कुछ उसका नया करे, हमारे यहाँ जो राजपूत के मंडली होती है ना बहनों की, तो उसमें सत्संग में से जो इतने पैसे इकट्ठे हुए थे तो उसका कुछ अच्छा सा करे जो सबको काम भी आए उसमें।
0: चलिए मधु जी, सत्संग की बातें हम जरूर जानेंगे, पहले हम बचपन की बात जानना चाहेंगे। आप जैसे बता रहे थे कि 5 भाई बहनों, ठीक है, अच्छा आप 3 बहनें और 2 भाई हो, आपका नंबर कौन सा आता है?
1: मेरा लास्ट का नंबर 5वां।
0: तो आप तो सबके चहेते रहे होंगे।
1: बहुत बहुत बहुत चहेते रहे।
0: आपके पिताजी क्या काम करते थे उस समय?
1: वो किसान थे, किसान। पहले तो मैं जब से आई ना तब से तो हमने बहुत खेती देखी। इससे पहले कहते थे कि हमारे 7 थे ना घर में, जैसे 5 बच्चे और 2 माँ बाप और दादी, उसमें बहुत एकदम करकसर से जीवन था।
0: जी जी, मुश्किल से हाँ, चल पाते थे गृहस्थी की।
1: हाँ, नहीं, पापा का यही एक सपना था कि मैं बड़ी खेती लूँ। इसके लिए उसने करकसर से हम सबको ऐसे सिखाया कि करकसर से रहोगे, लोभ से नहीं, करकसर से।
0: जी जी।
1: तो उसने 100 बीघा, मतलब अभी उसका पैसा होता है वो 15 करोड़ होता है, तभी कभी कुछ नहीं था। फिर भी पापा ने, हम काका कहते थे, हम साथ में रहते थे,
0: जॉइंट परिवार था।
1: हाँ, जॉइंट परिवार था, मतलब मेरे जो बड़े पापा के बड़े भाई वो साथ में रहते थे, उसका 6 बेटा
0: जी
1: हाँ, और साथ में रहते थे। तो साथ में रहने की वजह से जो बड़े बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं
0: जी, काका बोलते हैं और बड़े पापा के बेटे,
1: हाँ पापा के बड़े भाई, उसको हम अदा बोलते हैं गुजराती में
0: जी।
1: तो वो अदा का सब बच्चे इकट्ठे रहते, तो वो मेरे पापा को काका कहते थे, तो हम भी काका ही कहते हैं, लास्ट तक काका किया। तो काका का यही सपना था और मुझे बहुत पढ़ाया उसने, सब हमारे भाई बहन है ना, उसमें से मुझे ज्यादा पढ़ाया।
0: अच्छा, बाकी आपसे सब कम पढ़े लिखे हैं?
1: सब कम पढ़े लिखे,
0: भाई भी?
1: भाई भी।
0: तो सब क्या करते, खेती का काम?
1: हाँ, सब खेती का ही काम करते।
0: तो आपके सामने 100 बीघा जमीन का जो आपके पिताजी का
1: वो बनाया उसने अपने।
0: संकल्प था तो लिया?
1: हाँ, वो पूरा किया। पहले ऐसा नहीं था, फिर पूरा किया। फिर उसको तो इतना उमंग आया। उसके बाद सब, पहले भाई की शादी हुई, बड़े भाई की। उसके बाद तीन तीन के साथ में हुई और मेरी अकेली हुई।
0: अच्छा, आपकी शादी की बात तो जरूर करेंगे, लेकिन बात कर रहे थे आपके बचपन की, कि इस तरह आपके पिताजी खेती का काम करते थे, किसान थे। आपके माताजी भी कुछ करते थे?
1: हाँ, घर का काम करती थी और खेत में पिताजी को बहुत साथ देती थी। सारा पूरा काम करके, अपना बाता बना करके, और मुझे कहती थी कि आप ये घर संभालो, और पढ़ाई करने के बाद हम आएंगे तो आपको ये खिचड़ी बना के रखनी है, ये सफाई करनी है, और चूल्हा चूल्हा ये सब कुछ अच्छे से रखना है, ताकि आए तो सिर्फ हमें सब्जी और रोटी दोनों ही बनानी है, और पूरा घर का ख्याल रखना है, बाहर सब आपको करना है। और फिर आप ये सब पढ़ाई करने के बाद फिर पेड़ाई कर लेना और सफाई कर लेना। तो मम्मी भाता बनाकर, मतलब रसोई बनाकर जाती थी।
0: जी,
1: हाँ, और साथ में पिताजी को बहुत बहुत साथ देती थी।
0: तो आपके भाई बहन भी जाते थे खेत में?
1: सब जाते थे, सब के सब।
0: आप अकेले घर पर रहते?
1: हाँ, मैं अकेली घर पर रहती। मैं डरती नहीं थी। मेरे से जो तीसरे नंबर की बहन है ना, जैसे हम तीन बहन हैं, तो तीसरे नंबर की बहन के, वो अकेली नहीं रहती थी, वो डरती थी। वो कहती थी मैं अकेली नहीं रहूंगी। मम्मी बहुत कहती थी कि आप रहो इसके साथ। फिर मैं कह देती हूँ कोई बात नहीं मम्मी, आप जाओ, उसको भी ले जाओ, मैं अकेली रहूंगी। और मैं बहुत बड़ा था तो मैं उसमें अकेली रहती थी और सब काम कर लिया करती। और मम्मी मुझे ऐसी शाबाशी देती, देखो तो आपसे छोटी है तो भी वो अकेली रहती है, और सारा डरती भी नहीं है। कोई आते हैं तो ऊपर से देख लेती हूँ कि कौन आया है। अगर कोई हमारा संबंधी आते हैं तो मैं खिड़की खोलती हूँ, अगर कोई और है तो खिड़की भी नहीं खोलती। ऐसे में बहुत तैयार थी, तो मम्मी और पापा दोनों की चहेती थी।
0: जी,
1: पापा पापा तो हमें साथ में ही सुलाते थे, वो तो मेरी सगड़ी है जैसे बोलते। मैं इतनी गर्म रहती हूँ ना, तो वो खेत में से आते और पापा को मैं पानी देती हूँ, कुछ खाने को देती हूँ, तो पापा की बहुत चाहती थी। छोटी थी इसलिए बहुत बचपन प्यार से ही गुजरा, और सबका, भाई बहनों का अभी तक प्यार मिल रहा है।
0: जी जी
1: हाँ,
0: जी
1: बहुत प्यार मिल रहा है।
0: जी
1: और अभी वो पे दुलार देते तो कहते हैं कि तुम बड़ी भाग्यशाली हो, ऐसे कहते हैं अभी भी।
0: जी जी वो कहते हैं ना कि नमे सौने गमे, गुजराती कहावत है। तो
1: हाँ,
0: आपके अंदर नम्रता थी, तो आप सभी के दिलों पर राज करते थे
1: अभी भी कर रही हूँ। और
0: बचपन से। जो स्वभाव संस्कार जो हमारे अंदर पड़ जाते हैं, वो लाइफ टाइम चलता है।
1: हाँ, वो आगे ज्यादा हो जाता है बढ़कर। तो बचपन ऐसे ही गुजर गया, पता ही नहीं चला कि देखो सबने इतना साथ दिया। और मैं, मेरा उत्साह और उमंग बहुत बढ़ाते थे भाई बहने।
0: जी
1: जो मेरे से चारों भाई बहन है ना, बहुत उत्सव उमंग बढ़ाते थे। जैसे कि खेतों में बुनाई होती है, कटाई होती है, वो हम एक दो मजदूर रख करके हम स्वयं करते थे।
0: अच्छा,
1: मजदूर चार आते थे, वो चार बहनें आती थी, दो बहनें अपनी और दो भाई उसके, वो चार ही आते थे, और हम सब मिल करके ये सारा खेत संभालते थे।
0: सौ
1: तो
0: सौ बीघा जमीन में?
1: हाँ, सब
0: अच्छा,
1: मजदूर नहीं, ना कोई किराए का रखा, रात में कोई नहीं, सब अकेले ऐसे ही करते थे। तो हमने बचपन से यही सीखा कि मेहनत करो, और मेहनत से आगे बढ़े। और पापा का तो बहुत था कि ये ले वो ले, बहुत था को ना, मेहनत में बहुत विश्वास था।
0: जी चलिए मधु जी, आपसे और भी बातचीत करेंगे, आपके अनुभव और भी सुनेंगे, लेकिन समय हो चला है यहाँ पर एक गीत सुनने का। तो एक गीत सुन करके पुनः लौट रहे हैं, कहीं जाइएगा नहीं, मधु जी के अनुभव बहुत ही अच्छे हैं जो हम फिर से सुनेंगे। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: बहू बहू जल्दी तैयार हो जा, हमें डॉक्टर के पास जाना है।
1: जी आई माँ जी।
0: अरे जल्दी कर, इतनी देर से अभी अभी लगा रखा है।
1: जी माँ जी आ गई, चलिए।
0: नमस्ते डॉक्टर नी जी।
2: नमस्ते नमस्ते, बैठिए। जच्चा बच्चा दोनों ठीक है?
0: डॉक्टर नी साहिबा, हमें अपनी बहू का वो क्या कहते हैं जो टीवी पर देखकर पता चल जाता है कि लड़का है या लड़की, अपनी बहू का पता करना है।
2: सोनोग्राफी? मगर क्यों?
0: लड़की हमको नहीं चाहिए ना, इसलिए अगर पता चल जाएगा तो तुरंत निपटा देंगे।
2: मगर ऐसा करना तो गलत है। और बहू क्या तुम भी यही चाहती हो?
1: जी वो
0: न अरे तू चुप रह बहू, तू क्या जाने।
2: देखिए भ्रूण हत्या एक कानूनन जुर्म है, इससे आपको उम्र कैद भी हो सकती है। और आजकल तो लड़कियां लड़कों से आगे बढ़कर काम कर रही हैं, जैसे सुनीता विलियम, कल्पना चावला, इंदिरा गांधी और मैं खुद एक सफल डॉक्टर हूँ।
3: आजकल हमारे समाज में भ्रूण हत्या तेजी से बढ़ रही है, उसे हमें रोकना होगा। यह कानूनी अपराध है, इसके लिए आप सभी को उम्र कैद भी हो सकती है।
4: बेटी वो खुशबू है जो आंगन महकाए, बेटी वो खुशबू है जो आंगन महकाए, हर रिश्ते में अपनापन जगाए, नन्हे कदमों से सपने बुनती, घर को स्वर्ग सा बना जाए, घर को स्वर्ग सा बना जाए। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदे मातरम, और वंदे मातरम में ऐसी ही बेटी जुड़ी हुई है, ऐसी मातृ शक्ति जुड़ी हुई है, मधु राठौड़, जिनके अनुभव हमने सुने हैं। इसी कड़ी में और भी आगे बढ़ेंगे। मधु जी पुनः स्वागत है आपका वंदे मातरम कार्यक्रम में।
5: जी थैंक यू जी।
4: तो मधु जी आपके बचपन की बातें चल रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा स्कूल की बातें बताएंगे कि आपके टीचर्स के साथ, सखियों के साथ कैसा व्यवहार रहा?
5: हाँ मेरी सखियाँ भी बहुत बढ़िया थी, एक सखी थी बहुत अच्छी थी, मैंने उसे अपना माना था, उसका वो अलग था। फिर मैंने पहले आठवीं पढ़ी तो मम्मी होली का त्यौहार था, जैसे अभी होली आ रही है, तो होली का त्यौहार था तो मम्मी ने कहा कि अब मैं ना सारा रसोई या भाता बोलते हैं ना वो भाता कर रही हूँ, तो आप ना आज जाओ शिव के मंदिर पर। और वहाँ से गुजरात में ये होता है कि बड़ा शिवरात्रि का महत्व होता है, शिवरात्रि के दिन उपवास करते हैं और भांग का प्रसाद मिलता है, और बड़ी उत्साह उमंग से शिवरात्रि पूरा दिन रहते हैं। और शिवरात्रि के दिन खाना कुछ नहीं होता है, सिर्फ थोड़ा सा फ्रूट लेना है, दूध लेना है और वो प्रसाद लेना ज़रूरी है। तो प्रसाद नहीं, माताजी लाई थी तो उसने कहा आप जाओ तो मुझे मंदिर भेजा। तभी एक आध्यात्मिक प्रदर्शनी मिली और मैं आठवीं कक्षा में वो प्रदर्शनी देखी। तो वो प्रदर्शनी पहले तो कुछ समझ में नहीं आई, बाद में इतनी मन को भा गई कि बार बार वही आध्यात्मिक मार्ग पर चलने लगे। इसमें इतनी लगती थी कि मैं ही वही देवी हूँ, और मुझे इतना अच्छा अनुभव होने लगा कि मैं बस इसी मार्ग पर चलूँ। घर पर आई, प्रदर्शनी देखी, तो उस प्रदर्शनी में सुना कि मैं कौन हूँ, वही बहुत अच्छा लगा। फिर पहले तो कुछ समझ में नहीं आया, और माता जी तो चली गई खेत में और मैं घर पे, तब स्कूल पे रजा होती है तो घर पे हूँ, घर पे थी। उसके बाद आध्यात्मिक में मेरा जुड़ाव बहुत रहा, मैं बहुत अच्छा लगता था कि मैं आध्यात्मिक में कैसे आगे चलूँ। फिर हर 11 के दिन और पूनम के दिन मेरी माताजी कथा करती है, सत्संग सब बहनें आती है, सत्संग की 50 बहनें होती है, तो माताजी सत्संग में होने के कारण मैं इतनी आध्यात्मिक रही पहले से। भक्तिभाव उसमें प्रसाद होता है, महाप्रसाद की बहुत महिमा होती है सत्संग में, सत्यनारायण की कथा, वो सत्संग फिर पाठ पूरा हो जाता है, 5 अध्याय होता है, पूरा होने के बाद प्रसाद सबको बांटते।
4: अच्छा तो आप अध्यात्म में चलने लगे, तो फिर घर में किसी ने विरोध तो नहीं किया?
5: जी छोटी थी तब तो किसी ने विरोध नहीं किया, पर ऐसे कहा कि अच्छा है, मम्मी अध्यात्म से जुड़ी थी तो अध्यात्म में बहुत रुचि थी मेरी पहले से ही।
4: तो भक्ति के संस्कार आपको बचपन से?
5: बचपन से
4: जी। और आठवीं से आपको थोड़ा अध्यात्म स्पिरिचुअल नॉलेज मिल गया?
5: स्पिरिचुअल नॉलेज मिल गया।
4: अच्छा, मैं स्कूल की बात कर रही हूँ कि आपकी सखियों के साथ कैसा था?
5: सखियों के साथ तो इतना मैं सखी नहीं करती थी, मुझे ऐसे आध्यात्म में अच्छा लगता है बस।
4: अच्छा, ये बताइए आप स्कूल में कोई पार्टिसिपेट करते थे जैसे गाने? हाँ, में
5: हाँ, जो में? कोई स्पर्धा होती है, कोई भी स्पर्धा होती है तो पहले तो मैं लींबू चमची में वो स्पर्धा किया ना, तो मेरा वो इसमें फर्स्ट नंबर आया, पहला नंबर आया, जो अच्छा लगा कि आगे बहुत बढ़ना चाहिए, उत्सव उमंग बढ़ा, जैसे पहले नंबर आए ना तो अंदर से लगा कि बहुत आगे मेहनत करनी चाहिए, फिर तो आगे आगे नंबर आता ही गया।
4: अच्छा, तो हर साल आप भाग लेते थे?
5: हाँ, हर साल भाग लेते।
4: अच्छा, और डांस गरबा ये भी करते थे?
5: हाँ, गरबा करते, डांस तो अकेले अकेले करते।
4: तो करते थे अकेले स्टेज पर?
5: हाँ, अकेले अकेले स्टेज पर करते थे, पर थोड़ा हिचकिचाते पर कर लेते थे, फिर बाद में एक भी किया फिर तो अच्छा लगा तो करते रहते थे डांस भी।
4: कभी टूर्नामेंट में भी गए? गेम्स में कोई गेम्स खेलते थे?
5: गेम्स तो नहीं खेली।
4: अच्छा, पढ़ाई में कैसे थे आप?
5: पढ़ाई में बहुत बढ़िया था, और एक फोकस था कि आगे बढ़ना है, मतलब इतना तो लाना ही है, तो पढ़ाई में भी रुचि बहुत रही, दसवीं में भी बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, बारहवीं तक, पर बारहवीं तक में तो मेरी शादी हो गई थी, मैं बारहवीं तो वहाँ ससुराल में किया।
4: अच्छा, बारहवीं पढ़ रहे थे और शादी करवा दी?
5: हाँ, बारहवीं में तो मेरा जो रिजल्ट आया ना वो ससुराल में आया, पढ़ाई तो वहाँ, शादी तुरंत कर दी।
4: तो आपका ससुराल कहाँ है?
5: ससुराल भी वही बांटवा में ही है।
4: बांटवा में ही? कितना बड़ा शहर है बांटवा? शहर है या गांव है?
5: वैसे शहर भी कहो तो शहर भी है और गांव भी है,
4: तो वहीं पर आपका पियर भी और ससुराल भी?
5: ससुर एक गांव में, सब कई बाहर गई नहीं, रेल तो मैंने कहीं देखा नहीं, आध्यात्मिक में रहे और गांव में ही शादी हो गई।
4: तो आप बता रहे थे कि छोटे थे तब तो कोई विरोध नहीं करते थे, तो शादी के समय किसी ने विरोध किया क्या?
5: नहीं, फिर तो युगल को मैं आध्यात्मिक में ले गई तो उसको भी अच्छा लगा, फिर विरोध होगा आध्यात्मिक में,
4: फिर क्या हुआ, विरोध हुआ?
5: हाँ, ससुराल में कहते हैं कि नहीं, हम कोई पकड़ बकड़ नहीं है, हम आध्यात्मिक में नहीं चल सकते, अब तो हमें बेटा चाहिए बेटी चाहिए, ऐसे आप शादी किए तो ये करना है वो करना है।
4: कौन बोलता है?
5: सास ससुर बोलता है, पर हमारे में लाज प्रथा थी, घूंघट निकालने की प्रथा थी
4: जी,
5: तो मेरे पापा ने ही शादी के वक्त कर किया था कि आप घर जाके घूंघट उठाओ, वो अलग बात है, हमारे यहाँ तो शादी होगी तो घूंघट में ही होगी
4: जी।
5: पापा जी ने यही बोला था, और माता जी और बड़ी दो बहनें हैं वो भी अच्छे से शिक्षा देती रही कि हमें अपने मर्यादा में ही रहना है, कभी इधर उधर पाँव ना जाए, फिसल ना जाए, वो बड़ा ध्यान रखना है किसी के साथ, बहुत सारी हमें मदद की बातें मिली उसी से
4: जी,
5: बड़ी दो बहनें थी उसी से सब मिला।
4: तो फिर ससुराल में सब कैसे रहते थे? शादी के बाद आपके जीवन में क्या बदलाव आया?
5: सासी तो घूंघट निकालते थे और बहुत स्ट्रगल हुआ।
4: मतलब आपके हस्बैंड आपका सपोर्ट करते थे?
5: तभी तो करते थे, पर जब आध्यात्मिक में जुड़ी, आध्यात्मिक में मेरा मन रुचि लगी, तभी विरोध हुआ।
4: तो आपने कहा कि आपके हस्बैंड तो आपके साथ जाते थे?
5: पहले उसने थोड़े टाइम किया, थोड़े टाइम वो मेरे साथ चले, मैंने कहा प्यार से उसे बोला ना कि चलो हम जाते हैं इसमें आध्यात्मिक में, क्या बहुत अच्छा है लगता है, वो सत्संग में जाने लगे, अब मेरे साथ आए, उसमें साप्ताहिक होता है कोर्स, उस वो किया उसने, और उसके बाद विरोध किया, और घर में तो जाते हैं तो सबको पता चलता है ना ससुराल में, तो मैं कह कर के जाती थी कि मैं सत्संग में जा रही हूँ, तो फिर आने के बाद सबको अच्छा नहीं लगता है, मैं अपना काम टाइम पर करती थी, सबको बहुत प्यार से रखती थी, फिर भी उसको ये अच्छा नहीं लगता था कि हम पकड़ लोग नहीं है सत्संग में, हमारा आध्यात्मिक में नहीं जाना है, सत्संग में नहीं जाना है, तो फिर मन नहीं लगता था सत्संग के बिना। तो
4: फिर आपने विरोध किया?
5: मैंने विरोध नहीं किया, मैंने चलती रही सत्संग में, जाती रही
4: जी।
5: फिर छुप छुप के जाने लगी, इसे थोड़े सामने से, फिर तो उसको पता चल गया कि ये वहां से वहां हंस जाती है, तो सामने से आकर दो चमाट लगा देती।
4: अच्छा, तो इस तरह आपके साथ विरोध होने लगा।
5: बहुत
4: अच्छा। ससुराल में कितना बड़ा परिवार था, मतलब संयुक्त परिवार था या आप अकेले रहते थे सास ससुर के साथ?
5: संयुक्त परिवार था, 10 जने रहते थे। 4 भाई है, 2 बहनें हैं, 2 ननद है और सास ससुर है, जेठ जेठानी, उसके 3 बच्चे
4: जी जी
5: बच्चे थे। हाँ,
4: तो इतना बड़ा परिवार था, आप कह रहे 10 जने थे, इतना बड़ा परिवार रहते थे साथ में।
5: हाँ, सबका काम भी हमें ही करता है, ऐसे कोई काम का भाग नहीं हुआ था, सब इकट्ठे काम करते थे। और मैं तब पानी की तंगी थी तो खेत में जाकर के कपड़े धोने होते हैं
4: जी जी।
5: हाँ,
4: जी
5: और वहाँ नहाने का सब मना होता है, नहाते नहीं थे, कहते कि नहीं हम थोड़ा ब्राह्मण लोग है, हम ब्राह्मण लोग नहीं है, वो क्या बोलते है, ब्राह्मण लोग नहाते हैं, हम नहीं नहाते। तो 2-3 दिन में नहाने देते थे और जैसे कि चलता था।
4: अच्छा, नहाने रोज नहीं देते थे और आपको स्वच्छता पसंद है, तो फिर क्या करते?
5: फिर मैं तो नहाती हूँ तो उसको विरोध होता है कि ये कैसी है ना, उसको अच्छा नहीं लगता है। वो कहते बोलते थे ना कि नहीं नाना नहीं है, हम थोड़ा ब्राह्मण है, ब्राह्मण होते हैं वो नहाते थे।
4: जी चलिए मधु जी, आपके और भी अनुभव सुनेंगे, लेकिन यहाँ पर समय हो चला एक ब्रेक लेने का, तो एक ब्रेक लेकर के पुनः लौट रहे हैं। कहीं जाइएगा नहीं, कार्यक्रम अभी बाकी है, तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: मेजोरिटी पीपल सिर्फ अगर अपने जीवन और अपने मन की एक्सरे करनी है उस क्षण चेक करें जब सुबह उठते हैं। अगर सुबह उठते ही फर्स्ट थॉट आती है कि मुझे थोड़ा और सोना है, इसका मतलब मेरी जो 6 घंटे के 8 घंटे की नींद थी मेरी उसमें रेस्ट और रिचार्जिंग नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? शरीर सो रहा था लेकिन मन अभी भी कंटिन्यूअसली चल रहा था। मन की बात का समाधान नहीं मिला उसको। अब हमारा मन अगर उसको उसकी बात का समाधान नहीं मिलता है तो वो 5 दिन नहीं 5 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ, 50 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ। और अगर फिर भी समाधान नहीं मिला तो आत्मा शरीर छोड़ेगी, दूसरा शरीर लेगी और वो ही सोच और संस्कार अपने साथ लेकर जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: बेटी जब आगे बढ़ती है तो कुल खानदान रोशन होता है। बेटी जब आगे बढ़ती है तो कुल खानदान रोशन होता है। उसकी एक मुस्कान से ही पूरा समाज प्रोत्साहित होता है। उसकी एक मुस्कान से ही पूरा समाज प्रोत्साहित होता है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदे मातरम और वंदे मातरम में मधु जी हमारे साथ बने हुए हैं। आइए, इनके अनुभव हमने काफी कुछ सुने हैं, इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे। तो मधु जी, जैसे आपकी शादी हो गई, आपको अध्यात्म में गहरी रुचि थी, सत्संग में आप जाते थे, ससुराल में फिर आप जाने लगे तो विरोध होने लगा, फिर आप रोज नहाते तो नहाने का भी विरोध होने लगा, तो पानी कहाँ से भर के लाते थे? घर पर नल था?
3: हाँ जी, नल तो था, पर ऐसे भी सबका मन भी देखना है ना, उसका मन नहीं है और हम ना रहे फिर भी नहाना ही है, जरूरी है। फिर नहाते थे, नहाना तो जरूरी लगा, तब भी लगा और अब भी लग रहा है।
2: नहाते और रोज डांट खाते?
3: रोज डांट भी खाते और उसको हम अच्छे नहीं लगते थे, क्यों? नहाने के लिए मना करते और हम नहाते, तो संबंध ऐसे प्यार से नहीं रहता है।
2: आपके हस्बैंड के साथ?
3: हाँ, वो तो बहुत अच्छे थे, अभी भी अच्छे है।
2: तो कौन मना करते है?
3: सासू, जेठानी, वो कहते कि नहीं नहाना है, ये क्यों नहाना है इसे।
2: तो फिर साथ में ही रहे या अलग हो गए?
3: नहीं, फिर तो साथ में रही, जब तक पहली बेटी आई दूसरा बेटा आया तब तक साथ थे।
2: अच्छा, आपके हस्बैंड क्या काम करते थे उस समय?
3: वो होम गार्ड में थे, अभी तो रिटायर हो गए।
2: अच्छा, तो आपके गांव में थे?
3: हाँ, गांव में सेवा होती है ना सरकारी होम गार्ड की, जैसे पुलिस के नीचे।
2: जी जी,
3: कॉन्स्टेबल के नीचे होती है।
2: अच्छा, तो जैसे आपका मायका भी वहीं था और
3: ससुराल भी गांव में।
2: जी, जैसे आप बता रहे थे कि कपड़े धोने आप खेत में जाते थे, तो पानी की कमी थी तो आपके मायके में भी कपड़े धोने आप खेत पर जाते थे?
3: जी नहीं, वहाँ तो घर पे ही था सब कुछ, घर पे ही कपड़े धोते थे, पर ससुराल में ना दुष्काल हुआ तो वहाँ थोड़ी तंगी हुई पानी की, तो कहते कि आप खेत में जाओ। तो मैंने तो जैसे शादी की आई और तुरंत कपड़े या जो चद्दर वो रजाई होती है ना, एक साथ 18 रजाई धोई, एक दिन भी मैंने बैठी नहीं हूँ।
2: इतना काम करते थे?
3: एक दिन भी बैठी नहीं हूँ, जैसे आज इधर पांव रखा, शाम को शादी करके आए, सुबह सब बोलने लगे इतना काम है, इतना काम है, वो है, इतना धोना है, तो मैंने सीधा कहा चलो मैं आती हूँ, मैं और मेरी जेठानी साथ में गए। फिर एक दिन आई, दूसरे दिन तो सास बोलने लगी कि इतना काम मैं अकेली क्या करूँगी, तो वो तो घर पर रही रसोई के लिए और मैं अकेली गई
2: कपड़े धोने।
3: हाँ,
2: तो शादी होते ही आपके काम में लगा देते हैं, नई नई बहू आई तो थोड़ा लाड़कोड़ भी तो करते है ना?
3: करते है ना, अभी हम भी कर रहे हैं, हमारी भी बहू है, हम भी बहुत करते हैं, क्योंकि ऐसे आध्यात्म में जाते हैं ना तो जैसे हम पर बीती है ना उस पर ना ही बीते, उसको तो इतना लाड प्यार करते, उसको तो आप करके, आप अभी भी मैं, मेरी बहू है, उसको आप कहकर ही बुलाती हूँ
2: जी,
3: उसको ऐसे तुकार के नहीं बुलाते, प्यार से ही उसे बुलाते, अगर बुलाना है तो प्यार से ही बुलाते
2: जी जी। अच्छा, तो जैसे आपका काम में लगा दिया तो आपके मायके वालों ने कुछ नहीं कहा?
3: नहीं नहीं, माँ पापा का तो यही था कि मेहनत करो, मेहनत आपको जगह दे, मेहनत से ही आगे बढ़ना है ना।
2: तो इतना आप काम करते थे तो सास ससुर प्यार करते थे आपको?
3: नहीं, अपना अपना तरीका होता है ना, अपना अपना नजरिया होता है।
2: अच्छा, किसी का प्रेम नहीं मिला?
3: नहीं, आध्यात्मिक में बहुत रुचि इसलिए तो जगी ना।
2: अच्छा, तो इसलिए आपको थोड़ा सा संग से प्रेम बढ़ा?
3: हाँ, प्रेम और बढ़ा।
2: फिर कितने समय में आप पियर जाते थे?
3: पियर तो गांव में ही था, क्योंकि वहाँ खाना, मुझे वहाँ तेल बहुत लगता था सब्जी में, और मायके में तेल नहीं था तो साग भाजी में मायके ही खाती थी। अब माता जी मेरी और मेरी भाभी थी, सब कहते थे अच्छा आपको अच्छा नहीं लगता, यहाँ खा लो, और खा करके वहाँ जाती हूँ ससुराल में।
2: तो रोज जाते थे खाना खाने?
3: हाँ, वहाँ रिवाज है, गांव में जो शादी होती है ना वो 4 बजे या 5 बजे मायके में रोज जाती है।
2: अच्छा,
3: अभी भी
2: टाइम मिल जाता है?
3: नहीं, टाइम निकालते, वो रिवाज हो गया है।
2: तो 5 बजे जा करके खाना खा के वापिस आ जाते हैं?
3: हाँ।
2: फिर ससुराल में खाना नहीं खाते थे?
3: नहीं, सब्जी में बहुत तेल होता है, कोई स्वाद नहीं। तो क्या,
2: तो आप नहीं बोलते कि सब्जी में थोड़ा तेल कम डालो, या आप खुद नहीं बनाते?
3: नहीं, सबको यही पसंद है, मेरी पसंद नहीं है तो इसमें क्या बड़ी बात है, हम मैं खा लेते।
2: नहीं तो जैसे नहीं कहते कि आपके चाहिए उत्ती अलग से बना दो?
3: अलग कोई नहीं बनता किसी का।
2: अच्छा, तो इस तरह आपके जीवन यात्रा रही। तो वो कहते हैं ना, गांव में पियर और गांव में ससुराल है, तो थोड़ी मुश्किल तो रहती है बैलेंस बनाने में। तो मुश्किल रहती थी आपके जीवन में भी?
3: हाँ, पर आध्यात्म में बहुत रुचि थी ना, तो मुश्किल नहीं लगा
2: जी। अच्छा, और आप बोल रहे थे कि आपके हस्बैंड का आपको सपोर्ट मिलता था?
3: तभी मिलता था, फिर वो आध्यात्मिक में जुड़े तो थोड़ा कम हुआ। फिर ससुराल में सास ने और बोला कि अब तो 3 साल हो गए, तो 3 साल में तो बच्चा होना चाहिए। मैके में भी यही कुछ रिस्पांस नहीं मिला, तो फिर तो बेटी हुई। बेटी हुई तो जेठानी थी, वो खेत में चली जाती थी, पूरा काम मेरे पर आ जाता था, जैसे गायों को दोना, भैंस रखते थे इसको दोना, सब काम करना और बच्चे को रखना
2: जी।
3: थोड़ा थोड़ा ज्यादा सासू का साथ था, सासू थोड़ी बेटी को रखती थी, साथ में थे ना जॉइंट फैमिली में
2: जी,
3: तो रखती थी।
2: दूसरे और कोई सदस्य नहीं थे परिवार में?
3: हाँ थे ना, वो है, एक चूल्हे पर ही रसोई बनती थी, पर यहाँ से कटोरी में लेकर वो अपने घर में खाती थी, वो मेरी सास की सास थी ना वो।
2: अच्छा, तो मधु जी, जैसे आप कह रहे थे कि आपको सत्संग का शौक था, इस वजह से परिवार वाले आपको सपोर्ट नहीं करते थे, और काम की जिम्मेवारी काफी रहती थी आपके ऊपर, और फिर आप कह रहे थे कि बच्चे होने के बाद आप अलग हो गए, तो सभी अलग हो गए, जेठानी, आप, या फिर सास ससुर के साथ रहते थे आप?
3: सभी अलग हो गए, देवरानी भी अलग हो गई, मैं भी। फिर तो देवर की शादी हुई, उसके बाद 1 साल में सब अलग हो गए
2: जी। फिर तो आपको सत्संग में जाने से कोई नहीं रोकता था?
3: नहीं, कोई नहीं रोकता था, मैं चुपके से ही जाती थी सत्संग में। वो जो मेरे पति है ना, उसको जाना अच्छा नहीं लगता है, फिर मैं अपना ढूंढती थी अंदर से कि भाई क्या मेरी कमी है, मेरा कोई काम छूट ना जाए, उसको बराबर से टाइम देती हूँ, उसका खाना पीना सब काम करना।
2: अच्छा, आप सारा काम करते थे, और भजन कीर्तन भी करते थे
3: साथ में? बहुत भजन कीर्तन साथ में ही रहता था।
2: अच्छा, और आप क्या करते थे?
3: कभी सिलाई करते थे? हाँ, बच्चों को पढ़ाई में।
2: आपको सिलाई का भी शौक रहा, तो सिलने में आप क्या क्या सिलते थे?
3: ब्लाउज सिलते थे, ड्रेस सिलते थे, सिलाई का काफी शौक था, मैं ब्लाउज भी बना लेती थी, और अपना पूरा जो भी है वो सब मैं सिलाई कर लेती हूँ।
2: जी जी, तो आप जैसे सास, जेठानी, देरानी सबके साथ रहते थे, वहाँ पर भी सिलाई करते थे, या अलग होने के बाद शुरू?
3: अलग होने के बाद, साथ में तो टाइम ही नहीं मिलता था, क्योंकि 10 जने का काम था,
2: इसलिए आप अलग होने के बाद सिलाई का काम शुरू किया। तो आप अपना ही सिलते थे या मोल का भी सिलते थे?
3: मैं अपना ही सिलती थी, फिर दो थे भैंस थी और खेत थी। अलग होने के बाद तो खेत को संभालना होता है, सुबह 8 बजे बाता बना करके 8 बजे निकल जाना, 1 घंटे का चलने का खेत दूर थी।
2: अच्छा,
3: तो वहाँ पहुँच के आध्यात्मिक में रुचि थी ना, तो वहाँ भी मैं पढ़ लेती थी, कुछ भजन भजन कर लेती थी।
2: वहाँ भजन किसके साथ करते थे?
3: ऐसे अपने ऐसे मन से। तो जब मजदूर आते हैं ना, उससे पहले मैं पहुँच जाती थी।
2: अच्छा,
3: हाँ।
2: तो आपके हस्बैंड भी जाते थे?
3: वो दोपहर को रोटी लेकर आते थे, उसको क्या भाता बोलते हैं। हाँ, तो वो भात लेकर के आते, मैं अपने भाता लेकर के जाती थी सुबह, और बच्चों को मेरी माँ रखती थी।
2: अच्छा,
3: अलग होने के बाद।
2: जी जी,
3: हाँ। और शाम को आती थी चल करके, साइकिल भी नहीं कुछ नहीं था, चल के आना चल के जाना, तो एक घंटा तो हो जाता है आने जाने में, 2 घंटा।
2: तो खेत में क्या करते थे आप, कुछ बोते थे?
3: बोते तो वो
2: बुआई आप ही करते या मजदूर करते, आप देख रेख करते?
3: बुआई तो उसी से होती है, ट्रैक्टर से होती है।
2: जी,
3: पहले तो बैल था ना, बैल से होती बुआई। तो फिर उसमें सफाई होती है ना, वो हम करते थे।
2: अच्छा,
3: उसके बाद बड़े होकर के कटाई होती है ना, जैसे मूंगफली को पाड़ते हैं, भेगी करते हैं जैसे,
2: जी खटी करते हैं, और हाँ, फिर उसकी मिट्टी हटाते हैं।
3: हाँ,
2: मतलब खेत के काम में आप व्यस्त
3: सारे काम थे? सारे काम करते थे।
2: जी जी,
3: जो मजदूर वाला होता है ना, वो सारा काम करते थे।
2: जी जी, और पढ़ाई में आपको शौक था, और उसी गांव में आपकी शादी हुई, तो आपके टीचर लोग नहीं कहते कि क्या तू इन कामों में लग गई, पढ़ाई कर लेती तो अच्छा रहता?
3: टीचर बहुत अच्छी थी, पढ़ने जाते थे तो भी वो ऐसे वार्ता बोलते, ऐसे ही पढ़ाई की भार नहीं दिया, पढ़तर में तो बहुत अच्छा।
2: जी जी, आप इस तरह खेत में जाते खेत में आते, आपका टाइम पूरा हो जाता, फिर सिलाई कब करते है?
3: सिलाई तो मैं जिस दिन नहीं जाना होता है ना, तब करती हूँ, और कभी कभी तो खाने पीने के बाद टाइम निकाल करके जो बनाना है ना, वो मन से बना लेती हूँ, करना है कि यही करना है, यही चाहिए घर में और अपने पहनने में, तो रात को भी मैं सिल लेती थी।
2: अच्छा, जब जरूरत पड़ी कि हाँ मेरे को इस तरह के कपड़े चाहिए, तो आप खुद का सिल लेते थे?
3: खुद का सिल ले।
2: चलिए, बहुत अच्छी बात है मधु जी, आपके अनुभव और भी सुनेंगे, लेकिन फिर से समय हो चला एक गीत सुनने का, तो एक गीत सुन करके पुनः लौट रहे हैं, कहीं जाइएगा नहीं, मधु जी के अनुभव और भी बाकी है, तो बने रहिएगा कार्यक्रम वंदे मातरम में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

मैं हूं अवधेश पंडित, जीएम फाइनेंस बेसिल, और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो।

0: नारी की हंसी में ईश्वर बसता है, नारी की हंसी में ईश्वर बसता है, उसकी बातों में सच्चाई रहती है। जो नारी का मान रखे उसकी हर राह उजली रहती है, उसकी हर राह उजली रहती है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदे मातरम, और वंदे मातरम में मधु जी हमारे साथ बने हुए हैं। मधु जी के काफ़ी अनुभव सुने हैं, और भी हम कहना चाहेंगे, मधु जी आप पूरे जीवन, अभी तक 52 साल की उम्र है तब तक आप पाटवागामी रहे, उससे बाहर आपका जाना नहीं हुआ
1: कभी नहीं।
0: तो जैसे आपकी दो बहनें बड़ी है, कभी उनके यहाँ जाना हुआ होगा?
1: एक तो गांव में ही है, एक बाजू में मजेठी है, वहाँ है।
0: अच्छा,

0: अभी तो बेटी है, बेटा है छोटा।
1: अच्छा, तो आप नहीं पढ़ पाए तो आपने अपने बच्चों को पढ़ाया?
0: बहुत खूब पढ़ाया, यहाँ तक कि उसको तो नौकरी भी दिलाई, यहाँ तक
1: बेटी को? अच्छा,
0: बेटे को भी। अभी बेटा भी है, वो लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर वहाँ पाजोद में है।
1: दोनों बच्चे जॉब करते हैं आपके?
0: हाँ, बेटी नहीं करती, बेटी को तो अच्छा ससुराल मिला है तो उसको नहीं करने देते, पर अब वो विदेश जाने वाली है।
1: जी, शादी हो गई
0: हाँ
1: और बेटा जॉब करता है, अभी आपको कोई दिक्कत नहीं,
0: जी, नहीं
1: अभी कोई सत्संग से रोकता नहीं?
0: जी, नहीं।
1: आपके हस्बैंड सहयोग करते हैं अब?
0: हाँ, वो सहयोग करते हैं थोड़ा। मैं बोलती हूँ कि मैं जा रही हूँ तो सत्संग में, तो मुस्कुरा देते हैं, कुछ बोलते नहीं है।
1: जी,
0: मैं
1: हाँ,
0: उसको भी बोलती हूँ आप भी हमारे साथ चलो।
1: अभी भी आपके सास ससुर सभी है?
0: सास है अभी?
1: जी, अब अच्छे रहते हैं आपके साथ?
0: हाँ, बढ़िया रहते हैं सबके साथ, प्यार से मिलजुल कर रहते हैं।
1: जी,
0: हाँ,
1: एक समय था जब कोई आपके साथ अच्छे नहीं रहते थे तो आपका दिल
0: नहीं,
1: दुखता था।
0: एक समय तो यही था कि जब मैं अलग हुई ना, तब तो मेरे से सब विरोधी थे। फिर मेरी ये सत्संग की वजह से मैं सबसे साथ मिलजुल रही हूँ। मेरा स्वभाव ऐसा है कि मैं उसको स्वीकार लेती हूँ, जैसे भी है मैं मिल जाती हूँ उसके, हर प्रसंग में उसके आगे होती हूँ।
1: जी, बिल्कुल, तो आपने सबके साथ तालमेल बनाए रखा।
0: अभी भी बना ही रखा है।
1: जी, और बहू के साथ आपका कैसा व्यवहार है? जी
0: बहू तो बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है। उसका नाम भी ऐसा ही है जैसा उसका काम है, उसका नाम है शीतल। तो बहुत प्यारी है, बहुत मासूम है, बहुत अच्छी है।
1: जी जी तो आपने बहू और बेटी को समान समझा।
0: हाँ, बेटी से बढ़कर भी बहू को मैंने अपने दिल में रखा है।
1: जी
0: कहते हैं ना, बेटी तो आती है तो जाती है,
1: जी
0: बेटी से हमारा क्या। हाँ, आती है, वो फोन भी करती है, सब हालचाल पूछती है, पर बेटी से बढ़कर है बहू,
1: जी बहुत
0: और बहुत
1: बढ़िया
0: बहुत अच्छी है,
1: जी
0: बहुत प्यारी है। और उस जैसा इसका नाम है ना, वैसा उसका गुण है।
1: जी और सिलाई काम आज भी आप करते हैं या
0: हाँ,
1: छोड़ दिया?
0: नहीं, करती हूँ अभी भी। अभी तो बहुत अच्छा सिलाई काम हाथ में बैठ गया है।
1: तो आप अपना ही करते हैं या अभी भी मोल का करते हैं?
0: उनका बेटे ना बोलते हैं कि अभी कोई जरूरत नहीं मम्मी, वो गवर्नमेंट जॉब करता है, खेती है,
1: जी,
0: अभी बहुत अच्छा है।
1: तो पहले आप मोल का भी करते थे? जी
0: पहले पोल का नहीं, घर का पूरा करती थी, खेत करती थी, और पशुपालन,
1: अच्छा
0: पशुपालन मेरे ऊपर था।
1: अच्छा कितनी गाय भेजते हैं?
0: 3 गाय भैंसे थी, और उसके बछड़े बच्चे होते हैं वो थे।
1: तो आप अकेले
0: और
1: संभालते थे?
0: हाँ, हस्बैंड का तभी थोड़ा कम था साथ सहयोग,
1: जी, तो
0: कहती
1: वो
0: है
1: क्यों सहयोग नहीं करते थे फिर? आपने इतना क्यों पाला, खेती को
0: पैसे
1: संभाला?
0: के लिए, पैसा तो चाहिए ना घर चलाने के लिए। तो खेत में से जो उत्पादन होता है वो तो इतना नहीं होता था तब।
1: लेकिन आपके हस्बैंड तो होमगार्ड थे ना, तो सैलरी तो आती होगी ना?
0: हाँ, वो उसके खाते में जमा होती है, वो घर पर नहीं देते थे ना,
1: अच्छा, घर में पैसे नहीं देते थे
0: नहीं
1: तो
0: देते थे इसलिए।
1: घर कैसे चलेगा?
0: हाँ, बस दूध घर का है, सब्जी खेत की आती है, गेहूं भी खेत के आते हैं, तो और क्या चाहिए। जैसे कि बाहर से कुछ लेना है ना, तो वो गाय भैंस का जो दूध बेचने के बाद जो पैसा आता है ना, उसमें से मेरा घर चल जाता है।
1: इसलिए आपने गाय भैंस रखी कि
0: हाँ
1: आपके हस्बैंड पैसे नहीं देते थे?
0: हाँ तभी भी नहीं देते, अभी भी नहीं देते,
1: अभी भी नहीं देते?
0: नहीं देते।
1: तो फिर पैसों का क्या करेंगे वो?
0: वो तो क्या करेगी, ले जाएंगे साथ में, कोई नहीं ले जाता है ना,
1: अच्छा,
0: यहाँ ही पड़ा रहेगा।
1: तो आप जैसे आबू आए अभी, आप रेडियो मधुबन में हमारे साथ है, तो किराया भी लगता है, पैसा भी चाहिए बाहर जाने पर, तो कौन देता है फिर आपको? अच्छा,
0: बेटा देता है ना,
1: बेटा देता है।
0: बेटे से मांगती हूँ। मेरा स्वभाव यही है कि मैं भांगती नहीं, वो सामने से बोलता है कि अभी तो आपका खलास हो गया होगा, इतना दिया था, अब खलास हो गया होगा तो लो मम्मी। मैं तो पहले तो ना ही बोलती थी, मुझे नहीं चाहिए, फिर यहाँ ये तो
1: बाहर जाते हैं तो फिर पैसे दे देता है बेटा, लेकिन हस्बैंड आज भी नहीं देते,
0: नहीं।
1: और आज भी जॉब उनकी जारी है।
0: नहीं वो रिटायर्ड हो गए।
1: रिटायर्ड हो गए, पेंशन आती होगी?
0: नहीं पेंशन

0: नहीं आती, उसमें नहीं आती है, होम गार्ड भी नहीं आती है।
1: अच्छा, फिर भी थोड़ा बहुत पैसा उनके हाथ में होगा, लेकिन देते नहीं है
0: हाँ वो सारा जमीन का पैसा तो आता ही है ना,
1: जी, खेती बाड़ी का।
0: खेती बाड़ी का
1: तो फिर खेती बाड़ी में से भी आपको नहीं मिलता, जबकि आप तो काम करते हैं।
0: से नहीं मिलता।
1: अच्छा,
0: ये महिलाओं की जिंदगी ऐसी टगल वाली है।
1: हाँ, फिर भी आप खुशी खुशी उसको बर्दाश्त करके चल रहे हैं।
0: स्वीकार लिया ना, जैसे भी है।
1: जी, तो चलिए, कार्यक्रम के अंत में आप हमारी बहनें सुन रही, उनको क्या कहना चाहेंगे?
0: मेहनत करना है, मेहनत से डरना नहीं है, और हर परिस्थिति का डट के सामना करना है। जब सामना करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तभी हमें अंदर से खुशी भी आएगी और आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा।
1: जी चलिए, बहुत सुंदर मैसेज आपने दिया है मधु जी, सभी नारी शक्ति को, कि मेहनत करना है और मेहनत के दम पर आगे बढ़ना है। जैसे आप पशुपालन करके थोड़ा बहुत पैसे बचा करके कहीं जाते हो तो लेके जाते हो,
0: नहीं,
1: बाकी घर से नहीं मिलता है।
0: और सहन शक्ति एक बड़ी शक्ति है, वो सहन शक्ति से हमारा सबके साथ संबंध अच्छा रहता है।
1: जी,
0: सहन करेंगे ना तो सबके प्यारे रहेंगे।
1: बिल्कुल, बहुत ही सुंदर मैसेज दिया है मधु जी ने, बहुत बहुत आभार। आप रेडियो मधुबन के स्टूडियो में पधारे और आपने अपने जीवन के अनुभव सभी के साथ शेयर किया, इसके लिए बहुत बहुत आभार।
0: थैंक यू जी, थैंक यू उषा दीदी जी, आपका बहुत बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, और बहुत बहुत दुआएं देती हूँ आपको।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम वंदे मातरम। वंदे मातरम में मधु जी राठौड़ हमारे साथ बने हुए थे। आप जूनागढ़ बांटवा से पधारे हैं और आपने अपने जीवन के अनुभव सुनाए हैं। देखिए, आपने जाना है कि नारी शक्ति कितनी मेहनत करती है, इतनी मेहनत करने के बाद भी उनका एक रुपये पर भी अधिकार नहीं होता है, फिर भी आप खुश है, परिवार को साथ में लेके चलते हैं, और सत्संग में जाना कोई गलत बात नहीं है। अच्छी बात है कि आप ईश्वर भजन करते हैं, तो परिवार वालों ने स्वीकार नहीं किया और आपके साथ अव्यवहार किया, फिर भी आप सहनशीलता के दम पर और मिलनसार संस्कार होने के दम पर सभी को साथ में लेके चले और हमेशा खुश रहे, और आज भी खुश है। तो ऐसी नारी शक्ति को, ऐसी मातृशक्ति को रेडियो मधुबन सलाम करता है, वंदन करता है, नमन करता है। प्यारी बहनों, अगर आप भी अपने जीवन के अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और आप भी अपने जीवन के अनुभव शेयर कर सकते हैं। अब मैं उषा माहेश्वरी आप सभी से अनुमति चाहूंगी, अगले रविवार को फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। रेडियो मधुबन 107.8 FM।

हर तरफ हर जगह हर कहीं पे है, हाँ उसी कानून। इंसान जब कोई है राह से भटका, किसने दिख

वो है जो करता है मुश्किल हमारी दूर, हर तरफ हर जगह।

0: कोई दरिया तो है, हाँ कहीं पे।
1: अभी बचे हैं दोपहर के एक।

0: विद्वान कई हुए वीर कई,
1: ये भूमि है महान,
0: फिर भी प्रणाम करती संस्कृति यहाँ की,
1: ये है कितनी निर्माण,
0: भारत का गौरव गान
1: गाता है इतिहास स्वर्णिम,
0: अनेकता में एकता यहाँ
1: रहता मिला जुला हर रंग।
0: रेडियो मधुबन की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

जब भी भारत का यह राष्ट्रगान कहीं सुनाई देता है, जब भी भारत का यह राष्ट्रगान कहीं पे कोई गाता है या इसकी धुन बजती है, तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम कहकर हमारा सिर ऊंचा हो जाता है। और जब भी आसमान में तिरंगा लहराता है, गर्व से हम कहते हैं, हम भारत देश के रहने वाले हैं, हम भारत देश के रहवासी हैं। जरूर सबकी तकदीर जग जाती है जब वह भारतवासी कहलाता है। खुद को जब आप भारतवासी कहलाते हैं, तो देखिएगा कितना गर्व से हम अपने आप को प्रफुल्लित पाते हैं। तेरी गोदी में ऐ माँ, तेरी गोदी में ऐ माँ, शांति व चैन का बसेरा है। तेरी गोदी में ऐ माँ, शांति व चैन का बसेरा है। तेरी ही गोदी में प्रत्येक क्षण एक नया सवेरा है। आइए, आजादी का यह जो जश्न मनाने का दिन है, इस दिन को बहुत ही खूबसूरत तरीके से हम बिताएं। और बहुत सारी बातें होंगी कार्यक्रम गुलदस्ता में। रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर शुरू हो चुका है आपका मनपसंद कार्यक्रम गुलदस्ता। मैं हूँ इस कार्यक्रम की होस्ट स्वर्णलता। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

अब कोई गुलशन न उजड़े, अब वतन आजाद है। खेतियां सोना उगाएं, वादियां मोती लौटाएं। आजादी का दिन बहुत ही खास है, आजादी का दिन ऐतिहासिक है, आजादी का दिन सम्माननीय है। यह महज एक पर्व नहीं, जश्न नहीं, बल्कि भारत की किस्मत के सितारे का चमकने का दिन था। भारत 15 अगस्त 1947 की ठीक आधी रात को आजाद हुआ था। कहते हैं 14 और 15 अगस्त की दरमियानी रात को देश अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हुआ था। आज से 80 साल पहले, जरा सोचिए, 80 साल पहले आज ही के दिन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली में लाल किले के लाहौरी गेट के ऊपर भारतीय तिरंगा फहराया था। गर्व से हम सब कहते हैं जय हिंद जय भारत। इसलिए आज का दिन महज गुणगान गाने का दिन नहीं, बल्कि त्याग और बलिदान के मर्म को समझने का दिन है। पूरा दिन हम सब यही कहते आए और आगे भी कहते रहेंगे, जय हिंद जय

स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यही एक नारा काफी था, हम एक हैं, हम एक हैं, देश प्रेमियों को, देशवासियों को, नौजवानों को जगाने के लिए। जब भारत माँ गुलामी की बेड़ियों में जकड़ी थी, उसके संतान ब्रिटिश हुकूमत की क्रूरता के अधीन थी, तब एक ही नारा था, वंदे मातरम, हम सब एक हैं, हम एक हैं। चैन व अमन वापस आया 14 अगस्त 1947 की रात को। देशवासियों की आंखों में सपने थे, आजाद आकाश में स्वच्छंद उड़ने का जज्बा था। आज जीत की रात, पहरुए सावधान रहना, खुले देश के द्वार, अचल दीपक समान रहना। प्रथम चरण है नए स्वर्ग का, है मंजिल का छोर, इस जन मंथन से उठ आई पहली रत्न हिलोर। अभी शेष है पूरी होनी, अभी शेष है पूरी होनी, जीवन मुक्ता डोर, अभी शेष है मिटने को दुखों की अंतिम कोर। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर कार्यक्रम गुलदस्ता। हम सब आज आजादी का वह ऐतिहासिक दिन मना रहे हैं जो हम सब के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है।

देव भूमि, जय पुण्य भूमि, जय मातृभूमि हिंदुस्तान। हम सब एक विजय गान सुन रहे थे जिसके बोल थे जय पुण्य भूमि, जय देव भूमि, जय मातृभूमि हिंदुस्तान। हिंदुस्तान जब हम यह शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में दो पंक्तियां आ जाती हैं, और वो दो सुनहरी पंक्तियां हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलिस्ता हमारा। वैसे साथियों, जब भी हम विजय गान सुनते हैं वह हमें जागृत रखता है। जो प्रहरी हैं, जो पहरेदार हैं, जो देश की सीमाओं को सुरक्षित रखते हैं, उनको ये विजय गान जो है वो जागृत रखते हैं। दोस्तों, आज से ठीक 80 साल पहले जब भारत आजाद हुआ था, उस समय भी ऐसी कविताएं, ऐसे गीत गाए जाते थे ताकि लोगों का ध्यान भटके नहीं, क्योंकि तब भी बहुत सारी ऐसी बातें थी जो सबको शंका में डाल देती थी। लोगों को लगता था क्या सही मायने में हमें आजादी मिली है। तो आज हम ऐसे गीतों को सुन रहे हैं जो आज भी इनकी जरूरत है और हमें यह हमेशा के लिए जागृत रखेगा।

खो जाऊं, नतमस्तक हो जाऊं, ए मेरे वतन। 15 अगस्त का यही स्वर्णिम दिन देशवासियों के जीवन में एक नया अध्याय लेकर आया। कई श्रोता ऐसे भी होंगे जो आजादी का सूर्योदय देखे होंगे। ब्रिटिश राज्य में कैसे भारत माँ कराह रही थी, कैसे नौजवान प्राणों की आहुति दिया करते थे, वंदे मातरम वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ऐसे नारों को उन्होंने प्रत्यक्ष सुने भी होंगे, है ना। नौजवानों को देश के प्रति जगाने के लिए किसी ने कोई कसर नहीं रखी। देश प्रेम का यह लौ जलता रहे, देश प्रेम का यह लौ जलता रहे, कुर्बान होकर भी यह लौ जलता रहे। देश प्रेम में तन मन धन को समर्पित करने वालों के लिए हमारे पास कोई तोहफा नहीं होता, उनके लिए बस एक ही तोहफा है कि हम उनको दिल से याद करें।

0: ना देखो अधूरा कोई सुंदर सपना,
1: कोई सुंदर सपना।
0: घर में आग लगाए जो दीपक उसको बुझा दो, घर में आग लगाए जो दीपक उसको बुझा दो। फूलों के इस गुलशन से कांटों को हटा दो,
1: फूलों के इस गुलशन से कांटों को हटा दो।

0: कारण मौत भी आए फिर भी रहेंगे जिंदा,
1: फिर भी रहेंगे जिंदा।
0: जय जय हिंद किनारों से धरती को हिला दो, जय जय हिंद किनारों से धरती

0: श्री जवाहरलाल की हिम्मत, बापू जी की भक्ति,
1: बापू जी की भक्ति।
0: देश का झंडा जग में ऊंचा करके दिखा दो,
1: देश का झंडा जग में ऊंचा करके दिखा दो, फूलों के इस गुलशन से काटो।

फूलों के इस गुलशन से कांटों को हटा दो। इन कांटों को हटाने के लिए नौजवानों ने भारत के तकदीर का सूर्योदय कराया। 15 अगस्त केवल एक तिथि नहीं बल्कि भारतीयों की आन बान और शान का प्रतीक है। इस ऐतिहासिक दिन पर हमारे देश ने स्वतंत्रता का पहला सवेरा देखा था। 15 अगस्त के दिन ही सदियों की पराधीनता, शोषण और बेड़ियों को काटकर भारत एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र के रूप में विश्व मानचित्र पर उभरा। यह दिन महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, झांसी की रानी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और अशफाक उल्ला खां जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों और अनगिनत गुमनाम नायकों के अमर बलिदानों का स्मरण कराता है। हम सब इन्हें याद कर रहे हैं इनके बलिदानों की खातिर। आज का दिन भारत का 80वां स्वतंत्रता दिवस मुख्य रूप से विकसित भारत 2047 के लिए युवा शक्ति और राष्ट्रीय अभियान स्वतंत्रता का सम्मान भविष्य को प्रोत्साहन की थीम को ध्यान में रखकर सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसके साथ ही राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के ऐतिहासिक उत्सव को भी समर्पित है।

not only celebrating India's 80th Independence Day, but also celebrating 150 glorious years of Vande Mataram. ये हमारे लिए एक achievement है, एक प्राप्ति है. वैसे आज का दिन सिर्फ सुनने सुनाने का दिन नहीं, बल्कि अपने बुद्धि के नेत्र से, अपने अनुभव के नेत्र से इस दिन को समझने का, अनुभव करने का भी दिन है. हम अपने कर्तव्यों द्वारा एक सुनहरा भविष्य लिखें भारत के प्रति. हम अपने ही अचीवमेंट्स के द्वारा भारत के स्वर्णिम भविष्य का निर्माण कर रहे हैं. तो आज हम सब मिलकर एक ही स्वर में यही गा रहे हैं, वंदे मातरम सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जय भारत जय इंडिया, ऐसे नारे हम सब लगा रहे हैं, क्योंकि ये हमारे दिल के अंतःकरण से आ रहे हैं. हम सब भले ही उस समय न रहे हो या रहे भी हो, हमें नहीं पता, लेकिन हमारे दिलो दिमाग में भारत वर्ष के प्रति, इस मिट्टी के प्रति जो प्रेम है, वह कूट कूट कर भरा है. कोई कविता के जरिए, कोई लेखनी के जरिए, कोई अपनी नई नई कृतियों के जरिए भारत के प्रति अपना सम्मान, अपना प्यार व्यक्त कर रहा है, और सबको यह करने का पूरा स्वतंत्रता मिला हुआ है.

0: साथियों, यह बिल्कुल सच है कि हम सब तकदीरवान हैं, क्योंकि हम सब भारतवासी हैं। हम तकदीर जगा कर आए हैं। स्वतंत्रता दिवस केवल जश्न मनाने का दिन नहीं, बल्कि राष्ट्र के प्रति अपने उत्तरदायित्वों को याद करने का अवसर है। एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में हमारा पहला कर्तव्य राष्ट्रध्वज, संविधान और राष्ट्रगान का सम्मान करना है। हमें अपने दैनिक जीवन में कानून का पालन, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेना चाहिए। जब प्रत्येक नागरिक ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करेगा, तभी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों का सशक्त और आत्मनिर्भर भारत निर्मित होगा। जाते जाते मैं स्वर्णलता आप सभी को यही कहना चाहूंगी, मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे अभी कुछ और भी दूँ। यह जज्बा हमेशा कायम रखिए। फिर मिलूंगी अगले सप्ताह, तब तक अपना ख्याल रखिए और आज का यह स्वर्णिम दिन हमेशा अपने दिलो दिमाग पर बिठाए रखिए। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: 15 अगस्त पे तू कोई गाना नहीं गाएगा?
2: कैसे गाऊं दीदी, ये गाने तो मुझे समझ ही नहीं आते। यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, अब भला धरती रंग कैसे बदलेगी। और वो दूसरा गाना, मेरे देश की धरती सोना उगले, अब दीदी मुझे धरती पर कहीं नहीं मिलता सोना।
1: छोटे, जब कोई चीज इतनी खूबसूरत होती है, उसका वर्णन करने के लिए शब्द कम पड़ जाए, या इतनी खास की आंखों में पानी, चेहरे पर मुस्कान और मन में हिम्मत एक साथ आ जाए, तो उस भावना को कहते हैं देश प्रेम।
2: देश प्रेम?
1: हाँ, इसलिए तो गीतकार ऐसे शब्द लिखते हैं इस स्वतंत्रता दिवस पर। चलो साथ कहते हैं,
3: मेरा देश मेरी शान।
1: रेडियो मधुबन की तरफ से आप सभी दोस्तों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
3: हैप्पी

0: मेरा नाम है नींबू।
1: नींबू, नानी ने मना किया था ना, फिर क्यों आए तुम?
0: अरे बहना चिंकी, लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, इनके दिल की आवाज सुनकर मैं तो जल्दी जल्दी आ गया।
1: घर पे मम्मी किचन से इतनी आवाजें देती है, तब तो सुनाई नहीं देती तुमको, अभी दिल की आवाज सुनाई दे रही है। साफ साफ बोलो, गाना गाने आए हो ना तुम?
0: गाना? वो क्या होता है? गाना नहीं, मुझे तो बस खाना खाना है, और फिर मिठाई, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, जलेबी और हलवा।
1: दोस्तों, ये मेरा भाई है, इसका ना थोड़ा स्क्रू ढीला है, इसे माफ कीजिएगा।
0: अरे सॉरी सॉरी, मैं ना थोड़ा भावनाओं में बह गया था।
1: खूब समझती हूँ मैं, लोगों की भावनाएं दिल से निकलती है और तुम्हारी पेट से।
0: देखो चिंकी, खा पी के ही तो अच्छा गाना गाया जाता है ना, किसी भी महान सिंगर से पूछ लो तुम।
1: नींबू, खाना ठूस लोगे तो आवाज कहाँ से निकलेगी?
0: ओहो, मेरी बहन का कोई साइंस टीचर है क्या यहाँ पे? कोई है तो प्लीज पढ़ा दीजिए ना, इसे इतना भी नहीं पता कि खाने वाली नली ना अलग होती है और सांस वाली अलग। तो एक से खाऊंगा, एक से खाऊंगा।
1: अरे सुनिए सुनिए सुनिए, किसी का बच्चा खो गया है तो इसको लेके जाइए, ये मेरा भाई नहीं है, मैं इसे नहीं जानती।
0: एक नींबू की कीमत तुम क्या जानो चिंकी, दूध को फाड़ के पनीर बना देता है। एक नींबू बेस्वाद खाने का स्वाद बढ़ा देता है। एक नींबू।
1: अच्छा नींबू, तुम इतने इंटेलिजेंट हो तो एक बात बताओ, एक देशभक्त कैसा होता है?
0: अरे ये भी कोई पूछने की बात है, बिल्कुल मेरे जैसा।
1: मतलब?
0: मतलब सबसे ताकतवर, जिसके मसल्स इतने स्ट्रांग हो।
1: एक तो तुम्हारी मसल्स देख के मच्छर भी ना डरे, और क्या बच्चे बूढ़े या जो कसरत नहीं करते वो देशभक्त नहीं?
0: तुम ही बता दो ना, कौन होता है देशभक्त?
1: देशभक्त वो होता है नींबू, जो देश हित को अपना हित माने, जो सिर्फ अपने आगे बढ़ने के नहीं बल्कि देश के आगे बढ़ने के लिए प्रयास करे, और जो आजादी की कीमत जान उसे फॉर ग्रांटेड न ले, और जिस सक्षम देश का सपना देख शहीदों ने अपनी जान कुर्बान कर दी, उस सपने को साकार करने के लिए आगे बढ़े।
0: चिंकी, आज मैं मान गया, तुम तो मुझसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट हो। मैं भी जरूर अपने देश के लिए कुछ करूँगा, और सिर्फ बड़ा होकर नहीं बल्कि अभी से।
1: अभी से? कैसे? अभी तो तुम बुद्धू से बच्चे हो।
0: लेकिन बच्चा हूँ इसलिए तो अच्छी आदतें सीखूंगा, लोगों की मदद करूंगा, और मैं शहीदों के बारे में और जानूंगा। पर इससे पहले?
1: उससे पहले क्या?
0: मैं गाना गाऊंगा चिंकी, गाने दो ना दोस्तों, मैं गा लूं ना एक गाना।
1: अरे इतने अच्छे से बैठे हैं, इन लोगों के कानों को क्यों कष्ट देना चाहते हो?
0: अच्छा अच्छा, एक काम करते हैं, जाते जाते हम सब मिलकर गाते हैं। उठे सब।

0: मधुबन 90.4 एफएम का
1: इस लहराते तिरंगे को सलाम
2: सन 1921 वंदे मातरम इस आवाज से पूरा हिंदुस्तान गूंज रहा था जिसे सुन अंग्रेजी हुकूमत का दिल दहल उठा हर कोई ये समझ गया था कि एकता ही वो हथियार है जिससे हम अंग्रेजों को इस देश से खदेड़ सकते हैं इसी एकता को और मजबूत करने के लिए गांधी जी ने मुझे नया रूप दिया इस बार हरे लाल और सफेद रंग का और मुझे चरखे से सजाया गया कांग्रेस कम्युनिटी को मेरा यह रूप पसंद नहीं आया लेकिन मुझे क्रांतिकारियों और देश के हर व्यक्ति ने सम्मान दिया और मेरी इज्जत की खातिर अपनी जान तक न्यौछावर कर दी 1931 में पिंगली वेंकैया जी ने मेरे रूप में सुधार किया और लाल की जगह केसरिया रंग में मुझे रंग दिया गया केसरिया सफेद हरे रंग और चरखे से सजा मेरा यह रूप हर किसी ने पसंद किया और मैं औपचारिक रूप से भारतीय ध्वज कहलाया और अनेक देशभक्तों को मैंने आजादी के लिए लड़ने की प्रेरणा दी आगे की कहानी के लिए सुनते रहिए रेडियो मधुबन महात्मा गांधी वीर सावरकर भगत सिंह सा बनना तो बहुत दूर की बात है सड़कों को साफ रखकर हर देशवासी तिरंगे और भारत देश का सम्मान करके उनके खून से रंगी हुई इस आजादी का सम्मान तो कर ही सकते हैं ना

0: नमस्ते दोस्तों, आज बताए मुझे कौन मिला?
1: मेरा एक बहुत पुराना दोस्त अर्जुन। जब हम स्कूल में एक साथ पढ़ते थे तो अर्जुन बहुत डरा डरा और चुप चुप सा रहता था, लेकिन हमारी टीचर बहन जी की कोशिशों की वजह से ही अर्जुन में धीरे धीरे आत्मविश्वास आता गया और आज देखो पुलिस में बहुत बड़ा अफसर बन गया अर्जुन।
2: अरे अपनी बातों में मैं आपको मीना से मिलवाना तो भूल ही गया।
3: वो रही मीना अपने स्कूल के बाहर।
4: अरे चमेली, तुम स्कूल के बाहर ही क्यों रुक गई? चलो अंदर चलो।
5: नहीं मीना, मैं स्कूल में नहीं जाऊंगी।
4: क्यों चमेली, स्कूल में तो इतने मजे आते हैं। फिर तुम
5: दीपू क्लास में मेरा मजाक उड़ाता है, मुझे बहुत बुरा लगता है मीना।
4: चमेली आओ, अगर अब दीपू तुम्हें तंग करेगा तो हम उसे प्यार से समझाएंगे, ठीक है? आओ अब चलो।
5: ठीक है मीना, चलो।
1: मीना प्यार से समझा बुझा के चमेली को स्कूल में ले आई।
4: चमेली तुम पिछले कई दिनों से स्कूल नहीं आई, तुम्हारी तबीयत तो ठीक थी ना?
5: मीना मैं बोलने में अटकती हूँ ना, इसलिए मुझे स्कूल आने में शर्म आती है।
4: ऐसा नहीं सोचते चमेली, इसमें शर्म कैसी?
5: पता है मीना, मैंने तो अपने बाबा से कह दिया था कि मैं अब कभी स्कूल नहीं जाऊंगी।
4: फिर तुम्हारे बाबा ने क्या कहा?
5: बाबा ने भी मुझे तुम्हारी तरह समझाया और आज बाबा खुद स्कूल तक छोड़ने आए मुझे।
4: ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो अब हम क्लास में जाके अपने सभी दोस्तों से मिलेंगे और फिर मजे से पढ़ेंगे
5: और आधी छुट्टी में झूले भी झूलेंगे।
1: मीना और चमेली अपनी क्लास की तरफ जा ही रही थीं कि सामने से दीपू आ गया।
6: बड़े दिनों के बाद आई चमेली।
5: मीना मैं वापस जा रही हूँ।
4: रुको चमेली, तुम कहीं नहीं जाओगी।
7: कहीं नहीं जाओगी, ना ही घबराओगी।
6: अरे मीना जाने दो ना इसे।
4: दीपू चमेली हम सब की दोस्त है और याद नहीं बहन जी ने कहा था कि हमें कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए।
6: ठीक है अभी तो मैं जा रहा हूँ मीना। चमेली बाद में मिलूंगा तुमसे।
1: मीना के प्यार से समझाने पर भी दीपू नहीं माना और फिर क्लास में
8: बहन जी नमस्ते।
9: नमस्ते बच्चों। अरे वाह, आज तो चमेली भी आई है, शाबाश। अच्छा चमेली, वो चीज लाई हो ना?
5: जी बहन जी।
9: शाबाश बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कबीर के दोहे। तुम कोई दोहा सुनाओ मीना।
4: जी बहन जी। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिले आ कोई। जो मन खोजा आपना, तो मुझसे बुरा न कोई।
9: बहुत अच्छे मीना, अब तुम्हारी बारी कृष्णा।
10: जी बहन जी,

0: भाई वाह कृष्णा, कितना सुंदर गाया तुमने। अब दीपू की बारी।
1: जी बहन जी, रात गवाई सोए के, दिवस गवाया।
0: दीपू तुम भी कृष्णा की तरह गा के सुनाओ ना।
1: गा के?
0: हाँ हाँ दीपू, तुमने तो स्कूल के वार्षिक कार्यक्रम में भी बहुत अच्छा गाना गाया था। चलो जल्दी गाओ, शाबाश।
1: बहन जी, वार्षिक कार्यक्रम में तो संगीत भी था इसलिए।
0: ओहो अब समझी, इसका मतलब तुम सिर्फ संगीत के साथ ही गा सकते हो।
1: जी बहन जी।
0: कोई बात नहीं, संगीत भी है। यहाँ चमेली।
2: चमेली? अरे बहन जी, चमेली को क्यों बुला रही है?
3: चमेली क्या करने वाली है?
0: बच्चों अब हमारी प्यारी चमेली दीपू को गाना गाने में मदद करेगी अपने संगीत से। चमेली ले आओ वो चीज।
4: जी बहन जी।
5: बांसुरी? चमेली बांसुरी बजाएगी?
3: चमेली को बांसुरी बजानी आती है?
0: शाबाश चमेली, छेड़ो कोई मीठी सी धुन।
6: मीठी सी धुन, दिखा दो अपना।

0: बहुत अच्छे दीपू, शाबाश चमेली, बहुत अच्छी बांसुरी बजाई तुमने। अब तुम भी एक दोहा पढ़ के सुनाओ।
1: बहन जी, मैं?
2: तुम दोहा पढ़ो चमेली, मैं तुम्हारी मदद करूँगा।
1: ठीक है दीपू। साई इतना दीजिए, जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए।
0: बच्चों, चमेली और दीपू के लिए एक बार फिर जोरदार तालियां। चमेली, अगर तुम रोज ऐसे ही बांसुरी बजाओगी और अपने दोस्तों के साथ ऐसे ही जोर से बोलने की कोशिश करोगी तो देखना, एक दिन तुम बिल्कुल ठीक से बोल पाओगी। बच्चों, हम सबको मिलके चमेली का हौसला बढ़ाना चाहिए।
2: बहन जी, मैं चमेली को रोज जोर जोर से और बिना अटके बोलने का अभ्यास कराऊंगा। मैं बढ़ाऊंगा उसका हौसला।
0: अरे दीपू, तुम रो क्यों रहे हो?
2: बहन जी, मैं चमेली को बहुत तंग करता था, उसके अटक के बोलने पर उसका मजाक उड़ाता था, लेकिन आज चमेली ने ही मेरी मदद की। मुझे माफ कर दो चमेली, तुम सच में हम सब की बहुत अच्छी दोस्त हो।
0: दीपू बेटा, मुझे खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। बच्चों, हम सब में बहुत सी कमियां और खूबियां होती हैं, लेकिन सच्चा इंसान वही है जो दूसरों की कमियों का मजाक नहीं उड़ाए।
3: भाई वाह, मजा आ गया। मीना की बहन जी ने बिल्कुल ठीक कहा, हमें कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अगर कोई हमारी किसी बात का मजाक उड़ाए तो हमें भी तो बुरा लगेगा ना। चलो अब देखते हैं कि आज मीना और मिठू क्या नया कर रहे हैं।
4: सबको समझो एक बराबर, ये है सही तरीका।
5: किसी में कोई फर्क नहीं है, हमने स्कूल में सीखा।
3: भाई वाह, क्या कविता बनाई है मीना और मिठू ने। चलो अब सुनते हैं एक मजेदार गाना।

0: गाना सुन के मजा आया ना? मुझे भी बहुत मजा आया। और अब वक्त है खेलने का। चलो देखें मीना की बहन जी आज अपनी क्लास में बच्चों को कौन सा खेल खिला रही है।
1: प्यारे बच्चों, आज हम खेलेंगे नाम अनेक अक्षर एक।

0: आज मैं आपको एक अक्षर दूंगी और उस अक्षर से आप मुझे किसी व्यक्ति, जानवर, वस्तु और जगह का नाम बताएंगे। ठीक है?
1: जी बहनी।
0: तो आज का अक्षर है ह। सबसे पहले बताओ, ह से किसी मशहूर व्यक्ति का नाम?
2: हरभजन सिंह।
0: बिल्कुल सही जवाब रानू। और हरभजन सिंह कौन है?
3: भारत के एक मशहूर क्रिकेट खिलाड़ी।
0: हाँ कृष्णा। चलो बच्चों, अब ह से किसी जानवर का नाम बताओ। हिरन। शाबाश दीपू। और बच्चों पता है, तेज भागने के साथ साथ हिरन तैर भी सकते हैं। चलो अब ह से शुरू होने वाली कोई चीज।
2: हथौड़ा।
0: शाबाश चमेली। और हथौड़े से हम क्या तोड़ते हैं?
2: पत्थर, लकड़ियाँ,
4: कोयला।
0: हाँ, अब बताओ ह से किसी जगह का नाम।
5: हरिद्वार।
0: शाबाश मोनू। और हरिद्वार में कौन सी नदी बहती है?
1: गंगा।
0: शाबाश। तो मजा आया बच्चों?
1: बहुत मजा आया बहनी।
6: तो आपको भी मजा आया ना? फिर ठीक है, जल्दी मिलते हैं एक नई कहानी, नए गीत और एक नए खेल के साथ। तब तक अपनी प्यारी मीना को चिट्ठी लिखना मत भूलना, चाहे वो आपके सुझाव हो, आपके विचार हो या आपके अनुभव।
7: और मेरा पता है मीना की दुनिया, यूनिसेफ, पोस्ट बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 110003।

0: सभी लोग ये बताइए, भारत सरकार का गृह मंत्रालय का कौन सा हेल्पलाइन नंबर है जिसके माध्यम से अगर कोई भी वित्तीय धोखाधड़ी हो जाती है तो उसकी आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं।
1: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है ध्वनि पुस्तक संक्षिप्त बुद्ध चरित्र, कक्षा 8 के लिए हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक। अध्याय 4, धर्म चक्र प्रवर्तन, पृष्ठ संख्या 49। धर्म चक्र प्रवर्तन, काशी गमन। बुद्धत्व को प्राप्त करने के बाद शाक्य मुनि को शांति की शक्ति का अनुभव हुआ। बुद्ध बनकर यद्यपि वे अकेले ही चल पड़े थे, परंतु ऐसा लग रहा था जैसे कि उनके पीछे पीछे बड़ा जनसमूह चला आ रहा हो। मार्ग में उन्हें एक शुद्धात्मा भिक्षु ने देखा। वह उनके स्वरूप से प्रभावित होकर उनके निकट आया और विनयपूर्वक बोला, हे अर्हत, आप जितेंद्रिय और आत्मवेत्ता प्रतीत होते हैं। लगता है आपने संसार को जीत लिया है। पूर्ण चंद्र के समान आपका मुखमंडल प्रकाशित हो रहा है। आपका मन शांत है। आप प्रबुद्ध और संतुष्ट प्रतीत हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि जो कुछ जानने योग्य है उसे आप जान चुके हैं। आपके तप का तेज देदीप्यमान है। हे सौम्य, आपका नाम क्या है? आपका गुरु कौन है? भिक्षु द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर भक्त वत्सल भगवान बुद्ध ने उत्तर दिया, हे वत्स, मेरा कोई गुरु नहीं है। मैंने निर्वाण प्राप्त कर लिया है। मुझे अब धर्म का स्वामी समझिए। मैंने वह सब कुछ जान लिया है जो जानने योग्य है और जिसे पहले किसी ने नहीं जाना है। मैंने शत्रु के समान सभी क्लेशों को जीत लिया है, इसलिए लोग मुझे बुद्ध कहते हैं। मैं अब अमर धर्म की दुंदुभी बजाने काशी जा रहा हूं, किसी सुख या यश की प्राप्ति के लिए नहीं, अपितु दुखों से पीड़ित जनों के कल्याण के लिए वहां जा रहा हूं, क्योंकि मैंने पहले प्रतिज्ञा की थी कि मैं मुक्त होकर दुखी जनों के दुख दूर करूंगा, उन्हें मुक्त करूंगा। जैसे दीपक के जलने मात्र से अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे ही बुद्धत्व की प्राप्ति के पश्चात सभी इच्छाएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं। जैसे लकड़ी में अग्नि, आकाश में वायु और पृथ्वी में जल होना निश्चित है, वैसे ही काशी में उपदेश और गया में ज्ञान प्राप्ति निश्चित है। यह सुनकर भिक्षु ने भगवान बुद्ध को प्रणाम किया और अपने मार्ग पर आगे चला गया। पृष्ठ संख्या 50। शाक्य मुनि धीरे धीरे काशी की ओर अग्रसर होने लगे। उन्होंने दूर से ही काशी को देखा, जहां वरुणा और गंगा ऐसे मिल रही थीं जैसे दो सखियां मिल रही हों। वे वहां से मृगदाओ मन यानी सारनाथ गए, जहां सघन वृक्षों पर मोर बैठे हुए थे। मृगदाओ वन में वे 5 भिक्षु रहते थे, जिन्होंने शाक्य मुनि को तप भ्रष्ट भिक्षु मानकर उनका संग छोड़ दिया था। 5ों भिक्षुओं ने जब शाक्य मुनि को आते हुए देखा तो वे आपस में बातें करने लगे। उन्होंने निश्चय किया कि वे इस तप भ्रष्ट का अभिवादन नहीं करेंगे। यदि यह हमसे पहले बोलेगा तभी हम इससे बात करेंगे। 5ों भिक्षु जब यह परामर्श कर रहे थे तभी भगवान बुद्ध उनके समीप आ गए। जैसे ही वे उनके निकट आए, 5ों भिक्षु अपने पूर्व निश्चय के विपरीत एकदम खड़े हो गए। उन्होंने विनयपूर्वक उनका अभिवादन किया। किसी ने उनका भिक्षा पात्र लिया, किसी ने उनका चीवर उठाया, किसी ने चरण धोने के लिए जल दिया और किसी ने बैठने के लिए आसन बिछाया। आसन पर विराजमान होकर तथागत बुद्ध ने उन्हें उपदेश देना चाहा, परंतु मोहवश उन्होंने उपदेश ग्रहण करने से मना किया और कहा, आपने तप त्याग दिया था, आप तत्व को नहीं जानते, तब तथागत ने उन्हें समझाया और कहा, जैसे विषयों में आसक्त लोग अज्ञानी हैं, वैसे ही अपने आप को क्लेश देने वाले लोग भी अज्ञानी हैं, क्योंकि क्लेश द्वारा अमरत्व प्राप्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने आगे बताया, बोध तपस्या से भिन्न तत्व है। देखो, जो तपस्या द्वारा अपने शरीर को क्षीण कर लेते हैं, वे तो व्यावहारिक ज्ञान भी नहीं पा सकते, तो उन्हें परम तत्व का बोध भला कैसे हो सकता है? जैसे लकड़ी में स्थित अग्नि को उसे चीर फाड़ कर नहीं अपितु युक्ति से ही प्राप्त किया जा सकता है, वैसे ही शरीर को कष्ट देने से नहीं अपितु योग की युक्तियों से ही बोध प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए मैंने कष्ट कर तप और आसक्तिमय भोग दोनों को त्याग कर मध्य मार्ग का आश्रय लिया है और बोधि प्राप्त की है। पृष्ठ संख्या 51। मेरे इस मध्य मार्ग का प्रकाशक सम्यक दृष्टि रूपी सूर्य है तथा सम्यक संकल्प रूपी रथ इस सुंदर मार्ग पर चलता है। सम्यक वाणी में विश्राम पाता है, सम्यक आचरण के उपवन में विहार करता है, सम्यक आजीविका ही उसका शुद्ध भोजन है, सम्यक व्यायाम या प्रयत्न उसके सेवक हैं, सम्यक स्मृति रूपी मनोहारी नगर में वह शांति पाता है तथा सम्यक समाधि रूपी शैया पर समाधान पूर्वक सोता है। तथागत ने आगे उन्हें समझाते हुए बताया, यही मध्य मार्ग है जो तीनों लोकों में अष्टांग योग के नाम से विख्यात है और जिससे जन्म, जरा, व्याधि और मृत्यु से मुक्त हुआ जा सकता है। मेरी दृष्टि में मध्य मार्ग के जो चार मूलभूत सत्य हैं, वे हैं दुख सुख का कारण, दुख का निरोध और दुख के निरोध के उपाय। मैंने दिव्य दृष्टि से ये आर्य सत्य जान लिए हैं और उनका अनुभव किया। दुख है, यह मैंने पहचाना और उसके कारणों को छोड़ा। इसी तरह दुख के निरोध का अनुभव किया और उसके उपायों के रूप में इस मार्ग की उद्भावना की है। मैंने इसी ज्ञान के आधार पर निर्वाण प्राप्त किया है। मैं अब बुद्ध हूं। महात्मा बुद्ध के इन करुणायुक्त वचनों को प्रथम बार कौंडिल्य आदि पांचों भिक्षुओं ने सुना और दिव्य ज्ञान प्राप्त किया। अपने प्रथम प्रवचन के बाद सर्वज्ञ शाक्य मुनि ने पूछा, हे नरोत्तमो, क्या तुम्हें ज्ञान हुआ? तो कौंडिल्य ने कहा, हां भंते। इसलिए सभी भिक्षुओं में कौंडिल्य को ही प्रधान धर्मवेत्ता माना जाता है। उसी समय पर्वतों पर उपस्थित यक्षों ने सिंहनाद किया और घोषणा की कि जन जन के सुख के लिए शाक्य मुनि ने धर्म चक्र प्रवर्तित कर दिया है। शील इस धर्म चक्र के आरे या कीलक हैं, क्षमा और विनय इसके धुरे हैं, बुद्धि और स्मृति इसके पहिए हैं, सत्य और अहिंसा रूपी धुरी से युक्त यह धर्म चक्र अपूर्व है। धर्म के इसी यान में बैठकर यह लोक शांति प्राप्त कर सकता है। धर्म चक्र प्रवर्तन का उद्घोष धीरे धीरे मृत्यु लोक और देव लोक में व्याप्त हो गया। सर्वत्र सुख शांति छा गई, निरभ्र आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। पृष्ठ संख्या 52। दीक्षा दान। काशी के मृगदाओं में धर्म चक्र का प्रवर्तन करने के बाद भगवान बुद्ध ने अपने निर्वाण धर्म में अश्वजित आदि पांचों भिक्षुओं तथा कुछ अन्य मुनियों को दीक्षित किया। कुछ समय बाद वहां यश नाम का कुल पुत्र आया। भगवान बुद्ध ने उसे उपदेश दिया। बुद्ध के वचन सुनकर उसे ऐसी शांति मिली जैसे धूप में तपे व्यक्ति को नदी की जलधार में मिलती है। उस कुलपुत्र यश ने पूर्ण साधना से इसी शरीर से अर्हता प्राप्त की। अपने आप आभूषणों से सज्जित होकर जब उसे लज्जा का अनुभव हुआ तो भगवान बुद्ध ने कहा, हे वत्स, चाहे कोई आभूषणों से अलंकृत हो या सिर मुड़ाए हुए हो, इससे कुछ भी अंतर नहीं पड़ता। जो समदर्शी हैं, जितेंद्रिय हैं, वे ही धर्म का आचरण कर सकते हैं। कोई चिन्ह या जेंडर धर्म का कारण नहीं होता। वन में रहते हुए भी जो मन से विषयों को याद करते हैं, वे वन में भी गृहस्थ ही रहते हैं, और जिन्होंने मोह और इंद्रियों पर विजय पाली है, वे घर में रहकर भी सन्यासी बने रहते हैं। यह बताने के बाद तथागत ने यश को भिक्षु कहकर संबोधित किया और उसको तथा उसके साथ अन्य 54 गृहस्थों को सद्धर्म में दीक्षित किया। कुछ समय बाद इन शिष्यों में से अर्हता को प्राप्त 8 श्रेष्ठ शिष्यों ने भगवान बुद्ध की अभ्यर्थना की। तथागत ने उनसे कहा, हे भिक्षुओं, तुम सब कृतार्थ हो गए हो, सभी दुखों से मुक्त हो। अब तुम लोग अलग अलग दिशाओं में जाओ, भ्रमण करो, दया भाव से दीनहीनों का कल्याण करो, उन्हें सद्धर्म का उपदेश दो। मैं भी अब महर्षियों की नगरी गया जाना चाहता हूं। वहां विभिन्न प्रकार की सिद्धियों के मत से उन्मत्त काश्यप मुनि को अपने विनय धर्म से जीतना चाहता हूं। पृष्ठ संख्या 53। इस प्रकार सद्धर्म के प्रचार के लिए अपने शिष्यों को विभिन्न दिशाओं में विदा करके तथागत भी गया के लिए चल पड़े। कुछ समय बाद भगवान बुद्ध गया पहुंचे। वे वहां से सीधे काश्यप मुनि के आश्रम में गए। वहां जाकर उन्होंने काश्यप मुनि से अपने रहने के लिए कुछ स्थान मांगा। काश्यप मुनि ने उनका स्वागत तो किया, परंतु ईर्ष्यावश उन्हें मारने की इच्छा से एक ऐसी अग्निशाला में रहने के लिए कहा जिसमें एक भयंकर सांप रहता था। तथागत निर्विकार भाव से अग्निशाला में गए और शांतिपूर्वक एक वेदी पर बैठ गए। महात्मा बुद्ध को अग्निशाला में निर्भय, अक्षुब्ध और शांत बैठा देखकर वह सर्प बाहर आया और उसने फूत्कार की। के विष की ज्वाला से सारी अग्निशाला जलने लगी, परंतु महात्मा बुद्ध निर्विकार भाव से बैठे रहे। उन्हें विष की अग्नि ने स्पर्श तक नहीं किया। महासर्प ने जब भगवान तथागत को शांत मुद्रा में बैठा देखा तो वह आश्चर्यचकित होकर प्रणाम करने लगा। आश्रमवासी अग्निशाला को जलता हुआ देखकर चिल्लाने लगे, अरे भिक्षु जल गया, भिक्षु जल गया। परंतु जब सुबह हुई तो भगवान बुद्ध ने उस महासर्प को अपने भिक्षा पात्र में रखा और उसे लेकर काश्यप मुनि के पास गए। भिक्षा पात्र में उस भयंकर महासर्प को विनीत भाव से बैठा देखकर काश्यप मुनि समझ गए कि यह मुनि मुझसे बहुत बड़ा है। उन्होंने तथागत को प्रणाम किया और उनका शिष्यत्व ग्रहण कर लिया। काश्यप मुनि के मन परिवर्तन की बात सुनकर उनके 500 शिष्यों ने भी बौद्ध धर्म स्वीकार किया। इसी तरह काश्यप मुनि के भाई गए और नदी भी भगवान बुद्ध की शरण में आए। तीनों काश्यप बंधुओं और उनके शिष्यों को भगवान बुद्ध ने गए शीर्ष पर्वत पर निर्वाण धर्म का उपदेश दिया। उनके उपदेशों को सुनकर हजारों भिक्षुओं को अतिशय आनंद प्राप्त हुआ। तभी भगवान बुद्ध को याद आया कि उन्होंने मगधराज बिंबसार को वचन दिया था कि जब उन्हें बुद्धत्व प्राप्त हो जाएगा तो वे उन्हें नए धर्म में दीक्षित करेंगे और उपदेश देंगे। इसलिए उन्होंने सभी काश्यपों को साथ लिया और मगध की राजधानी राजगृह की ओर प्रस्थान किया। कुछ समय बाद भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ राजगृह के वेणु वन में पहुंचे और वहीं विश्राम करने लगे। मगधराज ने जब सुना कि महात्मा बुद्ध वेणु वन में पधारे हैं तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने मंत्रियों तथा नगरवासियों के साथ उनके दर्शन के लिए चल पड़े। मगधराज मुनि श्रेष्ठ को देखते ही अपने रथ से उतर पड़े और विनय पूर्वक उनके पास पहुंचे। सिर झुकाकर प्रणाम किया और आज्ञा मिलने पर भूमि पर बैठ गए। पृष्ठ संख्या 54। यहाँ एक चित्र है जहां मगधराज मुनि बुद्ध का अभिवादन कर रहे हैं। आइए अब सुनते हैं पाठ। वहां आए सभी लोग काश्यप बंधुओं को महात्मा बुद्ध के शिष्य के रूप में देखकर आश्चर्यचकित रह गए। बुद्ध ने यह देखकर काश्यप से पूछा, भंते तुमने अग्नि की पूजा क्यों छोड़ दी? काश्यप ने भरी सभा के सामने हाथ जोड़कर कहा, अग्नि की पूजा करने से और उसमें आहुति देने से पुनः संसार में जन्म लेने की प्रवृत्ति बनी रहती है, जिसके कारण शारीरिक और मानसिक क्लेश होता है। इसीलिए मैंने अग्नि उपासना छोड़ दी। इससे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति नहीं मिल सकती। अपने शिष्य के ये वचन सुनकर भगवान बुद्ध ने उनसे कहा, हे महाभाग, तुम धन्य हो, तुमने उत्तम धर्म स्वीकार किया है। जैसे धनी व्यक्ति अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन करते हैं, तुम अपनी दिव्य शक्ति के ऐश्वर्य का प्रदर्शन करो। यह सुनकर काश्यप ने अनेक यौगिक चमत्कार दिखाए, जैसे आकाश में उड़ना, बैठना, सोना, अग्नि के समान जलना आदि। इस प्रकार के अनेक चमत्कार प्रदर्शित कर काश्यप ने भगवान बुद्ध को हाथ जोड़े और सबके सामने कहा, मैं आपका शिष्य हूं। पृष्ठ संख्या 55। यह सब देख और सुनकर मगधराज और सभी मगधवासी आश्चर्यचकित हो गए और समवेत स्वर में बोल पड़े, बुद्ध सर्वज्ञ हैं। इसके बाद भगवान बुद्ध ने जिज्ञासु मगधराज को अनात्मवाद का उपदेश दिया। उनको बताया, जैसे सूर्यकांत मणि और ईंधन के संयोग से चेतना का जन्म होता है, बीज से उत्पन्न होने वाला अंकुर जैसे बीज से भिन्न भी है और अभिन्न भी, वैसे ही शरीर, इंद्रिय और चेतना परस्पर भिन्न भी है और अभिन्न भी। भगवान बुद्ध के उपदेशों से मगधराज बिंबसार ने परमार्थ ज्ञान और पूर्ण धर्म

दृष्टि प्राप्त की। उनके साथ आए मगध के अन्य व्यक्ति भी कृतकृत्य हो गए। तथागत का उपदेश सुनकर मगधराज अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने परम शांति का अनुभव किया। उन्होंने मुनि के निवास के लिए वेणुवन भेंट कर दिया, फिर उनसे आज्ञा लेकर अपने भवन की ओर प्रस्थान किया। एक दिन भगवान बुद्ध के जितेंद्रिय शिष्य अश्वजित भिक्षा के लिए नगर में गए। उनके मुख की कांति और शांति को देखकर अनेक नागरिक उनके प्रति आकर्षित हुए। वहीं कपिल संप्रदाय के एक सन्यासी अपने शिष्यों के साथ आए और अश्वजीत को देखकर उनसे पूछने लगे, हे सौम्य, आपको देखकर हम सभी आश्चर्यचकित हैं। आपके गुरु कौन हैं? उनकी क्या शिक्षा है? अश्वजीत ने कहा, इक्ष्वाकुवंश के सुगत बुद्ध मेरे गुरु हैं। वे विद्वान हैं और मैं तो अज्ञानी हूं। मैं अभी कुछ दिन पूर्व ही उनके द्वारा प्रवर्तित धर्म में दीक्षित हुआ हूं, अतः मैं आपको उनकी शिक्षा बताने में तो असमर्थ हूं, फिर भी संक्षेप में कहता हूं। उन्होंने उपदेश दिया है कि सभी धर्म किसी न किसी निमित्त से ही उत्पन्न होते हैं, बिना कारण कुछ भी नहीं होता। अश्वजीत के उपदेशों से ही उपतिष्य नामक श्रेष्ठ ब्राह्मण को भी ज्ञान प्राप्त हो गया। उसका अंतःकरण शुद्ध हो गया और वह वेणु वन की ओर जाने लगा। मार्ग में मौद गल्यायन नाम के ब्राह्मण मिले। उन्होंने उपतिष्य के प्रसन्न मुख को देखकर पूछा, अरे आज तो तुम भिन्न पुरुष से प्रतीत हो रहे हो, क्या तुम्हें ज्ञान प्राप्ति हो गई है? ऐसी शांति और प्रसन्नता अकारण नहीं होती, बताओ क्या बात है? तब उन्होंने बुद्ध के शिष्य से जो उपदेश सुने थे वे मौद गल्यायन को बता दिए। उसका कुछ ऐसा प्रभाव हुआ कि मौद गल्यायन को भी सम्यक दृष्टि प्राप्त हो गई। तब दोनों अपने अपने शिष्यों के साथ भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए वेणुवन गए। पृष्ठ संख्या 56। इन दोनों को शिष्य मंडली के साथ वेणुवन में आते देखकर महामुनि बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, ये दोनों मेरे प्रमुख शिष्य हैं। इनमें से एक ज्ञानी है, दूसरा दिव्य शक्ति संपन्न है। जब वे निकट आ गए तो भगवान बुद्ध ने उन दोनों से कहा, शांति की इच्छा वाले साधुओं, आपका स्वागत है। आप उत्तम धर्म को भली भांति समझिए। तथागत के प्रवचनों को सुनकर दोनों साधु मुग्ध हो गए और उन्होंने अपनी जटा और दंड त्याग दिए और काषाय वस्त्र धारण कर लिए। उन्होंने अपने शिष्यों के साथ मस्तक झुकाकर भगवान बुद्ध को नमस्कार किया, उनके आदेशों का पालन किया और क्रमशः साधना करके परम पद प्राप्त किया। तथागत की ख्याति सुनकर काश्यप वंश के एक धनी ब्राह्मण ने अपनी पत्नी और संबंधियों को त्याग दिया और वह निर्वाण की इच्छा से एक दिन भगवान बुद्ध के पास आ गया। उसने प्रणाम करके निवेदन किया, हे गुरुवर, मैं आपका शिष्य हूँ, आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। नवागत शिष्य की बातें सुनकर भगवान बुद्ध ने उसे अपने पास बैठाया और उपदेश दिया। उसने अपनी प्रखर बुद्धि से तथागत के उपदेशों को भली भांति हृदयंगम किया। बाद में इन्हें ही महाकाश्यप के नाम से प्रसिद्धि मिली। यहां एक चित्र है जिसमें भगवान बुद्ध महाकाश्यप और अपने शिष्यों को प्रवचन देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आइए अब सुनते हैं पाठ। पृष्ठ संख्या 57। अनाथ पिंडद की दीक्षा। एक बार उत्तर की ओर से कोसल देश का एक धनी गृहपति वेणुवन आया। गरीबों को दान देना उसका स्वभाव था, इसलिए वह सुदत्त नाम से प्रसिद्ध था। जब उसने सुना कि महामुनि यही निवास कर रहे हैं तो उनके निकट गया और उन्हें श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया।
तथागत ने उसका श्रद्धा भाव देखकर कहा, हे सौम्य, तुम धर्म को जानते हो। दर्शन की लालसा से रात्रि के समय भी अपनी निद्रा को त्याग कर तुम यहां आए हो, इसलिए तुम नैष्ठिक पद के अधिकारी हो। आओ, तुम उसी परम पद के दर्शन करो। निष्काम दान करने से इस लोक में यश और परलोक में उत्तम फल मिलते हैं, अतः तुम दान करो। शील और शिष्टाचार का पालन करो। विषयों की आसक्ति त्याग कर सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाओ। महामुनि के उपदेश सुनकर सुदत्त गृहस्थ होते हुए भी तत्व ज्ञान प्राप्त कर सका और जीवन मुक्त हो गया, क्योंकि तत्व बोध के लिए वनवास करना आवश्यक नहीं। उसने आदरपूर्वक भगवान बुद्ध से निवेदन किया, मैं श्रावस्ती नगर का निवासी हूं। मैं वहां आपके लिए एक विहार बनाना चाहता हूं। आप जैसे अनासक्त के लिए वन और राजभवन दोनों ही समान हैं, फिर भी मुझ पर दया कर आप वहां पधारें और निवास करें। भगवान बुद्ध ने सुदत्त का अनुरोध स्वीकार किया और अपने एक शिष्य उपतिष्य को उसके साथ भेज दिया। सुदत्त और उपतिष्य धीरे धीरे कोसल राज्य की राजधानी श्रावस्ती पहुंचे और विहार बनवाने के लिए उपयुक्त भूमि खोजने लगे। अंत में उन्हें मनोहर वृक्षों से भरा जेत वन दिखाई दिया, जो उन्हें विहार के लिए उपयुक्त लगा। उन्होंने उस वन के स्वामी के साथ भूमि खरीदने के लिए बातचीत की। उस वन का स्वामी बड़ा लोभी था। उसने कहा कि यदि तुम इस भूमि को धन से ढक दो तो भी मैं इसे बेचने के लिए तैयार नहीं हूं। सुदत्त ने उसे समझाया कि मैं यह भूमि विहार बनाने के लिए खरीदना चाहता हूं। बड़ी मुश्किल से वह भूमि बेचने के लिए तैयार हुआ और बहुत धन लेकर उसने वह भूमि बेच दी। जब सुदत्त ने उदारता पूर्वक इस भूमि के लिए प्रभूत धन राशि प्रदान की तो वन के स्वामी जेत का मन भी बदल गया। उसके हृदय में भगवान बुद्ध के प्रति अनुराग उत्पन्न हो गया, इसीलिए उसने शेष वन भी तथागत के विहार के लिए दे दिया। सुदत्त ने विहार निर्माण का कार्य उपतिष्य की देखभाल में प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे विशाल विहार बनकर तैयार हो गया। पृष्ठ संख्या 58। पिता पुत्र मिलन। भगवान बुद्ध के ज्ञान से प्रभावित होकर अन्य दर्शनों के आचार्य भी उनके शिष्य बन गए। उनके धर्म का प्रचार प्रसार होता चला गया। वे काफी समय तक राजगृह में निवास करते रहे। एक दिन उन्हें याद आया कि उन्होंने अपने पिता के मंत्रियों को वचन दिया था कि ज्ञान प्राप्त करके वे कपिलवस्तु लौटेंगे, इसलिए उन्होंने अपने पिता शुद्धोदन के राज्य में जाने का विचार किया और अनेक शिष्यों के साथ राजगृह से कपिलवस्तु के लिए प्रस्थान किया। कुछ दिनों में वे अपनी शिष्य मंडली के साथ अपने पिता की नगरी के समीप पहुंचे और वहीं ठहर गए। शुद्धोदन के पुरोहित और अमात्यों को जब अपने गुप्तचरों से यह सूचना मिली कि कुमार सिद्धार्थ बुद्ध बनकर नगर के समीप आ गए हैं, तो उन्होंने इसकी सूचना राजा को दी। राजा अपने पुत्र के आगमन का समाचार सुनकर प्रसन्न हो गए। अनेक पुरवासियों के साथ वे अपने पुत्र से मिलने के लिए चल पड़े। उनकी आंखों से आनंद के आंसू बह रहे थे। राजा ने दूर से ही देखा, अनेक शिष्यों के बीच परिव्राजक वेश में उनका पुत्र विराजमान है, तो वे रथ से उतर गए और पैदल ही उनके पास पहुंचे। मुनि वेश में अपने पुत्र को देखकर राजा शुद्धोदन का मन विह्वल हो गया। उनकी वाणी अवरुद्ध हो गई। विस्मय में पड़कर वे ना तो उन्हें पुत्र कह सके और न ही भिक्षु। अपने आप को राजसी वस्त्रालंकारों से विभूषित और पुत्र को भिक्षु वेश में देखकर उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह चली, किंतु ममता और स्नेह से रहित अपने पुत्र को देखकर

भिक्षा मांग रहा है? भगवान बुद्ध ने अपने पिता को देखा, उसके मनोभावों को समझा और अनुभव किया कि वे अभी भी उन्हें अपना पुत्र मान रहे हैं। अतः उनके भ्रम के निवारण के लिए उन्होंने कुछ चमत्कार किए। उनके यौगिक चमत्कारों से पिता बड़े प्रभावित और आनंदित हुए। फिर सूर्य के समान स्थिर होकर तथागत ने राजा शुद्धोदन को धर्मोपदेश दिया। उन्होंने कहा, हे राजन, अब आपको किसी प्रकार का शोक नहीं करना चाहिए। आप अब पुत्र प्रेम त्याग कर धर्म के आनंद का अनुभव कीजिए। आप उस बोधि रूपी अमृत को ग्रहण कीजिए जो आज तक किसी पुत्र ने अपने पिता को नहीं दिया। पृष्ठ संख्या 59। उन्होंने अपने पिता को समझाया, यह सारा संसार कर्म से बंधा हुआ है, अतः आप कर्म का स्वभाव, कर्म का कारण, कर्म का विपाक यानी फल और कर्म का आश्रय, चारों के रहस्यों को समझिए, क्योंकि कर्म ही है जो मृत्यु के पश्चात भी मनुष्य का अनुगमन करता है। आप इस सारे जगत को जलता हुआ समझकर उस पथ की खोज कीजिए जो शांत है और ध्रुव है, जहां ना जन्म है, ना मृत्यु है, ना श्रम है और ना दुख। तथागत के चमत्कारों को देखकर और उनके उपदेशों को सुनकर राजा शुद्धोदन का चित्त शुद्ध हो गया। वे रोमांचित हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर तथागत से निवेदन किया, हे आर्य, आज मैं धन्य हूं। आपने कृपा कर मुझे मोह से मुक्त किया है। हे तात, आपका जन्म सफल है। अब मैं सचमुच पुत्रवान हूं। आपने राजलक्ष्मी और स्वजनों का त्याग किया, दुष्कर तप किया और मुझ पर कृपा की। यह सब उचित ही है। आप चक्रवर्ती राजा होकर भी हम सब लोगों को उतना सुख नहीं दे सकते थे जितना आप आज दे रहे हैं। आपने अपने ज्ञान और सिद्धियों से भवचक्र को जीत लिया है। बिना राज्य के ही आप संपूर्ण लोकों के सम्राट की भांति सुशोभित हैं। यह कहकर राजा ने भगवान बुद्ध को सादर प्रणाम किया। भगवान बुद्ध के योग, ऐश्वर्य तथा उनके पिता द्वारा किए गए सत्कार को देखकर अनेक लोगों ने घर छोड़ने का निश्चय किया। अनेक राजकुमार निर्वाण धर्म का उपदेश सुनकर विरक्त हो गए। आनंद, नंद, क्रिमिल, अनिरुद्ध, कुंडधान्य ने उनसे दीक्षा ग्रहण की और गृह त्याग किया। तथागत की शिक्षा से देवदत्त तथा गुरुपुत्र उदाई ने भी यही किया। अत्रि नंदन उपाली ने भी दीक्षा ग्रहण की। राजा शुद्धोदन ने भी अपना राज्यभार अपने भाइयों को सौंप दिया और स्वयं राजर्षियों की तरह रहने लगे। इसके बाद राजपुत्र सर्वार्थ सिद्ध यानी सिद्धार्थ ने अपना लक्ष्य सिद्ध करके अपने दीक्षित शिष्यों तथा पुरवासियों के साथ नगर में प्रवेश किया। अश्रु बहाते हुए पुरवासियों ने पुष्प वर्षा करके उनका स्वागत किया। यह समाचार सुनकर राजभवन की स्त्रियों द्वारों और वातायनों की ओर दौड़ी। काषाय वस्त्रधारी होने पर भी उन्हें सांध्यकालीन बादलों से आधे ढके सूर्य के समान चमकते देखकर स्त्रियां रोने लगीं और विह्वल होकर उन्होंने भगवान को प्रणाम किया। पृष्ठ संख्या 60। नगर और राजभवन की स्त्रियां अपने राजकुमार को मुनि वेश में देखकर तरह तरह से विलाप कर रही थीं। पत्नी यशोधरा भी उन्हें देखकर अत्यंत शोक विह्वल हो गईं। किंतु बुद्ध को न तो पत्नी का प्रेम विचलित कर सका और न पुत्र राहुल का। भगवान बुद्ध अनासक्त भाव से भिक्षा मांगते हुए चलते रहे और शांतिपूर्वक धीरे धीरे न्यग्रोध वन जा पहुंचे। वहां वे संसार के जीवों के कल्याण के लिए चिंतन करने लगे। यहां एक चित्र है जिसमें भगवान बुद्ध मार्ग में चलते हुए भिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। यहां कुछ स्त्रियां उन्हें भिक्षा देती हुई दिखाई पड़ रही हैं। अब सुनते हैं पाठ।

जेत वन। कपिल वस्तु में कुछ दिन रहने तथा अनेक व्यक्तियों को दीक्षित करने के बाद भगवान बुद्ध ने प्रसेनजीत के राज्य कोसल देश की ओर प्रस्थान किया। श्रावस्ती पहुंचकर वे जेत वन पहुंचे, जो अनेक श्वेत भवनों और अशोक वृक्षों से सुसज्जित था। स्वर्ण और श्वेत मालाओं से अलंकृत जल कलश लेकर सुदत्त ने तथागत की पूजा की और जेत वन उनको समर्पित किया। तथागत के आगमन का समाचार सुनकर कोसल नरेश प्रसेनजीत उनके दर्शनों के लिए जेत वन आए। उन्होंने भगवान को श्रद्धापूर्वक नमस्कार किया और निवेदन किया, हे मुने, कोसल वासियों का यह परम सौभाग्य है कि आप यहां पधारे। जैसे पुष्पों की संगति से वायु सुगंधित हो जाती है, वैसे ही आपके निवास से यह वन पवित्र हो गया है। आप यहां सुखपूर्वक निवास करें और हम सब पर अनुग्रह करें। पृष्ठ संख्या 61। प्रसेनजीत की प्रार्थना सुनकर भगवान बुद्ध ने उनसे कहा, हे राजर्षि, आपकी बुद्धि स्थिर है, तभी साधुओं में आपकी श्रद्धा है। यदि आप उज्जवल यश की कामना करते हैं तो धर्म पूर्वक प्रजा का पालन कीजिए, जनता को कभी उत्पीड़ित न कीजिए, पापियों की संगति त्याग कर सुमार्ग का अनुसरण कीजिए। तथागत ने प्रसेनजीत को अनेक उपदेश दिए और उन्हें अज्ञान के अंधकार से मुक्त किया। भगवान बुद्ध के उपदेशों से प्रसेनजीत को धर्म तत्व का बोध हुआ और उन्होंने श्रद्धापूर्वक उनसे दीक्षा ग्रहण की। प्रसेनजीत को दीक्षित हुआ देखकर कुछ तीर्थक साधुओं ने राजा के तत्वबोध पर शंका व्यक्त की और बुद्ध के उपदेशों को चुनौती दी। इस पर राजा ने तथागत से प्रार्थना की कि वे शंका का समाधान करें। राजा प्रसेनजीत की प्रार्थना सुनकर तथागत ने साधुओं की शंकाओं का समाधान किया। सभी साधुओं ने उन्हें प्रणाम किया और दीक्षा ग्रहण की। कोसल से तथागत राजगृह आए। उन्होंने वहां ज्योतिष्क, जीवक, शूर, श्रोण, अंगद आदि को उपदेश दिए और उन्हें अपने संघ में दीक्षित किया। राजगृह से तथागत गांधार देश गए। वहां पुष्कर नाम का राजा राज करता था। पुष्कर ने भगवान से ज्ञान प्राप्त किया, परिणाम स्वरूप उसमें वैराग्य भाव का उदय हुआ। उसने अपना राजपाट त्याग दिया और संन्यास ग्रहण कर लिया। गांधार देश से वे विपुल पर्वत पर आए और वहां हेमवत और साताग्र नाम के यक्षों को उपदेश दिया। वहां से वे जीवक के आम्रवन में आए और विश्राम किया। वहां से अनेक प्रमुख नगरों का भ्रमण करते हुए आपण नगर पहुंचे। वहीं क्रूर कर्मों में लगे अंगुलीमाल को अपने धर्म में दीक्षित किया और उसने दया तथा मित्रता के नए धर्म को स्वीकार किया। इसके बाद वे वाराणसी आए, जहां असित मुनि के भांजे कात्यायन निवास करते थे। मृत्यु से पहले असित उन्हें बुद्ध के विषय में बता चुके थे, अतः कात्यायन ने भगवान बुद्ध के वहां आने पर सादर उनसे दीक्षा ग्रहण की। इस प्रकार धीरे धीरे भगवान बुद्ध का यश चारों दिशाओं में छा गया। इससे देवदत्त को बहुत ईर्ष्या होने लगी। ईर्ष्या के कारण वह ध्यान और संयम खो बैठा और अनेक अनुचित कार्य करने लगा। उसने पहले संघ में मतभेद खड़े करने का कुचक्र चलाया, परंतु उसमें सफलता नहीं मिली तो उसने तथागत को समाप्त करना चाहा। जब तथागत वृद्धकूट पर्वत पर विराजमान थे, तब देवदत्त ने उन पर एक शिलाखंड गिराया, परंतु उससे भगवान को कोई क्षति नहीं हुई। पृष्ठ संख्या 62। देवदत्त को संघ में मतभेद उत्पन्न करने में सफलता नहीं मिली और न ही वह भगवान बुद्ध की हत्या कर सका। जब भगवान राजगृह मार्ग से अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे तो उसने उन पर एक मदमत्त हाथी छुड़वा दिया। प्रलयकालीन काले बादलों जैसा हाथी आंधी की तरह दौड़ता हुआ राजपथ पर आ गया।
जो भी उसके मार्ग में आता वह उसे मारने दौड़ता। चारों ओर हाहाकार मच गया। उधर से शिष्यों के साथ भगवान बुद्ध को आते देखा तो लोग चिल्लाने लगे तथा उन्हें बचाने के लिए दौड़ने लगे, परंतु कोई भी उस हाथी के पास नहीं जा सकता था। तथागत की हत्या के लिए वह हाथी उसी की ओर आ रहा था जिस ओर से वे आ रहे थे। अट्टालिकाओं से स्त्रियों और दूर खड़े अन्य पुरुष चिल्लाकर उन्हें रोकना चाहते थे, परंतु तथागत शांत और निर्विकार भाव से आगे बढ़ते जा रहे थे। दूर से ही मदमत्त हाथी को आते देखकर पीछे पीछे चलने वाले अनेक शिष्य भाग गए, परंतु बुद्ध आगे बढ़ते ही गए। उनके पीछे पीछे केवल उनके परम शिष्य आनंद चलते गए। जैसे वस्तु की प्रकृति वस्तु के साथ रहती है, वैसे ही आनंद उनके साथ थे। भगवान बुद्ध को सामने देखकर मदोन्मत्त हाथी एकदम शांत और स्वस्थ हो गया और वह भगवान के सामने सिर झुकाकर बैठ गया। भगवान ने उस हाथ का स्पर्श किया और उसे उपदेश दिए, हे गजराज, निरपराध प्राणियों की क्यों हत्या कर रहे हो? उससे तो दुख ही होगा, किसी को कष्ट मत दो। इस पृष्ठ पर एक चित्र है जिसमें भगवान बुद्ध गजराज यानी हाथी से बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब सुनते हैं आगे का पाठ। पृष्ठ संख्या 63। तथागत को देखकर और उनके उपदेश सुनकर हाथी ने शिष्य के समान उन्हें प्रणाम किया। यह देखकर सभी लोग भगवान बुद्ध और हाथी को घेर कर चारों ओर खड़े हो गए और उनकी प्रशंसा करने लगे। जिनके हृदय में धर्म के लिए कोई श्रद्धा नहीं थी, उनके हृदय में श्रद्धा उत्पन्न हो गई, और जिनके हृदय में थोड़ी श्रद्धा थी वह और भी दृढ़ हो गई। राजमहल की अट्टालिकाओं पर खड़े सम्राट अजातशत्रु यह सब देख रहे थे। उनका हृदय भगवान बुद्ध और उनके द्वारा प्रकाशित धर्म के प्रति श्रद्धा भाव से भर गया और उनमें उनका पूर्ण विश्वास हो गया। आम्रपाली के उद्यान में कुछ समय बाद तथागत राजगृह से पाटलिपुत्र आए। उस समय मगधराज के मंत्री वर्षाकार लिच्छियों को शांत करने के लिए एक दृढ़ दुर्ग बनवा रहे थे। थागत ने देखा कि उस दुर्ग के निर्माण के लिए अपार धन राशि आ रही है, तो उन्होंने भविष्यवाणी की, शीघ्र ही यह नगर विश्व का महत्वपूर्ण नगर होगा और सर्वत्र ख्याति प्राप्त करेगा। तब मगधराज के मंत्री वर्षाकार ने भगवान बुद्ध की पूजा की और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किए। इसके बाद तथागत गंगा की ओर गए। नगर के जिस द्वार से वे गंगा तट गए थे, वर्षाकार ने उस द्वार का नाम गौतम द्वार रखा। गंगा पार करने के बाद तथागत कुटी नामक ग्राम में गए और धर्म का उपदेश दिया। कुछ समय वहां रहकर नंदीग्राम गए। वहां किसी कारण अनेक लोग मर गए थे। तथागत ने मृत व्यक्तियों के संबंधियों को उपदेश दिए और सांत्वना दी। वहां वे एक रात रहे, फिर दूसरे दिन वैशाली नगरी के लिए प्रस्थान किया। वैशाली पहुंचकर उन्होंने उस समय की सर्वाधिक सुंदर स्त्री वैशाली की नगरवधु आम्रपाली के उद्यान में निवास किया। जब आम्रपाली ने सुना कि भगवान बुद्ध उनके उद्यान में निवास कर रहे हैं, तो वह बहुत प्रसन्न हुई और उनके दर्शनों के लिए तैयार हुई। उसने अलकतक, अंजन, अंगराग तथा आभूषणों को त्याग दिया। अत्यंत विनम्र भाव से कुल वधुओं के समान श्वेत वस्त्र धारण किए और तथागत के दर्शन के लिए चल पड़ी। रूप और यौवन से संपन्न आम्रपाली वन देवी के समान अपने उद्यान में पहुंची और रथ से उतरकर पैदल ही उधर जाने लगी, जहां भगवान बुद्ध अपनी शिष्य मंडली के साथ बैठे थे। पृष्ठ संख्या 64।
इस पृष्ठ पर एक चित्र है जिसमें आम्रपाली भगवान बुद्ध के दर्शन कर रही हैं। अब सुनते हैं पाठ। पृष्ठ संख्या 65। भगवान बुद्ध ने आम्रपाली को आते देखकर अपने शिष्यों को सावधान किया और कहा, देखो आम्रपाली यहीं आ रही है, तुम सब बोध की औषधि से अपने आप को संयमित रखना और ज्ञान में स्थिर रहना। तुम प्रज्ञा रूपी वाण और शक्ति रूपी धनुष धारण करो और स्मृति रूपी कवच पहनकर अपनी रक्षा करो। जब तथागत अपने शिष्यों को इस प्रकार उद्बोधित कर रहे थे, तभी आम्रपाली हाथ जोड़कर उनके सामने उपस्थित हो गई। अपने उद्यान में एक वृक्ष के नीचे नेत्रबंद किए बैठे मुनि के दर्शन कर वह बहुत प्रसन्न हुई। श्रद्धा तथा शांत भाव से उसने भगवान बुद्ध को प्रणाम किया, फिर मुनि की आज्ञा प्राप्त कर हाथ जोड़कर वह उनके सामने बैठ गई। भगवान बुद्ध ने आम्रपाली को उपदेश देते हुए कहा, हे सुंदरी, तुम्हारा आशय पवित्र है क्योंकि तुम्हारा मन शुद्ध है, तुम्हारा चित्त धर्म की ओर प्रवृत्त है, यही तुम्हारा सच्चा धन है क्योंकि इस अनित्य संसार में धर्म ही नित्य है। देखो आयु यौवन का नाश करती है, रोग शरीर का नाश करता है और मृत्यु जीवन का नाश करती है, परंतु धर्म का नाश कोई नहीं कर सकता। यद्यपि आम्रपाली नवयुवती थी, फिर भी उसमें बुद्धि की गंभीरता और आशय की पवित्रता थी, इसीलिए उसने भगवान बुद्ध के उपदेशों को प्रसन्नता पूर्वक सुना। इससे उसके मन की समस्त वासनाएं समाप्त हो गईं और उसे अपनी वृत्ति से घृणा होने लगी। वह तथागत के चरणों में गिर पड़ी और धर्म की भावना से भर उसने भगवान से निवेदन किया, हे देव, आपने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है, आपने संसार को पार कर लिया है, हे साधो, आप मुझ पर दया करें और धर्म लाभ के लिए मेरी भिक्षा स्वीकार करें, मेरे जीवन को सफल करें। भगवान बुद्ध ने आम्रपाली की सच्ची भक्ति भावना को जानकर उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। प्रश्न 1, बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद सिद्धार्थ ने प्रथम उपदेश कहां और किन्हें दिया? 2, अष्टांग योग की प्रमुख बातों का उल्लेख कीजिए। 3, भगवान बुद्ध काशी से राजगृह क्यों आए? 4, प्रसेनजीत ने भगवान बुद्ध से क्या निवेदन किया? 5, तथागत ने कर्म के बारे में शुद्धोदन को क्या समझाया? 6, आम्रपाली कौन थी? तथागत ने उसे क्या समझाया? यहां अध्याय 4 समाप्त हुआ। संक्षिप्त बुद्ध चरित। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 8 की हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक संक्षिप्त बुद्ध चरित का ध्वनि पाठ। वाचन स्वर अजीत होरो, निर्माण सहयोग सौम्या मलिक, ध्वन्यंकन विकास सांगवान, निर्माण वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत

0: शांति, मैं खुशदान और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन ब्रह्म कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: टेंशन छूटी, एग्जाम खत्म हो गए, रूहानी अब तू कहाँ घूमने जाएगी?
2: अरे हम इच्छा देखना पड़ेगा, अभी तो मेरी मम्मी ने डिसाइड नहीं किया है।
1: अच्छा, मैं भी जाऊंगी, पर मुझे पता नहीं मैं कहाँ जाऊंगी।
2: लेकिन घूमने तो जाना पड़ेगा, है ना अनुष्का?
3: हाँ। क्या हो रहा है बच्चों?
1: कुछ नहीं दीदी, हमारे एग्जाम खत्म हो गए, इसलिए हम लोग बात कर रहे कि हम लोग कहाँ घूमने जाएंगे।

0: एग्जाम्स खत्म हो गए, तब तो सबको बड़ा ही मजा आ रहा होगा।
1: हाँ दीदी, बहुत राहत की सांस मिली।
0: कैसे गए वैसे आप लोगों के एग्जाम्स?
2: बहुत अच्छे गए।
1: टेंशन टेंशन में बस निकाल दिए।
0: टेंशन टेंशन में निकाल दिए?
1: हाँ।
0: बाप, तो वैसे बात हो रही है क्योंकि एग्जाम्स खत्म होने की, तो उसके बाद आती है गर्मी की छुट्टियाँ। तो बच्चों की दुनिया में चलिए आज बात करते हैं गर्मी की छुट्टियों के बारे में। और हमारे साथ हैं अमीक्षा, हमारे साथ है रूहानी और हमारे साथ हैं अनुष्का भी। और आप लोग कौन सी क्लास में पढ़ते हो जरा खुद ही बता दीजिए।
2: मैं 7th क्लास में पढ़ती हूँ।
1: मैंने अब 7th खत्म कर दी और अब मैं 8th में आऊंगी।
3: और मैंने 4th खत्म कर गया, मैं 5th।
0: तो आप लोग अब धीरे धीरे बड़े हो रहे हो, है ना, बड़ी क्लास में आ जा रहे हो। तो गर्मी की छुट्टियों में इससे पहले तक आप लोगों ने क्या क्या किया है, क्या क्या करते थे?
1: मैं तो दीदी घूमने जाती थी अपनी मम्मी के साथ दूर दूर जगहों पर।
0: दूर दूर जगहों पर कहाँ कहाँ?
1: मनाली गई हूँ, द्वारका गई हूँ, इस साल भी कहीं जाने वाली हूँ।
0: ओके, और आप लोग?
3: हम तो गए, म्यूजियम गए हैं हम।
0: अरे वाह।
3: और वहाँ चिड़ियाघर गए हैं।
0: हाँ, चिड़ियाघर और म्यूजियम में भी तो बड़ा मजा आता है ना। हाँ, अनुष्का तो गई है म्यूजियम। और अमीक्षा?
2: मैं तो दीदी पिछले साल नेपाल गई थी।
0: अरे वाह, कैसा लगा था नेपाल?
2: नेपाल बहुत अच्छा है।
0: बहुत अच्छा है? इंडिया जैसा है कि अलग अलग है?
2: इंडिया जैसा नहीं है, पूरा अलग है।
0: पूरा ही अलग है? हाँ। क्या अलग है वहाँ पे?
2: वहाँ पे वो बुद्ध के टेम्पल है और घूमने की बहुत सारी जगह है।
0: तो और म्यूजियम में अनुष्का ने क्या क्या देखा था, क्या अच्छा लगा था चिड़ियाघर में म्यूजियम में?
3: म्यूजियम में हमने पुराने जमानों की तलवार देखी और बंदूक देखी थी। और कुछ पुराने जमाने के खिलौने, ऐसे बहुत बाकी चीज देखे।
0: कहाँ पे था ये म्यूजियम?
3: महाराष्ट्र में।
0: महाराष्ट्र गए थे आप?
3: हाँ।
0: ओके, और चिड़ियाघर में क्या क्या देखा?
3: चिड़ियाघर में हमने शेर देखा था, भालू देखा था और बाकी सब देखे थे।
0: सबसे अच्छा क्या लगा?
3: मगरमच्छ।
0: मगरमच्छ सबसे अच्छा लगा?
3: हाँ।
0: क्या अच्छा लगा उसमें?
3: वो बहुत बड़ा था मगरमच्छ।
0: बहुत बड़ा था ना, उसे डर नहीं लगा?
3: नहीं, वो तो अंदर, उसको है ना, अंदर रखा हुआ था, इसलिए
0: नहीं लगा। बाहर आ जाएगा तो लगेगा, है ना। और आपने क्या देखा रूहानी?
1: दीदी मनाली में तो मैंने अजगर को अपने गले में लटकाया था।
0: अरे बाप रे, ये कैसे हो गया?
1: अरे उसका मुंह बंद करके रखा था जो फोटो खिंचवा रहा था, इसलिए मैंने सोचा गले में लटका लूं। अभी तो मुझे डर नहीं लगता, लेकिन उस वक्त फोटो में मेरा मुंह देखो तो बहुत डरावना लग रहा था।
0: उसको देख के डर लगा तो होगा।
1: हाँ, मेरी मम्मी जबरदस्ती कर रही थी, ले ले ना गले में, ले ले, इसलिए
0: फोटो खिंचवाने के लिए।
1: हाँ।
0: पर उसके बाद जब हाथ में पकड़ा तो डर कम हुआ फिर?
1: हाँ, बहुत भारी था वो।
0: बहुत भारी था? गिरे तो नहीं ना?
1: नहीं, इतना भी भारी नहीं था।
0: ओके, तो गर्मी की छुट्टियों में मतलब आप लोग घूमने जाते हो और कभी किसी के घर भी जाते हो रिश्तेदारों के, या मिलने किसी से, या कोई आता है आपके घर पे?
1: हाँ, नानी के घर।
0: नानी के घर जाते हो?
1: हाँ।
2: मैं अपने मामा मामी पापा वगैरह के घर जाती हूँ।
0: ओके।
3: मैं अपनी मौसी के ऐसे जाती हूँ और अपने गांव में
0: जाते हैं। अच्छा लगता है गांव में जाना अनुष्का?
3: हाँ,
0: थोड़ा अच्छा लगता है कि बहुत अच्छा लगता है?
3: बहुत अच्छा लगता है।
0: क्या दिखता है वहाँ गांव में, ऐसा क्या है जो आपको यहाँ नहीं दिखता?
3: गांव में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ खेलने को मिलता है।
0: अच्छा।
3: हाँ।
0: तो आपके दोस्त भी बन जाते हैं वहाँ पे? ओके। और अमीक्षा, आप किससे किससे मिलते हो, क्या क्या करते हो वहाँ पे?
2: वहाँ पे मैं जब पहले अपने मामी मामा के घर रहती थी तब वहाँ पे मेरे फ्रेंड्स बने थे, तो मैं जब जाती हूँ तब वो उनके साथ खेलती हूँ और नई नई चीजें क्रिएटिविटी करती हूँ और ड्राइंग्स बनाती हूँ।
0: ओके, और रूहानी क्या क्या करती है?
1: मैं तो वहाँ जाके अपने बड़े भैयाओं से मिलती हूँ, वो बड़े भैया मेरे को तंग करते रहते हैं। 2 दिन में उनके घर रहने गई, उसमें भी वापस आ गई, क्योंकि इतना तंग करके रखा था ना, 2 सेकंड भी बैठ नहीं पाती मैं।
0: अरे बाप रे, ऐसा क्यों था, ऐसा क्या तंग कर दिया उन्होंने?
1: अरे मेरी बेइज्जती करते रहते हैं बार बार वो लोग।
0: आपको चिढ़ा रहे होंगे?
1: हाँ।
0: भाइयों को मजा आता ना बहनों को चिढ़ाने में।
1: वो अपनी खुद की बहन को भी चिढ़ाते।
0: तो उनको लगा होगा मेरी एक और बहन आ गई, उसको भी चिढ़ाएंगे। तो उनके साथ शरारत नहीं करी आपने फिर?
1: करती हूँ।
0: आप भी तो करते होंगे। है ना?
1: तो शुरुआत वो करते, मुझे जवाब तो देना पड़ेगा।
0: जवाब तो देना पड़ेगा। हाँ, भाई बहनों में यही होता है ना। किसी को चिढ़ाना, किसी के साथ खेलना, कुछ करना। और अमीक्षा, आप जब जाते हो वहाँ पे आपके पुराने फ्रेंड्स मिलते हैं, आप क्या क्या खेलते हो उनके साथ?
2: उनके साथ हम लोग गिल्ली डंडा खेलते हैं, खो खो खेलते हैं, और पहले जो जो गेम खेलते थे वो खेलते हैं।
0: अच्छा,
2: लंगड़ी टांग खेलते हैं।
0: गिल्ली डंडा अभी भी खेलते हैं?
2: हाँ।
0: आपको आता है?
2: नहीं, आता नहीं है, वो लोग सिखाते हैं।
0: सिखा देते हैं?
2: हाँ।
0: गिल्ली डंडा तो आप आजकल सुना ही नहीं रहता कोई खेलते हुए। आप लोगों ने खेला है कभी? अनुष्का ने, रूहानी ने गिल्ली डंडा खेला है?
1: नहीं, वो नहीं खेला, लेकिन उसके जैसा गेम खेला था।
0: क्या?
1: बॉटल से।
0: बॉटल से गिल्ली डंडा?
1: अच्छा। एक लकड़ी को उछाल के बॉटल से मारते।
0: अनुष्का ने?
3: हमने सिंपल ही गेम खेले, लुका छुपी, ऐसे पकड़म पकड़ाई, ऐसे कुछ
0: पकड़म पकड़ाई और लुका छुपी। हाँ, उसमें मजा आता है ना।
1: हम तो बहुत इंटरेस्टिंग गेम्स खेलते हैं, जैसे गेम के मतलब हमारा घर होता है ना, उसके आगे एक सीढ़ी जैसा बहुत लंबा सा होता है, आंगन जैसा, तो उस अलग अलग घरों के आंगन पर हम खेलते हैं। जैसे अगर एक कोई एक जो होता है ना डैम देता है, वो जो नीचे आ गए ना रोड पे उनको पकड़ता है, और अगर ऊपर चलेंगे आंगन पर तब नहीं पकड़ पाएगा, और अगर वो आंगन पे आ गया तो उसे मारेंगे, ऐसा। वो भी पकड़म पकड़ाई जैसा ही है, लेकिन थोड़ा अलग
0: जैसा है। क्या ऊंच नीच खेला है आप लोगों ने?
2: हाँ, वो हम लोग ने खेला है।
0: उसमें कुछ ऊपर होते थे तो नीचे जाना होता था।
2: हाँ,
0: है ना?
2: वो बताते थे कि तुम लोगों को उधर जाना।
1: हाँ, वो वही है, लेकिन हम उसको गुजराती में ओटला रे ओटला कहते हैं।
0: हाँ,
2: हम लोग ऊंच नीच का पापड़ा बोलते हैं।
0: ऊंच नीच का पापड़ा। क्या क्या नाम होते हैं ना, मजा आता है ना खेलने में।
1: हाँ।
0: ये तो हम लोगों ने भी खेले हैं गेम्स, मतलब आप लोग भी अभी पुराने वाले गेम्स खेलते हो।
1: हाँ, इतना भी थोड़ी हम ना मॉडर्न हो गए हम लोग।
0: हाँ, ये भी सही बात है। तो और वो खेलते हो, सिकड़ी खेलते हो आप लोग? सिकड़ी पता है किसी को? या पिट्ठू फोड़ खेलते हो?
1: नाम से नहीं पता, वैसे तो हम खेलते होंगे।
0: एक सिकड़ी होता है ना, उसमें 8 नंबर होते हैं, 1 2 फिर 3 फिर 4 5 एक साथ होता है, फिर 7 होता है, फिर 8 9 होता है। पत्थर फेंकना होता है, फिर एक टांग पे जाना होता है, उस पत्थर को उठाना होता है।
1: हाँ, वो भी खेला है। हम तो चौक से ही बना के खेलते हैं।
0: चौक से बनाते हैं उसको।
2: कोई कोई ईट से भी बनाता है।
0: हाँ,
1: लाल कलर की ईट होती है उससे।
0: उसको क्या बोलते हो आप लोग?
1: लंगड़ी टांग।
0: अच्छा, लंगड़ी टांग बोलते हैं। ओके। और पिट्ठू फोड़, उसमें ऐसे पत्थर के ऊपर पत्थर रखते हैं, 7 पत्थर, फिर बॉल से उसको गिराते हैं।
2: हाँ, हाँ, खेला है।
1: वो तो हम पत्थरों से खेलते हैं।
2: वो फिर बाद में वो बॉल मारते, तब तक वो
0: तब तक बनाना होता है उसको, वापस रखना होता है। क्या बोलते हैं उसको आप लोग?
1: हम तो बॉटल से खेलते हैं, कुछ बोलते नहीं है, बस बॉटल से मारते और बॉटल दूर फेंकते और बॉटल को लेने जाना पड़ता है, और बॉटल लेके फिर उल्टे पाँव वापस आना होता है।
0: अच्छा, ऐसा?
1: हाँ।
0: ये तो ट्विस्ट आ गया गेम में।
1: हाँ।
0: अनुष्का खेलती है? सबसे अच्छा क्या लगता है अनुष्का को खेलने में?
2: बैडमिंटन
0: अच्छा लगता है। अरे वाह, किसके साथ खेलते हो?
2: मैं अपने गांव में गई थी तो मेरा भाई थे और एक बहन थी, तो यहाँ पर जो भाई है उसके साथ।
0: अच्छा, यहाँ वाले भाई के साथ यहाँ खेलते हो और वहाँ वाले भाई के साथ वहाँ खेलते हो।
2: हाँ।
0: अच्छा, और गर्मियों की छुट्टियों में आप लोग क्या क्या करने वाले हो इस बार?
1: इस बार तो दीदी शांतिवन में जो समर कैंप हो रहा है ना, उसमें हम पार्टिसिपेट करने वाले।
2: उसमें बहुत सारे गेम्स होते हैं, एक्टिविटीज होती है,
1: नए फ्रेंड्स मिलते हैं।
0: और अनुष्का, आप आओगे समर कैंप में?
2: यस।
0: तो वहाँ पे बिल्कुल आपने अच्छा बताया कि यहाँ पे समर कैंप होता है, बहुत सारी एक्टिविटीज होते हैं, गेम्स होते हैं, कॉम्पिटिशन्स होते हैं, बहुत कुछ होता है ना। बहुत मजा आता है। ओके, चलिए देखते हैं आगे आगे क्या होने वाला है। तो समर्स में मतलब फुल इंजॉय करते हो आप लोग? समर ब्रेक अच्छा लगता है कि विंटर ब्रेक अच्छा लगता है?
1: विंटर ब्रेक। समर ब्रेक का सिर्फ आम अच्छा लगता है, बाकी विंटर ब्रेक
2: क्योंकि बहुत गर्मी होती है।
1: और इतनी गर्मी में बाहर निकलने भी नहीं देती।
2: हाँ, नानी वगैरह बोलती है लू लग जाएगी, घर के अंदर रह, लू लग जाएगी।
0: और अनुष्का, क्या अच्छा लगता है, गर्मी की छुट्टियाँ कि सर्दी की छुट्टियाँ?
3: हमको तो सर्दी की सही लगती है।
0: क्यों? हाँ बोलो।
3: हमको सर्दी की छुट्टियाँ अच्छी लगती है।
0: क्यों, ज्यादा क्यों अच्छी लगती है सर्दी की छुट्टियाँ?
3: क्योंकि उसमें ज्यादा बाहर निकलते हैं और फिर धूप आती तो उसमें खड़े रहते हैं। मजा आता है, बाहर नींद आती है, बाहर बैठते हैं तो धूप में
0: नींद आती है। अच्छा भी लगता है। गर्मी की छुट्टियों में धूप अच्छी लगती है?
2: बहुत धूप होती है।
0: तो फिर करते क्या हो दोपहर में अगर धूप होती है, बाहर नहीं खेलते तो फिर क्या करते हो?
1: घर में ही बुला लेते दोस्तों को
2: और खेलते हैं।
0: इंडोर गेम्स?
2: हाँ।
0: कौन से इंडोर गेम्स खेलते हो?
2: लूडो हो गया, सांप सीढ़ी हो गई।
1: मैं तो ऑफलाइन लूडो लाई थी, मतलब जो सामने ऐसा बोर्ड जैसा होता है ना उस पे रख के खेलते वो वाला लूडो, क्योंकि मेरे फोन की बैटरी बार बार खत्म हो जाती है।
0: अच्छा, आप लोग मतलब पहले लूडो फोन पे खेलते थे?
1: हाँ।
0: सब लोग?
1: हाँ।
0: अच्छा, ये
1: क्योंकि
0: तो
1: लूडो किसी ने फोन के अलावा कहीं नहीं देखा है।
0: आप लोगों ने लूडो फोन के अलावा देखा ही नहीं था?
1: नहीं।
0: ओह, हम तो हमेशा से वो लूडो हमारे घर पे रखा ही रहता था और सांप सीढ़ी भी खेलते थे, तो ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि अभी इतनी चेंजेस आ गए हैं जनरेशन में कि आप लोग फोन पे लूडो खेलते हो।
2: फोन में लूडो खेलते हैं ना, तो उसमें ऑप्शन आता है, उसमें लूडो भी चलता है और सांप सीढ़ी भी चलती है।
0: अच्छा, दोनों खेल सकते हैं उसमें?
2: एक ही ऐप में।
0: तो क्या चारों लोग खेल सकते हैं उसमें?
2: उसमें छह लोग खेल सकते हैं।
0: छह लोग लूडो खेल सकते हैं?
1: उसके बोर्ड का शेप भी अलग हो जाता है फिर छह लोग वाले में।
0: चार से तो डिफरेंट ही होगा।
1: स्क्वायर नहीं रहता है, पेंटागन हो जाता है।
0: ओके, और अनुष्का ने भी ऑनलाइन ही खेला है लूडो? ओके, तो आपने इस बार ऑफलाइन लेके आया ना आप लूडो, तो कौन से में ज्यादा मजा आया?
1: ऑफलाइन वाले में।
0: ऑफलाइन में ज्यादा मजा आया?
1: हाँ, क्योंकि उसमें ना मुझे ऐसा लगता है कि फोन में होता है ना उसमें डाइस होता है वो कंप्यूटर कंट्रोल करता है, और ऑफलाइन में हम कंट्रोल कर सकते हैं।
0: ये तो है, मजा तो आता है हाथ से उसको पासे को फेंकने में और फिर गोटी को चलने में, नंबर काउंट करके, ऐसे दो कंप्यूटर ही चल देता है अपने आप ही। जो आया
2: फोन में तो टुक टुक टुक टुक आवाज आती है।
0: हाँ, लेकिन वो अपनी गोटी खुद ही बढ़ा देता है और पासे का नंबर भी खुद ही आ जाता है, आपको तो बस क्लिक करना होता होगा, है ना। ऑफलाइन में ज्यादा मजा आता है, इस बार खेल के देखना ऑफलाइन, है ना, बैठ के खेलना, नानी के साथ खेलना, घर वालों के साथ खेलना, दोस्तों के साथ तो खेलते ही हैं, घर वालों के साथ भी खेल सकते हैं। खेलते हो कभी घर वालों के साथ?
2: हाँ, मेरी नानी और मैं खेलते हैं। हाँ? कभी कभार मेरी मासी भी खेलती है।
0: कौन जीतता है?
2: कोई भी जीतता है, एक दिन मैं जीतती हूँ, एक दिन मेरी मासी जीतती है, एक दिन मेरी नानी जीतती।
0: ओके, और आप लोग खेलते हो घर वालों के साथ?
1: हाँ,
0: सब लोग खेलते हैं।
1: मेरी दादी जी तो गुस्सा करती है, ले जा इसको यहाँ से, मेरे को नहीं खेलना।
0: क्यों?
1: पता नहीं,
0: उनको अच्छा नहीं लगता होगा लूडो।
1: नहीं,
0: या तो आप लोग शैतानी करते होंगे। थोड़ी थोड़ी
1: नहीं, ज्यादा
0: ज्यादा करते हो इसीलिए। अच्छा, गर्मी की छुट्टियों में ऐसा भी कुछ है जो आपको अच्छा नहीं लगता है, कुछ बोर होते हो किसी वजह से या कुछ पसंद नहीं है, ऐसा कुछ है?
2: नानी बोलती है पढ़ाई कर ले उसमें वेकेशंस में, हम बोलते नहीं हमें नहीं करने पढ़ाई।
1: हाँ, अगले साल की पढ़ाई करने को बोल देते, फिर जल्दी जल्दी बुक्स भी ला लेते अगली क्लास की।
0: वो नहीं अच्छा लगता ना। अनुष्का को क्या नहीं अच्छा लगता गर्मी की छुट्टियों के बारे में?
2: मेरे को वीन के जैसा ही है कुछ।
0: क्या, किताबें? नई क्लास की किताबें आ जाती है तो फिर मजा नहीं आता, उन पे कवर भी चढ़ाना होता होगा ना।
1: वही काम दे देते, इतनी सारी बुक्स, उसके जितनी कॉपीज, उस पे भी कवर चढ़ाना, नेम स्लिप भी उस पे
2: तो
1: लगा।
2: कवर भी नहीं होते हैं।
1: हाँ,
2: कवर बार बार दुकान पे जाना पड़ता है, लेके आना पड़ता है, फिर लगाना पड़ता है।
1: और विंटर वाले ज्यादा अच्छे लगते छुट्टियाँ, क्योंकि उसमें ना क्लास खत्म नहीं हुई होती है और हमें वही सिलेबस वापिस पढ़ना होता है, तो उसमें ज्यादा मजा आता है। अभी तो पूरी क्लास ही बदल जाती है।
0: अनुष्का क्या बोल रही थी आप, बार बार खत्म हो जाता है फिर क्या करते हो?
2: फिर तो बार बार जाके लेके भी आना पड़ता है कवर।
0: बहुत काम करना पड़ता है ना।
2: और स्टेपलर की पिन भी खत्म हो जाती है, वो भी लेने जाना पड़ता है,
0: सब बच्चों को करना पड़ता है।
2: हाँ।
0: बाप रे, और फिर पढ़ाई भी करनी पड़ती होगी, हॉलीडे होमवर्क भी तो मिलता होगा? नहीं
1: नहीं, अभी तो क्लास ही खत्म हो जाती है। विंटर छुट्टियों में भी हॉलीडे होमवर्क तो मिलता ही है।
0: गर्मियों में लेकिन देखो हॉलीडे होमवर्क नहीं है आपके पास।
1: दोनों ही अच्छे हैं और दोनों ही खराब है।
2: अगर होता भी है तो वो भी पढ़ाई से रिलेटेड नहीं होता, एक्टिविटीज देते हैं।
0: अच्छा, जैसे?
2: जैसे वो मिट्टी होती है ना, मिट्टी के गोले बना के उसमें कोई भी सीड डाल दे और वो पौधे के टाइप में लगा दे, और जब वो जब हम स्कूल जाएं तब उसको फर्स्ट डे पे ले जाए, वो लोग फिर हमें मार्क्स देते हैं, वो मार्क्स हमारे एग्जाम में भी जुड़ते हैं।
0: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये तो आप और प्रकृति से जुड़ रहे हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। और आपको भी मिलती है कुछ एक्टिविटी करने के लिए?
1: नहीं, हमारे तो एग्जाम के बाद ही तुरंत छुट्टियाँ पड़ जाती है।
0: तो फिर नेक्स्ट क्लास में जाना होता है सीधा जाके छुट्टियों के बाद.
2: हमारी एग्जाम होती है, फिर 4-5 दिन छुट्टी होती है, फिर अप्रैल में अगले साल की पढ़ाई होती है, फिर जून में मई जून छुट्टी
0: होती है. दो महीना छुट्टी होती है आपके पास. तो कुछ सीखने का मन नहीं करता कि गाना सीखें, कुछ और सीखें, कुछ प्रैक्टिस करें नया?
1: हाँ, सीखते हैं. मैं कभी कभी क्राफ्टिंग करती हूँ बैठी होती हूँ घर पे तो. और कभी कभी मन करता है, मतलब कभी खुल के नहीं गा पाती हूँ मैं, घर में सिर्फ गुनगुनाना ही होता है, और ऊपर छत पे जाके फिर मैं जोर से गाती हूँ.
0: अनुष्का, कुछ सीखने का मन करता है आपका? क्या?
3: डांस करने का मन करता है तो थोड़ा.
0: करते हो आप डांस?
3: थोड़ा थोड़ा करते हैं.
0: थोड़ा थोड़ा करते हो. यूट्यूब पे देखे या अपने आप ही ऐसी?
3: यूट्यूब पे देख के.
0: यूट्यूब
3: पे थोड़ा सा.
0: थोड़ा थोड़ा करते हैं, ज़्यादा नहीं करते हैं आप?
3: नहीं.
0: क्यों?
3: ज़्यादा मेरे को अच्छा नहीं लगता इसीलिए.
0: तो ज़्यादा अच्छा क्या लगता है आपको? क्राफ्ट अच्छा लगता है, गाना अच्छा लगता है, कुछ और अच्छा लगता है? पढ़ाई अच्छी लगती है लग रहा है अनुष्का को. खेलना अच्छा लगता है ना? ओके. तो गर्मी की छुट्टियों में एक्टिविटीज़ करते हैं, गेम्स खेलते हैं दोस्तों के साथ, और घूमने जाते हैं. तो मतलब बहुत मज़ा आता है
1: घूमने पर भी. जब प्लेस आ जाती है घूमने वाली तब भी मज़ा आता है, और जर्नी में नहीं आता क्योंकि इतना हिलता है वो, जैसे उल्टी जैसा हो जाता है. बसों में भी होता है, ट्रेन में भी होता है, सो सो के बोर हो जाते हैं एक ही जगह पे बैठे बैठे. खाना भी वहीं आ जाता है.
0: ट्रैवल कर रहे हैं तो बैठना ही पड़ता है उस समय. उस समय क्या कर सकते हो? घर वालों से बातें कर सकते हो?
1: उस समय मैं सोचती हूँ काश मैं घर पे ही अच्छी होती, खेल रही होती अभी अपने दोस्तों के साथ.
0: लेकिन वहाँ जाके फिर और लोगों से मिलने को भी तो मिलते हैं. फिर उनसे कहाँ मिल पाते हो छुट्टियों के बगैर? तो लगता होगा वो ही हमारे पास आ जाए ना. और अच्छी अच्छी चीजें खाने को भी तो मिलती है, फ्रूट्स भी आते हैं गर्मियों में अच्छे अच्छे. बहुत अच्छे होते हैं.
1: जर्नी में लगता है घर पे अच्छी हूँ, घर पे होती हूँ तब जर्नी में अच्छा लगता है.
0: और आपको कहाँ अच्छा लगता है मीक्षा?
2: मुझे तो घर में ही अच्छा लगता है, पर जर्नी में अच्छा नहीं लगता. जब मैं नए लोगों से मिलती हूँ तब भी अच्छा लगता है.
0: यानी कि रास्ता थोड़ा अच्छा नहीं भी हो तो मंजिल तो अच्छी है. तो रास्ते पे चलना चाहिए थोड़ा थोड़ा कभी कभी.
1: फिर मैं वहाँ की फोटो खींच के घर आके अपने ही दोस्तों को दिखाती हूँ, ये देखो मैं बर्फ में घूमने गई थी, ये देखो मैंने गले में सांप लटकाया था.
0: हाँ, फिर दोस्त तो शौक हो गए होंगे सांप देख के.
1: हाँ, कोई कोई तो देखता भी नहीं है पूरी पिक्चर क्योंकि उनको सांप से इतना डर लगता है.
0: डर लगता है. हाँ, सबको अलग अलग चीजों से डर लगता है. अनुष्का को सबसे क्या अच्छा लगता है, जाना घूमना कि घर में रहना?
3: घर में रहना ज्यादा लगता है क्योंकि बस में एक जगह रहते हैं इसीलिए.
0: एक जगह बैठना पड़ता है ना, बोर हो जाते हैं फिर. पर वहाँ पहुँच के तो अच्छा लगता होगा.
3: हाँ,
0: थोड़ी देर के लिए बोर हो रहे हैं लेकिन कितने दिन मजा भी तो आ रहा है ना. चलो आप लोग गर्मी की छुट्टियां इस बार भी इंजॉय करो बहुत खूब, और कुछ ना कुछ नया सीख के फिर रेडियो पे हमारे श्रोताओं के साथ आप शेयर करना कि आप लोगों ने गर्मी की छुट्टियों के बाद शेयर करना जून के बाद की क्या क्या सीखा इस बार, क्या क्या किया. ठीक है? ओके. तो चलो अभी कर देते हैं हम अपने दोस्तों को गुड बाय, और उनको विश कर देते हैं कि गर्मी की छुट्टियां उनकी बहुत बहुत अच्छी हो. तो क्या कहोगे आप लोग अपने दोस्त, कुछ बोल दो?
1: आप भी अपनी गर्मियों की छुट्टियां बहुत अच्छे से मनाओ और हमारे जैसे कुछ सीखो.
2: और आप कहीं घूमने जाओ तो हमें भी बताना कि आप कहाँ घूमने गए थे. ऑल द बेस्ट.
0: तो दोस्तों एंजॉय कीजिए, आप भी कुछ सीखिए, कुछ करिए, मम्मी पापा की हेल्प भी करिए थोड़ा, और अपने आगे वाली क्लास की तैयारी भी करिए. और अगर हॉलीडे होमवर्क मिला है तो उसको करना बिल्कुल मत भूलिएगा. एक साथ करना पड़ता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो थोड़ा थोड़ा करते रहिएगा. फिलहाल बच्चों की दुनिया से लेते हैं इजाजत. बाय बाय.

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिजीत सावंत। आप सुन रहे रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक हमारे आसपास का 22वां और आखिरी पाठ फिर चला काफिला, पृष्ठ 200। धनु का गांव। धनु की यहाँ आज दशहरे का बड़ा त्योहार मनाया जाएगा। सब रिश्तेदार अपनी अपनी बैलगाड़ियों पर सामान लादकर लाए हैं। धनु के बाबा परिवार में सबसे बड़े हैं, इसलिए सभी त्योहार उन्हीं के यहाँ मनाए जाते हैं। इस त्योहार पर मामी, आई यानी माँ और चाची मिलकर गुड़ और पूरण पोली बनाती हैं। पूरण पोली यानी चने की दाल की मीठी रोटियाँ, साथ में तीखी कढ़ी। दिन में गपशप चलती है, मगर शाम को माहौल कुछ बदल सा जाता है। सब औरतें और बूढ़े बच्चे सामान बांधने लगते हैं। आदमी लोग मुकादम के साथ मीटिंग के लिए बैठते हैं। मुकादम यानी कर्ज वसूल करने वाले। किस परिवार के ऊपर उसका कितना कर्जा बाकी है यह भी देखते हैं। फिर शुरू होती है आगे की बातें। मुकादम सभी गांव वालों को अगले 6 महीनों में कौन से इलाके में जाना है यह भी बताता है, साथ ही देता है खर्चे के लिए कुछ पैसे। पृष्ठ 201। जब से धनु को याद है तब से यही चलता आया है। बरसात के पहले से दशहरे तक गांव के बड़े किसानों के खेतों में काम होता है। इन खेतों में धनु के परिवार जैसे ही कई परिवार काम करते हैं। इस कमाई से उनका इन महीनों का खर्चा चल जाता है, पर बाकी के कुछ महीने जब बरसात नहीं होती तब खेतों में भी काम नहीं होता। फिर उस समय गुजारा कैसे हो, इसलिए सब कर्जा लेते हैं। इस कर्जे को चुकाने के लिए वे मुकादम के लिए काम करते हैं। यह मुकादम शक्कर के कारखाने का दलाल है। वह उन्हें गन्ने के खेतों में काम दिलवाता है। बताओ, क्या धनु के गांव में सभी किसान अपनी जमीन पर काम करते थे? धनु के परिवार के पास अपने गांव में कब काम होता था और कब नहीं? क्या तुम कुछ ऐसे परिवारों को जानते हो जो खेती से जुड़े हैं और जिन्हें काम करने के लिए कुछ महीने घर छोड़ना पड़ता है? पृष्ठ 202। सोचो और पता करो। अगर धनु के गांव के लोग अपना गांव छोड़कर काम के लिए ना जाएं, तो वहां उन्हें कैसी परेशानियां हो सकती हैं? धनु के गांव में जब बारिश नहीं होती तब खेती भी नहीं हो पाती। क्या बारिश के पानी के बिना भी खेती की जा सकती है? अब आगे कुछ महीने धनु, उसके आई, बापू, चाचा, उनके दो बड़े बच्चे, मामा मामी, उनकी दो लड़कियां और गांव के 40-45 परिवार अपने घर से दूर रहेंगे। 6 महीने धनु और उसके जैसे कई बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे। धनु के घर में उसकी बूढ़ी दादी, एक चाची जो देख नहीं सकती और 2 महीने की चचेरी बहन ही रह जाएंगे। इसी तरह गांव के अन्य कई परिवारों में भी बूढ़े और बीमार लोग रह जाते हैं। धनु को अपनी दादी की बहुत याद आती है। वे उसे बहुत प्यार जो करती हैं। धनु हमेशा सोचता है कि उसके पीछे से दादी की देखभाल कौन करेगा, पर धनु क्या करे? सोचो, जब धनु का परिवार और गांव के लोग काम के लिए दूसरी जगह जाते हैं तब कुछ लोग गांव में ही रह जाते हैं। ऐसा क्यों होता होगा? जब धनु और उसके जैसे कई बच्चे 6 महीने तक गांव छोड़कर चले जाते हैं तब गांव के स्कूल में क्या होता होगा? तुम्हारे घर के लोग जब काम के लिए घर से बाहर जाते हैं तो बुजुर्गों और बीमारों की देखभाल के लिए घर में क्या इंतजाम होता है? दशहरे के बाद परिवारों का यह काफिला अब गन्ने के खेतों और शक्कर के कारखानों के पास झोपड़ियां बनाकर रहेगा। अपनी झोपड़ियां ये गन्ने के सूखे पत्तों और रस निकले गन्नों से बनाते हैं। सुबह के अंधेरे में उठकर घर के आदमी खेतों में गन्नों की कटाई करते हैं। बच्चे और औरतें गन्नों के गट्ठर बांधते हैं, फिर उन्हें शक्कर के कारखानों में ले जाते हैं। पृष्ठ 203। कई बार धनु भी उनके साथ जाता है। कारखानों के बाहर कभी कभी 2-3 रातें बैलगाड़ियों पर गुजारनी पड़ती हैं। तब धनु अपने बैलों के साथ खेलता है, यहाँ वहाँ घूमता है। कारखाने पर अपने परिवार के हिस्से के गन्नों का वजन करवाकर धनु के बापू रसीद लाते हैं। जब जब मुकादम मिलने आता है तब उसे ये रसीदें दिखाकर कर्जे का हिसाब रखा जाता है। मुकादम अगले हफ्ते के खर्चे के पैसे भी दे जाता है। तब धनु की आई और मामी बच्चों को लेकर पास के गांव के बाजार से हफ्ते भर का आटा तेल खरीदते हैं। बच्चों के लिए एक आध लड्डू सेव चने भी ले लेती हैं। मामी धनु के लिए पेंसिल रबड़ या कॉपी भी खरीदती हैं। धनु मामी का लाडला जो है। पर 6 महीने तो ये चीजें धनु के काम ही नहीं आ पाती। वह स्कूल जो नहीं जा पाता। मामी चाहती हैं वह पढ़े और बड़ा होकर कुछ बने, उसे इस परिवार के साथ भटकना ना पड़े। आजकल मामा मामी धनु के आई बापू से कहते हैं, अगली बार जब दशहरे पर हम लोग गांव छोड़कर जाएंगे तब धनु अपनी दादी और चाची के साथ रहेगा। वह गांव के बाकी बच्चों की तरह स्कूल जाएगा, बीच में पढ़ाई नहीं छोड़ेगा, आगे पढ़ेगा और कुछ बनेगा। पृष्ठ 204। सोचो और बताओ। मामी क्यों चाहती हैं कि धनु साल भर स्कूल जाए, पढ़े और कुछ बने? जब तुम लंबे समय के लिए स्कूल नहीं जा पाते तो क्या होता है? चर्चा करो और लिखो। धनु 6 महीनों के लिए जहां गांव वालों के साथ जाता है, क्या वहां पढ़ाई का इंतजाम किया जा सकता है? बताओ कैसे? ऐसे कुछ और भी काम हैं जिनके लिए लोगों को कई महीनों तक अपने घरों से दूर रहना पड़ता है। किताब से और उदाहरण ढूंढो और लिखो। अलग अलग किसानों के जीवन में क्या समानताएं हैं और क्या फर्क हैं? हम क्या समझे? तुमने कई पाठों में अलग अलग तरह के किसानों के बारे में पढ़ा। अब एक तालिका बनाओ और उनके बारे में लिखो। तालिका में 5 कॉलम बनाओ। पहले में लिखो किसान का नाम, दूसरे में उसकी खुद की खेती है, सही या गलत का निशान लगाओ। तीसरे कॉलम में वे क्या उगाते हैं, यह लिखो। फिर चौथे कॉलम में उन्हें क्या परेशानियां आईं, यह लिखो। और आखिरी कॉलम में कुछ और बताना चाहते हैं तो वह लिखो। इस तरह से 5 कॉलम होंगे। किसान का नाम, दूसरा खुद की खेती सही या गलत, तीसरा क्या उगाते हैं, चौथा क्या परेशानियां आईं, पांचवा और कुछ। जैसे दामजी भाई, उनके बारे में लिखो, या हसमुख, उसके बारे में लिखो। फिर चला काफिला। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक हमारे आसपास का 22वां और आखिरी पाठ।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: दादाजी और ज्योतिपुंज। दादाजी और राहुल लूडो खेल रहे थे, तभी वहां रिया आ गई।
2: दादाजी, ओरियन क्या होता है?
3: अरे बुद्धू, ओरियन नहीं, ओनियन होता है। ओनियन यानी प्याज।
4: राहुल, रिया ठीक कह रही है, ओरियन एक ज्योतिपुंज या तारामंडल है।
2: दादाजी, ज्योतिपुंज कैसे होता है?
4: ज्योतिपुंज अनेक तारों का समूह होता है।

0: पता है इनका अपना महत्व होता है।
1: कैसा महत्व दादाजी?
0: अगर किसी ज्योतिपुंज को पहचान लिया जाए तो उसमें स्थित सभी तारों की स्थिति स्पष्ट हो जाती है, और केवल यही नहीं उनके आसपास स्थित अन्य ज्योतिपुंजों को भी आसानी से पहचाना जा सकता है।
2: वह कैसे दादाजी?
0: रिया, तुम ओरियन को ही उदाहरण के रूप में ले लो। इसमें लाल तारा बीटलजूस इसके कंधे का, तो नीला तारा रीगल इसके पैरों का निर्माण करता है। इसी प्रकार बीटलजूस के समानांतर बेलाट्रिक्स तारा स्थित होता है, तो रीगल के समानांतर सैप।
1: वाह, अच्छा दादाजी, हमें ओरियन के विषय में कुछ और बताइए।
0: ओरियन को अंग्रेजी में द हंटर और हिंदी में मृग के नाम से जाना जाता है।
2: दादाजी, ओरियन कब और कहां देखे जा सकते हैं?
0: रिया, ओरियन दक्षिण गोलार्ध में ग्रीष्म काल में तथा उत्तरी गोलार्ध में शीतकालीन शाम को सरलता पूर्वक देखा जा सकता है, मुख्य रूप से जनवरी से मार्च के महीने तक।
1: दादाजी, कुल कितने ज्योतिपुंज हैं?
0: अब तक कुल मिलाकर 88 ज्योतिपुंजों की खोज हो चुकी है।
2: ये ज्योतिपुंज कौन कौन से हैं दादाजी?
0: ये ज्योतिपुंज कर्क, वृषभ, मिथुन आदि हैं।
1: दादाजी, ज्योतिपुंजों के नाम क्या राशियों के नाम पर ही आधारित होते हैं?
0: केवल राशियां ही नहीं, ज्योतिपुंजों के नाम पशुओं और ग्रीस के पौराणिक कथाओं के पात्रों के नाम पर भी आधारित होते हैं।
2: धन्यवाद दादाजी, आपने हमें इतनी अच्छी अच्छी जानकारियाँ दी।
1: रिया, मैं तो दादाजी के साथ साथ तुम्हें भी धन्यवाद दूंगा।
2: भला मुझे क्यों भैया?
1: क्योंकि यदि तुम ओरियन का जिक्र नहीं करती तो दादाजी से हमें इतनी अच्छी अच्छी जानकारियाँ नहीं मिलती।
3: राहुल ने हंसते हुए कहा तो दादाजी और रिया मुस्कुराने लगे और उन्होंने सोचा कि ऐसे ही बड़ों से अच्छी अच्छी जानकारियाँ प्राप्त करते रहेंगे।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ढेर सारी खुशियों के साथ आइए बात करते हैं आज जिनका जन्मदिन है, उसमें से गुलजार, विष्णु दिगंबर पुलस्कर, विजय लक्ष्मी पंडित, बाजीराव प्रथम, राघोबा, एवी तारापुरे, निर्मला सीतारामन, गीतिका झाकड़, शिवानंद बाबा, बीएम हेगड़े, इन सभी का जन्मदिन है। और इसके साथ ही सुभाष चंद्र बोस, श्री नारायण चतुर्वेदी, वसंत राव नाइक, इन सभी का पुण्य दिवस है। तो आइए आज हम लोग विशेष रूप से कुछ खास लोगों की बात करते हैं, क्योंकि जिनका आज जन्मदिन है उनमें से बहुत सारे लोग बहुत ही विशेष हैं, तो आपको उनके बारे में जरूर सुनाएंगे। और सबसे पहले आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक सुंदर विचार से, और विचार सुनने के बाद आपको अच्छा लगता है। और हमारे दयाराम जी विचार सुनने के बाद कॉल करते हैं कि आज का विचार बड़ा सुंदर था। तो आइए आगे बढ़ते हुए एक विचार, जीतना और हारना ये तो आपकी सोच पर निर्भर करता है, मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी, है ना कमाल की बात। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर, जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। तो आइए आगे बढ़ते हुए एक बहुत ही प्यारा सा गीत कार्यक्रम की शुरुआत में, और मैं चाहूंगा कि आज के शाम को यादगार बनाइए आप अपने लिए। तो आपके लिए ये गीत, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: मैं जानकी हिमलानी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हम शपथ लें कि आज के बाद जब कभी भी हम गाड़ी चलाएंगे तो स्पीड का ख्याल रखेंगे, खुद का भी ख्याल रखेंगे और सामने वाले का भी ख्याल रखते हुए हेलमेट पहन करके ही अपनी गाड़ी को चलाएंगे।
1: रेडियो मधुबन, नमस्कार। आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हैं। आइए शिवानंद बाबा के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। और भारत के एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि इनकी उम्र 126 साल है और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2022 की पूर्व संध्या पर घोषित पद्मश्री प्राप्त करने वाले सूची में एक नाम वाराणसी के शिवानंद बाबा का भी था। बाबा शिवानंद बाबा के बारे में कहा जाता है कि वो चमक दमक की दुनिया से दूर रहना चाहते हैं। सन 1925 में अपने गुरु के आदेश पर 29 साल की उम्र में वो दुनिया के भ्रमण पर चले गए थे और 34 साल तक देश विदेश को उन्होंने नाप डाला और जिंदगी के गूढ़ रहस्य जुटाए। इसके बाद लोग और स्वास्थ्य दिनचर्या के योग और स्वास्थ्य दिनचर्या के लिए लोगों को प्रेरित करने लग गए। अब लोगों से जब भी मिलते हैं तो वो योग का जिक्र करते हैं और योग के बारे में बताकर उन्हें जो है समृद्ध करने की बात करते हैं। योग से स्वास्थ्य और ज्ञान दोनों प्राप्त होता है ये बताते रहते हैं। तो आइए ऐसे विशेष शिवानंद बाबा के बारे में बात करते हैं। योग साधक बाबा शिवानंद वैसे तो अपने जीवन के बारे में कोई चर्चा नहीं करते, लेकिन उनके पुराने साक्षात्कारों से ये जानकारी हासिल की गई है। तो आइए शिवानंद बाबा जी के बारे में मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा। और कहते हैं कि वो रोज जो है दिनचर्या में उनका 3 बजे उठ जाते हैं, इसके बाद वे 1 घंटा योग करते हैं, भागवत गीता और माँ चंडी के श्लोकों का पाठ करते हैं। बाबा शिवानंद केवल उबला हुआ भोजन खाते हैं, वो कम नमक वाला खाना खाते हैं। इस उम्र में भी बाबा शिवानंद काफ़ी हेल्दी है, स्वस्थ है। अपनी उम्र की पुष्टि करते हुए एक इंटरव्यू में बाबा शिवानंद ने बताया था कि उनका जन्म बंगाल के श्रीहट्टी जिले के 1896 में हुआ था। भूख के कारण उनके माता पिता चल बसे थे, तब से लेकर बाबा ने केवल आधा पेट भोजन करने का संकल्प लिया जिसे वे अब तक निभा रहे हैं। गरीबों के प्रति उनकी आत्मीय भावना है। चूँकि गरीब लोगों को फल और दूध नसीब नहीं होता तो बाबा भी उन्हें ग्रहण नहीं करते। साल 1979 में वह शिव बाबा शिव की नगरी काशी में ही रह रहे थे और काशी के बारे में उनका कहना है कि ये पवित्र भूमि के साथ साथ तपोभूमि भी है, यहाँ पर स्वयं भगवान शंकर विराजते हैं, इसलिए उन्हें ये बहुत अच्छा लगता है। और इसके साथ में शिवानंद बाबा की फिटनेस व उम्र की योग अभ्यास करने का हुनर तब ज़्यादा चर्चा में आया जब अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने ट्विटर पर उनका वीडियो शेयर कर उनकी सेहत के बारे में सबको बताया। इन्हीं से प्रेरणा पाकर शिल्पा ने योग आसन शुरू किए और खाना पीना में बदलाव किया। वह अपने फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर बाबा के बारे में लिखती रहती हैं। जब वो 123 वर्ष की आयु में कितने प्रसन्न और पॉजिटिव है, ये उनका ट्वीट था। शिवानंद बाबा अपनी बेहतर ज़िंदगी के लिए वो हमारे लिए आदर्श हैं। बाबा की इस बेहद ज़्यादा उम्र के प्रमाण भी उनके पास हैं। उसके उनके आधार कार्ड व पासपोर्ट पर उनकी जन्म तिथि लिखी हुई है। 1896 में उनका जन्म दर्ज है, 18 अगस्त। और इस दावे को माना जाए तो वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जापान के चित्तीसु वत्त नबे के नाम दर्ज सबसे अधिक आयु वाले व्यक्ति के रिकॉर्ड 122 साल से काफ़ी आगे है, ये उनका कहना था। तो कहने का भाव ये है कि आज शिवानंद बाबा जो है इस उम्र में भी चलते फिरते हैं और स्वस्थ रहते हैं। आप देखते हैं 100 साल के व्यक्ति चलना फिरना उसका बंद हो जाता है, घर पे रहते, लेकिन ये अभी भी योग करते हैं। और आप इनके वीडियो भी देखा होगा, कभी नहीं देखा होगा तो शिवानंद बाबा यूट्यूब पर डाल दीजिए, आपको देखने को मिल ही जाएगा। तो आइए ऐसे विशेष व्यक्ति को याद करें। एक और गीत आपके नाम आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर। जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं आप, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: गर्मी होगी तो आई एम फाइन विद इट, लेकिन ठंड मेरे से जहन नहीं होती। ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है, तो मैंने अपने आप को कंडीशनिंग दे दी कि गर्मी में आई विल बी फाइन, लेकिन ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है। विच मीन्स मैं अपना ध्यान नहीं रखूंगी, ठंड में बीमार पड़ना अलाउड है। तो अब एक महीना दो महीना मैंने अपने आप को बीमार रहना अलाउड हुआ। अगले साल ठंड 6 महीने रही और मेरी प्रोग्रामिंग मैंने चेंज नहीं की और मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट भी नहीं किया, तो अगले साल मैं 6 महीने बीमार रही। उसके 2 साल के बाद इतनी ठंड आई, और क्योंकि मेरा इम्यूनिटी सिस्टम हर साल बीमार होते होते होते होते कमजोर होता जा रहा था, उसके 4 साल बाद इतनी ठंड आई दैट आई जस्ट कुडंट टेक इट। एंड देन वी से डिप्रेशन, नर्वस ब्रेकडाउन, दिस, क्योंकि करते करते करते करते ताकत तो कम होती जाएगी और दुनिया की परिस्थितियां बढ़ती जाएंगी।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और बात ये कर रहे थे हम लोग शिवानंद बाबा के बारे में, आशा करूंगा आपको भी सुनकर आश्चर्यचकित जरूर हुआ होगा। बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि 126 साल अब से 27 साल हो गए उनको, और फिर भी हेल्दी वेल्दी और हैप्पी हो रहकर अपने सारे काम काज करते हुए लोगों को योग करने की प्रेरणा देते हैं ना, अपने अपने अपने कमाल की बात। तो आइए आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं एक और शख्सियत के बारे में। तमिलनाडु मदुराई से बिलोंग करती है निर्मला सीता रामन। भारत की राजनीति का एक परिचित नाम है निर्मला सीता रामन। ये दक्षिण पंथी विचारधारा की नेत्री हैं और एक लंबे समय में भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत कार्य कर रही हैं। 2014 के लोकसभा में राष्ट्रीय जनजातीय गठबंधन जीतने के बाद इन्हें विशेष रूप से मोदी सरकार ने अपने कैबिनेट में स्थान दिया और देश के कैबिनेट में शामिल होने के साथ ही निर्मला सीतारमण भारतीय प्रवक्ता के पद पर भी है और भारत में तमिलनाडु के तिरुचिल्लीपल्ली में रहती हैं। और 2014 में इन्हें रक्षा मंत्री का कार्यभार बहुत ही बेहतरीन तरीके से संभाला और वित्त मंत्री की कमान सौंपी गई इन्हें 2019 में, और वहां भी इन्होंने अहम भूमिका निभाई है। तो ये मंत्रालय अरुण जेटली के द्वारा संभाला जा रहा था और मोदी मंत्रिमंडल में हुए फेरबदल के पश्चात ये डिपार्टमेंट अब जो है निर्मला सीतारामन के कॉरपोरेट मंत्रालय को सौंप दी गई है। आइए इनके बारे में बात करते हैं। इनका जन्म आज ही के दिन 18 अगस्त 1959 को तमिलनाडु के मदुराई में ब्राह्मण परिवार में हुआ। पिता का नाम नारायण सीतारामन और माता का नाम सावित्री देवी है। इन्हें बचपन से ही देश की राजनीतिक व्यवस्था को समझने का एक बहुत बड़ा इच्छा थी और ललक थी, और इसके चलते सीता लक्ष्मी कॉलेज से बीए की डिग्री हासिल की और इसके बाद उन्होंने विश्वविद्यालय से 1980 में अर्थशास्त्री में एमए डिग्री हासिल की और बाद में यहीं से एमफिल की डिग्री प्राप्त करके आगे बढ़ी। और निर्मला सीतारामन वर्ष 2006 में भारतीय जनता में शामिल हो गई और इनके एक वर्ष बाद इनके पति डॉक्टर प्रभाकर 2007 में फिल्म स्टार चिरंजीवी की पार्टी में शामिल हुए। हालांकि वर्ष 2000 के आसपास डॉक्टर पाराकाल प्रभाकर भारतीय जनता पार्टी के आंध्र प्रदेश यूनिट के प्रवक्ता बने और इस तरह से इनका जो है परिवार इसी क्रम में राजनीति में सफर में आगे बढ़ती रही और सुर्खियों में हमेशा रही है। रक्षा व वित्त मंत्री की बात करें तो 29 मई 2016 में निर्मला सीतारामन भारतीय जनता पार्टी के 12 प्रत्यक्षों में से एक थी जो राज्य चुनाव लड़ने वाले थे। इसी चुनाव के कर्नाटक की तरफ से जीत मिली और राजनीतिक करियर में सबसे बड़ी उपलब्धि इनको मिली रक्षा मंत्री बनना, और 2014 में सरकार ने इन्हें रक्षा मंत्री बनाया और उन्होंने इस पद के लिए 3 सितंबर 2017 को शपथ भी ग्रहण की। और इस तरह से निर्मला सीतारामन पहली पूर्ण समकालिक महिला रक्षा मंत्री बनी और 2019 में निर्मला सीतारामन को वित्त मंत्री बनाया गया। और इस तरह से निर्मला सीतारामन भारत की पूर्व विशेष रूप से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बाद दूसरी महिला रक्षा मंत्री और पहली पूर्ण समयकालीन महिला रक्षा मंत्री बनी है। तो ये थी कुछ खास बातें निर्मला सीतारामन के बारे में। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर सफर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और महिला जब रक्षा मंत्री का कारोबार संभालेंगी तो निश्चित तौर पे देश में विकास और होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और आप सभी को ले चलते हैं एक बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ, जोड़ना चाहूँगा, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, मैं हूं सिंगर साइरा मैयर और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता चल।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चलिए, निर्मला सीतारामन के बारे में सुनकर भी अच्छा लगा होगा, और कभी कभी ऐसी चीज़ें सुनते हैं बेहद खुशी होती है हमें, और आप सभी को भी खुशी होगी। आइए, आप बात करते हैं एक और शख्सियत के बारे में, बाजीराव प्रथम के बारे में। मराठा साम्राज्य का महान सेना नायक था वो। बालाजी विश्वनाथ और राधा भाई का बड़ा पुत्र था। राजा शाहू ने बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो जाने के बाद उसे अपना दूसरा पेशवा नियुक्त किया गया था। बाजीराव प्रथम को बाजीराव बल्लाल तथा थोरले बाजीराव के नाम से भी जाना जाता है। और बाजीराव प्रताप विस्तारवादी प्रवृत्ति का व्यक्ति था, और उन्हें हिंदू जाति की कीर्ति को विस्तृत करने के लिए हिंदू पद पादशाही के आदर्श को फैलाने का प्रयत्न किया था, और इसी नाम से वो आगे बढ़े और इसी काम के लिए उन्हें याद किया जाता है। और बाजीराव प्रथम एक महान राजनायक और सेनापति था योग्य। अपने मुगल साम्राज्य की कमजोर हो रही स्थिति का फायदा उठाने के लिए राजा शाहू को उत्साहित करते हुए कहा था कि आओ हम इस पुराने वृक्ष के खोखले तने पर प्रहर करें, शाखाएं तो स्वयं ही गिर जाएगी। हमारे प्रयत्नों से मराठा पताका कृष्णा नदी से अटक तक फहराने लगेगी। इसके उत्तर में शाहू ने कहा कि निश्चित रूप से ही आप इसे हिमालय के पार गाड़ देंगे, निसंदेह आप योग्य पिता के योग्य पुत्र है। राजा शाहू ने राजकाज से अपने को करीब करीब अलग कर लिया था, और मराठा साम्राज्य के प्रशासन का पूरा काम पेशवा बाजीराव प्रथम देखता था, और बाजीराव प्रथम को सभी 9 पेशाओं में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। बाजीराव प्रथम ने अपने दृष्टि से देखा लिया कि मुगल साम्राज्य छिन्न भिन्न होने जा रहा, इसलिए उसने महाराष्ट्र क्षेत्र में बाहर के हिंदू राजाओं की सहायता से मुगल साम्राज्य के स्थान पर हिंदू पद पादशाही स्थापित करने की योजना बनाई थी। इस उद्देश्य से उसने मराठा सेनाओं को उत्तर भारत भेजा, जिससे विशेष मुगल साम्राज्य की जड़ पर अंतिम प्रहर किया जा सके। और वो 1723 में मालवा पर आक्रमण किया, और 1724 में स्थानीय हिंदुओं की सहायता से गुजरात जीत लिया था। साहसी और कल्पनाशील विशेष बाजीराव प्रथम थे। हिंदू पातशाही का प्रचार और सफलताएं उन्हें बहुत मिली। शाहू को चौथा तथा सर देशमुखी सेना देना, शंभू की किसी तरह से सहायता ना करना, और जीते गए प्रदेशों को वापस करना, युद्ध के समय बंदी बनाए गए लोगों को छोड़ देना आदि, तो इस तरह का ये जो है 4 विधान बनाए थे। और शिवाजी के वंशज को कोल्हापुर शाखा के राजा शंभू तथा निजाम मुल्क जो बाजीराव प्रथम की सफलताओं से जलते थे, त्र्यंबक राव दाभड़े से जा मिले, और बाजीराव प्रथम ने अपने उच्च प्रतिभा के बल पर अपने शत्रुओं की योजना को विफल कर दिया था। तो ये थी कुछ खास बातें बाजीराव प्रथम के बारे में। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को सुनते रहो, मस्कराते रहो।

0: पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, जीना सीखा। रेडियो मधुबन की छोटी सी पाठशाला।
1: एक माँ का अपने बच्चे के प्रति जो स्नेह होता है वो निस्वार्थ स्नेह होता है। एक बार माँ जो थी ना किचन में ब्रेकफास्ट बना रही थी, और बेटा जो होता है वो मम्मी के पास आता और कहता, मम्मा मुझे इस महीने का बिल आपको सबमिट करना है। मम्मी कहती, व्हाट? लाइक यस। तो मामा को बिल देता है तो मामा उसको देखती है, मालूम बेटा क्या लिखता है? मामा, इस महीने आपने 3 बार मुझे नीचे दुकान में सामान खरीदने को कहा, एट द रेट ऑफ 3 रुपीज पर ट्रिप, 9 रुपीज बिल। मामा आपने बकेट ऑफ पानी को यहाँ से यहाँ उठा के रखने के लिए कहा, अनदर 5 रुपीज। मामा आपने छोटी बहन को संभालने के लिए कहा, वेरी टेरिफिक जॉब, 10 रुपीज। सारा महीने का बिल 66 रुपीज, क्योंकि यू आर माई डियर लविंग मम्मी, 6 रुपीज दिवाली डिस्काउंट, 60 रुपीज बिल। तो मामा ये बिल को देखती है, मुस्कुराती है अपने क्यूट बॉय को देख कर। द अदर एंड ऑफ द बिल जो खाली पेज था, माँ लिखती है, 9 महीने मैंने आपको अपने खून से सींचा, नो चार्ज। मैंने आपको चलना सिखाया, पढ़ना सिखाया, लिखना सिखाया, नो चार्ज। जब भी आप बीमार पड़ते थे तो रात रात बैठकर मैंने आपकी पालना दी, नो चार्ज। जब भी आप स्कूल से, ट्यूशन क्लासेस से थके हारे वापस आते थे, गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट, भोजन, डिनर बनाकर देती थी, नो चार्ज। और मम्मी नीचे लिखते 0 रुपीज बिल, और बेटे को देती है। बेटा ये बिल को देखता है, अपनी मम्मी को देखता है, कहता है, मामा आई एम वेरी सॉरी, और अपना बिल लेता है, उसको कट करता है और बहुत बोल्ड लेटर्स में लिखता है, मामा पेड इन फुल, मामा पेड इन फुल बट इनडेब्टेड फॉरएवर, जीवन भर मैं आपका कर्जदार रहूंगा।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। बाजीराव प्रथम का जो विशेष हिंदू पद बादशाही का जो मोर्चा जो है वो बहुत अच्छी तरह से काम करने लगा, और निजाम मुल्क पर विजय उनका हुआ, और आमेर के सवाई जयसिंह दूसरे 36 साल बुंदेल की मित्रता प्राप्त कर ली, और 1737 में वो सेना लेकर दिल्ली के पर्श तक गए, परंतु बादशाह की भावनाओं पर चोट पहुंचाने से बचने के लिए उसने अंदर प्रवेश नहीं किया। इस मराठा संकट से मुक्त होने के लिए बादशाह ने बाजीराव प्रथम के घोर शत्रु निजामुल को सहायता के लिए दिल्ली बुला भेजा, और 1731 में समझौते की अपेक्षा करने के कोई भी हिचकिचाहट महसूस नहीं हुई। उसने बादशाह के बुलावे का शीघ्र ही उत्तर दिया, क्योंकि उसने बाजीराव की बढ़ती हुई शक्ति के रोकने का अनुकूल अवसर समझा, और भोपाल के निकट दोनों प्रतिद्वंदी की मुठभेड़ हुई और निजाम मुल्क पराजित हुआ तथा उसे विवश होकर संधि करनी पड़ी। इस संधि के अनुसार उसने निम्न बातों की प्रतिज्ञा की थी, और बाजीराव को संपूर्ण मालवा देना तथा नर्मदा और चंबल नदी के बीच के प्रदेश पर पूर्ण प्रभुत्व प्रदान करना, बादशाह से इस समर्पण के लिए स्वीकृति प्राप्त करना, और पेशवा का खर्च चलाने के लिए 50 लाख रुपए की अदायगी प्राप्त करने के लिए प्रत्येक प्रयत्न को काम में लाना। इस तरह से ये चीजें हुई, और फिर उसके बाद इन प्रबंधों के बादशाह द्वारा स्वीकृत होने का परिणाम ये हुआ कि मराठों की प्रभुत्व, जो पहले ठेठ हिंदुस्तान के एक भाग में वस्तुत स्थापित हो चुकी थी, अब कानूनन भी हो गई, और पश्चिम समुद्र तट पर मराठों ने पुर्तगालियों के 1739 में सास्ती तथा बसाई छीन ली। परंतु शीघ्र ही बाजीराव प्रथम नादिर शाह के आक्रमण से कुछ चिंतित हो गए। अपने मुसलमान पड़ोसियों के प्रति अपने सभी मतभेदों को भूलकर पेशवा ने पारसी आक्रमणकारियों को संयुक्त मोर्चा देने का प्रयत्न किया, परंतु इसके पहले कि कुछ किया जा सकता था, 28 अप्रैल 1740 को नर्मदा नदी के किनारे उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार एक महान मराठा राजनीतिक चल बसा, जिसने अपने व्यक्तिगत चारित्र में कुछ दब्बों के बावजूद मराठा राज्य की सेवा करने की भरकस चेष्टा की थी। बाजीराव प्रथम ने अनेक मराठा सरदारों के विरुद्ध का सामना करना पड़ा था उन्हें, और उन सरदारों का जो क्षत्रिय थे, ब्राह्मण पेशवा की शक्ति बढ़ने से ईर्ष्या करते थे। बाजीराव प्रथम ने पुस्तैनी मराठा सरदारों की शक्ति कम करने के लिए अपने समर्थकों से नए सरदार नियुक्त किए गए थे, और उन्हें मराठों के द्वारा विजित नए क्षेत्रों का शासन नियुक्त किया था। इस प्रकार मराठा मंडल की स्थापना हुई, जिसमें ग्वालियर के सिंधे, बड़ौदा के गायकवाड़, इंदौर के होलकर और नागपुर के भोसले शासक शामिल थे। इन सब के अधिकार में काफी विस्तृत क्षेत्र था। इन लोगों ने बाजीराव प्रथम का समर्थन कर मराठा शक्ति के प्रसार में बहुत योगदान दिया था। तो ये थी कुछ खास बातें बाजीराव प्रथम की। आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन पर सफर, इस कार्यक्रम को सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज पर, 107.8 एफएम पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। कार्यक्रम के आखिरी मोड़ पे आपको हिंदी फिल्मों के बहुत ही पॉपुलर गीतकार के बारे में बताना चाहूँगा, जिनका नाम है गुलजार। जी हाँ, एक कवि, पटकथा लेखक, फिल्म निर्देशक तथा नाटककार भी हैं। इनकी रचनाएं मुख्यतः हिंदी, उर्दू और पंजाबी में हैं। गुलजार को 2002 में साहित्य अकादमी पुरस्कार और 2004 में भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। 2009 में डैनी बॉयल द्वारा निर्देशित फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर में उनके द्वारा लिखे गए गीत जय हो के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ गीत का ऑस्कर पुरस्कार भी मिल चुका है। इस गीत के लिए गुलजार को ग्रैमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया और 2013 में उनके लिए गुलजार को भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फल्के के लिए चुना गया। तो आइए इनके बारे में जानते हैं। आज ही के दिन 18 अगस्त 1936 को विशेष जेलम में इनका जन्म हुआ था, जो संपूर्ण सिंह कालरा उर्फ गुलजार ने न सिर्फ एक गीतकार के रूप में बल्कि लेखक, निर्माता और निर्देशक के रूप में बॉलीवुड में अपना विशेष योगदान दिया है। और बचपन के दिनों में ही शेरो शायरी का शौक रखने वाले गुलजार अंताक्षरी के कार्यक्रम में भी हिस्सा लेते रहे। गीत संगीत के प्रति खासी रुचि थी। रविशंकर अली अकबर खान के कार्यक्रम सुनने के लिए जाया करते थे और 1947 में हिंदुस्तान विभाजन के बाद उनका पूरा परिवार अमृतसर चला आया। इसके बाद अपने सपनों को नया रूप देने के लिए गुलजार मुंबई आ गए, लेकिन सपनों की नगरी में उन्हें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और अपने जीवन यापन के लिए उन्होंने मोटर गैरेज में एक मैकेनिक की नौकरी भी की थी शुरुआत में। तो आइए ऐसे विशेष व्यक्ति की कहानी को सुनाते हैं आपको। अभी सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
3: अभी न पर्दा गिराओ, ठहरो कि दास्तां आगे और भी है। अभी तो टूटी है कच्चे मिट्टी, अभी तो बस जिस्म ही गिरे हैं। अभी तो किरदार ही बुझे हैं, अभी सुलगते हैं रूह के गम, अभी धड़कते हैं दर्द दिल के, अभी तो एहसास जी रहा है। आप इन्हें गीतकार कहें या डायलॉग राइटर, या फिर कहें आप इन्हें कहानीकार और फिल्म डायरेक्टर, ये हैं संपूर्ण सिंह कालरा, यानी कि हमारे गुलजार साहब। जन्म 18 अगस्त सन 1936 में हुआ। पिता का नाम माखन सिंह कालरा और मां का नाम सुजान कौर। दीना के झेलम इलाके में गुलजार साहब का जन्म हुआ था। इनका पुश्तैनी घर दीना के झेलम इलाके में है, जिसे ये बंटवारे के बाद छोड़ आए।

ये बात बहुत हैरान कर देती है कि संपूर्ण सिंह से गुलजार बनने के सफर में ये दिल्ली के अंदर बतौर कार मैकेनिक काम किया करते थे और कई बार इनके पिता इनसे कहा करते थे, अरे बेटा तू लेखक बनना चाहता है लेकिन इसमें कुछ कमाई नहीं है, इसलिए बेहतर यही है तू अपने बड़े भाइयों से बना के रखियो, और जहाँ कला पूरे उफान पर हो तब कोई ना कोई ऐसा इंसान जरूर मिलता है जो आपका पारखी बनता है। और गुलजार साहब के हुनर को पहचाना लेजेंडरी फिल्म मेकर बिमल रॉय ने।

0: जुड़ते हुए।
1: किस्सा यूं मशहूर है कि गुलजार साहब को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था और इन्होंने बहुत सारे लेखकों को पढ़ा। इस बीच इनकी दोस्ती और भी लेखक और कलाकारों से हुई और ऐसे में एक दोस्त इन्हें ले गया बिमल रॉय के पास, जहां म्यूजिक डायरेक्टर एसडी बर्मन और गीतकार शैलेंद्र के बीच झगड़ा हो चुका था और फिल्म मेकर बिमल रॉय बहुत परेशान थे। ये फिल्म थी बंदनी। ऐसे में ये फैसला लिया गया कि गुलजार एसडी बर्मन की धुनों पर गाने लिखें और इन्होंने अपना पहला गाना लिखा भी, मोरा गोरा अंग लैले। बंदनी फिल्म का ये गाना बहुत पसंद भी किया गया, पर इसी बीच एसडी बर्मन और शैलेंद्र की दोस्ती फिर से हो गई और गुलजार साहब फिल्म से बाहर हो गए। पर बिमल रॉय ने गुलजार का साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा, गुलजार तुम मेरे असिस्टेंट बन के काम करो और मैं ये भी नहीं चाहता कि तुम्हारे जैसा कलाकार किसी शोर मचाती हुई गैराज में काम करे। तुम्हारे अंदर हुनर है और ये तुम अपने पहले ही गाने से साबित कर चुके हो। ये सुनते ही गुलजार साहब फपक फपक के रो पड़े थे। बिमल रॉय के साथ काम करते हुए गुलजार साहब की दोस्ती आरडी बर्मन से हुई, आरडी बर्मन यानी कि पंचम दास से हुई, और इसी बीच इन्हें ऋषिकेश मुखर्जी का सानिध्य भी मिला। ऋषिकेश मुखर्जी उस दौर में बतौर एडिटर काम किया करते थे और बाद में डायरेक्टर बन गए और गुलजार साहब इनके साथ ही रहे।
2: ये छोटी छोटी बातें है ना, इन छोटे लोगों के लिए बहुत मायने रखती है। तेरे घर में ड्राइवर है तो भी है, आज तक तूने कभी उन्हें नाम से बुलाया? एक बार अपने ड्राइवर को नाम से बुला के देखो, ठीक जाएगा रे, गुलाम हो जाएगा तेरा। इतना ही काफी है कि उसके मालिक ने उसे नाम से बुला, वो अपने नाम से पहचाना क्या?
3: यार तुम तो बहुत पहुंचा हुआ आदमी निकला।
2: These are the tricks of the trade, बेटा।
1: ऋषिदा ने गुलजार साहब को बतौर लिरिसिस्ट ही यूज नहीं किया बल्कि बतौर डायलॉग राइटर भी इस्तेमाल किया। फिल्म आनंद और नमक हराम में गुलजार साहब ने ऐसे उम्दा डायलॉग्स लिखे जो आज भी लोगों की जुबान पर हैं।
2: करीम का हाथ कट गया सेठ जी, आप जानते हैं ना?
4: हाँ, किसी वर्कर का हाथ कट गया था कल।
2: जी हाँ, वही करीम। क्या उसके हाथ की कीमत सिर्फ 2,000 रुपए?
4: तुम कहना क्या चाहते हो?
2: सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, करीम के 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं, जवान बेटी है जिसकी वो शादी करना चाहता है, उसके अलावा बूढ़ी माँ है, बीवी है, और हो सकता है तो महीने और लग जाए करीम को वापस लौटते हुए अस्पताल से।
4: तो मैं क्या करूं?
2: सिर्फ इतना कर दीजिए सेठ जी कि जब करीम वापस लौटे उसे नौकरी पर रख दिया जाए और फिलहाल 5,000 रुपए उसके घर वालों को दे दिए जाए।
4: रुपया पेड़ों पर नहीं उगता कि जितना मांगो मिल जाएगा।
2: और हाथ

0: बतौर गीतकार गुलजार साहब ने बड़े से बड़े म्यूजिक डायरेक्टर के साथ काम किया, चाहे वो एसडी बर्मन रहे हों या फिर सरल चौधरी, आरडी बर्मन हों या लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, और बदलते वक्त में आते हुए संगीतकार एआर रहमान, विशाल भारद्वाज या शंकर एहसान लॉय, सभी के साथ गुलजार साहब का काम बहुत सराहा गया।
1: एक नौजवान का शुक्रिया अदा करना बड़ा जरूरी है मेरे लिए, जिसका नाम विशाल है। विशाल ने मेरे गानों को जवान रहने में बड़ी मदद की है।
0: पर आरडी बर्मन के साथ इनकी दोस्ती बहुत जबरदस्त रही, और यही वजह रही कि जब गुलजार साहब फिल्म मेकर बने और फिल्म्स डायरेक्ट करनी शुरू की तो सभी फिल्मों में तकरीबन आरडी बर्मन का ही संगीत रहा, चाहे वो परिचय रही हो, आंधी रही हो या फिर किनारा। पर बतौर डायरेक्टर अपनी पहली फिल्म में गुलजार साहब ने सलिल चौधरी का संगीत लिया था, और फिल्म मौसम में मदन मोहन साहब का।

0: गुलजार साहब की दोस्ती संजीव कुमार साहब के साथ भी खूब रही। ये किस्सा भी मशहूर है कि संजीव कुमार साहब के घर पे सिर्फ शाकाहारी खाना बनता था और मांसाहारी खाना खाने के लिए वो गुलजार साहब के घर जाया करते थे। गुलजार और संजीव कुमार की जोड़ी इतनी बेहतरीन थी कि हर फिल्म के अंदर इन्होंने कमाल किया, चाहे वो मियां बीवी के रिश्ते पर बनी फिल्म आंधी रही हो, या हस्ती गुदगुदाती फिल्म अंगूर, या फिर गूंगे और बहरे पति पत्नी की कहानी कोशिश।
1: तुम आ गए हो, नूर आ गया है।
0: अगर हम गुलजार साहब के निजी जीवन की तरफ रुख करें तो गुलजार साहब की शादी हुई मशहूर और मारूफ अभिनेत्री राखी से। इस शादी से इन्हें एक बेटी है जिसका नाम है मेघना गुलजार, जो खुद फिल्मों में डायरेक्ट

गुलजार साहब और राखी जी का रिश्ता बहुत दिन नहीं चल सका और इन दोनों ने ये फैसला लिया कि ये अब अलग हो जाएंगे और ऐसा ही हुआ। गुलजार साहब ने अपनी बेटी मेघना का नाम बोस्की रखा है और अपने बंगले का नाम बोस्कियाना, जिसके माने हैं जहाँ बोस्की रहती है। मुंबई के पाले हिल इलाके में गुलजार साहब का बंगलो है।

भारतीय सिनेमा में बहुत कम ऐसी हस्तियां हैं जिन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट दौर से लेकर कलर्ड दौर तक अपना दबदबा बनाए रखा है, और उनमें से गुलजार साहब एक हैं जिन्होंने बिमल रॉय को काम करते देखा है। नए फिल्म मेकर्स जैसे शाद अली और विशाल भारद्वाज के साथ भी काम किया।

गुलजार साहब के हर फन ने सभी का दिल जीता है, चाहे वो छोटा पर्दा हो, बड़ा पर्दा या फिर मन का असीम पर्दा। हर पर्दे पर इनकी दास्तां लोगों के दिलों में घर कर गई है। भारतीय सिनेमा के इतिहास में गुलजार साहब का नाम हमेशा गर्व से लिया जाएगा।

0: मैं कमलेश माउंट आबू ढूंढे गांव की रहने वाली भूसा और मैं सुन रही हूँ रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनता रहा और मुस्कुराता रहा।
1: तो ये थी कुछ खास बातें आज के दिन की। गुलजार साहब की कहानी सुनकर बड़ा ही अच्छा लगा होगा और बड़ा ही दीवार

ऐसा जो है आपको फील हो रहा होगा, कितनी खूबसूरत गाने आपने सुने, आंधी मेरे अपने, कोशिश, अंगूर, माचिस और एक बूंद चांद इनकी रचना है, 84 रात इनका भी एक रचना है, जानम इनका रचना है और फिल्म और फिल्मों के साथ साहित्य के साथ इनका एक अलग पहचान बना है। आइए आगे बढ़ते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि आज हमने दो दिग्गज लोगों की बातें सुनी जो बहुत ही पॉपुलर रहे अपने ज़माने में, गुलजार साहब, बाजीराव प्रथम, ये दो ऐसे व्यक्ति रहे, और आज के समय में निर्मला सीतारामन की जीवन कहानी से जुड़ी हुई कुछ बातें और सबसे अच्छी बात ये शिवानंद बाबा के बारे में आपने सुना आज। तो आइए इन सभी के साथ में मैं कहूँगा कि आज अगर इन सारे महान लोगों के बारे में आपने सुना है तो अपने जीवन को भी महान बनाने के लिए थोड़ा सा जो है जीवन में कोशिश ज़रूर कीजिए, और कोशिश हमेशा अंतिम क्षण तक करनी चाहिए, जीवन के अंतिम क्षणों तक, क्योंकि जीवन में सफलता मिले ना मिले परंतु तजुर्बा तो मिलेगा ही, और तजुर्बा ही जीवन में सफलता बनाएगी। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं अगले कड़ी में, अगले एपिसोड में। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते, खम्मा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुन रहे हैं आप। कार्यक्रम का नाम है युवा मंच। दोस्तों, युवाओं का मंच है तो फिर कुछ करियर्स के बारे में भी बीच बीच में बात होती है जो कि युवाओं को आकर्षित करते हैं, या कई चीजें जो जानकारियां हमारे लिए उपस्थित नहीं होती। हालांकि दोस्तों, इंटरनेट का जमाना है, बहुत कुछ आपको मिल सकता है जो भी आप करियर अपनाना चाहें। लेकिन वो करियर है कैसा, उसको जाने किसी ऐसे व्यक्ति की नजर से जो ऑलरेडी उस करियर में हो, तो फिर कहीं ना कहीं मोटिवेशन के साथ साथ सही जानकारी भी मिल जाती है। दोस्तों, हम आगे बढ़ेंगे इसी श्रृंखला में। आज हमारे साथ हैं श्री कृष्ण प्रकाश तौले जी। एक्चुअली मैं उनका नाम पूरा जरूर लिया, लेकिन उनकी पोस्ट तो भूली गई। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं सीए श्री कृष्ण प्रकाश तौले जी। जी हाँ, वो एक युवा साथी हैं और सीए हैं, तो आज इसी फील्ड के बारे में, इसी करियर के बारे में हम उनसे बातचीत करेंगे और उनके बारे में भी कुछ जानेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू।
0: अच्छा, सबसे पहले तो बहुत अच्छा करियर है, एंड आई नो बहुत कंपटीशन होता है, तो आपको बहुत बहुत बधाई है कि आप इतना अच्छे करियर में आगे बढ़ रहे हैं, एंड हम आपसे आज बहुत कुछ जानेंगे। आप अपने बारे में कुछ अपने शब्दों में बताइए।
1: थैंक यू सो मच फॉर ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अगर आप सीए के बारे में करेंगे तो सीए एक बहुत अच्छा, मतलब इंडिया में रिप्यूटेड कोर्स है, जिसकी शुरुआत इसका, मतलब मैंने एक्चुअली इन द 9th स्टैंडर्ड ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था कि मुझे सीए परस्यू करना है।
0: अच्छा।
1: मुझे एक्चुअली एक स्कूल टीचर से पता चला था, बिकॉज तब इतना अवेयरनेस नहीं होता है सीए कोर्स के बारे में लोगों को, इसलिए वो इशू जाता है। तो मुझे एक स्कूल टीचर से पता चला था कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स होता है और इसमें ऐसा ऐसा कुछ फ्यूचर वगैरह होता है, तो फिर मैंने वहां से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना स्टार्ट
0: किया। तो आपको इंटरेस्टिंग कैसे लगा, मतलब आप 9वीं कक्षा में थे, 9th क्लास में थे, तो उस टाइम आपको कैसे लगा कि नहीं सीए अच्छा है, मतलब क्या बताया ऐसा टीचर ने जो आपको बहुत अच्छा लगा?
1: एक्चुअली वो नई चीज सुनी थी, क्योंकि पहले तो डॉक्टर, इंजीनियर और अदर फील्ड जो ऑप्शंस जो यूजुअली अपने को पता होते हैं, वही चीजें पता थी, बट ये नई चीज सुनी थी। और ये सुना था कि रेपुटेशन अच्छा होता है, इसका जॉब पैकेज अच्छा होता है, ये सब चीज़ें सुन के मैंने और इंटरेस्ट लिया। और एक पावर होता है सीए के सिग्नेचर में, तो वो चीज़ सुन के फिर मैंने उसको आगे सोचना स्टार्ट किया।
0: आपको लगा ये अच्छा है? ओके। तो आपके टीचर्स ने आपको ये बातें बताई?
1: टीचर को इतना नहीं पता था एक्चुअली, उन्होंने ब्रीफ में बताया था। एक्चुअली वो टाइम पे एक मुंबई की एक बहन थी, उनका मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने टॉप किया था क्लास में, लेकिन वो उनके पापा रिक्शा चलाते थे, तो उन्होंने टॉप किया था, तो उनका एक मोटिवेशन एग्जाम्पल देने के लिए उन्होंने हमको बताया था, तो उससे फिर उन्होंने सीए के बारे में बता दिया, तो वहां से मेरा इंटरेस्ट वो फील्ड, मतलब उसके बारे में बढ़ गया।
0: राइट। ओके। तो उसके बाद आपने क्या किया, मतलब आपको पता चला था तब कि सीए बनने के लिए क्या करना होता है?
1: कुछ भी पता नहीं था, बस ब्लाइंडली लोगों से पूछता था, लोग कुछ अपने हिसाब से जवाब देते रहते थे, उतना कुछ आइडिया नहीं था। आफ्टर 11th मुझे वो सब चीजें फिर क्लियरली, बट सोचा था मैंने कि करना है, बट जो प्रैक्टिकल चीजें हैं, जो एक्चुअल क्या है, जैसे सुनते तो अपन काफी चीजें, टफ होता है, टफेस्ट इन द, मतलब इंडिया में टफेस्ट, वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है, नहीं कर पाते आप, क्लियर नहीं हो पाओगे, अगर आप बीच में रुक गए तो आपका करियर स्पॉइल हो जाएगा और आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, तो वो लोग से सुनते थे, बट फिर बाद में जब मैंने एक्चुअली स्टार्ट किया तो फिर चीजें थोड़ी अलग थी।
0: ओके। तो जो 9th में आपको जानकारी मिली थी वो बहुत थोड़ी थी, 11वीं में जब आप थे तो ऐसी क्या जानकारी मिली जो आपको क्लैरिटी आई?
1: ओके। फिर उस हिसाब से मैंने कॉमर्स चूज किया 11th 12th, कॉमर्स से मतलब रिलेटेड ही होता है, तो मैंने 11th 12th कॉमर्स स्ट्रीम को चूज किया, जिसमें फिर मेरे जो कल मतलब जो फ्रेंड्स थे स्कूल वाले, सब मैक्सिमम दोस्त भी सीए ही कर रहे थे, तो उनसे मुझे पता चला, और फिर प्रैक्टिकली मुझे जो सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट थे उनसे डायरेक्ट मिलने का मौका।
0: अच्छा।
1: हाँ, जो टीचर हमारे थे, मतलब एग्जाम जो प्रिपरेशन कराते, वो खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, तो उनसे मुझे अच्छा गाइडेंस मिला, तब मुझे पता चला कि हाँ, मतलब यहाँ कर सकते हैं या फिर।
0: अच्छा। तो क्योंकि आपने जैसा बताया 11वीं में पता चला, तो 11वीं के बच्चे को आप क्या बताएंगे, बहुत डिटेल में आप बताएंगे या उसके अनुसार बताएंगे? तो अगर एक 11वीं का बच्चा आपको सुन रहा है आज और जो आपने सुना था उस वक्त, तो आप उसे क्या बताएंगे सीए क्या होता है?
1: ओके। अगर सीए के बारे में बात करेंगे तो एक इंडिया में बहुत अच्छा रिप्यूटेड कोर्स है, इसका एक्चुअली इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट की फॉरेन में भी अच्छी डिमांड है. फॉरेन कंपनीज में भी इंडियन सीए रिक्रूट होते आज. कनाडा में देखिए, दुबई में देखिए, दुबई में बहुत अच्छा मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट का नाम चलता है, इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट का. तो अगर सीए के बारे में बात करें तो एक 4.5 साल का ब्रीफली कोर्स होता है, मतलब 4.5-5 साल अप्रोक्सीमेटली पकड़ सकते हैं आप. 12 आप 10वीं के बाद उसका रजिस्ट्रेशन कराना होता है और फिर 12वीं से आप एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं. मतलब आप 12th अपीयर चाहिए, आप 12th अपीयर होते हुए भी आप एग्जाम दे सकते हैं. आप 12th अपीयर होके एग्जाम दीजिए, सबसे पहले एग्जाम होते हैं सीए फाउंडेशन. मतलब इसमें 3 एग्जाम आपको क्लियर करना है और 3 साल की सीए के अंडर आर्टिकलशिप कंप्लीट करना है. मतलब इट्स लाइक प्रैक्टिस, आपको सीए के अंडर ट्रेनिंग करना है, उसको आर्टिकलशिप बोलते हैं. तो आपको पहली एग्जाम 12th अपीयर होते हुए, जैसे आपकी 12th की एग्जाम हो जाती है, वो 12th के आई कार्ड के बेसिस पे आप सीए फाउंडेशन का एग्जाम का फॉर्म भर सकते हैं. फिर वो एग्जाम का फॉर्म दे के आप एग्जाम दो.
0: कहाँ भर सकते हैं ये फॉर्म?
1: ये ऑनलाइन ही भरना है. मतलब पहले तो आपको 10वीं के बाद रजिस्ट्रेशन लेना है. 11वीं में 12वीं में कभी भी आप रजिस्ट्रेशन ले सकते हो. पहले एक रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन ही करना होता है सब. एक ICAI.org वेबसाइट होती है इंस्टीट्यूट की, जिसमें आप वो रजिस्ट्रेशन करा लो.
0: कौन सी वेबसाइट बताएं?
1: ICAI.org. www.icai.org ये साइट पे चाहिए तो आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे. तो आप वहाँ जाके रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए. फिर रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आप 12th के बाद एग्जाम दिए सीए फाउंडेशन. वो 4 सब्जेक्ट के एग्जाम होते हैं. 4 सब्जेक्ट को आपको क्लियर करना है. और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो पता होनी चाहिए, ये पासिंग क्राइटेरिया है. एक्चुअली यहाँ पे 2-वे पासिंग क्राइटेरिया होता है. आपको 50% टोटल एग्रीगेट में लाना है और 40% इन इंडिविजुअल सब्जेक्ट. लाइक अगर 100 मार्क्स का पेपर है तो आपको एक सब्जेक्ट में 40 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए. और अगर टोटल ओवरऑल जो स्कोर है आपका, जैसे आपको 4 पेपर है 400 मार्क्स के, तो आपको 200 मिनिमम लाना, दैट्स 50%. तो एग्रीगेट आपको 50% लाना है और इंडिविजुअल सब्जेक्ट में मिनिमम 40% होना चाहिए. अगर आप एक सब्जेक्ट फेल हो जाते तो फिर आप दूसरा, मतलब आप पूरे सब्जेक्ट को वापस से आपको देना,
0: मतलब आपको 4 सब्जेक्ट का दोबारा देना पड़ेगा,
1: पूरा देना पड़ेगा.
0: ओके. और ये कौन कर सकता है? मतलब कोई भी स्ट्रीम के बच्चे कर सकते हैं या कोई सब्जेक्ट जरूरी है इसमें अपीयर करने के लिए?
1: कोई भी स्ट्रीम के कर सकते हैं. 11th में अगर वो कॉमर्स है, आर्ट है, या फिर आप साइंस बैकग्राउंड से, कोई भी कर सकते हैं यहाँ पे.
0: तो ऐसा नहीं है कि मैथ्स होना जरूरी है?
1: ऐसा कुछ नहीं, बस ये होता है कि आपको थोड़ा अच्छा कैलकुलेशन होना चाहिए. बट ऐसे जरूरी नहीं कि हमको एडवांस लेवल का मैथ चाहिए, बट आप नॉर्मल मैथ से भी चला सकते हैं. और चीजें तो सीखने के लिए होते हैं, अपन तो कुछ भी सीख सकते हैं.
0: सीख सकते हैं. ये बहुत अच्छी बात कही आपने. ओके. तो मतलब हमने अभी तक ये समझा कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो सीए की हम बात कर रहे हैं, तो 11वीं या 12वीं के साथ आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो वेबसाइट पे.
1: Yes.
0: और एक सीए का पहला जो पेपर होता है फाउंडेशन, उसमें 4 सब्जेक्ट आपको पास होने जरूरी हैं.
1: Right.
0: मिनिमम 40% और टोटल 50%.
1: हाँ, टोटल 50%.
0: अच्छा, तो अगर नहीं पास हो पाए तो दोबारा कर सकते हैं. तो 12वीं के बाद, मतलब जब आप आगे की पढ़ाई कर रहे हो, तब भी आप कर सकते
1: हैं. विद इन 6 मंथ्स एग्जाम होती रहती है.
0: अच्छा,
1: साल में 2 बार, मई और नवम्बर.
0: ओके. तो कब आता है इसका फॉर्म, कौन से समय आता है ऑलमोस्ट?
1: ये आप कभी भी कर सकते हैं. मतलब अभी चाहो तो अभी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं.
0: अच्छा.
1: इसका कोई ये नहीं, बस ये क्राइटेरिया होता है कि आपको अगर एग्जाम देना है तो 6 मंथ्स बिफोर आप रजिस्टर्ड होना चाहिए. दैट इज अ बेसिक क्राइटेरिया. कि अगर सपोज आपको 12th के बाद, जैसे आपकी 12th में मार्च में एग्जाम कंप्लीट हो रही है और आपको मई में एग्जाम देना है, तो आप मई के एग्जाम के 6 मंथ्स बिफोर आप रजिस्टर होना चाहिए.
0: अच्छा, 6 महीने पहले?
1: 6 महीने पहले रजिस्ट्रेशन तो भी एटलीस्ट होना चाहिए.
0: ओके, ठीक है.
1: और फिर उसका एग्जाम फॉर्म आएगा आपका. एग्जाम वो इंस्टीट्यूट के साइड पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे. एग्जाम फॉर्म जनरली एग्जाम के 2 महीने पहले आ जाता है, तो वो आपको फिल करना है. उसका 10-15 दिन का टाइम होता है, तो फिर आप ये कर सकते हैं. फिर
0: तो जो सेम वेबसाइट आपने बताई, वहीं पे आता है एग्जाम फॉर्म?
1: हाँ, वहाँ पे फिर नोटिफिकेशन आते रहता है. वहाँ पे फिर सब वेबसाइट्स वगैरह है उसमें, जो अलग अलग चीज़ें, जैसे ICAI.exam एक अलग वेबसाइट होती है जिसमें एग्जाम फॉर्म आपको अलग से भरना है. बट ये कोर वेबसाइट जो मैंने बोला है, मेन वेबसाइट जो www.icai.org,
0: मतलब उसके थ्रू आपको सारी जानकारी
1: मिल जाएंगी मोस्टली.
0: ठीक है. तो अगर पहला जो क्राइटेरिया है, यानी पहला जो एग्जाम है फाउंडेशन का, वो क्लियर किया, तो उसके बाद क्या?
1: हाँ, अगर आप सपोज मई में एग्जाम क्लियर कर ले, तो कोई भी साल में, तो उसके बाद फिर आपको 9 मंथ स्टडी पीरियड होता है सेकेंड एग्जाम का.
0: अच्छा.
1: सेकेंड एग्जाम का नाम होता है सीए इंटरमीडिएट. जो आपको, जैसे आप एग्जाम क्लियर होते हो उसके 9 मंथ्स आपको पढ़ाई करनी है उसकी, आपको बुक्स इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करेगा.
0: ओके.
1: हाँ, पूरी आपको कुरियर के द्वारा अपने घर आ जाएंगे पूरी बुक्स, पूरा मटेरियल. साथ में आईसीए के चैनल्स भी चलते जिसपे वो लेक्चर्स वगैरह रहता, शॉर्ट मतलब स्टडी मटेरियल रिलेटेड ऑल चीज़ें आप इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करेगा, और आप कोचिंग भी ले सकते हो.
0: Okay.
1: हाँ, तो वो 9 मंथ्स में जब आप क्लियर हो जाते हो तो वो 9 मंथ्स के अंदर आपको प्रिपरेशन करनी पूरी इंटरमीडिएट के लिए, फिर आप इंटरमीडिएट के एग्जाम दे सकते हो.
0: अच्छा, तो मतलब आपने 9 महीने तैयारी किया, उसके बाद फिर से वो एग्जाम फॉर्म भरना है.
1: हाँ,
0: जो
1: सेकेंड एग्जाम
0: है, उसमें क्या होता है?
1: हाँ, उसमें एक्चुअली 8 सब्जेक्ट्स होते हैं.
0: अच्छा, 8 होते हैं.
1: 8 सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन उसमें क्या है कि जैसे पहले अपन ने सुना है कि 50% एग्रीगेट होना चाहिए, तो उसमें कभी ऐसा हो जाता है कि आपको 40-40 तो आ जाता है. एक्चुअली एग्जाम थोड़ा टफ होता है, इसलिए 40 लाना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है. काफ़ी बच्चे नहीं ला पाते हैं, मतलब रिजल्ट आपको पता होगा, रिजल्ट काफ़ी टफ आता है इंस्टीट्यूट का. तो वो 40 लाना अगर आपको ये हो जाता है, तो इसलिए वो फिर इंटरमीडिएट पे 2 ग्रुप बनाया आईसीए ने एग्रीगेशन पर्पज के लिए. मतलब 4 सब्जेक्ट का एक ग्रुप, 4 सब्जेक्ट का दूसरा ग्रुप, ऐसे ग्रुप 1 ग्रुप 2, ऐसे 2 ग्रुप होंगे 8 सब्जेक्ट के. लेकिन आपको इंटरमीडिएट पूरे एग्जाम क्लियर करना है तो दोनों ग्रुप क्लियर करने हैं, 4 सब्जेक्ट के, 8 सब्जेक्ट के.
0: वो क्या सब्जेक्ट होते हैं अगर बता सकते हैं आइडिया?
1: हाँ, ग्रुप 1 में अगर मैं बताऊँ तो फर्स्ट पेपर होता है अकाउंट्स का, होता है अकाउंट्स होता है, कॉस्टिंग होता है, ऑडिट होता है. इसमें इंटरमीडिएट का 3 साल होता है ना, फिर इंटरमीडिएट के
0: टाइम में जाता है. सही बात है.
1: फाउंडेशन के भी एग्जाम. ये इंटरमीडिएट के जो सब्जेक्ट्स है, पहला पेपर होता है अकाउंटिंग का, सेकेंड पेपर होता है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज, जिसमें आपको लॉज को पढ़ना है, बिजनेस लॉज रिलेटेड. थर्ड पेपर होता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट, जिसमें कॉस्टिंग्स के बारे में बात होंगी. फोर्थ पेपर होता है टैक्सेशन, जिसमें आपको डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ना. डायरेक्ट टैक्स इज रिलेटेड टू इनकम टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स इज GST मोस्टली, और उसमें कस्टम्स और बाकी अदर इनडायरेक्ट टैक्स भी आते हैं. फिफ्थ पेपर होता, ये हो गया फर्स्ट ग्रुप, 4 पेपर का टैक्सेशन तक. फिर सेकेंड ग्रुप में होते हैं एडवांस अकाउंटिंग, लेकिन थोड़ा उसका स्कोप ये हो जाता है, बड़ा हो जाता है. और सिक्स पेपर होता है ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस, जिसमें ऑडिटिंग रिलेटेड आपको लॉज पढ़ने हैं. सेवन पेपर होता है एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. इट्स लाइक ये होता है मैनेजमेंट रिलेटेड, ये होता है और IT रिलेटेड सब्जेक्ट होता है. एट पेपर होता है जो लास्ट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस. इसमें आपको फाइनेंस रिलेटेड नॉलेज मिलेगा और इकोनॉमिक्स, जो जिसके बेसिस पे वर्ल्ड में वर्ल्ड इकोनॉमिक माइक्रो इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसके बारे में आपको सब्जेक्ट रहेगा.
0: ओके. तो 8 सब्जेक्ट, 9 महीने हमारे पास है. तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि शेड्यूल क्या होता था आपका एक दिन का जब आप इसकी तैयारी कर रहे थे?
1: उसमें तो एक्चुअली ऑप्शन होता है कि आप एक ग्रुप का भी प्रिपरेशन कर सकते, मतलब 4 सब्जेक्ट प्रिपेयर कर लो, फिर बाद में आप 4 सब्जेक्ट देना, एक ग्रुप पहले दे दो एक ग्रुप. लेकिन मैंने जब सोचा था कि मुझे बोथ ग्रुप एट अ टाइम कंप्लीट करना है, ऐसा मैंने टारगेट रखा था. तो मेरी वैसे क्लासेस भी मैंने पूरी फिर कंप्लीट की. क्लासेस में एक्चुअली शेड्यूल हमारा काफ़ी फिक्स होता था, मतलब सुबह 7 बजे से क्लास स्टार्ट होती थी, रात के 9 बजे तक तो मिनिमम क्लास चलती थी बोथ ग्रुप, जब 8 सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो.
0: सुबह 7 से रात 9 बजे
1: तक. दोपहर में 1-2 घंटे का ब्रेक लेके, तो ऐसा पूरा दिन भर क्लासेस चलती थी, तो पूरा एग्जॉस्ट तो हो ही जाता था. उतनी पढ़ाई नहीं होती पाती थी क्लासेस के ड्यूरिंग, लेकिन थोड़ा रिवाइज करना होता था कि आप जो क्लास में पढ़े उसको थोड़ा शॉर्ट में रिवाइज कर लो और नेक्स्ट डे आप क्लास में चले जाओ, ताकि वो होता रहे, नहीं तो आप भूल जाओगे पूरी चीज़ें. तो वो तो क्लासेस के ड्यूरिंग तो ऐसे टाइट शेड्यूल था. सो आप 6 बजे उठ के ये करके 7 बजे से जाओ, फिर रात को 9 बजे तक आओ. फिर उसके बाद जब क्लासेस हो गए, आई थिंक क्लासेस का ड्यूरेशन मोस्टली 5-6 मंथ्स था. फिर लास्ट के 3 मंथ्स हमारे सेल्फ स्टडी, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं, क्योंकि क्लासेस में आप चीज़ें भूल जाते हो, लेकिन आपको लास्ट एग्जाम के पहले जो पढ़ना होता है, 3 महीने मिलते तो उसमें आपको अच्छे से प्रिपेयर करना होता है, अच्छे से पढ़ना होता है. तो वो टाइम मिनिमम मैं 10 घंटे तो पढ़ता ही था, कभी कभी 12-13 घंटे हो जाते थे, कभी थोड़े कम भी होते थे, क्योंकि वो थोड़ा अप एंड डाउन चलते रहता स्टडी में.
0: लेकिन ज्यादातर आपने इतनी पढ़ाई की?
1: यस, मिनिमम 10 आवर्स तो वी हैव टू स्टडी, वो तो जरूरी हो ही
0: दिन भर में. मेरा 10 घंटे
1: पढ़ने, और आपको बस वो एग्जाम के पहले 3 जो महीने हैं, 2-3 महीने वो पढ़ लो, आप क्लियर हो जाओगे.
0: ओके लेकिन ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि आपने जैसे बताया कि पढ़ाई इतनी जरूरी है और उसी पढ़ाई से जो हम आगे मतलब आपने जैसे शुरू में बताया था कि सीए करते हैं तो आपको क्या क्या मिलता है तो जो मेहनत का नतीजा है वो आगे मिलता है लेकिन मेहनत जरूरी है उसके लिए
1: बहुत ज्यादा
0: जरूरी है। तो कैसा लगता था उस समय आपको, मतलब क्या डर लगता था या बस पढ़ाई के अलावा और कुछ नहीं आता था दिमाग में या कभी क्या लगता था?
1: कभी कभी तो ऐसा लगता था कि गलत फील्ड में आ गए, नहीं आना था।
0: अच्छा ओके
1: कि गलती हो गई, हमारे दोस्त जो इंजीनियरिंग जो अदर फील्ड में गए वो एंजॉय करते थे, वो अपनी स्टूडेंट लाइफ एंजॉय कर रहे और हम क्लासेस कर रहे, दिन भर समय ही का है, अदर एक्टिविटीज के लिए समय नहीं है, ना तुम स्कूल जा रहे हो ना कॉलेज जा नहीं पा, नहीं जा रहे हो कॉलेज और दिन भर क्लासेस और पढ़ाई, तो वो थोड़ा लगता था कि थोड़ा ये हो गया, बट हाँ फिर सोचना पड़ता था कि हाँ फ्यूचर में जब बन जाएंगे तो अलग ही ये रहेगा, और टीचर्स को देखते थे, उनकी लाइफ को देखते थे तो थोड़ा मोटिवेशन आ जाता था।
0: ओके
1: हाँ, और मैं मेडिटेशन वगैरह करता था तो थोड़ा माइंड काम रहता था तो वो हो जाता था।
0: बिल्कुल, मतलब इतना ज्यादा अगर पढ़ाई करनी हो तो मेडिटेशन तो बहुत इम्पोर्टेंट
1: जरूरी है।
0: आप मेडिटेशन करते थे, क्या करते थे पर्टिकुलरली, क्या कैसे करते थे, अगर आप थोड़ा सा बताएं हमें क्या करते थे, किस समय करते थे, क्योंकि समय तो आपको मिलता नहीं था।
1: इतना ही लेना आप आगे,
0: एक बार आप समय भी बता दो ताकि पता चले कि इतने बिजी शेड्यूल में से करते
1: कैसे, 5-10 मिनट करने हैं स्टार्ट करने के पहले।
0: हाँ, ये भी अच्छी बात है क्योंकि आप 5 मिनट भी खुद के लिए दे रहे हैं, खुद के माइंड के लिए दे रहे हैं, तो उसको तैयार करें एक तरीके से, तो अच्छी बात है। क्योंकि कई बार हमें मेडिटेशन को सोच के लगता है कि इतना समय देना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, लेकिन आप करते करते बीच में ही कर सकते हैं, ये सुन के अच्छा लगा। मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स कर सकते हैं, स्टूडेंट्स के लिए अच्छा
1: कर सकते हैं। बीच में आप मतलब न्यू सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट करो तो बीच में ब्रेक लेके 10-15 मिनट का पे कर लो, म्यूजिक सुन लो, थोड़ा माइंड फ्रेश भी हो जाता है क्योंकि आप कंटिन्यूस नहीं पढ़ सकते ना।
0: बहुत जरूरी है एक्चुअली। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो आपका जब आपने 8 सब्जेक्ट ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों दिए तो क्या हुआ फिर?
1: शॉकिंगली मैं फेल हो गया था।
0: ओके
1: मैं फेल हो गया था शुरुआत में क्योंकि शुरुआत में जब मैंने क्लासेस की थी शेड्यूल बिजी होता था इसलिए मैं उतना पढ़ नहीं पाता था, तो जब मैं सेल्फ स्टडी कर रहा तो काफी चीजें मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं भूल गया क्योंकि वो ब्रेन अपना एट द एंड आप ह्यूमन माइंड है तो उसका प्रॉपर ये रहता है प्रोसीजर, आपको माइंड के अंदर कुछ चीजों को अगर इनपुट डालना है और उसको स्टोर रखना है तो उसका प्रोसीजर, उसको आपको रिवाइज करते रहना पड़ेगा और उसको आपको प्रैक्टिकली मतलब सोच के उसको ये करना पड़ेगा तभी जाके हो रहा था, लेकिन मेरे क्लासेस का शेड्यूल इतना टाइट था इसलिए वो नहीं हो रहा था मेरा।
0: मतलब
1: नहीं हो पाया मेरा क्लियर, मैं फेल हो गया था, रिजल्ट आया, कुछ नहीं, फिर एक दिन थोड़ा आंसू बहा लो, लोगों की सांत्वना ले लो।
0: ओके
1: उसके बाद तो फिर नॉर्मल जिंदगी तो अपनी कोई चिंता होता है, उसको अपनी कोई ट्रूथ को एक्चुअली अपने साथ रख के उसको आगे बढ़ना पड़ता है।
0: बिल्कुल, लेकिन डेफिनेटली आपने 9 महीने मेहनत की हो इतनी कड़ी, और बुरा तो लगता है लेकिन आपने फिर कैसे खुद को मोटिवेट किया और क्या प्लान किया आगे के लिए उस समय?
1: हाँ, एक दो दिन तो मेरा वैसे ही ये हो गया, फिर मैंने टीचर्स से वगैरह कंसल्ट किया जिन्होंने मुझे पढ़ाया था, जो प्रोफेसर्स ने, तो उन्होंने फिर मुझे थोड़ा मोटिवेट किया कि कोई बात नहीं, इट्स, और ऐसा भी बोला जाता है कभी अगर सीए कर रहे हो और अगर आप फेल नहीं हो रहे तो सीए ही क्या बने।
0: Okay.
1: तो वो थोड़ा एक मोटिवेट करता है, और अभी तो वो सीए का लॉन्ग फॉर्म लोग कम अगेन बोलते हैं, सीए का लॉन्ग फॉर्म होता है कम अगेन, आप और वापिस
0: आओ
1: एग्जाम देने के लिए आओ। तो वो थोड़ा था कि हाँ ठीक है नॉर्मल है, होता है। तो फिर मैंने फिर 2-3 दिन ब्रेक लेके फिर माइंड को उसका कमांड दे दे कि इस बार कुछ भी हो जाए अच्छे से पढ़ना है। वो कैसा होता है ना कि जब आपके एग्जाम देते हो तो आपको 2.5 महीना तो भी रिजल्ट आने को लगता है, सपोज अगर मैं मई में एग्जाम दे रहा हूँ तो मेरा अगस्त तक रिजल्ट आ जाएगा इंटरमीडिएट का, तो फिर जैसे आप अगस्त का रिजल्ट आ रहा है तो आप अगस्त से फिर आपको नवंबर में नेक्स्ट एग्जाम है।
0: ओके
1: okay. हाँ, तो फिर अगस्त से आपको नवंबर तक का टाइम मिल रहा है, अगस्त सितंबर अक्टूबर और 3 महीने का, बस 3 महीने
0: तो आपको फिर से रजिस्टर करना पड़ेगा।
1: नहीं, आप रजिस्ट्रेशन हमारा मोस्टली 3 साल तक वैलिड रहता है, अगर 3 साल तक आप एग्जाम क्लियर नहीं करते तो फिर वापस से आपको रिन्यू करना पड़ेगा, बट वो चलते रहता है, एग्जाम आप कितनी भी बार दे सकते हो, इसका कोई इशू नहीं है, आप अनलिमिटेड एग्जाम दो। तो जो नेक्स्ट एग्जाम देने उसमें 3 महीने का टाइम है, वो वापस से आपको 3 महीने प्रिपेयर करना है और एग्जाम फॉर्म भरना है और आपको एग्जाम देना है।
2: ओके,
1: ये साइकिल चलता रहता, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं चाहता है ये कर इसमें कि आपको एक एक साल रुकना है या फिर काफी टाइम रुकना है, तो वो प्रॉब्लम नहीं चाहता, आपके पास ऑप्शन रहते हैं कि आप एग्जाम दे के ये कर लो।
2: ठीक है,
1: तो वापस से फिर मैंने 3 महीने पढ़ाई की, फिर नेक्स्ट टाइम मेरा हो गया क्लियर।
2: ग्रुप वन ग्रुप टू दोनों?
1: ग्रुप वन क्लियर हो गया।
2: ग्रुप वन क्लियर हो गया, क्या बात है। ओके, ठीक है, ये तो बड़ी मतलब आपको बहुत खुशी हुई होगी डेफिनेटली।
1: एग्जैक्टली,
2: कितना रिलीफ भी मिला होगा।
1: एग्जैक्टली, कि वापस से वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ना अभी।
2: हाँ, सही बात है। और उसके बाद फिर आपने ग्रुप टू की तैयारी?
1: हाँ, तो उसमें ऐसा होता है कि ग्रुप वन क्लियर होने के बाद या फिर कोई भी एक वन ऑफ द ग्रुप क्लियर होने के बाद आप आर्टिकलशिप जो 3 साल मैंने बोला था जो सीए के अंडर अपने को करना है वो कर सकते स्टार्ट।
2: अच्छा,
1: लेकिन मैंने नहीं किया था।
2: Okay.
1: क्योंकि मैंने सीनियर्स से वगैरह सुना था कि सेकेंड ग्रुप को थोड़ा टाइम देना पड़ता है, उसको क्लियर कर लो तो फिर आर्टिकलशिप अच्छे से कर सकते, और आर्टिकलशिप में आपको प्रॉपर ऑफिस जाना होता है, मतलब 10 बजे जाओ, फिर आपको आने का टाइम डिसाइडेड नहीं क्योंकि आपको काम है तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको सीखना है ऑफिस में जाके प्रैक्टिकली पूरी चीज़ें जो तुमने पढ़ा था वो सब अप्लाई करना है। तो ऑफिस के टाइम में ऑफिस में टाइम जाता है तो फिर आप पढ़ाई पर इतना फोकस नहीं कर पाते, तो इसलिए आप पहले एक ग्रुप सेकंड ग्रुप बचा है वो क्लियर कर लो। तो मैंने वो सोचा था बट शॉकिंगली वो नहीं ये हुआ, मैं वापस से फेल हो गया था।
2: ओहो, ओके।
1: हाँ, तो फिर मैंने एट द एंड सोचा कि नहीं इसको, क्योंकि मेरा टाइम डिले हो जाता है, क्योंकि अगर आपका वो समय चले जाता तो फिर आपका जो कंप्लीशन होता है एक कोर्स का वो लेट हो जाता है, तो फिर मैंने फिर बाद में रजिस्टर कर लिया आर्टिकलशिप के लिए।
2: अच्छा, ठीक है।
1: हाँ, तो फिर मैंने आर्टिकल,
2: आपने अपने ऑप्शंस खुले रखे, सोचा कि अब ये कर सकता हूँ तो आप आगे बढ़े।
1: एग्जैक्टली, हाँ, फिर मैंने सोचा कि हाँ अभी फाइनली आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि इसमें अगर वापस से फेल हो गए तो वापस समय चले जाएगा, 6 महीने का समय आपका जा रहा है तो उधर आगे एक्सटेंड हो रहा है, क्योंकि आपका सीए फाइनल भी जो लास्ट एग्जाम वो क्लियर करना है तभी आप डिग्री ले सकते हो, तो उसको डिले हो जाएगा, आपको वो जो फाइनल काटे वो डिले हो जाएगा, तो इसलिए अभी से रजिस्ट्रेशन करा लो तो फिर आप आगे बढ़ सकते हैं।
2: ओके, तो आपने आर्टिकलशिप फिर
1: शुरू कर दी।
2: वो एक्सपीरियंस तो मुझे लगता है और ज्यादा को, जैसा आपने बताया अभी कि जॉब भी करनी है और पढ़ाई भी करनी है, तो कैसा था अनुभव शुरुआत में कैसा था?
1: शुरुआत में तो अब आदत पड़ गई थी कि आपको पढ़ना ही है, और ऐसी जिंदगी थी, आदत पड़ गई थी कि आपको जहाँ इतनी मौज वाली जिंदगी नहीं, आपको पढ़ना है और ये करना है, तो ऐसे एटीट्यूड ही बन गया था।
2: ओके,
1: कि आपको बस यही आपकी जिंदगी, यही लिमिट है, क्योंकि आप फंस गए हो ना वहाँ पे, क्योंकि अगर आप एग्जाम क्लियर नहीं कर रहे तो फैमिलीज के ताने या फिर अपने को खुद को लगता है कि हम कुछ आउटपुट नहीं दे पा रहे, तो इसलिए थोड़ा वो पढ़ना ही तो ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम क्लियर करने हैं और साथ में ऑफिस तो बहुत ज़रूरी, तो वो बहुत हेक्टिक होता था एक्चुअली, मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग, मतलब आपको ऑफिस में जाना है 10 बजे, कभी कभी ऐसे हो जाता है कि ऑफिस में अपने हाथ से गलती हो रही तो फिर सीनियर्स की डांट खा लो, बॉसेस की डांट खा लो, क्योंकि वो बिजी रहते थे सर, मतलब जो हमारे चार्टर्ड अकाउंट जो इनकी प्रैक्टिस है, तो उनके काफ़ी जो काम से रहते थे, क्लाइंट से मिलना वो सब चीज़ें, तो वो उसकी वजह से, हाँ, तो हम और हम नए थे, छोटे,
2: उम्र भी उतनी नहीं थी।
1: हाँ, उम्र भी उतनी नहीं थी। आई गेस मुझे याद है कि मैं 1920 का होऊंगा जब मैंने आर्टिकलशिप स्टार्ट किया, वो टाइम में तो बच्चे मजे कर रहे होते, मतलब कॉलेज लाइफ में, और आप प्रॉपर ऑफिस में जा रहे हो फॉर्मल्स पहन के,
2: 19-20 साल
1: की उम्र में, तो वो अलग ये रहता है, आपका अलग फील रहता है कि आप वो कर रहे हो
2: जी।
1: तो फिर मैंने मैनेज कर लिया, फिर मेरा सक्सेसफुली उसके बाद हो गया क्लियर एग्जाम।
2: ओके,
1: सेकेंड ग्रुप मेरा कंप्लीट हो गया।
2: तो आपने ऑफिस को और पढ़ाई को दोनों को मैनेज किया। क्या बात, बाप रे। तो लेकिन एक बात मुझे और यहाँ पे आपको पूछनी है कि जैसे आपको कभी कभी लगता था कि आप बहुत स्ट्रेस्ड हैं या बहुत हेक्टिक है, तो कोई चीज थी जो आपको उसमें मदद करती थी? क्या मदद करता था?
1: जैसे मैंने पहले बोला कि मैं एग्जाम, मतलब पढ़ाई के टाइम में मेडिटेशन करता था, तो वो एक चीज मुझे हेल्प करती है, क्योंकि आपको तो चीजें पूरे माइंड से करने, बॉडी एग्जर्शन तो नहीं हो रहा है आपका, बस माइंड ब्रेन प्रॉपर होना चाहिए, वही से चीजें, विचार आपके बनने चाहिए, एटीट्यूड बनना चाहिए, उसके लिए मेडिटेशन काफ़ी हेल्प करेगा। आप सुबह उठते ही सबसे पहले 10-15 मिनट मेडिटेशन कर लो, या फिर बीच बीच में भी आप थोड़ा एक जगह बैठ के रिलैक्स हो के आँखें बंद कर लो आप एक कुछ म्यूजिक सुन सकते हो, मोस्टली आप वो मेडिटेशन वाला म्यूजिक सुनो जिसमें लिरिक्स ना हो, क्योंकि वो आपको याद रहेगी लिरिक्स वाले अगर आप सुनोगे तो
2: लिरिक्स ही याद आएंगे,
1: लिरिक्स से याद आएंगे. तो वो विदाउट लिरिक्स वाला जो मेडिटेशन सॉन्ग्स है वो सुनो, तो थोड़ा काम रहेगा, स्ट्रेस को थोड़ा मैनेज करने के लिए हेल्प होगा. कभी कभी तो आपका स्ट्रेस बहुत ओवर हो जाता है, बट ठीक है वो चीज़ें भी निकल जाती है, बिकॉज वो सस्टेन नहीं होता है हम, वो स्ट्रेस आपका थोड़ा रहता है थोड़ा, क्योंकि आपको कलीग्स वगैरह होते हैं उनके साथ थोड़ा बाहर चले जाओ घूम लो, थोड़ा कहीं और चले जाओ फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर लो, यस थोड़ा, तो वो फिर ये हो जाता है, रूटीन में आ जाता है.
2: ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर स्ट्रेस है प्रेशर है तो वो अपने तक रखे, लेकिन उसको कैसे हमको डील करना है वो भी समझना जरूरी है.
1: Exactly.
2: क्योंकि नहीं तो जैसा आप बता रहे हैं सीए का एग्जाम इतना टफ है, कॉम्पिटिशन इतना ज्यादा है, फिर आप एक सब्जेक्ट क्लियर नहीं कर पाए तो आपको पूरा रीअपेयर करना पड़ता है, तो बहुत ऐसे सर्कमस्टेंस में खुद पे डाउट होने लगे, इससे ज्यादा इससे जरूरी है कि हम खुद को मोटिवेटेड रखें.
1: एग्जैक्टली,
2: बहुत जरूरी है.
1: एग्जैक्टली, क्योंकि एट द एंड आपको ही करना है, कोई कुछ भी बोले या फिर कोई कुछ भी करे, आपको खुद को ही मैनेज करना है सब चीज़ें.
2: बिल्कुल,
1: तो वो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप खाली बैठ के मतलब आप स्ट्रेस लेके क्या आउटपुट क्या निकल रहा है आपका, आपका समय बर्बाद हो रहा है, आप खुद को तकलीफ दे रहे हो.
2: राइट,
1: है ना, तो आपको एट द एंड वो स्ट्रेस से मूव ऑन होके आपको को खुश रखने के बहाने ढूंढ के आपको ये करना ही पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा.
2: ओके, तो जब आपने आपका जॉब भी किया, साथ में आपने ग्रुप टू भी क्लियर किया, तो उसके बाद क्या?
1: हाँ ओके, फिर आर्टिकलशिप जब आपकी स्टार्ट होती है उसके 2.5 साल के बाद आपको आप फाइनल का एग्जाम.
2: अच्छा,
1: हाँ पहले तो आपको 2.5 साल में आर्टिकलशिप करना है, ऑफिस में रोज आना है, ये कर ऑफिस के पूरे काम करने. कभी कभी ऐसा होता है कि ड्यू डेट्स होते हैं, जैसे आप इनकम टैक्स का अगर पता करो तो इनकम टैक्स की एक ड्यू डेट होती है, इनकम टैक्स रिटर्न्स की फॉर्म्स की, तो वो आपको अगर ड्यू डेट पे पूरा काम होना चाहिए तो फिर पेनल्टी इंटरेस्ट वगैरह क्लाइंट को लगता है, अगर आपको क्लाइंट को प्रॉपर सर्विस देना है तो वो चीज़ें आपको करनी पड़ती है, तो फिर आप आर्टिकलशिप में तो आपको तो करना ही पड़ता है, तो कभी कभी काफ़ी लेट तक आपको ऑफिस रह के काम करने हैं, तो वो ड्यूरिंग आर्टिकलशिप आपको ऑफिस प्रॉपरली करना है, साथ में आपको सीए फाइनल की पढ़ाई भी करनी.
2: राइट, बिल्कुल.
1: वो ग्रुप टू तो अलग ये था, उसको आपको क्लियर करने के बाद फिर आप फाइनल में फोकस करना है.
2: और इसमें कितने सब्जेक्ट्स होते हैं?
1: इसमें भी 8 सब्जेक्ट्स होते हैं, बट उनका लेवल जो होता है वो थोड़ा एडवांस होता है, इट्स लाइक हाई लेवल नॉलेज होता है वो, तो वो आपको ये करना होता है. उसका सिलेबस काफ़ी वास्ट होता है, वैसे इंटरमीडिएट में भी वास्ट होता है, वो एज के हिसाब से लगता है, क्योंकि आप फाइनल में गए हो तो आर्टिकलशिप के तो आपको नॉलेज भी आ गया, तो उस हिसाब से वो ठीक है, बट सिलेबस काफ़ी वास्ट हो जाता है.
2: तो वो 8 सब्जेक्ट के पेपर एक समय देने होते हैं या यहाँ भी?
1: उसमें भी 2 ग्रुप का ऑप्शन है, ग्रुप 1 ग्रुप 2, आप दोनों भी दे सकते हो.
2: ओके,
1: कभी मतलब एक दे दो पहले फिर बाद में दो, तो मोस्टली मैंने सुन मैंने मतलब जो दोस्त है एक ग्रुप देते हैं, क्योंकि आप आर्टिकलशिप कर रहे हो उसमें टाइम जा रहा है, पढ़ाई नहीं हो पा रही है, फिर लास्ट में 2.5 साल के बाद मतलब आपको 6 मंथ्स अप्रोक्सीमेटली लीव्स का ऐसे समझ लो कि आपको 6 महीने कोई भी ऑफिस में आप काम कर रहे हो तो बॉसेस आपको 6 महीने की छुट्टी दे देंगे पढ़ाई के लिए, मतलब डिपेंड ऑन फॉर्म्स 4 to 6 मंथ्स की वो लीव होती है जिसमें आपको फाइनल की पढ़ाई करनी है, क्योंकि वो सफिशिएंट टाइम नहीं है एक्चुअली स्पीकिंग, ड्यूरिंग आर्टिकलशिप भी आपको पढ़ना है.
2: ओके, ठीक है, तो आपने फिर 2.5 साल मतलब मेहनत किया, और क्या सीखने को मिला, प्रैक्टिकल आपको क्या सीखने को मिला जब आप आर्टिकलशिप कर रहे थे?
1: एक्चुअली मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्यूटी ऑफ दिस कोर्स ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ही होती है, क्योंकि आप उसमें देखोगे एग्जाम अगर मैं टाइम कैलकुलेट करूँ तो ये 2 साल में कम्प्लीट हो जाएगा, लेकिन आर्टिकलशिप आपको 3 साल करना है. तो ये अच्छी ब्यूटी इसलिए क्योंकि आपको प्रैक्टिकल चीजें पता चल रही है, आप बुक में पढ़ रहे हो, जरूरी नहीं कि वो हमेशा हर चीजें एज इट इज अप्लीकेबल हो जाएंगे, वैसे नॉलेज प्रैक्टिकल है, बट जब आप प्रैक्टिकली ऑफिस में जाते हो, क्लाइंट से बात करते हो और प्रैक्टिकली काम करते हो जो तुम्हें सीए बनने के बाद करना है, तो वो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आप गलती कर सकते हो. मेन चीज है कि आप ड्यूरिंग आर्टिकलशिप गलती करते हो, लेकिन एक बार आप प्रोफेशनल बन जाते हो आफ्टर क्वालिफाइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप गलती करने का जो स्कोप है आपका कम हो जाता है, बिकॉज आपको क्लाइंट को सर्विस देना है.
2: Right.
1: या फिर आप जॉब में हो तो वहाँ पे भी आप गलती नहीं कर सकते हो, या प्रैक्टिस में वहाँ गलती नहीं कर सकते, क्योंकि उससे ऐसा हो सकता है कि आप क्लाइंट को पेनल्टी बैठ सकती है, क्लाइंट ना खुश हो जाए और आपका बिजनेस चले जाए, तो वो जो गलती करने का जो समय होता है ये 2.5 साल होता है.
2: ओके.
1: जो आप
2: सीखते हो.
1: हाँ, सीखते हो, करके सीखते हो,
2: करके सीखते हो.
1: एग्जैक्टली.
2: तो यहाँ मैं आपसे एक और चीज पूछना चाहूंगी कि अगर कोई एक 19 या 20 साल का बच्चा, कोई भी यूथ अगर जा रहे हैं जॉब के लिए, मान लीजिए आर्टिकलशिप है या कोई और जॉब है, अगर वो जा रहे हैं 19-20 साल की उम्र है, तो आप उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे? क्योंकि आपने एक्सपीरियंस किया है, तो क्या उनको बोलेंगे जो उनका अनुभव बेहतर हो?
1: पहली बात तो आपको खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा, एटीट्यूड बनाना पड़ेगा एक प्रॉपर, कि आपको मतलब ऐसा, ये पहले ही वैसे आपका ये बन गया होगा एटीट्यूड, क्योंकि पढ़ाई, क्योंकि आपको थोड़ा मौज वाली दुनिया से थोड़ा दूर रहे कि आपको ये करना है, क्योंकि काफी वर्क प्रेशर होता है ऑफिस में.
2: right.
1: आर्टिकलशिप के ड्यूरिंग काफी वर्क प्रेशर होता है और आपको करना ही पड़ता है. लाइक समवेयर बॉसेस को ऐसा रहता है कि आप तेरे को इतना काम दिया तो तेरे को कंप्लीट करना ही पड़ेगा, ऐसा ये रहता है थोड़ा. कभी कभी बॉसेस स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, कभी रूड हो जाते हैं, फिर अपने को सुनना, बिकॉज अपन जूनियर है, अपन सीख रहे, तो थोड़ा वो करना ही भी पड़ता है. हाँ, वो टाइम पे थोड़ा बुरा लगता है, क्या सुनना पड़ रहा है वो सब चीजें.
2: बिल्कुल बिल्कुल.
1: बट वो अच्छे प्रोफेशनल के लिए बहुत जरूरी होता है कि आप डांट खा खा के ही और गलती करके ही इंसान आगे बढ़ता है. वो तो आप भरपूर गलती करो, मतलब ऐसे नहीं जानबूझ के गलती नहीं, मत करो, बट नई नई चीजें करो, तो उससे फिर आपका उतना एक्सपीरियंस भी उसमें पड़ेगा.
2: ओके. एंड अगर डांट सुनते भी हैं, तो जैसा आपने कहा कि शुरुआत में होता है और उससे थोड़ा और स्ट्रांग होता है.
1: एग्जैक्टली. जितना ऐसे बोलते ना, जितना हीरे को आप तराशोगे उतना वो चमकता है. इट्स लाइक अपन जो चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो हीरा बनने वाला है, जो अभी कोयले के खदान में है, जो ड्यूरिंग एग्जामिनेशन उसको वो तरस रहा है और उसको फाइनल मतलब क्लियर करके बाहर निकलना है, तो आपको जितना मतलब आप पिसोगे, जितना ज्यादा आप रगड़े जाओगे, उतना ज्यादा आप चमकोगे बाहर आके. तो वो चमकने के लिए आपको जितना ज्यादा हो सके, मतलब आप प्रेशर को हैंडल करो. हाँ, थोड़ा होता है, बट आप दोस्तों के साथ रहते हो, कलीग्स रहते हो ऑफिस में, तो थोड़ा मैनेज हो जाता है. ठीक है, कभी डांट सुन लो फिर भूल जाओ, बट अपना काम कंटिन्यू करो, आप नई नई चीजें सीखते जाओ, वो जरूरी. और थोड़ा
2: मतलब दिल से नहीं लगाए डांट को.
1: एग्जैक्टली.
2: और वो ये ध्यान रखे कि हमें ये बेहतर बनाएगा,
1: बेहतर बनाएगा. कभी मतलब बॉसेस को खुद से वो नहीं करते, वो तो उनको मतलब और ज्यादा ये बढ़ाने के लिए, वो
2: हमें आगे बढ़ाने के लिए.
1: हाँ, आगे बढ़ाने के लिए.
2: ओके. अच्छा, यहाँ पे एक और चीज है, जैसा कि कम्युनिकेशन आजकल कहते हैं बहुत जरूरी है, या पर्सनालिटी डेवलपमेंट की हम बात करते हैं जब हम जाते हैं जॉब्स के लिए.
1: राइट.
2: तो क्या आपको लगता है कि कैसा कम्युनिकेशन होना चाहिए, या कम्युनिकेशन क्या मदद करता है हमें?
1: ओके. कम्युनिकेशन स्किल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद आप प्रैक्टिस में जाओ या फिर जॉब में जाओ, तो आपको वहाँ पे, जैसे अगर प्रैक्टिस में जा रहे हो तो आपको क्लाइंट को एक्वायर करना है, नए क्लाइंट्स को की सर्विस देना है, तो उनको आपको प्रॉपर कम्युनिकेट करना जरूरी है. तभी जाके आप वो न्यू क्लाइंट को एक्वायर कर सकते हो और उनको कंटिन्यू रख सकते हो. प्रॉपर कम्युनिकेशन जरूरी है.
2: okay.
1: आप ऑफिस में जा रहे हो और आजकल आप देखोगे तो चार्टर्ड अकाउंटेंट आर हायरिंग फॉर द गुड पोजिशन इन द फॉर्म. कंपनीज में, बड़ी बड़ी कंपनीज में आप कोई कोई तो सीईओ सीएफओ लेवल पे चार्टर्ड अकाउंटेंट आज पोजीशन में है, तो वो पोजीशन में आप बैठे हो तो आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल तो बेसिक चीज है, वो होना ही चाहिए.
2: तो ये धीरे धीरे डेवलप होता है जब आप फील्ड में उतरते हो.
1: यस यस. हाँ, जब आप फील्ड में उतर रहे हो, मतलब आप आर्टिकलशिप कर रहे हो तो आपको क्लाइंट से कम्युनिकेट करना है, बॉसेस से कम्युनिकेट करना है, कलीग से कम्युनिकेट करना है, कभी कभी इंटर ऑफिसेस होते हैं उससे कलीग कनेक्ट करना है, तो वहां पे आप वो चीजें सीख जाते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स.
2: आपको भाषा कॉन्फिडेंस होना.
1: Exactly.
2: आपकी भाषा अच्छी होना और सम्मान देना.
1: सम्मान देना, रिस्पेक्ट देना.
2: Right. ये बहुत ज्यादा जरूरी.
1: बहुत ज्यादा जरूरी होता है
2: जी. तो दोस्तों, बिल्कुल आप इस मामले में अगर आप जानकारी रखते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोशिश करें हमारे व्यवहार में सम्मान सभी के प्रति जरूर हो. भाषा हम जितना हो सके पढ़ें सुनें, और साथ साथ आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, जो आप कॉन्फिडेंट रहना बहुत ज़रूरी है अपने yes. जीवन में. हमें आगे बढ़ना है तो, और धीरे धीरे होता है, ये ना सोचें अभी नहीं है तो अरे क्या होगा, लेकिन धीरे धीरे सीखते हैं आगे बढ़ते हैं. जैसा आपने बताया कि आर्टिकलशिप हुई आपकी, अब फाइनल फिर कैसे?
1: हाँ, मैंने तो शुरुआत में फिर आर्टिकलशिप के 1 साल तो मजे में ही चले गए, ये नहीं मतलब ऑफिस में जा रहे, बस ऑफिस में जा रहे और ये कर रहे, मतलब मैंने कुछ स्टार्ट नहीं किया था फाइनल का. बट फिर बाद में मैंने क्लासेस वगैरह लेना स्टार्ट कर दी और ऑनलाइन क्लासेस करता था मैं, पेन ड्राइव लेक्चर्स आते हैं अच्छे अच्छे बेस्ट फैकल्टीज के, आप गूगल करके आपको अच्छे अच्छे फैकल्टीज के हर सब्जेक्ट वाइज लेक्चर्स मिल जाएंगे.
2: ठीक है,
1: वो मैंने ऑर्डर करके फिर पढ़ना स्टार्ट कर दिया आफ्टर वन ईयर. वैसे आप भी वैसे कर सकते हो, मतलब
2: कहाँ से ऑर्डर करते हैं exactly?
1: हमने तो गूगल उनके वेबसाइट्स पे जाके, क्योंकि अभी काफी सीएज है जो पढ़ाते हैं.
2: अच्छा.
1: तो उनसे आप लेक्चर्स ले सकते हो.
2: ठीक है,
1: मतलब वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट, 8 सब्जेक्ट के 8 लेक्चर्स लेके आप वो पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो. आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, लैपटॉप में आप वो पेन ड्राइव क्लासेस आते हैं, आपको मटेरियल भी प्रोवाइड हो जाता है क्लासेस से, और आप फिर पढ़ना स्टार्ट कर दो.
2: ओके.
1: प्रत्येक हर सब्जेक्ट को 8 सब्जेक्ट के क्लासेस कंप्लीट कर लो. तो मैंने फिर वो क्लासेस करना स्टार्ट कर दिया. फिर आर्टिकलशिप, मतलब सुबह मैं एक क्लास कर लेता था, शाम को एक क्लास कर लेता था, ऐसे 2-2 घंटे 3-3 घंटे का, ऐसे 3-4 घंटे अप्रोक्सीमेटली क्लास कर लो, फिर दिन भर ऑफिस कर लो. तो वैसे मैनेज करना पड़ेगा आपको.
2: ठीक है.
1: फिर क्योंकि आपको फिर लास्ट में जब आपकी एग्जाम है उसके 4 या 5-6 महीने 4-6 मंथ्स का मोस्टली ऑफिसर्स में लीव मिलती, बस वही समय मिलेगा जिसमें आपको बस सेल्फ स्टडी करने,
2: जिसमें आपको पूरा समय सिर्फ पढ़ाई के लिए
1: करने, मतलब लेक्चर नहीं कर सकते आपको. लेक्चर ऑफिस मतलब कर रहे हो तो उसी ट्यूरिंग आप लेक्चर कर लो, फिर बाद में आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो.
2: ओके. तो जैसा क्योंकि आपने बताया ग्रुप 1 ग्रुप 2 है, तो ग्रुप 2 का जब आपने क्लियर किया तो कैसा था, मतलब क्या लगा था आपको, क्या था आपके मन में उस वक्त? ग्रुप 2 जब आपका क्लियर हुआ, मतलब एकदम फाइनल एग्जाम जब क्लियर हुआ आपका,
1: ओके,
2: तो कैसा लगा जब रिजल्ट आने वाला था, या जब रिजल्ट आया तो कैसा लगा?
1: वो तो शब्दों में तो नहीं बोल सकते क्योंकि बेस्ट मोमेंट ऑफ द लाइफ, बिकॉज द थिंग्स फॉर विच वी आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम लास्ट 4-6 ईयर वी फाइनली अचीव इट.
2: 6 साल से आप एक ही चीज के लिए लगे
1: मेहनत कर रहे हैं. जो संकल्प मैंने 9th-10th standard में लिया था कि आई हैव टू बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रोफेशन में आना है, तो इतनी मेहनत की है, इतने सैक्रिफाइसेस किए हैं, फंक्शन सैक्रिफाइस. इवन आई विल से कि फाइनल का जब मेरा एग्जाम का प्रिपरेशन चल रहा था, तो मैंने तो मेरा फोन तो मेरा फॉर 5 मंथ्स आया फोन स्विच ऑफ था मेरा, नो कनेक्शन विद नो फेसबुक नो सोशल मीडिया नथिंग, जस्ट ओनली पढ़ाई, बस बस पढ़ाई चल रही. सुबह उठ के बस वो जो सब्जेक्ट से वो पढ़ो, शाम को सोते वक्त भी वही पढ़ो,
2: बस वही,
1: कोई शेड्यूल नहीं, बिकॉज आपको फोकस रहना होता है. क्योंकि आप अगर सोशल मीडिया, फिर कैसे हुआ था शुरुआत में भी मैं थोड़ा इसमें मिस गाइड हो गया था कि मैं मोबाइल पे सोशल मीडिया पे एक्टिव हूँ, इंस्टाग्राम चला रहा हूँ, या फिर फंक्शंस अटेंड कर रहा हूँ, शादी में जा रहा हूँ, तो वहाँ डिस्ट्रैक्शन हो रहा है. क्योंकि आपको फुल फोकस माइंड होना चाहिए, मतलब आपके माइंड को कोई नई चीज नहीं होनी चाहिए सोचने के लिए, देखने के लिए. तो आप देखो ही मत, सोचो ही, तो आप के पास कोई बुद्धि को सोचने के लिए, मन को सोचने के लिए कुछ होगा ही नहीं पढ़ाई के अलावा.
2: पढ़ाई, बस पढ़ाई,
1: बस पढ़ाई.
2: ओके.
1: तो वो आपको 45 मिनट्स मैंने पढ़ाई की थी, तो वो मुझे कभी कभी रोना भी आता था कि यार इतने दिन हो गए और कितना पढ़ना है, रिजल्ट पास आएगा फेल आएगा कैसा होगा क्या होगा. एग्जाम देने के बाद तो लग रहा था कि हाँ इस बार हो जाना चाहिए.
2: अच्छा.
1: बट शुरुआत में तो मेरा ये हो गया था, बट वही कि आपको की मेहनत का रंग आ गया वापस, मतलब आप
2: बिल्कुल ऐसे मोमेंट को शब्दों में नहीं मैं
1: नहीं
2: कह
1: सकते.
2: आपके माता पिता और घर में भी सब लोग बहुत खुश हुए होंगे.
1: फर्स्ट टाइम मैंने पापा को रोते हुए देखा था, नहीं तो उनका कभी मैंने रोना नहीं सुना था, बट वो रो रहे थे, सभी लोग रो रहे थे, तो वो खुशी के आंसू थे.
2: बहुत प्राउड महसूस कर रहे.
1: एग्जैक्टली, बहुत ज्यादा.
2: Okay. तो ये आपने कब क्लियर किया फाइनल एग्जाम सीए का, कौन से वर्ष में?
1: ये December 21 में मेरी एग्जाम हुई थी, अभी ये कोविड के ड्यूरिंग. फिर मेरा रिजल्ट 10th February आया था, वो डेट को तो मैं कभी नहीं भूल सकता लाइफ में, ड्यूरिंग माय होल लाइफ, 10th February 2022.
2: क्या बात,
1: तो रिजल्ट आया था और 1 बजे का समय था जब डिक्लेयर हुआ रिजल्ट, और मैंने लैपटॉप पे ओपन किया तो पास था. तो मेरे को तो आधे घंटे तक कुछ सूची, आई वॉज टोटल ब्लैंक, क्या हुआ मेरे साथ, मैं तो ऐसे शांत पड़ा था.
2: बिलीव नहीं हो रहा
1: बिलीव नहीं हो रहा था एग्जैक्टली.
2: बिल्कुल, आपने कड़ी मेहनत की है और आप डिजर्व करते थे, तभी आपको ये मिला है. और जैसा आपने बताया, कई बार हमें लग सकता है कि दूसरे लोग कुछ तो आराम कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो फल भी आपको मिलेगा.
1: एग्जैक्टली.
2: और दूसरे हो सकते आज मस्ती कर रहे हैं तो उनको कल उनका कुछ और उन्हें करना हो. सबका जर्नी अलग अलग है लेकिन आपकी मेहनत का फल आपको ही मिलता है. और डेफिनेटली बहुत कुछ आपने सैक्रिफाइस किया, डेडिकेशन से आपने एफर्ट किए, तब जाके आपने आप सीए बने, चार्टर्ड अकाउंटेंट बने.
1: एग्जैक्टली. और उस दिन मुझे याद है कि उस दिन मैंने 400 से ज्यादा लोगों को रिप्लाईज किए कॉन्ग्रेचुलेशंस का, जो लोग मुझे जानते नहीं थे, जो बस मतलब ठीक है कोई नहीं ऐसे ही नॉर्मल है, मतलब कुछ वैल्यू नहीं है, उन सब लोगों का मैसेज आया कि कॉन्ग्रेचुलेशन. तो वो एक अलग सेटिस्फेक्शन रहता कि सब लोग याद कर रहे खुशी में.
2: राइट.
1: जब आप फेल होते तो कोई आपके साथ नहीं होता, दो चार लोग होते बस, दो चार फ्रेंड और फैमिली होती. बट आप पास हो जाते हो तो लोग क्राउड होते हैं आपके पास.
2: राइट. और यही ध्यान रखना होता है कि वो जो लोग साथ रहे हैं जब हमने नहीं कुछ अचीव किया था, वो उनका ध्यान जरूर रखना होता है.
1: Exactly.
2: हमेशा
1: हमेशा.
2: बहुत अच्छी बात है आपने कही. एंड मुझे लगता है हम अपने शो के अंतिम मोड़ पे भी आ गए. मैं आपको पूछना चाहूंगी कि इसके बाद आपके क्या प्लान्स हैं और अगर आप सीए बन जाते हैं तो क्या होता है आगे?
1: ओके. सीए बनने के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं. मैं अगर आपको बताऊं तो हम फाइनल में जो 8 सब्जेक्ट पढ़ते तो हर एक सब्जेक्ट में आप स्पेशलाइजेशन को ये करके आप उसमें और आगे पढ़ सकते हो या फिर और आगे आप उसमें एक्सप्लोर कर सकते हो. वो एक ऑप्शन होता है कि आप कोई और डिग्री ले लो, जैसे MBA वगैरह कर सकते हो या फिर अदर फॉरेन कोर्सेज भी, वो भी कर सकते हो. मतलब आपको और कई और ऊंची लेवल पे जाना है उसके लिए. लेकिन आपको करियर ऑप्शन बहुत अच्छे है. आप प्रैक्टिस में जा सकते हो, मतलब खुद का ऑफिस सेटअप कर दीजिए और आप वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट रिलेटेड प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए, वो एक अच्छा ऑप्शन होता है. सेकंड ऑप्शन है जॉब कर सकते हो. जॉब की वैकेंसी काफी है इंडिया में या फॉरेन में भी. आज इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर किया जाता तो ऑल ओवर इंडिया काफी वैकेंसीज है कंपनीज के पास चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए, तो वहाँ आप जॉब कर सकते हो. मेरे केस में मैंने जॉब का ऑप्शन लिया कि शुरुआत में मैं जॉब कर दो, फिर बाद में और समय है सोचने के लिए. जॉब्स काफी है, जॉब कर सकते, प्रैक्टिस कर सकते या फिर आप अदर फील्ड भी ये कर सकते हो,
2: चूज कर सकते. मतलब आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज
1: हैं, ऑप्शंस
2: हैं. लेकिन हाँ, बस यही है कि आपको मेहनत करनी है, एग्जाम देने हैं, उसके बाद आपके पास ऑप्शंस ही ऑप्शंस हैं.
1: ऑप्शन, यस. मतलब आपको पढ़ते रहना है. एक्चुअली कोई भी प्रोफेशन में चले जाओ, जहाँ पे आप पढ़ना बंद करते हो तो आप नहीं बढ़ सकते हो. आपको पढ़ना ही पड़ेगा,
2: सीखना जरूरी,
1: सीखना जरूरी, सीखेगा तो ही बढ़ेगा.
2: बिल्कुल. और यहाँ दोस्तों मैं आपको ये भी बोलना चाहूंगी कि अगर आपको कोई जानकारी चाहिए इससे ज्यादा जो आपको नहीं मिल पा रही है ऑनलाइन, तो आप रेडियो मधुबन पर हमें मैसेज कीजिए. हम पूरी कोशिश करेंगे आपको वो जानकारी उपलब्ध कराने की. रेडियो मधुबन का नंबर है 9914151415, यानी कि 9414151415. इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं. अच्छा, जाते जाते मैं ये आपसे बोलना चाहूंगी, जो भी युवा साथी आपको सुन रहे हैं, वो स्कूल में हो सकते हैं, कॉलेज में हो सकते हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे?
1: देखिए, ये जो अपना यूथ पीरियड होता है, जो आई थिंक मुझे बोलना चाहिए 18 से स्टार्ट हो सकता, 16-18 से 10वीं 12वीं 11वीं के बाद अपना स्टार्ट होता है, ये बहुत क्रूशियल टाइम होता है ऐसा मुझे लगता है. और आप 25 तक जो आपका पीरियड है ये बहुत ही क्रूशियल है, मतलब आपके लाइफ का. आपको अगर बेहतरीन जिंदगी जीना है, कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करना है नेशन को या फिर खुद के फैमिली को कॉन्ट्रीब्यूट करना है, खुद के लिए कॉन्ट्रीब्यूट करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट समय होता है जिसमें आपको जो आपका हर एक कदम इंपॉर्टेंट है. आपको एक प्रॉपर स्टेप लेना चाहिए. आपका एक गलत कदम आपकी लाइफ डिस्ट्रॉय कर सकता है या फिर उसको एक, क्योंकि आफ्टर 25-30 आप नहीं कर सकते हो चीजों को जो चीजें आप तब कर सकते थे जो 18-25-24 वाले पीरियड में. इसलिए ये समय में जो आप चीजें कर रहे हो तो आप एक बस खुद को पूछियो कि इज इट मेकिंग एनी वैल्यू एडिशन टू अस, मतलब कुछ वैल्यू एडिशन हो रहा है क्या
2: या हमारे जीवन में
1: वैल्यू एडिशन, या मतलब अपन कौन से रास्ते की तरफ जा रहे हैं. एक अच्छाई वाला रास्ता जहाँ पे फ्यूचर ब्राइट है, अच्छी अच्छा फ्यूचर है, वहां जा रहे, या फिर अपन खुद को डिस्ट्रॉय तो नहीं कर रहे कि फ्यूचर में अपनी लाइफ कैसे. आप वो सोचिए कि आप 30-40 के बाद कैसे होंगे. आप सपने देखिए कि आपको 30-40 के बाद क्या होना चाहिए, आपको कुछ दिनों के बाद कैसे होना चाहिए. तो वो चीजों विजन रख के आप काम कीजिए, क्योंकि आपको फिर जिंदगी बहुत बड़ी है अगर अच्छे से जीना. और एक हर एक को एक वैल्यूएबल लाइफ मिली है, इसलिए वो पूरे जिंदगी को पूरा जीना ही सबसे बेस्ट होता है. आप कोई कुछ भी करो, जरूरी नहीं कि आप सीए ही करो या फिर डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, आप कुछ भी करो, जो भी प्रोफेशन में आप हो, आप उसको फुल फ्लेज्ड हो. और प्रॉपर स्टेप लो, वो इम्पोर्टेंट है कि आप
2: मतलब कल को ये ना लगे कि अरे ये कर लेते हैं,
1: एग्जैक्टली
2: थोड़ी और मेहनत कर लेते
1: हैं, एग्जैक्टली वो हमें भी कभी कभी लगता है कि कोई चीज हमने नई चीज या मिस आउट हो गई तो अभी लगता है कि वो चीज कर लेना था, वो समय तो चलेगा अभी तो कुछ नहीं है, क्योंकि आप जब फिर वो मेहनत करने के बाद जो हासिल करते हो उसका जो फ्रूट होता है वो उसका एक्सपीरियंस जो होता है मतलब आप मरते दम तक नहीं भूल पाओगे, और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें करने का तो अलग ही महत्व होता है, वो चीजों को ध्यान रख के आप बस लाइफ को जो बाकी करना ही के
2: नहीं, बहुत आपने बहुत सरल तरीके से अपनी ये सभी बातें कही और आपने साथ साथ मोटिवेट भी किया और प्रैक्टिकल बातें भी बताई कि हाँ ऐसा नहीं है कि आराम से हो रहा है, लेकिन हाँ आप मोटिवेटेड हो तो आप कर सकते हो,
1: लाइफ को जियो भी, मस्ती करो, दोस्तों के साथ घूमो फिरो, वो भी जरूरी है क्योंकि वो उम्र तो वापस नहीं आने वाली, क्योंकि 25-30 के बाद आप दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने जाओगे लेकिन उतना आपकी हेल्थ साथ नहीं देंगी, वो सब करते हुए आप करियर को भी एक फोकस रख के आगे बढ़ो तो वो बहुत जरूरी
2: है, बहुत जरूरी, युवा काल में बहुत जरूरी,
1: बहुत जरूरी है।
2: दोस्तों अपना रास्ता खुद चुने और कई तरीके के रास्ते आपके सामने आएंगे, हो सकता है आपके दोस्त भी आपको बताएंगे, लेकिन आपको चुनना है आपका भविष्य, और इसीलिए जरूरी है क्योंकि कई युवा साथी हैं दोस्तों बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत उनके पास हुनर है, लेकिन कई बार नशे की आदत, कई बार इस तरह की आदतें पड़ जाती हैं युवा काल में, जो जीवन के ये जो बहुत इंपॉर्टेंट पल हैं वो ऐसे ही गुजर जाते हैं। और दोस्तों वैसे तो कहते हैं कभी भी देर नहीं होती बदलाव के लिए, तो इसीलिए अगर आपको आज भी ये महसूस हुआ है तो आज ही ये बदलाव लेकर आइए अपने जीवन में, एक करियर, एक विजन, खुद से प्रश्न कीजिए, जैसा आपने कहा कृष्णा हमारे साथ हैं और उन्होंने कहा खुद से प्रश्न कीजिए कि आप अपना भविष्य कैसा देखना चाहते हैं, तो जवाब मिल जाएगा कि क्या जॉब किस तरह का आप करना चाहते हैं, जीना चाहते हैं।
1: एग्जैक्टली,
2: थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए एंड यूथ को गाइड करने के लिए, बहुत सरल तरीके से हमसे आपकी जानकारी शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू सो मच, थैंक यू रेडियो मधुबन, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी यूथ से।
3: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
4: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
3: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेच कर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्य घर .gov.in पर।
5: हर घर

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: सड़क पर से रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय दोनों तरफ पहले देखें, फिर अपना वाहन रेलवे क्रॉसिंग से पार करें। रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय उचित नियमों का पालन करें, इसमें आपकी व रेलवे की सुरक्षा है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: अगर आपातकालीन स्थिति में किसी को अस्पताल ले जाना हो तो घबराइए नहीं, डायल कीजिए एम्बुलेंस का इमरजेंसी नंबर 102 या फिर 108। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। एक और रोमांचक दिन खेलने के लिए आप सुन रहे हैं खाना पकाना और खेलना,
2: छोटी बड़ी बातें, इनमें छुपी है बच्चों के दिल की बात।

खेल कभी भी हो सकता है और कहीं भी हो सकता है, घर और बाहर के रोजाना काम करते वक्त भी। अब देखिए, कल सब्जियां खरीदते वक्त मेरी बेटी और मैंने एक बहुत ही आसान और मजेदार खेल खेला। मैंने उससे पूछा कि उसे कौन सी सब्जी खरीदने का मन है। उसने जवाब दिया, आलू गोभी मटर खाएंगे कचर कचर। अब उसकी बात सुन के मैंने जवाब दिया, एक था बंदर पसंद था जिसे चुकंदर। बस ऐसे ही बातों बातों में खेल बन गया। हम दोनों को बहुत मजा आया। मेरी बेटी ने बोला, अब वो हमेशा मेरे साथ सब्जियां खरीदने आएगी। तो चलो सुनते हैं एल्मो के मम्मी पापा आज एल्मो के साथ क्या खेल खेल रहे हैं।

0: एल्मो, बुझो तो जानो।
1: पूछो, एल्मो को गेस करना बहुत पसंद है।
0: हाँ, हरी है, भरी है, सर पे टोपी पहनी है।
1: हरी भरी मतलब हरी सब्जी।
0: हाँ,
1: पालक हरी भरी होती है।
0: पालक हरी भरी तो होती है, पर क्या उसके सर पे टोपी होती है?
1: सर पे टोपी तो नहीं होती। एमो को पता है, बैंगन। बैंगन के सर पे टोपी होती है।
0: टोपी तो है, पर बैंगन का रंग होता है
2: बैंगनी।
1: पापा आ गए। पापा, एमो को पूछना है मम्मी क्या बना रही है।
2: आहा, मम्मी दाल बना रही है।
1: कुकर में नहीं, हमें पूछना है कि मम्मी कढ़ाई में क्या बना रही है।
0: हरी है, भरी है, सर पे टोपी पहनी है।
2: अच्छा, लौकी।
1: तुरई।
2: टिंडे।
0: बूझो तो जाने, सब्जी का नाम मिलता है पिंडी से।
1: है? पिंडी?
2: तुक मिलाने वाला शब्द। जैसे गिंडी, मिंडी।
1: निंडी, रिंडी।
2: या एल्मो की फेवरेट।
1: एल्मो की फेवरेट तो है भिंडी।
0: हाँ, मैं बना रही हूँ हरी भरी सर पे टोपी वाली एल्मो की फेवरेट भिंडी। एल्मो, प्लेट्स और कटोरियाँ निकालो प्लीज।
1: पापा, प्लेट्स निकालने के पहले एल्मो करेगा शिक्षिक। पूछो तो जानो, शिक्षिक में बनता है झाग।
2: शिकी और झाग। एल्मो साइकिल धोएगा।
1: नहीं पापा, शिक्षिक में बनता झाग हाथ हो जाते जिससे साफ।
0: एल्मो साबुन से हाथ धोएगा।
1: हाँ।
2: बढ़िया आइडिया, मैं भी शिकी कर लेता हूँ।
0: खाना पकाते पकाते हम सब खेल भी रहे हैं एक साथ, बहुत मजा आ रहा है। लो, खाना भी तैयार हो गया।
2: अब ये बूझो, पप्पा को लग रही है
0: भूख।
1: एमो को भी।
0: मुझे भी।
3: मैं काम करते करते आपने तो खेल लिया और खाना भी तैयार कर लिया, कैसा लग रहा है आपको?
0: हाँ, खाना पकाते पकाते काम भी और खेल भी, ऐसे ही रोज मैं एल्मो के साथ खेलती हूँ और उससे बातें करती हूँ कोई भी काम करते हुए। और एल्मो के पापा भी हमारे साथ खेलते हैं।
3: बच्चों के साथ खेलने के लिए हमें अलग से वक्त निकालने की जरूरत नहीं है, हम कुछ भी करते हुए खेल सकते हैं, जैसे कपड़े धोते हुए, सफाई करते हुए,
0: सब्जी खरीदते हुए, स्कूल या मार्केट जाने के समय, या घर का कोई भी काम करते हुए। कई तरह के खेल खेल सकते हैं। कभी पोयम बना ली तो कभी क्विज खेल लिया, या फिर एल्मो का फेवरेट खेल, चीजों को छाट के अलग अलग करना। काम भी पूरा हो जाता है और बच्चों का खेल और मस्ती भी।
3: बिल्कुल, बच्चों के साथ खेलने में बहुत मजा आता है और खेल खेल में बच्चे सीखते भी हैं। पर सबसे ज्यादा जब हम अपने बच्चों के साथ खेलते हैं तो उनके साथ हमारा रिश्ता और मजबूत होता है। कभी भी, कहीं भी और कोई भी काम करते हुए बच्चों के साथ खेला जा सकता है। तो चलो खेलें सब संग।
4: सेसेमी वर्कशॉप इंडिया द्वारा निर्मित, यूबीएस ऑप्टिमस फाउंडेशन और ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट द्वारा समर्थित।

0: मन मना भव।
1: ये तंबाकू क्या होता है?
2: अरे तिकुनी पता क्या, इसमें पता है लोग धुए में अपनी फिक्र उड़ा देते। अरे गाना नहीं सुना क्या तूने?
3: हर फिक्र को धुए में उड़ाता चला गया।
1: अच्छा तो फिर मेरे नंबर कम आए तो क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूँ?
2: अरे कोई भी कर सकता है, तंबाकू तो बड़ा ही कूल होता है।
4: ऐसी बातें बचपन में होती हैं, युवावस्था में या और बड़े होने के बाद भी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तंबाकू या धूम्रपान व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य के साथ शारीरिक सेहत पर बहुत बुरा असर डालता है। बीड़ी, सिगरेट, गुटखा इत्यादि के सेवन से कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। धूम्रपान करने से धमनियां कमजोर होने लगती हैं और कोरोनरी हार्ट डिजीज या स्ट्रोक भी हो सकता है। सलाह लीजिए डॉक्टर की और हिम्मत बढ़ाइए अपनों की। रेडियो मधुबन द्वारा जानकारी जनहित में जारी।
5: मैं हूं आपका रेडियो मित्र संदीप शर्मा।
6: और मैं हूं वर्षा सिंह।
5: और आज हम शब्दों के शिल्पकार में परिचित कराने जा रहे हैं प्रख्यात हिंदी कवि भवानी प्रसाद मिश्र के जीवन वृतांत से। हिंदी साहित्य के एक ऐसे कवि जिनकी कविताओं में सादगी भी है, संवेदना भी और समाज के प्रति गहरी प्रतिबद्धता भी झलकती है। एक ऐसे रचनाकार जिनकी लेखनी ने शब्दों को, जीवन और विचारों को नई दिशा दी।
6: उनका जीवन केवल एक कवि का जीवन नहीं था, बल्कि वो एक ऐसे संवेदनशील मनुष्य की कहानी है जिसने अपने शब्दों के माध्यम से समाज की सच्चाइयों को उजागर किया, मानवीय मूल्यों को महत्व दिया और सरल भाषा में गहरी बात कहने की परंपरा को आगे बढ़ाया। लेकिन श्रोताओं, उनके जीवन की इस प्रेरक यात्रा को विस्तार से जानने से पहले आइए सबसे पहले उनके व्यक्तित्व, उनकी साहित्यिक सोच और हिंदी साहित्य में उनके महत्वपूर्ण योगदान की एक छोटी सी झलक पर नजर डालते हैं।
5: श्रोताओं, मैं आपको उनके बारे में कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूँ जो शायद आपने किताबों में नहीं पढ़ी। कुछ ऐसी बातें जो सुनकर आप मुस्कुराएंगे, कुछ सुनकर चौंकेंगे और कुछ सुनकर शायद सोच में पड़ जाएंगे।
6: वो एक ऐसे कवि थे जो खुद अपनी कविता के सबसे बड़े आलोचक थे। एक बार किसी ने उनसे पूछा, मिश्र जी, आपकी सबसे अच्छी कविता कौन सी है? तो उन्होंने हंसते हुए कहा, जो मैंने अभी तक लिखी ही नहीं है। यही था उनका स्वभाव, न अहंकार न घमंड, बस एक अटूट जिज्ञासा कि अभी और बेहतर लिखना है।
5: उन्होंने जेल में बैठकर कविताएं लिखी और वो कविताएं आज भी हिंदी साहित्य की अमर रचनाएं मानी जाती हैं। 1942 में जब अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार किया तो वो कलम और कागज साथ ले गए। जब जेलर ने पूछा ये क्या है तो मिश्र जी ने कहा, यही मेरा हथियार है और आप इसे छीन नहीं सकते। सलाखें शरीर को कैद कर सकती हैं, लेकिन शब्दों को नहीं।
6: भवानी प्रसाद मिश्र हिंदी साहित्य के उन विरले कवियों में से एक हैं, जिनकी कविता सरलता में गहराई और सहजता में असाधारण सौंदर्य समेटे हुए है। आपका जन्म 29 मार्च 1913 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के एक छोटे से ग्राम टिगरिया में हुआ था। ये गाँव नर्मदा नदी के तट के निकट स्थित था, जिसकी प्राकृतिक सुंदरता ने उनकी काव्य चेतना को बचपन से ही सींचा।
5: उनके पिता का नाम पंडित सीताराम मिश्र था। वे एक सुशिक्षित, धर्मनिष्ठ और संस्कारी व्यक्ति थे। परिवार में वेद, पुराण, रामायण और महाभारत का नियमित पाठ होता था। माता का नाम श्रीमती देवकीबाई था, जो अत्यंत ममतामयी और धार्मिक स्वभाव की महिला थी। माँ की लोरियां और पिता के श्लोक, यही भवानी प्रसाद मिश्र की प्रारंभिक काव्य शिक्षा थी। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के टिगरिया गांव में आपका निवास था। वातावरण अत्यंत प्राकृतिक और ग्रामीण था। हरे भरे खेत, माँ नर्मदा का कल कल करता जल, वन उपवन की हरियाली और ग्रामीण जनजीवन की सादगी, इन सब ने बालक भवानी प्रसाद के कोमल मन पर गहरी छाप छोड़ी। इसलिए उनकी परवर्ती कविताओं में प्रकृति का इतना जीवंत और आत्मीय चित्रण मिलता है।
6: बचपन से ही उनमें जिज्ञासा और संवेदनशीलता की अद्भुत क्षमता थी। वे अपने आसपास के लोगों की पीड़ा, खुशी और संघर्ष को बहुत गहराई से महसूस करते थे। गांव के किसान, मजदूर और सामान्य जन, इन सभी के प्रति उनके मन में स्वाभाविक करुणा थी, जो आगे चलकर उनकी कविताओं की आत्मा बनी। भवानी प्रसाद मिश्र की प्रारंभिक शिक्षा होशंगाबाद में हुई। वहां उन्होंने हिंदी, संस्कृत और गणित में प्रारंभिक दक्षता प्राप्त की। संस्कृत के प्रति उनका विशेष अनुराग था, जो उनके घरेलू संस्कारों का ही विस्तार था।
5: श्रोताओं, उच्च शिक्षा के लिए वो जबलपुर गए, जो समय मध्य प्रदेश का एक प्रमुख सांस्कृतिक और शैक्षणिक केंद्र था। जबलपुर में उन्होंने स्नातक स्तर की शिक्षा पूर्ण की। यहाँ उनका परिचय तत्कालीन साहित्यिक और राजनीतिक विचारधाराओं से हुआ। गांधी जी का स्वतंत्रता आंदोलन पूरे देश में तेज हो चुका था और युवा वर्ग उससे गहराई से प्रभावित हो रहा था। जबलपुर में ही शिक्षा के दौरान उन्होंने काव्य लेखन आरंभ किया। उनकी कविताएं स्थानीय पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होने लगी और उनकी प्रतिभा की चर्चा साहित्यिक मंडलियों में होने लगी। इसी दौर में उन्होंने महात्मा गांधी के विचारों का गहन अध्ययन किया और गांधीवाद उनके जीवन दर्शन का अभिन्न अंग बन गया।
6: भवानी प्रसाद मिश्र केवल एक साहित्यकार नहीं थे, वे एक सच्चे राष्ट्रभक्त और स्वतंत्रता सेनानी भी थे। जब 1942 में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया, तो समस्त देश एक विद्रोह की लपटों में जल उठा। युवा भवानी प्रसाद मिश्र ने भी इस आंदोलन में अपना सर्वस्व झोंक दिया। उन्होंने सक्रिय रूप से आंदोलन में भाग लिया, जनसभाएं आयोजित की, पर्चे बांटे, लोगों को संगठित किया और अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध आवाज उठाई। परिणाम स्वरूप अंग्रेज सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और 1942 से 1945 तक पूरे 3 वर्षों के लिए उन्हें कारागार में बंद रखा।
5: जेल का जीवन कठोर था, परंतु उनकी कविता की ज्वाला वहां और भी प्रज्वलित हुई। सलाखों के पीछे बंद होकर भी उन्होंने लिखना नहीं छोड़ा। जेल की दीवारों ने उनकी कविता को एक नई गहराई, नई पीड़ा और नई ऊंचाई प्रदान की। उनकी कुछ सर्वश्रेष्ठ कविताएं इसी कारावास काल की उपज हैं। जेल से बाहर आने के बाद भी वे गांधीवादी आंदोलन से जुड़े रहे। उन्होंने गांधी स्मारक निधि के माध्यम से सामाजिक और साहित्यिक कार्यों में सहयोग दिया। राष्ट्र की आजादी उनके लिए केवल राजनीतिक मुक्ति नहीं, बल्कि सामाजिक और आत्मिक मुक्ति की यात्रा थी।
6: आइए अब आपको भवानी प्रसाद मिश्र जी के साहित्यिक जीवन और काव्य यात्रा की ओर ले चलते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र का साहित्यिक जीवन अत्यंत समृद्ध और विविधतापूर्ण रहा। उनकी काव्य यात्रा लगभग 5 दशकों तक फैली हुई है। वे हिंदी साहित्य के प्रयोगवादी और नई कविता आंदोलन के महत्वपूर्ण स्तंभ रहे। सन 1951 में अज्ञेय द्वारा संपादित दूसरा सप्तक में उनकी कविताएं प्रकाशित हुईं, जिसने उन्हें हिंदी जगत में एक प्रतिष्ठित स्थान दिलाया। दूसरा सप्तक में प्रकाशित अपनी कविताओं के साथ भवानी प्रसाद मिश्र ने अपना काव्य सिद्धांत भी प्रस्तुत किया। उन्होंने लिखा कि कविता को जन जन की भाषा में होना चाहिए। कठिन और दुरूह शब्दावली कविता को सामान्य पाठक से दूर कर देती है। उनका मानना था कि जो भाषा हम रोज बोलते हैं, वही कविता की भाषा होनी चाहिए।
5: उनकी काव्य साधना में कोई कृत्रिमता नहीं थी। वे कविता लिखते नहीं थे, कविता उनके भीतर से स्वयं फूटती थी, जैसे झरने का जल पहाड़ से। प्रकृति, मानव जीवन, राष्ट्र प्रेम, गांधीवादी दर्शन और आध्यात्मिक चेतना, ये सभी तत्व उनकी कविताओं में इस तरह घुले मिले हैं कि उन्हें अलग करना संभव नहीं। उनकी प्रसिद्ध उक्ति उनके पूरे काव्य दर्शन को समेट लेती है। उन्होंने कहा था, जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख, और इसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख। ये उनका काव्य मंत्र था और उन्होंने इसे जीवन भर निभाया।
6: भवानी प्रसाद मिश्र की सबसे बड़ी विशेषता उनकी भाषागत सहजता है। उन्होंने हमेशा उस भाषा में लिखा जो आम आदमी समझे, महसूस करे और उसमें अपना जीवन देखे। उनकी कविताओं में ना तो अनावश्यक अलंकारों का बोझ है और ना ही दुरूह शब्दावली का आतंक। फिर भी उनकी भाषा में एक जादू है जो पाठक को भीतर तक छू लेती है। मिश्र जी की कविताओं में प्रकृति कोई बाहरी सजावट नहीं बल्कि उनकी आत्मा की अभिव्यक्ति है। नर्मदा के तट पर बचपन बिताने के कारण नदी, पहाड़, वन, आकाश और ऋतुओं का चित्रण उनकी कविताओं में बेहद जीवंत और हृदय स्पर्शी है। वे प्रकृति को एक मित्र की तरह देखते हैं जिससे संवाद किया जा सके।
5: उनकी कविताओं में महात्मा गांधी के सत्य, अहिंसा, सादगी और सेवा के मूल्य गहराई से अंकित हैं। वे गांधी जी को केवल एक राजनेता नहीं, एक आध्यात्मिक पुरुष मानते थे। उनकी कविताएं गांधीवादी जीवन पद्धति का काव्यात्मक रूपांतरण है। गीत फरोश जैसी कविताओं में उनका सामाजिक व्यंग्य अपने चरम पर है। वे समाज की विसंगतियों, पूंजीवाद की क्रूरता और कलाकार की विवशता को बड़ी बेबाकी से उजागर करते हैं। उनका व्यंग्य कभी कटु नहीं होता बल्कि उसमें एक मानवीय करुणा सदा विद्यमान रहती है।
6: परिपक्व अवस्था में भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं अधिकाधिक आध्यात्मिक होती गईं। त्रिकाल संध्या और इंदना मम जैसी रचनाओं में जीवन और मृत्यु, आत्मा और परमात्मा, समर्पण और विसर्जन के गहन प्रश्नों से वे टकराते हैं। ये आध्यात्मिकता किसी कर्मकांड से नहीं बल्कि उनके जीवन अनुभव से उपजी। आइए जानते हैं उनकी कुछ प्रमुख रचनाओं और उनके महत्व के बारे में। गीत फरोश, जो साल 1956 में आया, ये उनका सबसे प्रसिद्ध और सर्वाधिक पढ़ा जाने वाला काव्य संग्रह है। इसकी शीर्षक कविता गीत फरोश हिंदी साहित्य की अमर रचनाओं में स्थान रखती है। इस कविता में एक कवि अपने गीत बाजार में बेचने को मजबूर है। ये एक गहरा व्यंग है उस समाज को जो कला और संवेदना को बाजार की वस्तु बना देता है। इस संग्रह की कविताएं सामाजिक जागरूकता, राष्ट्र प्रेम और मानवीय करुणा से भरपूर हैं।
5: और अब जानते हैं चकित है दुख, जो कि 1963 में आई। इस संग्रह में वेदना और पीड़ा का एक नया आयाम उभरता है। दुख को चकित कहना, ये मिश्र जी की काव्य दृष्टि की अनूठी मिसाल है। यहाँ दुख केवल आहत नहीं करता बल्कि विस्मित भी करता है, जीवन की जटिलता से, मानव स्वभाव की विरोधाभासी प्रकृति से। और अब बात करते हैं 1973 में आई बुनी हुई रस्सी की। ये संग्रह उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित करने वाली रचना है। इसमें उनकी काव्य परिपक्वता अपने उच्चतम बिंदु पर है। बुनी हुई रस्सी एक रूपक है, जीवन यात्रा का, संघर्ष का, लेकिन साथ ही आशा और सृजन का भी। इस संग्रह की कविताएं गांधीवादी जीवन दर्शन, प्रकृति प्रेम और आत्म अन्वेषण का अद्भुत समन्वय है।
6: खुशबू के शिलालेख, जो 1975 में आया, इस संग्रह में प्रेम, सौंदर्य और प्रकृति का एक अनूठा संगम है। खुशबू के शिलालेख शीर्षक ही अपने आप में एक काव्यात्मक रूपक है। खुशबू जो हवा में घुलती है वो शिलालेखों पर अंकित हो जाती है। ये उनकी काव्य दृष्टि का सुंदर प्रतीक है। त्रिकाल संध्या, जो साल 1989 में आई, ये संग्रह उनकी आध्यात्मिक काव्य का प्रतिनिधित्व करता है। त्रिकाल संध्या भूत, वर्तमान और भविष्य की संध्या एक ऐसे कवि की रचना है जो समय की गहराई में उतरकर जीवन के रहस्य को समझना चाहता है।
5: और अब बात करते हैं 1983 में आए उनके संग्रह इदम नमम की। इस संग्रह का शीर्षक संस्कृत से लिया गया है जिसका अर्थ है ये मेरा नहीं। ये पूर्ण समर्पण और विसर्जन की भावना का काव्य है। इसमें एक कवि अपनी रचनाओं, अपने अनुभवों और अपने अहंकार को ईश्वर को समर्पित कर देता है। और इससे पहले उन्होंने दूसरा सप्तक का संपादन किया जिसमें द्वितीय तार सप्तक और प्रयोगवाद की बात थी। इसके साथ ही सन 1951 में अज्ञेय के संपादन में, जिसमें भवानी प्रसाद मिश्र जी की कविताएं संकलित थीं, ये संग्रह हिंदी कविता के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ। इसने नई कविता आंदोलन को और गति दी जिसका नाम था द्वितीय तार सप्तक और प्रयोगवाद।
6: दूसरे सप्तक के अन्य कवियों में भारत भूषण अग्रवाल, शकुंत माथुर, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय, शमशेर बहादुर सिंह और धर्मवीर भारती शामिल थे। ये सभी अपने अपने तरीके से हिंदी कविता को नई दिशा दे रहे थे। जहां इस सप्तक के अनेक कवि जटिल बौद्धिकता और प्रतीकवाद की ओर बढ़ रहे थे, वहीं मिश्र जी ने सहज भाषा की राह चुनी। ये उनकी विशिष्टता थी। उनकी इस सहज भाषा की शर्त ने नई कविता को जनसामान्य से जोड़ने का काम किया।
5: श्रोताओं, अब तक हमने उनके साहित्यिक जीवन की झलक देखी, लेकिन किसी भी महान व्यक्तित्व की पहचान सिर्फ उसके लेखन से ही नहीं होती, बल्कि उसके सामाजिक योगदान से भी होती है। तो आइए अब आपको लिए चलते हैं उनके जीवन के उस पहलू की ओर, जहां उन्होंने समाज और संस्कृति के क्षेत्र में अपनी अमिट छाप छोड़ी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भवानी प्रसाद मिश्र ने आकाशवाणी से अपना जुड़ाव बनाया। वे दिल्ली आकाशवाणी में महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत रहे। रेडियो के माध्यम से उन्होंने हिंदी साहित्य, काव्य और संस्कृति के प्रचार प्रसार में अमूल्य योगदान दिया।
6: आकाशवाणी में रहते हुए उन्होंने अनेक साहित्यिक कार्यक्रमों का निर्माण और संचालन किया। उन्होंने नए कवियों और लेखकों को मंच दिया और हिंदी साहित्य को आम श्रोताओं तक पहुंचाने का प्रयास किया। उनका ये योगदान हिंदी के जन प्रसार में अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। इसके अतिरिक्त वे गांधी स्मारक निधि से भी संबद्ध रहे। इस संस्था के माध्यम से उन्होंने गांधीवादी विचारधारा के संरक्षण, प्रकाशन और प्रसार में सहयोग दिया। गांव में जाकर ग्रामीणों के बीच काम करना, उनकी समस्याओं को समझना और उनके जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में प्रयास करना, ये सब उनकी गांधीवादी प्रतिबद्धता का हिस्सा था।
5: आइए और अब बात करते हैं उनके व्यक्तित्व और स्वभाव की। वो केवल महान कवि ही नहीं थे, बल्कि उनका व्यक्तित्व अत्यंत सरल, विनम्र और संवेदनशील था। भवानी प्रसाद मिश्र का व्यक्तित्व उनकी कविता जितना ही सरल, उज्जवल और निश्चल था। बड़े बड़े पुरस्कार और सम्मान पाने के बाद भी उनमें लेश मात्र भी अहंकार नहीं आया। वे जीवन भर एक सामान्य नागरिक की तरह रहे, बिना किसी आडंबर और दिखावे के। उनके सहयोगी, शिष्य और साहित्यिक मित्र सभी एक मत से उनकी विनम्रता और सहजता की प्रशंसा करते थे। किसी भी मंच पर, किसी भी सभा में वे उसी सादगी से उपस्थित होते थे जैसे किसी गांव की चौपाल पर। उनका पहनावा, उनके बोलने का ढंग, उनकी जीवन शैली, सब कुछ गांधीवादी सादगी की छाप लिए हुए होता था।
6: उनमें हास्य बोध भी अद्भुत था। गंभीर से गंभीर बात को वे हल्के फुल्के अंदाज में कह देते थे और श्रोताओं का मन मोह लेते थे। कवि सम्मेलनों में जब वे मंच पर आते थे तो उनकी सहजता और आत्मीयता से सारा माहौल गर्म जोश हो उठता था। वे युवा कवियों के प्रति अत्यंत उदार और प्रोत्साहक थे। नई पीढ़ी के कवियों को वे सदा प्रेम, मार्गदर्शन और प्रोत्साहन देते थे। उनका मानना था कि साहित्य की परंपरा तभी जीवित रह सकती है जब नई पीढ़ी उसे अपने ढंग से आगे ले जाए।
5: श्रोताओं, अब तक हमने उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के विभिन्न पहलुओं को जाना, लेकिन भवानी प्रसाद मिश्र के जीवन को सही अर्थों में समझना है तो उनके गांधीवादी विचारों को समझना बेहद आवश्यक है। भवानी प्रसाद मिश्र और गांधीवाद का संबंध केवल वैचारिक नहीं बल्कि आत्मिक था। महात्मा गांधी उनके लिए केवल एक राजनीतिक नेता नहीं, एक जीवन दर्शन के प्रतीक थे। गांधी जी के सत्य, अहिंसा, सेवा, सादगी और आत्मनिर्भरता के सिद्धांत उनकी कविताओं में इस तरह घुले मिले हैं कि उन्हें अलग करना संभव नहीं। उन्होंने गांधी जी की हत्या यानी 1948 के बाद जो कविताएं लिखी उनमें एक असाधारण पीड़ा और शोक का भाव है। गांधी जी की मृत्यु उनके लिए केवल एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं थी बल्कि एक युग की, एक सपने की मृत्यु थी।
6: गांधीवादी जीवन पद्धति को उन्होंने अपने निजी जीवन में भी उतारा। वे अपनी आवश्यकताओं को न्यूनतम रखते थे, सादा जीवन और उच्च विचार को अपना आदर्श मानते थे और समाज सेवा को अपना धर्म। उनकी ये जीवन शैली उनकी कविताओं को प्रामाणिकता प्रदान करती है। आइए अब आपको लिए चलते हैं उनके साहित्य के उस कोमल और सरल पक्ष की ओर, जहाँ वे बच्चों के लिए लिखते हैं और गद्य के माध्यम से भी अपनी गहरी बात सहजता से कह जाते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र ने कविता के अलावा बाल साहित्य में भी उल्लेखनीय योगदान दिया। उन्होंने बच्चों के लिए सरल, रोचक और शिक्षाप्रद कविताएं लिखी। उनके बाल काव्य में प्रकृति, जीव जंतु, देश प्रेम और नैतिक मूल्यों की सुंदर अभिव्यक्ति है।
5: श्रोताओं, गद्य लेखन में उन्होंने संस्मरण और निबंध लिखे। उनके संस्मरण अत्यंत पठनीय हैं, क्योंकि उनमें उनके जीवन के वास्तविक अनुभव, स्वतंत्रता संग्राम की स्मृतियां और साहित्यिक मित्रों के चित्र बड़े ही आत्मीय तरीके से उकेरे गए हैं। अब तक हमने उनके साहित्य, व्यक्तित्व और विचारों की विभिन्न झलकियां देखी, लेकिन किसी भी साहित्यकार की साधना को समाज द्वारा मिला सम्मान भी उसकी यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। तो आइए अब जानते हैं भवानी प्रसाद मिश्र को उनके साहित्यिक योगदान के लिए कौन कौन से पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए।
6: भवानी प्रसाद मिश्र को उनके जीवन काल में अनेक महत्वपूर्ण पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए। उनकी रचनाओं को साहित्यिक जगत में जो स्वीकृति और प्रशंसा मिली, वो उनकी काव्य प्रतिभा की प्रामाणिकता का सबसे बड़ा प्रमाण है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1972 में बुनी हुई रस्सी संग्रह के लिए, ये हिंदी साहित्य का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान मध्य प्रदेश में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। भवभूति अलंकरण उज्जैनी द्वारा प्रदत्त विशेष साहित्यिक सम्मान, द्वितीय तार सप्तक में स्थान, हिंदी के प्रयोगवादी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर के रूप में मान्यता, अनेक विश्वविद्यालयों और साहित्यिक संस्थाओं द्वारा सम्मान पत्र और अभिनंदन।
5: श्रोताओं, भवानी प्रसाद मिश्र हिंदी साहित्य के उन प्रमुख कवियों में गिने जाते हैं जिन्होंने अपनी सादगीपूर्ण और स्वाभाविक भाषा के माध्यम से आम जनजीवन को साहित्य से जोड़ा। भवानी प्रसाद मिश्र हिंदी कविता में सहजता के शिखर के रूप में जाने जाते हैं। उनका योगदान बहुआयामी है और हिंदी साहित्य पर उनका प्रभाव अमिट है। उन्होंने सिद्ध किया कि महान कविता के लिए कठिन भाषा, जटिल प्रतीक या बौद्धिक दुरूहता आवश्यक नहीं, सहज बोलचाल की भाषा में भी गहन भावों की अभिव्यक्ति संभव है। ये उनका सबसे बड़ा योगदान है।
6: उन्होंने गांधीवादी काव्यधारा को हिंदी में एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। उनकी कविताएं इस बात का प्रमाण है कि राजनीतिक और सामाजिक प्रतिबद्धता और उच्च काव्य कला साथ साथ चल सकती हैं। उनकी कविताएं आज भी पाठ्यक्रमों में पढ़ाई जाती हैं, कवि सम्मेलनों में सुनाई जाती हैं और साहित्य प्रेमियों के हृदय में बसी हैं। उनकी गीत फरोश जैसी कविताएं इतने वर्षों बाद भी उतनी ही प्रासंगिक और उतनी ही हृदय स्पर्शी लगती हैं।
5: हर महान रचनाकार की जीवन यात्रा एक दिन

0: विराम लेती है, लेकिन उसके विचार, उसकी रचनाएं और उसकी छाप समय के साथ और भी गहरी होती चली जाती है। आइए अब जानते हैं भवानी प्रसाद मिश्र के जीवन के अंतिम पड़ाव और उनकी अमर विरासत के बारे में। फरवरी 1985 को भवानी प्रसाद मिश्र का निधन हो गया। वे लगभग 72 वर्ष की आयु में इस संसार से विदा हुए। उनके निधन से हिंदी साहित्य को एक अपूर्णीय क्षति हुई। देश भर के साहित्यकारों, पाठकों और उनके प्रशंसकों ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। परंतु एक सच्चे कवि की मृत्यु केवल शरीर की मृत्यु होती है। उनकी रचनाएं, उनके गीत, उनकी कविताएं, उनके विचार आज भी उतने ही जीवंत हैं जितने उनके जीवन काल में थे। गीत फरोश, बुनी हुई रस्सी, चकित है दुख, ये सब अमर रचनाएं हैं जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेंगी।
1: उनकी विरासत केवल उनकी पुस्तकों तक सीमित नहीं, उन्होंने हिंदी कविता को एक नई दिशा दी, सहजता की दिशा, जन जुड़ाव की दिशा। उनके द्वारा स्थापित ये परंपरा आज भी हिंदी काव्य में प्रवाहित है। भवानी प्रसाद मिश्र हिंदी साहित्य के एक ऐसे नक्षत्र थे जो अपनी सरलता में असाधारण थे। उन्होंने अपने जीवन में जो जिया वही लिखा और यही उनकी कविता को प्रमाणिक, जीवंत और कालजयी बनाता है। एक स्वतंत्रता सेनानी जिसने जेल की सलाखों के पीछे भी कविता नहीं छोड़ी, एक गांधीवादी जिसने जीवन भर सत्य और अहिंसा को अपना आदर्श माना, एक कवि जिसने सहज भाषा में गहन जीवन सत्यों को व्यक्त किया, यही भवानी प्रसाद मिश्र की पहचान है।
0: मित्रों, उनकी रचनाएं पढ़ते समय ऐसा लगता है जैसे कोई आत्मीय मित्र हमसे बात कर रहा हो, बिना किसी कृत्रिमता के, बिना किसी आडंबर के, सीधे दिल से दिल तक। यही उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है और यही उनकी अमरता का रहस्य है। तो श्रोताओं, ये थी जीवन यात्रा भवानी प्रसाद मिश्र की, एक ऐसे कवि की जिनकी रचनाओं में सादगी है, विचारों में गहराई है और जीवन में सत्य का साहस है। उन्होंने न केवल हिंदी साहित्य को समृद्ध किया बल्कि अपने गांधीवादी दृष्टिकोण से समाज को एक नई दिशा भी दी। उनकी कविताएं आज भी हमें सोचने, समझने और बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देती हैं। उनका पूरा जीवन इस बात का उदाहरण है कि सच्चाई, सरलता और संवेदनशीलता के साथ भी महानता हासिल की जा सकती है। इसी संदेश के साथ आज हम आपसे विदा लेते हैं अपने कार्यक्रम शब्दों के शिल्पकार में। फिर किसी और शब्द शिल्पी की जीवन यात्रा के बारे में बात करेंगे अपने अगले अंक में। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में मार्गदर्शन था संतोष कुमार वर्मा का, परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग सतीश बाथम का, लेखन अखिलेश कुमार वर्मा का और इसे आप तक पहुंचाया मैंने यानी आपके रेडियो मित्र संदीप शर्मा
1: और साथ दिया मैंने यानी वर्षा सिंह ने।
0: तो आपसे फिलहाल लेते हैं इजाजत।
1: नमस्कार।

0: प्रकृति बेटा, पृथ्वी पर तुम्हें क्या करना है तुम्हें पता है ना?
1: मुझे लोगों को प्यार से इंस्पायर और लाइफ के लिए एजुकेट करना है, ताकि वो नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग कर इस पृथ्वी को बचाए रखे।
0: इसमें तुम्हारी मदद करेंगी ये तीन चीजें। पहली, टियारा ऑफ फ्लावर्स, जो तुम्हें हमेशा हैप्पी और एनर्जेटिक रखेंगे। दूसरा, ये बैज ऑफ लाइफ, जो लोगों को पर्यावरण के लिए लाइफ जीवन शैली की याद दिलाएगा। जब वे प्रकृति की रक्षा करेंगे तो प्रकृति उनकी रक्षा करेगी। तुम ये बैज उन लोगों को भी दे सकते हो जो हमारे प्लैनेट की बेहतरी के लिए योगदान करते हैं। और तीसरा, ये बैग ऑफ होप, जब भी कोई एनवायरनमेंट को हार्म करे तो तुम इसमें से इको सस्टेनेबल अल्टरनेटिव निकाल कर उसे देना।
1: ओके, अब मैं अपने मिशन पर चलती हूँ।

0: नमस्ते, राम राम, और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 FM पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माय विलेज माय एरिया। इस कार्यक्रम को लेकर जब हम गांव और अंचल में जाते हैं हमें बहुत खुशी मिलता है, क्योंकि अपना गाँव और अपना अंचल कितना अच्छा है जिस गाँव और अंचल में पले बड़े और यहाँ तक पहुंचे। हर रोज के तरह आज भी आपका पास रूबरू होने के लिए आए हैं। हर विद्यालय, हर गांव, हर आंगनबाड़ी, हर नरेगा में हम पहुंचते हैं, सभी को एक मंच मिलता है। तो रेडियो मधुबन एक सामुदायिक रेडियो होने के नाते सामुदायिक आवाज समुदाय तक पहुंचाने के लिए हम तत्पर रहते हैं, चाहे बारिश हो, चाहे धूप हो, चाहे ठंडी हो, हर जगह में समय को देखते हुए, वातावरण को देखते हुए, परिवेश को देखते हुए पहुंचते हैं। और कहां कहां सूचना देना पड़ता है और कहां कहां से भी हमें सूचना मिलता है, हमारा स्कूल में कब आ रहे हैं सर, तो हर जगह का जो प्यार है, जो भावना है, तो उसको हम कैसे ठेस पहुंचाएंगे, क्योंकि सरकार हमें दिए हैं कम्युनिटी रेडियो, कम्युनिटी का आवाज को बुलंद करने के लिए, जन जन तक पहुंचाने के लिए। तो सिरोही जिला में एक वैल्यू बेस्ड रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन इस तरह कार्यक्रम को लेकर पहुंचता है। तो आज आप सबका पास हम रखने जा रहे हैं रेबदर तहसील के स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रेबदर का आवाज को आज बारी बारी सुनने को मिलेगा। विवेकानंद नाम सुनते हैं कितना खुशी लगता है, क्योंकि जिस महान पुरुष स्वामी जी दे भारत को कहां तक लेकर पहुंचा है, विदेश में भी उनका कदर है और भारत का परचम लहराया था, तो उसी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं। और आज का जो कार्यक्रम को सजाएंगे वही स्कूल के ही स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे आज पार्टिसिपेट करेंगे। कुछ बच्चे जो टैलेंट बच्चे, तो उनका प्रस्तुतियां बारी बारी आपको सुनने को मिलेगा, तो कहीं मत जाइए, अभी सुनते हैं उनका प्रस्तुति। और अपना अपना नाम, क्लास और कहां से बिलोंग करते हैं और स्कूल का नाम जरूर बताएं, तो हमें खुशी होगी और हमारा श्रोता मित्र भी झूमेंगे और ये पहचान भी मिल जाएगा। तो शुरू करेंगे, ओके, चले शुरू करिए।
1: मेरा नाम लीलावती खंडेलवाल है, हम स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट मॉडल स्कूल से हैं, मेरे गाँव का नाम रेवदर है।
2: मेरा नाम ऋषिका अग्रवाल है, मैं स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल में पढ़ती हूँ और मैं 10वीं अ में हूँ।
3: मेरा नाम मनीषा कुमारी है, मैं रेवदर से आती हूँ, मेरी कक्षा 10वीं है, मैं स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल में पढ़ती हूँ।
4: मेरा नाम खुशबू है, मैं क्लास 10th में पढ़ती हूँ, मैं स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट मॉडल स्कूल में अध्ययनरत हूँ और मेरा गांव जलपुर है।
5: मेरा नाम जाह्नवी चौधरी है, मैं कक्षा 10वीं में पढ़ती हूँ, मेरा स्कूल का नाम स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट मॉडल स्कूल है, मैं मलावा से आती हूँ।
6: मैं

बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए। नाम का साथ धन्यवाद देते हैं, अपना आवाज को बुलंद करके। और हमारा जो एडिटर है वो भी कम नहीं है, वह जहां भी इधर उधर का बात होता है वो भी उसको साफ सफाई करके एडिटिंग करते हैं, सफाई कर देते हैं, जिसका चलते हेल्दी वेल्दी और सुंदर प्रस्तुति हो जाती है और आपका पास हम परसते हैं जो आप सुन पा रहे हैं। तो ओलेक भाई को भी धन्यवाद देते हैं क्योंकि वो बच्चों को कोऑर्डिनेट करते हैं, कभी कभी रिकॉर्डिंग में भी पहुंच जाते हैं, एडिटिंग तो करते ही है, आरजे भी बन जाते हैं, एडिटर तो ही है। और ओलेक भाई को भी धन्यवाद देते हैं, सुंदर रूप में बच्चों को एकत्रित करके सभी को उमंग उत्साह भराते हैं और उनको कोऑर्डिनेट करते हैं, जिसका चलते बच्चे कर पाते। तो धन्यवाद ओलेक भाई को, सुंदर रूप में बच्चों को उमंग उत्साह से करा दिए हैं। तो और बच्चे भी अपना उमंग उत्साह लेकर प्रस्तुतिकरण किए। सभी को नाम का साथ धन्यवाद देते हुए एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद पुनः मिलेंगे। सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन

0: क्वालिटी के साथ।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए ब्रेक का पहले आप सब सुन पा रहे थे स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रेबदर का आवाज को। इस कड़ी को ही आगे बढ़ाते हुए बच्चों से सुनेंगे और एक प्रस्तुति। सभी अपना नाम और कहां से और कौन सा क्लास और स्कूल का नाम जरूर बताएं, उसका चलते हमें भी खुशी मिलेगा, हमारा श्रोता मित्र भी आपको पहचान पाएंगे, क्योंकि ऑडियो चैनल में एफएम चैनल में आपका फेस तो नहीं, आपका चित्र तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन आवाज ही सुनने को मिलेगा और आवाज को ही दिव्य दृष्टि से बुद्धि से पहचान पाएंगे। तो देर किस बात की, शुरू करें? ओके, शुरू हो जाइए।
1: गुड मॉर्निंग ऑनरेबल प्रिंसिपल सर, रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड ऑल डियर माय ब्रदर एंड सिस्टर, माय नेम इज डिंपल कुमारी, आई फ्रॉम क्लास 12th बी, आई कम फ्रॉम देवधर। हे भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आई हूँ, हे भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आई हूँ, और 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आई हूँ। सुनो हिमालय कैद हुआ है दुश्मन की जंजीरों में, आज बता दो कितना पानी है भारत के वीरों में, खड़ी शत्रु की फौज द्वार पर आज तुम्हें ललकार रही, सोए सिंह जागो भारत के माता तुम्हें पुकार रही, रण की भेरी बज रही उठो मोह निंद्रा त्यागो, पहला शीश चढ़ाने वाले माँ के वीर पुत्र जागो, बलिदानों के वज्रदंड पर देशभक्त की ध्वजा जगे, रण के कंकर पहने हैं वे राष्ट्रहित की ध्वजा जगे, अग्निपंथ के पंथी जागो शीश हथेली पर रखकर, और जागो रक्त के भक्त लाडलो जागो सिर के सौदागर, खप्पर वाली काली जागे जागे दुर्गा बरबंडा, रक्त बीज का रक्त चाटने वाली जागे चामुंडा, नरमुंडों की माला वाला जगे कपाल कैलाशी, रावण का वध स्वयं करूंगा कहने वाला राम जगे, और कौरव शेष न बचेगा कहने वाला श्याम जगे, परशुराम का परसा जागे रघुनंदन का बाण जगे, यजुनंदन का चक्र जगे और अर्जुन का धनुष महान जगे, चोटी वाला चाणक जागे पौरुष पुरुष महान जगे, सैल्युकस को कसने वाला चंद्रगुप्त बलवान जगे, हटी हमीर जगे जिसने झुकना कभी न जाना, जगे पद्मिनी का जौहर जागे केसरिया बाना, देशभक्त का जीवित झंडा आजादी का दीवाना, रण प्रताप का सिंह जगे और हल्दी घाटी का राणा, कलवो है का जगे मोर्चा पानीपत का मैदान जगे, भगत सिंह की फांसी जागे राजगुरु के प्राण जगे, और जिसकी छोटी सी लंकुटी से संगी ने भी हार गई कौन रानी, हिटलर को जीता वो फौज सात समुंदर पार गई, मानवता का प्राण जगे और भारत का अभिमान जगे, उस लंकुटी और लंगोटी वाले बापू का बलिदान जगे, आजादी की दुल्हन को जो सबसे पहले चूम गया, स्वयं कफन की गांठ बांध कर सातों भावर घूम गया, उस सुभाष की आन जगे उस सुभाष की शान जगे, ये भारत देश महान जगे ये भारत की संतान जगे, क्या कहते हो मेरे भारत से चीनी टकराएंगे, क्या कहते हो मेरे भारत से चीनी टकराएंगे, और चीनी को तो हम पानी में घोल घोल पी जाएंगे, वह बर्बर था वह अशुद्ध था हमने उसको शुद्ध किया, हमने उसको बुद्ध दिया था उसने हमको युद्ध दिया, और जिसके रण से बनता है केसरिया बाना, ओ कश्मीर हड़पने वालों कान खोल सुते जाना, मेरे भारत के केसर की कीमत तो केवल सिर है, और भारत के कोहिनूर की कीमत जूते पांच अचर अमर है, जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, इस मिट्टी को छूने वाला मिट्टी में मिल जाएगा, मैं घर घर इंकलाब की आग जलाने आई हूँ, मैं घर घर इंकलाब की आग जलाने आई हूँ, हे भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आई हूँ, हे भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आई हूँ। धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों को सुनते तो हमें भी खुशी होता है, बच्चों को जितने भी प्रशंसा करे कम ही होगा, क्योंकि बच्चों के अंदर में जो विशेषता है, जो भावना है, जो हृदय का तार है, जो प्रार्थना है, जो संगीत है, इस तरह कार्यक्रम का माध्यम से प्रकट करते हैं।
2: धन्यवाद देते हैं, नाम का साथ
0: लेते हैं छोटा सा ब्रेक।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: हम याद रखें कि वो एक बार भी जब हमें गुस्सा आया, हम इस विश्व को दूषित कर रहे हैं। हम मन को, शरीर को, रिश्तों को, प्रकृति को दूषित कर रहे हैं। और अगर एक बार भी हमने आज क्रोध को त्याग कर शांति को धारण किया, तो हम सिर्फ अपने मन को सुकून नहीं, रिश्तों में प्यार नहीं, प्रकृति को सद्भावना नहीं, हम विश्व को सुंदर बनाने की सेवा कर रहे हैं। तो क्या हम सेवा करने के लिए तैयार हैं?
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

नमस्ते। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है और बच्चे भी खुशी से अपना आवाज को रेडियो कार्यक्रम में सजा रहे हैं और एक प्रस्तुति के लिए उपस्थित है। शुरू करेंगे, 1 2 3 शुरू।

बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, क्या बात, क्या बात, बहुत खूब लगा। और आप सब तो है ही होनहार है, माँ बाप का चिराग है और कुल दीपक भी है, और देश को नाम रोशन करते हैं। कोई संगीत में कोई रुचि रखते हैं तो कोई पढ़ाई में भी ज्यादा रुचि रखते हैं, और बड़े होकर अपना भाव को भी पकड़ करते हैं। कोई डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, मैडम बनना चाहते हैं, तो लक्ष्य रखेंगे तो जरूर लक्षण दिखाई देगी। और माँ बाप भी जब सुनते हैं तो उनको भी खुशी लगता है, चलो हमारा बच्चे जो हमारा सपना को साकार करने में 20 नाखून लगाकर, जी जान लगाकर तत्पर रहते हैं। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद पुनः मिलेंगे। सुनते रहिए कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: चलती हुई गाड़ी में बिना किसी उचित कारण के चैन खींचना कानूनी अपराध है। कृपया उचित कारण के बगैर चैन ना खींचे। रेल यात्रा के दौरान किसी भी मदद के लिए रेलवे कर्मचारी या पुलिस की सहायता लें।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: नमस्ते। कार्यक्रम को आगे बढ़ा तो है, हमें बहुत खुशी हो रही है और खुशी क्यों नहीं होगा, बच्चे भी खुशी से अपना प्रस्तुति देते हैं। जब वो प्रस्तुतिकरण में इतना खुशी है तो हमें भी खुशी करा देते हैं, है ना बच्चे? वेरी गुड। बच्चे भी हंस रहे हैं क्योंकि बच्चे तो बच्चे ही होते हैं और हमें भी बच्चे बना देते हैं। और क्या कहे, रेडी सभी? तो बोलो भाई, चलो रेडी करें। हाँ जी, ओके, रेडी कर रहते हैं, शुरू।
3: मेरा नाम संध्या है और मैं क्लास 12th की स्टूडेंट हूँ और मैं स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट मॉडल और मैं क्लास 12th की स्टूडेंट हूँ और मैं स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट मॉडल स्कूल में पढ़ती हूँ और मैं एक गाना प्रस्तुत करना चाहूंगी।

0: सुंदरम।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, तालियों का साथ, आभार का साथ, धन्यवाद का साथ, और रेडियो मधुबन आपका साथ तो है ही, और जिसका चलते आपका आवाज को हम जन जन तक पहुंचाने में खुशी मिलता है। तो धन्यवाद देते हुए एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद पुनः मिलेंगे। सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

चलिए कार्यक्रम को बढ़ाते हुए अगला कड़ी में अगले बच्चे रेडी है ये, तो सभी को नाम का साथ धन्यवाद देते हैं। क्यों धन्यवाद पहले दे देते हैं, क्योंकि आप तो धन्यवाद का पात्र ही है, क्योंकि इतना बच्चे हैं तब भी आप सिलेक्टेड होकर आए हैं और आपका विशेषता को हमारा संस्था प्रधान और सभी शिक्षक जानते हैं, मैम भी जानते हैं, जिसका चलते आपको यहाँ तक पहुंचाए जो आज इस कार्यक्रम को आप सजा पा रहे। तो शुरू करेंगे हाँ कि ना? हाँ अच्छा चलिए, ऐसे इशारा से कह रहे अपना सिर हिला रहे हैं और कोई कोई तो ऐसे दिखाते हैं अंगुली जैसे अंगूठा, बोले ओके। तो चलिए ओके।

ओके ओके ओके। और बच्चों को तो रोकना पड़ता है क्योंकि समय का सीमा को देखते हुए आज के लिए हमें दीजिए इजाजत। फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय और किसी बात को लेकर। और खासकर आप सब मेरा श्रोता मित्रों और मेरा बच्चे जो भी इस कार्यक्रम को सजाए, सुनने वाले सुनाने वाले सभी को नाम का साथ धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं। इस तरह कार्यक्रम को सुनने और सुनाने में मदद किए तो आज के लिए हमें दीजिए इजाजत। फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय और किसी बात को लेकर। तो ये था खासकर रेबदर स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के होगनहार बच्चों का आवाज। सबको तो अच्छा लगा होगा और बुरा लगा होगा तो हमें खुद बताइए, मैसेज करके भेज सकते व्हाट्सएप के माध्यम से। हमारा नंबर है 9414151415। फिर से 9414151415, यानी 9414151415। ये रेडियो मधुबन का नंबर है जो आप व्हाट्सएप करके अपना भाव को दे सकते हैं। नहीं तो हमारा पर्सनल नंबर में भी आप फोन कर सकते हैं। और आपका गांव में, आपका स्कूल में, आपका गांव में कुछ ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है बा ऐसे समाज में जब बैठक होता है, रीति रिवाज को भी आप अपना साझा कर सकते हैं, हमारा साथ रुजू कर सकते हैं। तो पर्सनल नंबर से भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं। कभी इस तरह कोई कार्यक्रम होता है तो उसको सीधा कवरेज करने के लिए शाम का समय में आप हमें सूचना दे सकते हैं इस नंबर पर, चाहे मैसेज के माध्यम से, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से, या कॉल के माध्यम से। 24 घंटा आपका सेवा में हम तत्पर रहते हैं। तो हमारा नंबर है 8302352272। अच्छा, सभी को धन्यवाद, आभार, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। रेडियो मधुबन 107.8 FM।

महिला स्वयं में है शक्ति और इसलिए आपकी सुरक्षा है आपके हाथ ही। कभी भी कहीं भी अगर आपको किसी प्रकार के खतरे का आभास हो तो डायल करिए 1090 या 1091। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

हेलो दोस्तों, मैं हूं आप सबका आलमगीर, सबको मेरा प्यार भरा सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर, सुनते रहिए, गाते रहिए और गुनगुनाते रहिए, झूमते रहिए और सबको प्यार से झुमाते रहिए।

अगर कहीं भी आग लगने की देनी हो जानकारी तो तुरंत कॉल कीजिए फायर ब्रिगेड के इमरजेंसी नंबर पर। डायल कीजिए 101 अपने फोन से। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: तो वो लोग जो हमें छोटी छोटी बातों पे डांटते हैं, जो हमारी गलतियां निकालते हैं, जो हमारी निंदा करते रहते हैं, जो हमारी की हुई मेहनत का क्रेडिट ले लेते हैं, जो हमें धोखा दे देते हैं, जो हमारे पीठ पीछे गलत फैलाते हैं, कुछ भी लोग, वो छोटी ब्लैक बॉल हो सकती है, ग्रे हो सकती है या बहुत बड़ी ब्लैक बॉल हो सकती है, क्या हमारे पास पावर है कि हम ब्लैक का रिटर्न व्हाइट से भेजेंगे? वो हमारे साथ गलत करेंगे, हम उनको दुआएं भेजेंगे। इज दैट पॉसिबल?

0: पहली बात, ये मेरे साथ गलत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने कभी ना कभी वो बॉल भेजी थी, तो गलती इनकी या मेरी? मेरी, तो इनके ऊपर से जो मैंने ब्लेम लगाया हुआ था वो पहले खत्म। वन सेकंड, अब मैं अगर वाइट भेजूंगी तो किसके फायदे के लिए? उनके ऊपर एहसान नहीं, अपने फायदे के लिए वाइट भेजने में भी सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। उनके लिए नहीं भेज रहे, अपने फायदे के लिए भेज रहे हैं। क्योंकि अब जब हम वाइट एनर्जी भेजेंगे, मतलब दुआएं देंगे अपने फायदे के लिए।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हर दिन खुद से यह सवाल पूछें, मैंने आज क्या सीखा, मैंने किसे खुश किया, मैं और बेहतर कैसे बन सकता हूं। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

सोशल मीडिया पर संवेदनशील जानकारी शेयर करने से बचें। अगर आप साइबर बुलिंग का शिकार हुए हैं तो तुरंत cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज करें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर संवेदनशील जानकारी साझा करने से आपकी पहचान की चोरी और धोखाधड़ी हो सकती है। इन जोखिमों से बचने के लिए अपना पासवर्ड कठिन बनाएं और किसी के साथ साझा न करें।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। यह है कार्यक्रम सहज स्वास्थ्य। मैं हूं आपका दोस्त आरजे श्री। हम सभी के मंगल की कामना भारत में करते आए हैं। ये प्राचीन शांति मंत्रों में से एक है। जब हम सारी प्रार्थनाओं को पूर्ण करने के बाद ये कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, यानी किसी भी व्यक्ति को कोई दुख न हो, ऐसा हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। हम सर्वे संतु निरामय की बात करते हैं कि हर एक व्यक्ति, संसार का हर एक जीव निरामय हो या स्वस्थ हो, इस बात की कामना करते हैं। प्रार्थना में तो हम ये कामना करते हैं, मगर क्या हम अपने जीवन में इस कामना को पूर्ण करने के लिए कुछ कार्य करते हैं? क्या सिर्फ हम भगवान से अपने और दूसरों के मंगल और स्वस्थ रहने की कामना मात्र से काम हो जाएगा, या स्वस्थ बने रहने के लिए हमें कुछ और भी करने की जरूरत है? अगर प्रार्थना से ही काम बन जाता होता, अगर हम कुछ न करके सिर्फ प्रार्थनाओं से ही काम चला रहे होते, तो शायद आज इतने ज्यादा संख्या में अस्पतालों और चिकित्सकों की आवश्यकता हमें नहीं पड़ती। जरूर हम प्रार्थना तो कर रहे हैं, ईश्वर भी हमारी आस्था अटूट है, परंतु हम कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिसके कारण हम प्रार्थना तो निरामय होने की कर रहे हैं, मगर अपने आप को बीमार करने के लिए कुछ ऐसे कार्य और कर्म कर रहे हैं जिससे शरीर में व्याधियां उत्पन्न होती हैं। आइए आज स्वास्थ्य जगत से जुड़े हुए कुछ ऐसे ही विशेषज्ञों से बातचीत करते हैं जो हमें मार्गदर्शन देंगे कि हम क्या गलतियां कर रहे हैं और क्या हमें सुधार करने की आवश्यकता है कि हम स्वस्थ बने रहें। आज हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं डॉक्टर राहुल मोदी जी, जो पेशे से एक एलोपैथी डॉक्टर हैं, भारत के जाने माने ऑस्टियोपैथ हैं और स्पोर्ट्स मेडिसिन के क्षेत्र में लंबा अनुभव रखते हैं। भारत के प्राचीनतम प्रकृति चिकित्सा केंद्रों में से एक आरोग्य मंदिर गोरखपुर में प्रैक्टिस करते हैं, जहां पर उनके परिवार के अनेक पीढ़ियों ने लोगों को स्वास्थ्य लाभ दिया है और अब भी दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम में।
1: नमस्कार, ओम शांति।
0: सर्वप्रथम तो मैं इसी बात से शुरू करना चाहूंगा, ये भारत के सबसे मशहूर प्रार्थनाओं में से एक है कि हम विश्व के, संसार के हर एक जीवी के मंगल के लिए कामना करते हैं, हर एक जीव जंतु का मंगल हो, इसके लिए हम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हो, ये बात कहते हैं। और इसके साथ अगली ही लाइन सर्वे संतु निरामया, यानी सर्व, सभी के सभी निरामय हो, रोग मुक्त हो, सभी स्वस्थ हो, ये कामना करते हैं। प्रश्न उठता है कि जब हम प्रार्थना तो करते हैं स्वस्थ रहने की, क्या सिर्फ प्रार्थना मात्र से काम होगा, या स्वस्थ रहने के लिए हमें कुछ और भी करने की और कर्म करने की जरूरत है जो हमें स्वास्थ्य लाभ दे?
1: सबसे पहले तो देखिए, आपने जो बात की वो ये बता रही है कि हम भारतीयों की कितनी अच्छाई है कि हम अपने बारे में न सोच के हम सबके बारे में सोच रहे हैं, और ये हमारी देश, हमारी परंपरा की अच्छाई है कि हम सब लोगों ने मैं को हमसे रिप्लेस किया है, और हम जो प्रार्थना भी कर रहे हैं वो सब निरोगी हो इसकी बात कर रहे हैं। और इस प्रार्थना का जो मूल है उसमें ये कहीं भी नहीं बात कोई है कि सबको पैसा मिल जाए या मुझको पैसा दे दो भगवान। हमने स्वास्थ्य की बात की है, हमने हेल्थ की बात की है। इंग्लिश में भी कितनी सारी बातें हैं, हेल्दी बॉडी हैज हेल्दी माइंड, इफ यू वॉन्ट अ हेल्दी बॉडी अ हेल्दी नेशन, मतलब सारी हेल्थ की ही बात की है। और ये माना गया है कि अगर आप स्वस्थ होंगे तो आप अपनी सुरक्षा भी कर लेंगे, अपने देश की सुरक्षा भी कर लेंगे, अपने समाज की सुरक्षा भी कर लेंगे। तो सबसे ऊपर इसीलिए हेल्थ को रखा गया है, स्वास्थ्य को रखा गया है। हमने प्रार्थना तो कर ली कि हम स्वस्थ रहें, पर कहते नहीं है कर्म भी करना पड़ेगा। हम लोग रोज भगवान के सामने अगर बैठे, सुबेरे सुबेरे नहा धोकर अगरबत्ती जला लें, पुष्प चढ़ा दें, उनको प्रसाद चढ़ा दें कि हे प्रभु मुझे बहुत सारा धन दे दो, हे प्रभु मुझे ये दुनिया दिखा दो, हे प्रभु मुझे यहाँ भेज दो, और मैं चुपचाप कमरे में वापस जाके सो जाऊं, तो मुझे कैसे कुछ मिलेगा? इसमें एक छोटा सा जोक भी है भैया, मुझे बताया जाता है कि एक ऐसे ही व्यक्ति रोज लक्ष्मी जी के सामने प्रणाम करता था, हे लक्ष्मी माँ मुझे लॉटरी जिता दो, हे लक्ष्मी माँ मुझे लॉटरी जिता दो। तो एक महीना, दो महीना, तीन महीना, तो तीसरे चौथे महीने के बाद एक बार माँ लक्ष्मी अवतरित हुई, बोली मूर्ख तुम रोज मुझसे कह रहा है कि मुझे लॉटरी जिता दो, पर क्या तुमने लॉटरी खरीदी?
0: लॉटरी टिकट तो खरीदना पड़ेगा।
1: तो अगर हम टिकट खरीदेंगे नहीं तो लॉटरी कैसे जीत सकते हैं? और अगर हम स्वास्थ्य की बात अगर हम करेंगे तो हमें शरीर से भी कुछ करना पड़ेगा। हमें टहलना पड़ेगा, हमें घूमना पड़ेगा, हमें अच्छे वातावरण में रहना पड़ेगा, हमें संयम से भोजन करना पड़ेगा, और संयम से रोज भोजन करना पड़ेगा, संयम से रोज एक्सरसाइज करना पड़ेगा। हम ये नहीं कर सकते कि हम आज करें और कल ना करें। तो मेरा ये कहना है कि आपको सब काम ठीक से करना पड़ेगा अपने शरीर के लिए। अगर आप स्वास्थ्य चाहते हैं तो आपको उचित कसरत और भोजन पर संयम करनी पड़ेगी, और अपने मन के लिए थोड़ा बहुत मेडिटेशन, योग, प्राणायाम करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें।
0: प्राय यही चीज़ देखने को मिलती है डॉक्टर साहब। हम चाहते तो हैं कि भाई हम स्वस्थ रहें, हम शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें, मानसिक भावनात्मक रूप से स्वस्थ रहें, मगर हम उसके लिए कुछ करते नहीं हैं। प्राय हम जो मिल रहा है वो खा रहे हैं, जैसा चाहिए वैसा सोच रहे हैं। और जैसे आपने कहा कि मेडिटेशन, ध्यान, प्राणायाम इत्यादि कुछ ना कुछ करना चाहिए। अक्सर जब ये चीज़ें कही जाती लोग ये कह देते अरे हमारे पास तो टाइम नहीं है। जब ये चीज़ कहा जाता है कि नहीं थोड़ा सलाद खा लो, ये खा लो, तो बोलते अरे सलाद बनाने के लिए बहुत टाइम लगेगा। तो लोग रीजंस दे देते हैं, और क्या ये रीजंस जो देते हैं, जो वजह बताते हैं कि भाई इसकी वजह से हम ये नहीं कर पाएंगे, क्या इसकी वजह से हम बीमार पड़ने के लिए एक कदम और आगे बढ़ रहे हैं?
1: हाँ, हम बहाना बनाने में हम पूरे आदमी हम सब लोग बहुत तेज हैं। हाँ, कहना नहीं चाहिए, भगवान की सर्वोत्तम अगर कोई रचना है तो वो मनुष्य है, और मनुष्य अपने लिए सबसे ज्यादा लाचार व्यक्ति है। और मतलब हमसे ज्यादा सजग तो प्राणी है। जिन भी लोगों के घर में अगर कुत्ता या बिल्ली जिन्होंने पाल रखे होंगे, वो ये देखेंगे कि अगर वो बीमार पड़ेगा तो सबसे पहले खाना छोड़ देगा। आप ये देखिए, आज हमारे पास हर विधा, हर ब्रांच के डॉक्टर हैं। जो जंगल में शेर रह रहे हैं, हाथी रह रहे हैं, बंदर रह रहे हैं, हिरन रह रहे हैं, मगरमच्छ रह रहे हैं पानी में, उनके पास कौन सा डॉक्टर है? जो इतनी बड़ी बड़ी और इतनी छोटी छोटी मछलियां समुन्द्र में तैर रहे हैं, उनके पास कौन सा डॉक्टर है? प्रकृति ही उनकी माँ है, और वो प्रकृति के ही हिसाब से चल रहे हैं। वो आप देखिए ना, जंगल में कौन सा जानवर प्रोसेस्ड फूड खा रहा है या पैक्ड फूड खा रहा है? वो तो वही खा रहा है जो उसे प्रकृति दे रही है। और हम भैया, मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा हूं, मगर हमारी तो ये मानसिकता है, आज का काम कल करो, कल का काम परसों, अभी इतनी भी जल्दी क्या है, अभी पड़े हैं बरसों। आप कह दीजिए जिम जाना है, एक्सरसाइज करना है, योगा करना, हाँ कल से करेंगे। इस समय अगर बहुत ठंडक है तो लोग कहेंगे यार कौन सुबेरे सुबेरे रजाई से निकलेगा, कहीं निकले तो कहीं बीमार ना पड़ जाए। ये ठंड है भाई, रजाई में भी थोड़ा पड़े रहते हैं, जब ठंड कम होगी तब टहलने निकलेंगे। भैया अगर वातावरण सुबेरे का टेम्परेचर 10 डिग्री हो, तब भी मेरे पिताजी आज 74 साल की उम्र में बिना चप्पल के नंगे पैर मट्टी पर टहलने रोज जा रहे हैं। गर्मी का मौसम हो, सुबेरे सुबेरे का भी अगर जो टेम्परेचर हो 28 डिग्री 30 डिग्री हो, तब भी मेरे पिताजी नंगे पैर मिट्टी पे घूमने जा रहे हैं। वो रोज जा रहे हैं, सिर्फ बारिश में नहीं जा पाते हैं क्योंकि बारिश में मिट्टी पे नहीं चला जाता, आपके फिसलने का डर है, तो वो घर पे टहलते हुए मिल जाएंगे। तो आप ये देखिए कि वो कोई भी चीज जो मतलब उन्होंने अपनी दिनचर्या में कोई बदलाव नहीं किया है, वो कोशिश करते हैं कि वो हल्का भोजन करें, वो कोशिश करते हैं रोज एक्सरसाइज करें। तो अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हमें रोज एक्सरसाइज, रोज संयम से भोजन करना पड़ेगा।
0: संयम और भोजन, एक्सरसाइज या हमारी कसरत, इन चीज़ों पे जब हम ध्यान देते हैं और इन चीज़ों को हम हर दिन एक रूटीन बनाते हैं, तब हम स्वास्थ्य की ओर अपने कदम को बढ़ाते हुए जाते हैं। हर दिन स्वास्थ्य के लिए मंगल की कामना करना, निरामय रहने की प्रार्थना करना अच्छी बात है, मगर उस प्रार्थना को कार्यान्वित करना भी हमारे हाथ में है, और उसे कैसे किया जाता है आपने ये चीज़ बताई। पिछले एपिसोड में जब हम बात कर रहे थे तो आप ये बता रहे थे कि कॉन्स्टिपेशन को अगर हम सही समय पर सही तरीके से ट्रीट नहीं करते, उसकी ओर ध्यान नहीं देते, तो उससे अलग कॉम्प्लिकेशंस शरीर में उत्पन्न होने लगती हैं। आपने पाइल्स की बात की, बावासीर की बात कही थी, इसी विषय पर मैं कुछ और जानकारियां लेना चाहता हूं। आप ये बात कह रहे थे कि पाइल्स को जब व्यक्ति जब उसको समझ में आता है उसको पाइल्स हुआ है, तो बहुत सारे लोग बहुत प्रयास करते हुए नजर आते हैं कि कई लोग कई तरह की चीजें कराने के लिए ये चीज देखते हैं। एलोपैथी में अक्सर लोग ऑपरेशन कराने के लिए जाते हैं। ऑपरेशन के लिए भी लोगों को कहा जाता है कि नहीं, पहले आप दवाइयां लीजिए, उससे आप इसे ठीक कर सकते हैं, अगर नहीं होगा तो बाद में देखा जाएगा, इत्यादि चीजें बोली जाती हैं। तो ऐसे में ये समझना जरूरी है कि बवासीर या पाइल्स को ठीक करने के लिए इलाज के तरीके क्या हैं, क्या क्या अलग अलग चिकित्सीय पद्धतियां इस बात पर कहती हैं।
1: सबसे पहले पाइल्स जो है वो मोटा मोटी दो तीन तरह की होती है, एक जो अंदर और एक जो बाहर। बाहर वाली को पकड़ना ज्यादा आसान है, क्योंकि जब आप अपना गुदा द्वार साफ करते हैं तो आपको महसूस होता है कुछ है वहां पे और आपको तुरंत मालूम चल जाता है। अच्छा, इसके बाद जो ब्लीडिंग, मतलब जिनसे खून निकल रहा था, खूनी बवासीर जैसे कहते हैं या ब्लीडिंग पाइल्स कहते हैं, उसको भी पकड़ना आसान है, क्योंकि जिस दिन खून निकलता है और आदमी को जब अपना खून दिखता है तो वो एकदम घबरा जाता है, गरीब आपरे खून निकल गया। वो मस्से को अवॉइड करता रहता है, मगर जैसे ही खून देखता है तुरंत दौड़ के डॉक्टर के पास जाता है। और ये हमारे देखिए प्रकृति की कितनी अच्छाई है कि वो जैसे ही खून देखेगा, खून से जो भय होता है वो तुरंत, और आदमी के मन में आता है अरे बाप रे खून बह गया, अब तो मैं मर ना जाऊं, चलो तुरंत डॉक्टर के पास। तो ये सबसे अच्छी बात है कि अगर आपको मस्सा महसूस हो रहा है या खून निकल रहा है तो तुरंत आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब आपने उपचार की बात की, तो पिछले एपिसोड में मैंने कहा था कि बवासीर रोग नहीं है, रोग का लक्षण है। और सबसे कॉमनली ये जो है वो अगर आपको लंबा कॉन्स्टिपेशन हो तब हो रहा है। और जो पिछले एपिसोडों में मैंने बात की थी कि कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए अगर हम उसको ठीक कर लेंगे तो हम हो सकता है कि तुरंत बवासीर को भी ठीक कर लेंगे। तो सबसे पहला इलाज, अगर हर पैथी को हटा दीजिए, हर विधा को हटा दीजिए, वो है पानी पीना। अगर आप ठीक से पानी पिएंगे तो आपका जो मल है वो कड़ा नहीं होगा, उसमें ताकत आपको नहीं लगानी पड़ेगी और आपका जो पेट है वो ठीक से साफ हो जाएगा। और जहां वो नॉर्मली साफ होने लगेगा, आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं होगी, आप जोर नहीं लगाएंगे। अब कॉन्स्टिपेशन में होता क्या है, आप पहली बात तो जोर ज्यादा लगाते हैं तो मसों में उन मांसपेशियों में ताकत, मतलब वो अपनी जगह से हिलती खुलती बंद होती है। और दूसरा, जब पानी कम हो जाता है तो आप जो कड़ा मल है वो रगड़ते हुए चीजों को बाहर निकलता है। तो सबसे पहला काम कि आपको पानी पीना चाहिए। दूसरा, कॉन्स्टिपेशन ठीक करने के लिए हम कहते हैं कि आपको हाई फाइबर डाइट लेना चाहिए, मतलब ज्यादा खुज्जे वाला भोजन आपको करना चाहिए। बवासीर में हम बोलते हैं हाई फाइबर की जगह कंट्रोल्ड फाइबर का भोजन करना चाहिए, कि इतना भी हम फाइबर न ले लें कि जिससे वो भी उस क्षेत्र को रगड़ने लगे। एक सबसे सिंपल बात ये समझिए कि जब प्राकृतिक चिकित्सा एक बात और बोलती है कि जब आंतों में बहुत गर्मी आ जाएगी तो भी आपको बवासीर हो जाएगा। आंतों में गर्मी क्यों आ गई, आप ज्यादा काम कर रहे हैं। ज्यादा क्या काम कर रहे हैं, आप आंतों को रोज कह रहे हैं धक्का दो, निकालो, पेट साफ करो, पेट साफ करो, पेट साफ करो, और हो ही नहीं रहा है। तो आंतों की गर्मी को शांत करना भी बहुत जरूरी है। और इसका सबसे जो प्राकृतिक चिकित्सा में है वो है मिट्टी की पट्टी पेट पे रखने से आंतों की गर्मी शांत होती है। पुराने प्राकृतिक चिकित्सालयों में गुदा द्वार पे भी मिट्टी को गोला बना के रखा जाता था, पर इसे मॉडर्न मेडिसिन ने इसका एक सिंपलर तरीका बताया है कि मिट्टी में इन्फेक्शन ना हो जाए, उसमें गंदगी, कैसी मिट्टी मिली आपको, और आजकल साफ सुथरी अच्छी मिट्टी मिलना बड़ी मुश्किल चीज हो गई है। तो वो है आपको पानी में बैठना, इसको इंग्लिश में सिट बाथ का कहते हैं। और एक बड़ा सिंपल है कि आप किसी भी टब में ठंडा पानी या नॉर्मल पानी डालकर उसमें बैठिए, और आप जैसे ही उसमें बैठेंगे, आपकी गुदा द्वार की सिकाई होगी, और जहां आपकी गुदा द्वार की सिकाई होगी वहां आपको आराम मिलने लगेगा। कुछ लोग इसमें हल्का गुनगुना पानी भी इस्तेमाल करते हैं, मगर आप नॉर्मल वाटर या हल्का गुनगुना पानी लेकर अपने जो मल का द्वार, आप एक पानी को एक टब में लेकर आप उसमें बैठ सकते हैं। बहुत से लोगों को बवासीर कोई एक पर्टिकुलर फल या कोई एक पर्टिकुलर सब्जी खाने से भी होता है, जो उनको परेशान करती है। अगर हम देखें तो मैं किसी फल का नाम और किसी सब्जी का नाम यहाँ लेना नहीं चाहूंगा, उसका सिर्फ ये रीजन है कि कल से अगर आदमी को शक पैदा हो जाएगा कि शायद मुझे इस

0: ऐसा हो तो नहीं हो रहा है। तो आप खुद ढूंढिए कि आप कोई एक पर्टिकुलर फल या एक पर्टिकुलर आप सब्जी खा रहे हैं और उसको खाने से आपको अगर परेशानी हो रही है तो आपको उसका त्याग थोड़े दिनों के लिए कर देना चाहिए। हम लोगों ने यहाँ प्राकृतिक चिकित्सालय में एक चीज और देखी है कि चोकर समेत आटे की रोटी खाने से बवासीर में और कॉन्स्टिपेशन में आराम होता है, और कुछ लोग जब इसको नहीं खा पाते हैं तो उन्हें हम गेहूं का दलिया खिलाते हैं। बहुत अच्छे से अगर हरी सब्जियां उन्हें खिलाएं, जैसे पालक है, बथुआ है, तरोई है, परवल है, पात गोभी है, मूली है, पपीता है, पका केला है, खरबूजा है, फलों में खरबूजा, सेब, नाशपाती, दूध पिलाने से इनसे भी कॉन्स्टिपेशन में और बवासीर में आराम मिलता है। हम लोग वैसे चिकित्सा में दालों को अवॉइड करने को कहते हैं क्योंकि दालें थोड़ी गर्मी पैदा करती हैं, तो उस गर्मी से कभी कभी बवासीर उभर जाता है। तो जो सबसे अच्छा चीज है जो कॉन्स्टिपेशन एंड पाइल्स दोनों में आराम देता है वो है मुनक्का, अंजीर और किशमिश। इसको जितना आपने मुनक्का लिया इससे इसको दुगने या तिगुने पानी में इसको अच्छे से धोकर इसको रखिए, ये 12 से 14 घंटे तक भिगाइए, सुबेरे भिगा दीजिए और शाम को आप इसको खा सकते हैं। अगर आप इसको खाएंगे तो ये ताकत भी देता है, आपको अच्छा फाइबर भी देगा और इससे आपको जो है आपकी जो समस्या है उसमें भी आपको आराम मिलेगा। बहुत सारे लोगों में इसबगोल की भूसी भी हम लोग इस्तेमाल करने को कहते हैं, पानी में इसबगोल मिला सकते हैं आप, छाछ में मतलब दूध पानी और दही थोड़ा सा मिलाकर आप अगर इसका प्रयोग करिए तो वो आपको आराम देगा। प्रकृति चिकित्सा में आंतों को ठंडक पहुंचाना, गुदा द्वार को ठंडक पहुंचाना और भोजन में कंट्रोल्ड फाइबर या ऐसी चीजें जिससे आपको हेमरॉइड या पाइल या बवासीर हो सकता है उसको हटा देना आपका इलाज है। जब ये सारी चीजें करके आपको नहीं आराम मिलता है तो फिर हम उपवास कराने की बात करते हैं, क्योंकि जब पेट में कुछ जाएगा ही नहीं तो आपकी आंतें जो हैं वो अगर मिट्टी की पट्टी और एनिमा आपको दिया जाएगा तो आपकी आंतें को कम काम करना पड़ेगा, उनको ताकत कम लगेगी और वो अपने आप हील कर पाएंगे। तो अगर आप सप्ताह में 1-2 दिन का उपवास कर लें और मिट्टी की पट्टी एनिमा ले लें तो आपको कॉन्स्टिपेशन एवं बवासीर दोनों में आराम मिलेगा। ये सारी बातें जो हैं वो प्रकृति चिकित्सा एवं जो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के लोग हैं वो इस्तेमाल करते हैं। एलोपैथी में जब ये आउट ऑफ कंट्रोल ब्लीडिंग होने लगती है या वो मस्सा इतना बड़ा हो जाता है कि वो गुदा द्वार को जो है वो ढकने लगता है और बहुत परेशान करने लगता है, तब उसमें इस जो मसा है उसको सर्जरी से हटाया जाता है। मसे की गर्दन को एक रबर के बैंड से बंद करके उसको हटाया जाता है या उसको जो कॉटरी से मतलब हम लोग उसको वहां से हटाकर जो उसकी समस्या है जो लोकल है उसको हटा देते हैं। मगर उसके बाद भी ये बोला जाता है कि आप भोजन पे कंट्रोल करेंगे, आप एक्सरसाइज करेंगे, आप अच्छा हाई फाइबर डाइट लेंगे और आप कोई भी ऐसा चीज नहीं खाएंगे जो बहुत प्रोसेस्ड हो, बहुत लो फाइबर हो, मैदा बहुत हो, जो चीजें आपकी आंतों के मूवमेंट को कम करती हैं उसको आप एकदम नहीं खाएंगे अगर आपको बवासीर की समस्या हो चुकी है।
1: ये बात समझ में आ रही है कि जब हम समस्या के कारण को समझते हैं तो उसके निवारण को समझना भी आसान है। इलाज के लिए पहले तो हम उन्हीं चीजों को ठीक करें जो इस समस्या को ले आने का कारण बनती हैं। और इस तरीके से जब हम अपने इलाज के दृष्टिकोण को देखते हैं तो हम न सिर्फ उस समस्या से उस समय के लिए निजात पाते हैं, मगर आगे वो समस्या लौट कर हमारे पास आए ही नहीं, वो बीमारी हम तक पुनः आए नहीं, इसलिए भी हम अपने आप को सुधार लेते हैं। इस सुधार से स्वस्थ रह पाना संभव है, ये चीज समझ में आती है। आज बहुत ही सुंदर ये चर्चा रही है जिसमें हम ये बात समझ रहे हैं कि हम अपने स्वास्थ्य के संबंधित अनेक जो बीमारियां देखते हैं उसका इलाज हमारे पास हमारे हाथों में है और बहुत ही सरलता से और सहजता से इस चीज को हम समझकर अपने स्वास्थ्य की ओर कदम बढ़ाते हैं तो अपने स्वास्थ्य को हम सहजता से पा भी सकते हैं। घड़ी इशारा करती है कि यहां रुकना होगा, मगर आज आप सभी श्रोता मित्रों को बवासीर और कॉन्स्टिपेशन कब्ज से जुड़ी हुई समस्याओं का निवारण कैसे किया जाता है इस पर सही मार्गदर्शन डॉक्टर राहुल मोदी जी ने दिया। आप सभी श्रोता मित्रों की ओर से मैं उनका धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका।
0: नमस्कार, ओम शांति।
1: दोस्तों, आज के सहज स्वास्थ्य में जो चीजें सुनी है वो सिर्फ जानकारी मात्र नहीं है, ये अनुभव कर अपने जीवन में लागू करने वाली चीजें हैं। अगर आपके घर परिवार में कोई भी व्यक्ति ऐसी किसी समस्या से परेशान है तो उनके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए इस जानकारी का इस्तेमाल करें, उन्हें मदद पहुंचाएं और बिना हिचकिचाहट के अपनी बीमारियां या समस्याओं को बताने के लिए लोगों को प्रेरित करें। आज के सहज स्वास्थ्य में इतना ही। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: रेडियो मधुबन सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
1: हेलो बच्चों, आ जाओ जल्दी से रेडियो के पास, क्योंकि घड़ी ने बजा दिए हैं 9:30 और हो गया है बच्चों का टाइम। और लेकर आ रही हैं मनी दीदी और परी, आपका फेवरेट शो
2: सपनों की सैर। और हम बातें कर रहे हैं आजकल आजादी के बारे में। और पिछली कड़ी में आपको हमने पूछा था कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे।
1: हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। और बच्चों ने तो सही सही जवाब दिया है हमें।
2: हाँ बच्चों, और पता है बच्चों आजादी का मतलब क्या है? अपने देश में बिना किसी दूसरे देश के शासन के स्वतंत्र रूप से अपना जीवन जीना।
1: हाँ, और अपने देश के लिए स्वयं निर्णय लेना, यानी कि कोई और हम पर शासन ना करे, हमारा हमारे ऊपर ही हो शासन। देश की आजादी केवल हमारा अधिकार नहीं बल्कि हमारी जिम्मेदारी भी है।
2: और बच्चों, हम ईमानदार, अनुशासित, स्वच्छ और जिम्मेदार नागरिक बनकर अपने देश को और बेहतर बना सकते हैं।
1: सही कहा परी। तो बच्चों चलो भाई, आज आपको जवाब देना है भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो 9414-1415 पर आप वॉइस नोट या मैसेज के द्वारा जवाब भेजिएगा।
2: अब हम लेते हैं ये छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम मिलते हैं कहीं जाना नहीं।
1: हाँ, परी की कहानी भी तो सुननी है ना।
2: सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए
1: रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: रुक। ओ भाई साहब इधर आओ, कहाँ जा रहे हो जरा बताओ। लाल बत्ती में दिखता नहीं आपको, सामने लोग रोड क्रॉस कर रहे हैं फिर भी गाड़ी पकाए चले जा रहे हो हैं?
1: अरे हवलदार साहब, एक बार लाल बत्ती में निकल गया तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा।
0: ओए पहाड़ भले ही ना टूटे, लेकिन बेमतलब यमराज के रजिस्टर में एक नाम जुड़ जाएगा। इसलिए जब भी लाल बत्ती हो तो बोलो पहले आप, समझे?
2: गाड़ी चलाते वक्त पहले आप का रूल अपनाइए और अपने शहर का ट्रैफिक स्मूथ बनाइए। ब्रह्मा कुमारीज के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
3: बच्चों चलो अब बारी कहानी की शुरू हो रही है और आज आपको परी एक राजा की कहानी सुनाने वाली है, तो ध्यान से सुनना। राजा विक्रम अपनी न्याय प्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार वे अपने लिए एक शानदार राजमहल बनवा रहे थे। राजमहल का नक्शा तैयार हो चुका था पर एक समस्या आड़े आ रही थी। राजमहल के निर्माण स्थान के पास एक झोपड़ी थी। इस झोपड़ी के कारण राजमहल की शोभा नष्ट हो रही थी। राजा ने झोपड़ी के मालिक को बुलवाया। उन्होंने अपनी समस्या के बारे में झोपड़ी के मालिक को बताया और झोपड़ी के बदले मोटी रकम देने का प्रस्ताव उसके सामने रखा। पर झोपड़ी का मालिक तो बच्चों बहुत अड़ियल था। उसने राजा को कहा, महाराज माफ करे, आपका प्रस्ताव मुझे मंजूर नहीं है। अपनी झोपड़ी मुझे जान से भी ज्यादा प्यारी है। इसी झोपड़ी में मेरा जन्म हुआ था, मेरी पूरी उम्र इसी में गुजर गई। मैं अपनी इसी झोपड़ी में मरना भी चाहता हूँ। तो राजा ने सोचा इस गरीब के साथ ज्यादती करना उचित नहीं है। उसने अपने मंत्री से कहा, कोई हर्जा नहीं, इस झोपड़ी को यहीं रहने दो। जब लोग इस शानदार महल को देखेंगे तो वे मेरे सौंदर्य बोध की सराहना अवश्य करेंगे। जब वे राजमहल के समीप इस झोपड़ी को देखेंगे तो मेरी न्याय प्रियता की भी तारीफ करेंगे। तो देखा बच्चों, राजा कितना समझदार था, है ना? तो ये कहानी क्या सिखाती है ये तो बताओ। ये कहानी हमें बताती है कि जियो और जीने दो, माना हमें सबको सहयोग देकर उनकी मदद करके रहना चाहिए। उनकी भी प्रॉब्लम को, उनकी समस्या को हमें समझना चाहिए। तो ये थी बच्चों आज की कहानी। तो चलो अब सुनते हैं प्यारा सा गाना। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM पर सपनों की सैर को।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: किसी की एक लाइन मेरी मन, फीलिंग्स, वर्ड्स, एक्शन, रिलेशनशिप एंड बॉडी, छह चीजों पे असर हुआ मेरे। एक घंटे तक ये पूरी साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी सब डिस्टर्ब्ड रहे, रिश्ता डिस्टर्ब हुआ, रात को भी वो बात याद आई। एंड डेफिनेटली जब ये चीजें दिन में इतनी देर माइंड पे रही होंगी, ये नींद में जरूर चले होंगे, क्योंकि जो थॉट्स एक्टिव ड्यूरिंग द डे चलेगी ज्यादा, ये नींद में जरूर चले होंगे। नींद का नुकसान इसलिए क्योंकि आपने रात को सोने से पहले भी उस बात के साथ रिजोल्व नहीं किया अपने आप को, आप वो अनरिजोल्व्ड बात के साथ सो गए। तो मन क्या करता है, रात को सारा दिन की हुई बातें या जो कुछ हमारे माइंड पे है, देखो कोई प्रॉब्लम है, क्यों लोगों को नींद नहीं आती, व्हेन दे आर अंडर स्ट्रेस कोई प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती, क्यों नहीं आती है? क्योंकि मन सोचना बंद नहीं करता है। सोने के लिए द माइंड नीड्स टू स्लो डाउन। इफ आई एम डिस्टर्ब्ड अबाउट समथिंग द माइंड जस्ट गोज ऑन एंड ऑन। आपके साथ एक बच्चा बैठा है, वो पूछता जाएगा जब तक आप उसको आंसर नहीं देंगे। आंसर दिए बिना ही सो गए तो वो तो रात को भी सोचता रहेगा। एंड इसीलिए मोस्ट ऑफ अस टुडे एक्सपीरियंस कि हम अपने 6 घंटे तो सो रहे हैं, 6 घंटे 8 घंटे जितना सोना है, लेकिन जब हम सुबह उठ रहे हैं द माइंड इज नॉट एज फ्रेश एज इट नीड्स टू बी।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: तो चलो बच्चों, आ जाओ जल्दी से रेडियो के पास। मनी दीदी आ गई है लेकर तेनाली रामा की किताब लेकर, और हम पढ़ रहे हैं नई कहानी फलियों की शिक्षा, जिसमें पिछली कड़ी में हमने देखा था कि महाराज और तेनाली राम राज्य के भ्रमण पर ही निकले हैं कुछ चुने हुए विशेष रूप से अनुभवी सैनिकों के साथ में। अब आगे क्या हुआ मैं बिना देर के पढ़ना शुरू करती हूँ। पहले दिन ही संयोग ऐसा रहा कि राह में कोई बाजार नहीं मिला, घोड़े थक कर चूर थे, महाराज भी थकान का अनुभव कर रहे थे। उन्होंने तेनालीराम से कहा, मुझे लगता है कि अब शाम ढलने को है, हमें यहीं कहीं अच्छी जगह देखकर पड़ाव डालना होगा। भूख और प्यास से सभी बेहाल है, भोजन की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। तेनालीराम ने महाराज से कहा, महाराज मुझे लग रहा है कि दाईं तरफ नजदीक में ही कोई नदी हमें मिल सकती है, आप भी अनुभव कर सकते हैं कि दाईं तरफ से जो हवा आ रही है उसमें शीतलता है, यह शीतलता नमी के कारण ही हो सकती है। महाराज ने तेनालीराम की बातें सुनकर दाईं तरफ अपने घोड़े को घुमाया और थोड़ी दूर तक धीरे गति से उसे दौड़ाया। उसके बाद उन्हें भी लगा कि तेनालीराम के अनुमान में सत्यता है और साथ चल रहे सैनिकों को भी उसी दिशा में चलने का संकेत दिया। थोड़ी ही देर में वो लोग नदी के किनारे पहुंच गए और महाराज के निर्देश पर नदी किनारे तंबू गाड़े गए। घोड़ों को ले जाकर सिपाहियों ने नदी में पानी पिलाया और महाराज अपने तंबू में विश्राम की मुद्रा में लेट गए और तेनालीराम से कहा, तेनालीराम अब भोजन का भी प्रबंध हो जाना चाहिए। ऐसा कहते समय वे अपने आस पास नजर दौड़ाते रहे। थोड़ी दूरी पर उन्हें एक खेत दिखा जिसमें मटर की फलियां ही फलियां दूर तक दिखाई दे रही थी। तो महाराज ने तेनालीराम से कहा, क्यों ना आज हम लोग इन्हीं फलियों का आहार करें। तो तेनालीराम ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया, विचार तो अच्छा है महाराज। फिर महाराज ने कुछ सिपाहियों को बुलवाया और उनसे कहा, आज फलियों का आहार तुम लोगों को कैसा लगेगा? तो महाराज, इस जंगल में जो कुछ भी मिल जाए वही उत्तम आहार है, एक सिपाही ने हिम्मत करके कहा। तो बच्चों, अब आगे क्या होता है वो तो हम जानेंगे अगली कड़ी में, तो बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि अभी हम वापस आने वाले हैं और पिछली कड़ी में परी ने जो आपको होमवर्क दिया था उसे भी तो सुनना है ना, उसका जवाब भी तो जानना है। तो चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा गाना। सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, सपनों की सैर।

0: अरे क्या बात है, आज आप जल्दी आ गए।
1: हाँ विमला, आज डॉक्टर से तुम्हारे सोनोग्राफी के लिए अपॉइंटमेंट जो लिया है। जाओ जल्दी, तैयार हो जाओ।
0: सोनोग्राफी वो किस लिए?
1: मुझे

0: तुम ठीक कह रही हो, मुझे माफ कर देना। आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। भगवान, अब मुझे लड़की ही देना, एक प्यारी सी नन्ही मुन्नी गुड़िया रानी, बिल्कुल विमला जैसी।
1: चलो बच्चों, आ जाओ जल्दी से रेडियो के पास। अभी मनी दीदी और परी भी आ गए हैं पिछली कड़ी में आपसे जो पहेली पूछी थी उसका सही जवाब देने के लिए। और पिछली कड़ी में परी ने पूछा था, पंख नहीं पर उड़ता हूँ, धरती पर जीवन भरता हूँ, बिना दिखे सबको छूता हूँ, बताओ मैं कौन हूँ।
2: और बहुत सारे बच्चों ने इसका सही जवाब भेजा है और वो है हवा।
1: सही कहा, हवा पंख नहीं है लेकिन उड़ती है, हवा है ना, धरती पर जीवन देती है, तो सही जवाब है हवा।
2: तो चलो बच्चों, अब नोट कर लो आज की पहेली, सात रंगों की मैं पहचान, बारिश के बाद करता हूँ गान, आसमान में फैलता हूँ, बताओ मैं कौन कहलाता हूँ।
1: हाँ बच्चों, बारिश के बाद सात रंगों का क्या बनता है आसमान में, जिसको देखने के लिए हम बच्चे छत पे चले जाते हैं, बाहर आसमान में देखते हैं, तो क्या है वो चीज। जल्दी से अपना फोन उठाओ और 9414151415 पर हमें वॉइस नोट या मैसेज करके भेज दो।
2: तो बच्चों, और साथ में गुड नाइट भगवान जी को करना मत भूलना, और सॉरी थैंक यू लिखना भी मत भूलना।
1: हाँ सही कहा परी, तो चलो भाई बच्चों, अब भी करते हैं गुड नाइट,
2: स्लीप टाइट, गुड बाय। सुनते रहो,
1: मुस्कुराते रहो,
2: रेडियो मधुबन
1: 107.8 FM पर,
2: सपनों की सैर।

समय सुबह का तब बनता है खास जब आती है उषा आशियाना के साथ। आप सभी को नमस्कार, राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, खम्मा गणी सा। कभी किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, कुछ भी कहने से पहले थोड़ा सोच विचार कर लेना चाहिए। कैसे, जरा विचार करेंगे। और जी हाँ, कान के रोग से बचना चाहते हैं तो बहुत ही सुंदर उपाय बताएंगे आपको। और आज सिखाने वाली हूँ कुल्फी, परंतु कौन कौन सी वाली वो आप आशियाना सुनेंगे तभी जान पाएंगे, और खुशनुमा जीवन की ढेर सारी बातें भी करेंगे। तो आज का प्रश्न भी बहुत ही जल्दी पूछने जा रही हूँ, बहुत ही सरल और सुंदर है। तो ये सब कुछ सुनेंगे आप आशियाना में, रेडियो मधुबन, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: फिर भी साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड में फंस जाना तो कॉल 1930 पर लगाना। ऑनलाइन होने वाले धोखाधड़ी और साइबर फ्रॉड से पीड़ित होने पर गृह मंत्रालय भारत सरकार की अधिकृत वेबसाइट www.cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं।
1: पुनः आशियाना में आप सभी का स्वागत है। आइए अब आज के विचार की तरफ बढ़ते हैं। आज का सुंदर सा विचार इस प्रकार है, जो आप ध्यान से सुनेंगे, कि कभी किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, कुछ भी कहने से पहले थोड़ा सोच विचार जरूर कर लेना चाहिए। तो ये आज का विचार है, जिसका विश्लेषण हम इस प्रकार करेंगे एक दृष्टांत के साथ, कि एक गांव में एक अंधा व्यक्ति रहता था। वह रात में जब भी बाहर जाता, एक जली हुई लालटेन हमेशा अपने साथ रखता था। एक रात वह अपने दोस्त के घर से भोजन कर अपने घर वापस आ रहा था। हमेशा की तरह उसके हाथ में एक जली हुई लालटेन थी। कुछ शरारती लड़कों ने जब उसके हाथ में लालटेन देखी तो उस पर हंसने लगे और उस पर व्यंग बाण छोड़ने लगे। अरे देखो देखो, अंधा लालटेन लेकर जा रहा है, अंधे को लालटेन का भला क्या काम। उनकी बात सुनकर के अंधा व्यक्ति थोड़ा ठिठक गया और नम्रता से बोला, सही कहते हो भैया, मैं तो अंधा हूँ, देख नहीं सकता। मेरी दुनिया में तो सदा से अंधेरा रहा है, मुझे लालटेन का भला क्या काम। मेरी आदत तो अंधेरे में ही जीने की है, लेकिन आप जैसे आंख वाले लोगों को तो अंधेरे में जीने की आदत नहीं होती ना। आप लोगों को अंधेरे में देखने में समस्या हो सकती है, कहीं आप जैसे लोग मुझे अंधे से कहीं टकरा न जाओ, कहीं आप जैसे लोग मुझे अंधेरे में देख ना पाए और धक्का दे दे, तो मुझ बेचारे का क्या होगा सोचो। इसलिए ये लालटेन आप जैसे लोगों के लिए लेकर चलता हूँ, ताकि अंधेरे में आप लोग मुझ अंधे को देख सको। अंधे व्यक्ति की बात सुनकर वे लड़के शर्मसार हो गए और उनसे क्षमा मांगने लगे। उन्होंने प्रण किया कि भविष्य में बिना सोचे समझे किसी से कुछ नहीं कहेंगे। तो कहने का भाव यही है मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, कि कभी किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और कुछ भी कहने के पूर्व अच्छी तरह सोच विचार कर लेना चाहिए। तो ये हुआ आज का सुंदर सा विचार, जिस पर जरूर गौर करेंगे और सुनेंगे पुनः एक प्यारा सा गीत। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

0: माय नेम इज लेफ्टिनेंट जनरल दत्तात्रेय शिकटकर. मैं एक सैन्य अधिकारी हूँ, निवृत्त सैन्य अधिकारी. मेरा ये निवेदन है यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ में कि माना कि इस जहाँ को हम गुलशन न कर सके, हमें मान्य है कि हम इस पूरी पृथ्वी को बगीचा नहीं बना सकते हैं. माना कि इस जहाँ को हम गुलशन न कर सके, बस कांटे ही कुछ कम कर दिए, निकले जिधर से हम. एक कांटा, एक कुरीति, एक कुप्रथा, एक गलत बात अगर यहाँ से निकल जाएगी तो ये माउंट आबू जो है, यहाँ का क्षेत्र जो है, पूरा राजस्थान है, ये स्वर्ग हो जाएगा. और यही मेरा निवेदन है, यही मेरे ईश्वर से प्रार्थना है.
1: आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में देंगे आपको बहुत ही सुंदर उपाय कान के रोगों से कैसे बचाव करेंगे अपना. तो बहुत ही सुंदर उपाय आपको बताने जा रही हूँ. ध्यान से सुनेंगे कि देखिए, सप्ताह में एक बार भोजन करने से पहले कान में हल्का सुहाता गरम सरसों के तेल की 2-4 बूंदें डाल करके फिर आप भोजन करिए. कान में कभी तकलीफ नहीं होगी. फायदा क्या होता है इसका, जो बता रही हूँ आपको कि कान में कभी तकलीफ नहीं होगी. कानों में तेल डालने से अंदर का मेल उगल करके बाहर आ जाएगा. ठीक है, यदि सप्ताह 15 दिन में एक बार 2-4 बूंद तेल डाला जाए तो बहरेपन का भय नहीं रहेगा, दांत भी मजबूत होंगे. तो कितने अच्छे उपाय है, एक पंत कितने सारे काज. तो फिर से सुना रही हूँ इस नुस्खे को, ध्यान से सुनिएगा कि सप्ताह में एक बार भोजन करने से पहले. ऐसे मैं नहीं कह रही हूँ कि सप्ताह में एक ही बार भोजन करना है. भोजन आप रोज करिए, ठीक है, लेकिन सप्ताह में ऐसा नियम बना दीजिए कि एक बार आप भोजन करने से पहले, सप्ताह में एक दिन कोई भी दिन फिक्स कर लीजिए, सोमवार, मंगलवार, रविवार, शनिवार, कोई भी दिन. और जब आप भोजन करते हैं सुबह के समय, तो आप ब्रेकफास्ट करते हैं फिर आप भोजन करते हैं ना, तो भोजन के समय, लंच के समय, उसके पहले कि भाई आप भोजन करने बैठ रहे हैं, तो उसके 5 मिनट पहले आप हल्का सुहाता सुहाता गरम सरसों का तेल, बहुत गर्म नहीं हो, सुहाता सुहाता, ठीक है, तेल लीजिए सरसों का, और इसकी 2-4 बूंदे डालिए कान में. इससे क्या है कि कान में कोई भी तकलीफ अगर हो रही होगी तो वो ठीक हो जाएगी, और नहीं हो रही होगी तो कोई बात नहीं, तकलीफ होगी ही नहीं. और फिर कानों में तेल डालने से अंदर का मेल निकल करके बाहर आ जाएगा. यदि सप्ताह 15 दिन में एक बार आप 2-4 बूंद तेल डाले तो बहरेपन का भय नहीं रहेगा, और साथ ही साथ दांत भी मजबूत होंगे. और भी सुनेंगे आप उपाय कि यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन कानों में गुनगुना सरसों का तेल डाल करके कुछ विश्राम करता है तो उसके शरीर पर वृद्धावस्था के लक्षण जल्दी प्रतीत नहीं होंगे. ठीक है ना, देखिए बुढ़ापा तो आएगा लेकिन समय से पहले नहीं आएगा, कुछ समय और भी टल जाएगा. बहुत सारे लोग आप देखते होंगे कि 50-60 की एज में ऐसे लगते हैं कि जैसे 40-42 साल के हैं ऐसे. ठीक है, तो अगर रोज ही कानों में गुनगुना सहता सहता सरसों का तेल अगर डालते हैं कान में, तो इससे वृद्धावस्था के लक्षण शीघ्र प्रतीत नहीं होंगे. गर्दन का जो अकड़ जाने का रोग है वो उत्पन्न नहीं होगा, और न ही बहरापन आएगा. नेत्र ज्योति भी बढ़ेगी, और आंखें दुखती होगी तो ठीक हो जाएगी. आंखें भी नहीं दुखेगी. कितना सारा फायदा है कि देखिए, आंखों की ज्योति बढ़ेगी, आंखों जो दुखती होगी वो दुखना भी बंद हो जाएगा. तो बहुत ही अच्छा उपाय है, इसको आजमा सकते हो. और देखिए, कान और नाक के छिद्रों में उंगलियां तिनका डालने से उनमें घाव होने या संक्रमण पहुंचने का भय रहता है, इसलिए कान व नाक रोगों से बचाव के लिए उनमें आप उंगली या तिनका नहीं डालिए. ठीक है, तो इनसे आपको बचाव करनी है. तिनका डालते हैं, मान लीजिए डालते डालते किसी का टल्ला लग गया और वो तिनका अंदर ज्यादा चला गया तो बोलिए क्या हालत होगी. इसलिए बहुत ही सोच समझ करके आपको ये कार्य करना है, उंगली और तिनका डालना नहीं है. ठीक है, इस तरह आप सरसों का तेल डालिए, कान की भी सफाई हो जाएगी, बहरापन कभी नहीं आएगा, आंखों की ज्योति बढ़ेगी, दांत मजबूत होंगे. ये सारे फायदे ही फायदे हैं जिसका आप उठा सकते हो सिर्फ कान में सरसों का सहता सहता गुनगुना तेल डालने से. ठीक है, तो ये बहुत ही सुंदर उपाय आपको सुनाए हैं, तो इनको आप आजमा सकते हो और स्वयं को स्वस्थ रख सकते हो. और आइए अब आज के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं. आज का प्रश्न बहुत ही सुंदर है, ध्यान से सुनिएगा. राजस्थान में रोडवेज बसों में महिलाओं को कितना % छूट है? राजस्थान में जो रोडवेज बस चलती है ना, उसमें महिलाओं का कितना किराया लगता है? जवाब देने के लिए नंबर हमारे है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और आज के प्रश्न का जवाब दे सकते हो. ठीक है, आइए अब एक गीत सुनने के बाद पुनः हम आशियाना में आगे बढ़ेंगे. तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन.

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में समय हो चला है आप सभी को नए नए व्यंजन सिखाने का। तो आज मैं व्यंजन तो नहीं सिखा रही हूँ, आप जानते हो, पहले ही मैं बता चुकी हूँ कि आज हम कुल्फी बनाना सिखाएंगे, लजीज कुल्फी। बहुत ही देखिए भाई, गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है, और कहते हैं ना कि मौसम के अनुसार चीज़ें खाने की अपने आप ही इच्छा हो जाती है, भले न चाहते हुए भी। जैसे सर्दी का मौसम है तो ऐसा मन होता है गर्म गर्म चीज़ें खाए, और गर्मी का मौसम होता है तो लगता है कि कुछ ठंडा ठंडा मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए सोचा कि चलिए आज आपको कुल्फ़ी सिखा देती हूँ, ताकि कुल्फ़ी आप बना करके घर में इसका आनंद लीजिए। हमेशा तो नहीं खरीद सकते ना, कभी कभी तो खरीदना भी चाहिए, बेचारे जो ठेले वाले उनको भी कमाई दीजिएगा। लेकिन जैसे क्वांटिटी में बनाना चाहते हो तो फिर आप घर पर बनाइए, ताकि सस्ती भी पड़ेगी, स्वादिष्ट भी रहेगी, स्वच्छता भी रहेगी। तो मैं आपको सामग्री जरूर लिखवाऊंगी लजीज कुल्फी का, परंतु आज के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। आज का प्रश्न बहुत ही सुंदर और सरल है कि राजस्थान में रोडवेज बसों में महिलाओं को कितने परसेंट की छूट मिली हुई है राजस्थान में। ठीक है, जवाब देने के लिए रेडियो मधुबन के नंबर है 94-14-15-14-15 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और आज के प्रश्न का जवाब दे सकते हो। आइए अब मैं आपको कुल्फी लजीज की सामग्री लिखवा रही हूँ, आप पेन और डायरी ले लीजिएगा और लिखिएगा। हाँ, मैं सामग्री आपको 12 कुल्फी की सिखा रही हूँ, ठीक है, कि अगर आप एक डजन कुल्फी बनाना चाहते हैं तो 5 कप दूध लीजिएगा और 1 टिन लेना है मिल्क मेड। अब आप लीजिए कॉर्नफ्लोर 2 बड़े चम्मच, कतरे हुए बादाम ले लीजिए 2 बड़े चम्मच, और पीसी हुई छोटी इलायची 1/2 चम्मच। फिर आप लीजिए 6 बूंद केवड़ा जल की, और कुछ धागे लेना है आपको केसर का। बस सामग्री इसमें ज़्यादा नहीं है, फिर से दोहरा रही हूँ, अगर आप एक डजन कुल्फी बनाना चाहते हैं तो 5 कप लीजिएगा दूध, 1 टिन लेना है मिल्क मेड, फिर आप लीजिए 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर के, और कतरे हुए बादाम 2 बड़े चम्मच लेना है, पीसी हुई छोटी इलायची आप ले लीजिए 1/2 छोटा चम्मच, और 6 बूंद केवड़ा जल की, केसर के कुछ धागे भी लेना है, भले 2-3 ले लीजिए। तो ये हो गई कुल्फी लजीज की सामग्री। अब मैं आपको बनाने का तरीका भी सिखा रही हूँ, सिंपल है, कोई ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं है। ध्यान से सुनेंगे कि दूध और मिल्क मेड को मिला करके आप उबालने के लिए रख दीजिए, ठीक है, और बीच बीच में आप अच्छी तरह हिलाते रहिए, चिपकना नहीं चाहिए भाई। दूध गर्म करते समय बस यही ध्यान रखना है कि चिपके नहीं, चिपकेंगे तो फिर वो ओजी ओजी स्मेल आएगी, तो फिर कुल्फी का मज़ा ही किरकिरा हो जाएगा। इसलिए कुछ भी, भले हम खीर बनाते हो, चाहे रबड़ी बनाते हो, चाहे कुल्फी बनाते हो, लेकिन इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और हमारे श्रोता बंधु जुड़ना चाहते हैं तो हम उनसे बात करके पुनः आपको कुल्फी बनाना सिखाएंगे। हेलो, हाँ जी नमस्कार।
2: नमस्कार जी।
1: नमस्कार कमलेश बहन, ओम शांति, कैसे आपकी तबीयत है? जी जी जी, जल्दी ठीक हो जाएंगे आप, ठीक है,
2: बस आपकी दुआ थी है मैं तो।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: आज के प्रश्न का उत्तर दे रही हूँ
1: जी।
2: 30% मिलता है महिलाओं को,
1: 30%, ठीक है,
2: 30% मिलता है, और अब 50 होने वाला है, सुना है।
1: अच्छा ठीक है कमलेश बहन, बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आपने जवाब दिया है, हम जरूर सुनाएंगे, ठीक है,
2: ठीक है
1: जी जी, आभार। तो ये थे कमलेश बहन माउंट आबू डुंडई गांव से, और मैं आपको सिखा रही थी कुल्फी लजीज। फिर से ध्यान दीजिएगा, दूध और मिल्क मेड को मिला करके उबालने के लिए रखिए, बीच बीच में आप अच्छी तरह हिलाते रहिए, फिर कॉर्नफ्लोर में आप 2 बड़े चम्मच पानी डाल करके इसका अलग से घोल तैयार करिए, और उबलते हुए दूध में 2-3 मिनट तक इसको भी डाल करके पकाइए। जब दूध गाढ़ा हो जाएगा तो आप गैस बंद कर दीजिए, और इसमें इलायची पाउडर डाल दीजिएगा, बादाम की गिरी और केवड़े की बूंदे भी डाल दीजिएगा, ठीक है, केवड़ा जल। फिर ठंडा होने दीजिए इसको, ठंडा होने पर कुल्फी के सांचों में डाल करके आप फ्रिज में 7-8 घंटे तक के लिए जमने के लिए रख दीजिए। तो सरल है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है, कुल्फी बनाने के कोई मुश्किल काम नहीं है। दूध और मिल्क मेड को मिला करके अच्छी तरह गरम करना है, ठीक है, खिलाते रहना है साथ ही साथ। फिर जो कॉर्नफ्लोर लिया है उसमें आप दो बड़े चम्मच पानी डाल करके इसका अलग से घोल तैयार करिए, और इसका अलग से घोल तैयार करके फिर आप उबलते दूध में इसको भी डालिए और पकाइए। बस ध्यान रखना है गुठली नहीं पड़नी चाहिए। अब जब ये दूध गाढ़ा हो जाए तो आप गैस बंद कर दीजिए या भले भगोने को नीचे उतार दीजिए, और इसमें आप इलायची पाउडर, बादाम की गिरी, केवड़ा ये सब डाल करके एक बार हिला करके आप इसको ठंडा होने दीजिए। जब ये ठंडा हो जाए तो फिर कुल्फी जमाने के सांचे आते हैं, उन सांचों में आप भर दीजिए, ठीक है। लंबे लंबे सांचे आता है, आपने देखा होगा, उसमें भर करके आप फ्रिज में रख दीजिए। बस 7-8 घंटे तक इसको रहने दीजिए, 8 घंटे के बाद निकालिए आपको खाना हो तो, ठीक है। तो ये बन गए हमारे कुल्फी लजीज। तो आप जब भी इच्छा हो जाए कि भाई मेहमान आए हैं और क्या करें कुल्फी घर पर बनाए, तो फिर आप इस तरह बना सकते हो, या फिर आजकल तो मेहमान भी फ़ोन किए बिना आते ही नहीं, अचानक कोई किसी के घर पर नहीं जाता है क्योंकि सभी जानते हैं कि कोई कहीं बाहर होगा तो हमारा समय वेस्ट हो जाएगा, इसलिए फ़ोन करके ही आते हैं कि हम आ रहे हैं, फलाने दिन आ रहे हैं, टिकड़े दिन आ रहे हैं। तो आपकी प्लानिंग पहले से ही बन जाती है कि वो आ रहे हैं तो क्या बनाएंगे क्या नहीं बनाएंगे, तो इस तरह प्लानिंग के साथ आप कुल्फी भी बना करके दिन में जब भाई भोजन वोजन से फ्री हो जाओ, सो करके उठ जाओ, तब आप इस तरह कुल्फी बना करके इसका आनंद ले सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको और भी कुछ सिखाऊंगी, परंतु गीत सुनने के बाद। तो आज के प्रश्न की तरफ फिर से बढ़ते हैं। आज का प्रश्न है कि राजस्थान में रोडवेज बसों में महिलाओं को कितना परसेंट छूट है। जवाब देने के लिए नंबर हमारे है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और आज के प्रश्न का जवाब दे सकते हो। आइए अब गीत सुनेंगे, उसके बाद पुनः लौट रहे हैं, तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

0: क्या आपका फोन चोरी हो गया है? क्या आप जानते हैं कि अपना मोबाइल फोन कैसे ब्लॉक करें और ट्रेस करें? आप sancharsathi.gov.in पर संचार साथी की मदद ले सकते हैं। सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज के अंदर ब्लॉक योर लॉस्ट स्टोलन मोबाइल CEIR पर क्लिक करें। आपको केवल फोन नंबर, फोन का ब्रांड, फोन बिल, FIR कॉपी, फोन का IMEI नंबर की जरूरत है। पूरी जानकारी भरें और अपने चोरी हुए फोन के दुरुपयोग से बचें। किसी भी साइबर अपराध की रिपोर्ट cybercrime.gov.in पर करें। सतर्क रहें, साइबर सुरक्षित रहें।
1: आप सभी आशियाना के किचन में हो और आशियाना के किचन में बना रहे थे लजीज कुल्फी। आइए अब आपको सिखाते हैं तिरंगी कुल्फी। ठीक है, तीन रंग वाली कुल्फी आप कैसे बनाएंगे वो आपको सिखाएंगे। परंतु आज का प्रश्न बहुत ही सुंदर और सरल है, जो फिर से दोहरा रही हूँ। आप जुड़ सकते हो रेडियो मधुबन से और प्रश्न का जवाब भी दे सकते हो। तो आज का प्रश्न है कि राजस्थान में रोडवेज बसों में महिलाओं को कितना परसेंट छूट है? महिलाओं का कितना टिकट लिया जाता है राजस्थान की रोडवेज बसों में? ठीक है, जवाब देने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और आज के प्रश्न का जवाब भी दे सकते हो। और देखिए, हमारे श्रोता बंधु जुड़ना भी चाहते हैं रेडियो मधुबन से, उनसे बात करेंगे। हेलो
2: हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग।
1: हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग। नमस्कार दयाराम जी, कैसे हो आप?
2: बहुत ही अच्छा हूँ और आशा करता हूँ बाबा से सभी मधुबन रेडियो के आरजे और सभी ब्रह्म कुमारी और ब्रह्म कुमार अच्छे और बढ़िया है, और हमारे रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी मेरे प्यारे भाई बहनों को मेरा तहे दिल से प्यार भरा नमस्कार है, और आपको दीदी प्रणाम है। और
1: आपको भी नमस्कार।
2: बहुत ही अच्छा कार्यक्रम, जी अच्छा कार्यक्रम रहा सुबह से, और जो नुस्खे भी अच्छे बताए, गुल्फी बनाने की जो विधि बताई वो भी बहुत अच्छी है, हम भी बना पाएंगे
1: बिल्कुल।
2: और आज का प्रश्न भी सुंदर है, जो राजस्थान सरकार रोडवेज बस में महिलाओं के लिए कितनी छूट दी गई है, तो आज से पहले 30% थी, उसको बजट में मुख्यमंत्री बजट में बढ़ाकर 50% अभी कर दी है।
1: चलिए देखते हैं आपके प्रश्न का जवाब सही है नहीं है। आप बने रहिएगा आशियाना में, हम जरूर सुनाएंगे जवाब आपका। ठीक है
2: जी, दीदी नमस्कार।
1: जी नमस्कार, बहुत बहुत आभार। तो ये थे दयाराम जी लाखनी से, और अब आइए आशियाना के किचन में फिर से पधारिएगा। लजीज कुल्फी तो आप सभी ने सीख ली है, तिरंगी कुल्फी बनाते हैं। ठीक है, अब आप थोड़ा सा फोन के लिए धैर्यता रखिएगा, हम आपका फोन जरूर उठाएंगे, लेकिन ये कुल्फी आप पूरी सीख लीजिए, उसके बाद आप फोन कॉल्स करिएगा। ठीक है, तो तिरंगी कुल्फी के लिए सामग्री वो ही लेना है, थोड़ा सा ऐड ज़्यादा करना है जो मैं आपको बता रही हूँ, कि 5 कप दूध ले लीजिए जो हमने लजीज कुल्फी के लिए भी लिया है, फिर आप 1 टिन लीजिएगा मिल्क मेड, 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर लेना है और 4 बड़े चम्मच कटे हुए मेवा लेना है, जिसमें आपको बादाम, काजू और पिस्ता, ठीक है, ये ड्राई फ्रूट्स लेने हैं आपको थोड़ा थोड़ा सा। फिर आप लीजिएगा चिरौंजी 1 छोटा चम्मच, 1/2 छोटा चम्मच वही आपको पीसी हुई इलायची लेनी है, और सुगंध के लिए थोड़ा सा केवड़ा, थोड़ा सा पीला और लाल रंग खाने वाला लेना है, ठीक है, जो हम खाने में यूज़ करते हैं पीला रंग और लाल रंग थोड़ा थोड़ा सा लेना है। तो ये हो गई तिरंगी कुल्फी की सामग्री, जिसको मैं फिर से दोहरा रही हूँ, आप अपनी डायरी में नज़र डाल दीजिएगा, आपने अच्छी तरह लिखा है, कहीं छूट गया हो तो फिर से आप लिख सकते हो। 5 कप क्या लेना है? दूध। फिर मिल्क मेड लेना है 1 टिन, 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर और 4 बड़े चम्मच कटे हुए मेवे, जिसमें आप बादाम, काजू और पिस्ता ले सकते हो। 1 छोटा चम्मच लेना है चिरौंजी और इलायची पाउडर ले लीजिएगा 1/2 छोटा चम्मच। सुगंध के लिए लेना है थोड़ा सा केवड़ा और थोड़ा सा फिर आप लीजिएगा पीला रंग और लाल रंग खाने वाला। ठीक है, अब मैं आपको तिरंगी कुल्फी बनाने के विधि बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। दूध में मिल्क मेड मिला लीजिए और कॉर्नफ्लोर में दो बड़े चम्मच पानी डाल करके इसका घोल तैयार कर लीजिएगा। फिर आप ये गर्म करिए। गर्म करके इस कॉर्नफ्लोर वाले मिले हुए पानी को भी आपको डालना है और अच्छी तरह इसको पकाइए। अब आपको देखिए दूध जो भी आप गर्म करते हिलाते हुए गर्म करिए ताकि नीचे चिपके नहीं, ठीक है। हिलाते रहिए, गर्म करते रहिए, कम से कम 25-30 मिनट आप गर्म करेंगे तभी ये गाढ़ा हो पाएगा, ठीक है। और फिर इसमें आप जब दूध गाढ़ा हो जाए तो जो हमने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं इसको कुतर के आप डालिएगा। बारीक जो के मैंने पहले ही बताया था कि इसको काटना है, काट करके आप डालिएगा। अब घोल को तीन हिस्सों में कर लेना है आपको, तीन जो भले आप बाउल में डालिए भले आप छोटी छोटी तपेली में डालिए, ठीक है, तीन हिस्से में करना है आपको। फिर एक में थोड़ा सा पीला रंग, एक में थोड़ा सा लाल रंग मिला देना है, एक को सफ़ेदी रखना है। अब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए फिर बस वही आप कुल्फी का सांचा लीजिए और उसमें आप पहले थोड़ा सा जैसे पहले लाल डाल रहे हो लाल कलर वाला, फिर थोड़ा सा सफ़ेद डालिए, फिर पीला रंग वाला दूध डाल दीजिए और फ्रिज में रख दीजिए। इस तरह सारे ही सांचों में आपको तीन तीन कलर के डालना है, थोड़ा लाल, थोड़ा सफ़ेद, थोड़ा पीला, और 8 घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए, फ्रीजर में, ठीक है। 8 घंटे के बाद निकालिए तो ये तिरंगी कुल्फी तैयार हो चुकी है, बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी और देखने में भी अच्छी लगती है। और बच्चे तो क्या है, विशेष करके कलरिंग चीज़ें ज़्यादा पसंद करते हैं, अलग अलग कलर के होती है, अलग अलग फ्लेवर वाली होती है, तो बच्चे बड़े चाव से खाते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप कुल्फी में देखिए सामग्री थोड़ी सी ही बड़ी है लेकिन रूप ही उसका अलग हो गया है। तो फिर से विधि दोहरा रही हूँ कि आप दूध में मिल्क मेड मिला लीजिए, गर्म रखिए, फिर जो हमने कॉर्नफ्लोर लिया है उसमें थोड़ा सा पानी, 2 बड़े चम्मच पानी मिलाना है, इसका घोल तैयार कर लेना है। और जब ये दूध गर्म हो रहा होता है ना तो इसको भी आप डालिए और अच्छी तरह गर्म करिए। डालते समय ये ध्यान रखना है गुठली नहीं पड़े, ठीक है, अच्छी तरह हिलाइए। हिलाते हुए आप 25-30 मिनट आपको इस तरह खदखदाना है दूध को। जब आपको लगे कि दूध गाढ़ा हो गया है तब आप जो ड्राई फ्रूट्स लिए हैं कटे हुए ये भी आप डाल दीजिएगा, ठीक है। और फिर आप ये केवड़ा भी डाल दीजिए, इलायची पाउडर भी डाल दीजिएगा और अच्छी तरह हिला करके 3 पात्र में इसको भर दीजिए। और एक में पीला रंग मिलाना है, एक में लाल रंग मिलाना है और 1 पात्र को ऐसे ही रखना है सफ़ेद, ठीक है। जब ये ठंडे हो जाए तो फिर आप कुल्फी का सांचा में पहले लाल या भले पीला जो भी आपकी इच्छा हो एक कलर वाला डालिए, ठीक है। बीच में आप सफ़ेद डालिए, ऊपर आप फिर से दूसरा कलर वाला डालिए। जैसे नीचे पीला डाला है तो बीच में सफ़ेद, ऊपर लाल, जैसे नीचे लाल डाला है तो बीच में सफ़ेद, ऊपर पीला। तो इस तरह 8 घंटे के लिए आप फ्रीजर में रख दीजिए फिर संचय में भर के, ठीक है। और 8 घंटे के बाद आप निकालिएगा तो ये कुल्फी बन गई है तिरंगी कुल्फी। तो भाई कुल्फी बहुत ही स्वादिष्ट बन चुकी है, लजीज कुल्फी, तिरंगी कुल्फी। तो बस देर किस बात की, आप जो भी बनाते हैं बड़े भाव से, बड़े प्यार से, श्रद्धापूर्वक भोग जरूर लगाइएगा। क्योंकि एक तो क्या है कि भोग जब हम ईश्वर को लगाते हैं तो हमारा जो भाव होता है, जो विचार होता है, एकदम श्रेष्ठ हो जाते हैं, प्रभु के प्रति हमारा संकल्प चला जाता है तो हमारी भावनाएं और भी शुद्ध हो जाती है। और शुद्ध भाव से जो हम स्वीकार करते हैं सचमुच में उसमें ताकत, ईश्वर के शक्तियां भर जाती है, ताकत बढ़ जाती है हमारी, तो हमारे भी मन एकदम सकारात्मक हो जाता है। इसलिए भोग जरूर लगाइएगा और भोग लगाने के बाद ही आप जो भी चीज़ बनाते हैं उसको आप स्वीकार करिए, बच्चों को मेहमानों को भी आप पिरसिए, ठीक है। तो ये बन गई कुल्फी, तो कुल्फी का आनंद लीजिए। और साथ ही साथ मैं फिर से प्रश्न पूछ रही हूँ कि राजस्थान की रोडवेज बसों में महिलाओं को कितना परसेंट छूट है। जवाब देने के लिए रेडियो मधुबन के नंबर है 94-14-15-14-15 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और आज के प्रश्न का जवाब दे सकते हो। अब एक अल्पविराम लेकर के पुनः लौट रही हूँ, तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: ओम शांति। नमस्कार, मैं आकाश मानिसार से नेशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन का एक वॉलंटियर मेंबर। आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में हमारे श्रोता बंधु सुरेश भाई पिंडवाड़ा से जुड़े हुए हैं। हेलो।
2: हेलो।
1: हाँ जी, नमस्कार, स्वागत है आपका रेडियो मधुबन में।
2: आपका भी स्वागत है रेडियो मधुबन में, आशियाना प्रोग्राम में।
1: जी, तो मैं आज का विषय सुना रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा और उसका स्पष्ट करने की कोशिश करिएगा, ठीक है?
2: हाँ जी।
1: रेस चाहे गाड़ियों की हो या जिंदगी की, जीतते वही लोग हैं जो सही वक्त पे गियर बदलते हैं। क्या कहेंगे आप?
2: एक्चुअल में मैं बताना चाहूंगा, मेरे जिंदगी के अनुभव बताना चाहूंगा
1: जी,
2: कि रेस गाड़ियों की है मगर उस गाड़ी को कंट्रोल करना आना चाहिए, सबसे पहली बात तो वो है
1: जी,
2: ठीक है ना? क्योंकि जिंदगी की भी गाड़ी आप चला रहे हो मगर उसको एकदम कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो एक्सीडेंट जरूर होगा
1: जी।
2: और आपने जीत की बात की, तो देखिए जीत तो ऐसी है कि देखिए मतलब उसको अपने को मतलब जो ड्राइवर है उस गाड़ी का, जैसे कि गाड़ियों का है या अपने जिंदगी की गाड़ियों का अपन ड्राइवर है, तो अपन को ये भी नॉलेज होना चाहिए कि किस समय कौन सा गियर बदलना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि उसका अनुभव नहीं होता है, तो लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि कई दुर्घटना मतलब वहां पे मतलब कुछ लोग मतलब झगड़ रहे हैं तो वहाँ पे बीच में पड़ जाते हैं ना, तो वहाँ पे ज्यादा हो जाता है
1: जी,
2: तो संभालना जरूरी है उस गाड़ी को।
1: बिल्कुल,
2: ये अनुभव की गाड़ी है तो इसको संभालना जरूरी है
1: जी।
2: मैं तो यही कहना चाहूंगा, और बस इस गाड़ी को संभाल के चलिए, क्योंकि आप बस ट्रेन या कोई भी गाड़ी चला रहे तो हेलमेट या सीट बेल्ट की जरूरत होती है, मगर जिंदगी की गाड़ी ऐसी है कि इसमें ना तो सीट बेल्ट लगती है ना कोई लगती है, बस आपको मन को मतलब शांत करके उस गाड़ी को चलाना है
1: जी,
2: तो बस आपकी गाड़ी में जरूर आपकी जीत होगी, बस यही कहना चाहता हूँ।
1: बहुत सुंदर, तो आभार आपका, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने स्पष्ट किया है इस विषय को। तो आज का विषय बहुत ही सुंदर है मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, फिर से दोहरा रही हूँ कि रेस चाहे गाड़ियों की हो या जिंदगी की, जीतते वही लोग हैं जो सही वक्त पे गियर बदलते हैं। हमारे श्रोता बंधु जुड़ना चाहते हैं रेडियो मधुबन से, आइए उनसे बात करेंगे। हेलो,
3: नमस्कार दीदी, पालनपुर से फिरोज भाई बोल रहा
1: हूं। जी नमस्कार फिरोज भाई, कैसे हो आप?
3: बस एकदम अच्छे हैं। दूसरा के आज का प्रश्न का जवाब है, समझो के आदमी के 100 रुपए है तो महिलाओं के 50 रुपए है।
1: ठीक है, तो आप कार्यक्रम सुनिए, हम आपका जवाब जरूर सुनाएंगे। और आज का विषय भी बहुत अच्छा है कि रेस चाहे गाड़ियों की हो या जिंदगी की, जीतते वही लोग हैं जो सही वक्त पर गियर बदलते हैं। क्या कहेंगे आप?
3: सही बात है
1: जी।
3: तो वो क्या अपना देखो, ये जिंदगी समझो के जो अभी अभी चल रहा है उसी मुताबिक से चलना चाहिए, अभी जो टाइम है उसी मुताबिक से चलना चाहिए, मैं तो वही समझता हूँ, समय के मुताबिक चलना चाहिए।
1: समय के अनुसार क्या चलना चाहिए? समय के अनुसार देखिए, विषय आप ध्यान से सुनिएगा कि चाहे रेस चाहे गाड़ियों की हो या जिंदगी की, जीतते वही लोग हैं जो सही वक्त पे गियर बदलते हैं।
3: हाँ सही बात है, सही बात है। तो समझो कि अपने गाड़ी की हो तो समझो कि आगे आ गया, बम्प आ गया
1: जी,
3: बराबर, तो ब्रेक मार दिया, वो भी ब्रेक कैसे मारना है, पीछे वाले को देखना है कि पीछे वाला अपने ऊपर चढ़ नहीं जावे, ठीक है, वो स्पीड में आ रहा है, ब्रेक एकदम मार दिया तो ऊपर चढ़ जावे अपने ऊपर
1: जी।
3: हाँ, वो संभाल के वो अपने करना पड़ता है। ऐसे ये जिंदगी का भी जो है समझो के खान पान में भी इसका अपना ये देखना चाहिए, चलो भी अपना स्वास्थ्य अच्छा रहे, उस मुताबिक से खाओ तो जिंदगी अच्छी रहेगी।
1: चलिए ठीक है,
3: हाँ जी,
1: बहुत बहुत आभार फिरोज भाई
3: जी, जी,
1: जी, जी, जी। तो देखिए विषय बहुत ही अच्छा है मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, कि अगर हम समय पर गाड़ियों के गियर नहीं बदलेंगे तो एक्सीडेंट की संभावना रहेगी। ऐसे ही जिंदगी में उतार चढ़ाव बहुत आते हैं, लेकिन सही समय पर सही डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी होता है। वो कहते हैं ना कि खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, और अगर दूसरों से बहस करेंगे तो और ही नए सवाल खड़े हो जाएंगे। और हम क्या करते हैं, सोचने में लगे रहते हैं या फिर बहसबाजी में लगे रहते हैं, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसा हो जाता, ये कोई निवारण नहीं है। हेलो, हमारे श्रोता बंधु फिर से जुड़ना चाहते हैं, चलिए उनका कट गया है, फिर से कोशिश करिएगा तो आपसे बात हो पाएगी कि भाई हम दूसरों से बहस करते हैं लेकिन बहस करने से क्या फ़ायदा, जो हो गया सो हो गया। लेकिन चलिए मैं अपनी बात को बीच में ही रखना चाहूंगी क्योंकि हमारे श्रोता बंधु जुड़ना चाहते हैं। हेलो,
4: हाँ जी, नमस्ते सुरेश भाई बोलता
1: हूं। हाँ जी, नमस्ते, नमस्ते सुरेश भाई, वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत आपका रेडियो मधुबन में।
4: बहुत अच्छी बात हो रही है, उसका विषय भी दिया है आज, जिंदगी में यही तो हो रहा है
1: जी,
4: देश चाहे जिंदगी की हो या गाड़ियों की
1: जी,
4: सही समय पे गेयर बदलना जरूर होता है, जरूर चाहिए।
1: हाँ जी,
4: देखो आज कई लोग गाड़ियों की, मैं बात बताऊँ, बाद में बताऊँ जीवन की, तो गाड़ियों तो कई लोग चलाते हैं लेकिन गाड़ी सही तरह से चलाएंगे तो सही है, वरना आज कितनी गाड़ियों भी पलट जाती है
1: जी,
4: और कई गाड़ी सामने आते एक दूसरे के सामने भेज जाती है, तो ऐसा भी होता है
1: जी।
4: तो सही समय पे जिंदगी में भी ऐसी ऐसी बात है कि हम सही समय पे जो हम नहीं समझते तो कहीं ना कहीं जिंदगी में मुसीबत भी आती है, कई प्रॉब्लम भी आता है, जैसे गाड़ी पलट जाती है ऐसे जिंदगी भी पलट जाती है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, सही समय पे हमको इस्तेमाल कर देना चाहिए। डॉक्टर देवर चल, आज हम अच्छी तरह से जी रहे हैं, अच्छा हमारे सभी अच्छा है, परिवार में सभी अच्छा है, हम अच्छी तरह से खुशी से जी रहे हैं, लेकिन खुशी से जीते हैं और हम ज्यादा कुछ ऐसा करेंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान तो हमको होगा। हमारे पास पैसा है तो हम सभी पैसे जो खर्च कर देंगे तो बाद में हमारे पास कुछ नहीं रहेगा, और सही समय पे पैसा भी बचाना है, सही समय पे सबको साथ भी देना है, एक दूसरे को जिंदगी में साथ भी रहना है, वही तो हम जिंदगी अच्छी तरह से जी सकते हैं
1: जी।
4: वरना जैसे गियर बदलना है, हम अच्छी है अच्छी तरह से जी रहे हैं और हम कुछ और कर देंगे, गियर बदलना चाहे कि कुछ और कर देंगे तो कहीं ना कहीं मुसीबत तो हमारे ही आएगी,
1: बिल्कुल
4: ऐसा तो नहीं करना है दीदी, इसीलिए तो कहते हैं रेस्ट चाहे जिंदगी की हो चाहे गाड़ियों की, सही समय पे हमको गियर बदलना है, सही समय से अच्छी तरह से रहना है
1: जी,
4: सोच के रहना है, सोच के चलना है, तो हम आसान से जिंदगी जी सकते हैं। दीदी नमस्ते।
1: जी नमस्ते, बहुत बहुत आभार आपका, और यहीं पर हम भी एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद पुनः लौटेंगे, तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

0: अरे क्या बात है, आज आप जल्दी आ गए।
1: हाँ विमला, आज डॉक्टर से तुम्हारे सोनोग्राफी के लिए अपॉइंटमेंट जो लिया है। जाओ जल्दी, तैयार हो जाओ।
0: सोनोग्राफी वो किस लिए?
1: मुझे लड़का चाहिए, लड़की नहीं। वैसे भी महंगाई बढ़ती ही जा रही है।
0: पढ़े लिखे होकर भी आप कैसी बातें करते हैं। मेरी सहेली कमला को ही देख लीजिए, वो अपने माता पिता का ख्याल अपने बूते अभी तक रख रही है। स्कूल में प्रिंसिपल है, अच्छे पोस्ट पर है, क्या कमी है? वो अभी तो एक लड़की ही है ना।
1: फिर तुम शुरू हो गई।
0: सच ही तो कह रही हूँ। अब अपने दोस्त अनिल को ही देख लीजिए, अपने माता पिता को घर से निकाल कर वृद्धा आश्रम में छोड़कर आ गया है।
1: हाँ तुम ठीक कह रही हो, मुझे माफ कर देना, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। भगवान अब मुझे लड़की ही देना, एक प्यारी सी नन्ही मुन्नी गुड़िया रानी, बिल्कुल विमला जैसी।
2: आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना कार्यक्रम में खुशनुमा जीवन की बातें हो रही है कि कैसे हम, मतलब गाड़ियों की रेस हो या जिंदगी की, जीतते वही लोग हैं जो सही वक्त पे गियर बदलते हैं। तो कैसे हम सही समय पर डिसीजन लेकर के अपने जीवन को खुशनुमा बनाएंगे या कैसे हम दुखी हो सकते हैं, देखिए दोनों ही पहलू हमारे हाथ में है। बस सही समय पर सही फैसला लेने की आवश्यकता है। हमारे श्रोता बंधु जुड़ना चाहते रेडियो मधुबन से, उनसे बात करेंगे। हेलो,
3: ओम शांति। सर नमस्कार, मैं रामा भाई वासना गुंपा।
2: हाँ जी ओम शांति, नमस्कार रामा भाई, कैसे हो आप?
3: बस आप मजे में, और रेडियो सुन रहा हूँ अभी, दिन चालू करवाया तो अभी कौन में सुन रहा हूँ।
2: जी जी जी जी, चलिए बहुत अच्छी बात है, चालू हो गया ना आपका रेडियो मोबाइल पर?
3: चालू हो गया।
2: चलिए बहुत अच्छी बात है।
3: बहुत अच्छा जवाब दिया है आपने, वो प्रश्न रखा था उसका।
2: जी प्रश्न आपने सुना है, फिर से दोहराऊं?
3: हाँ, और ये वो बस के लिए कहते हैं, महिला के लिए तो वो भी तो कितना 35 रुपए लेते हैं, तो उसमें 10 रुपए करते हैं, 35 जगह 25 रुपए लगता है किराया महिलाओं को।
2: कितने परसेंट छूट है ये बताइए आप तो, राजस्थान रोडवेज बसों में महिलाओं को कितने परसेंट की छूट है?
3: ये 30% होती है सर, अभी तो इतना है, अभी जो किराया बढ़ा है वो तो मालूम नहीं है, लेकिन
2: ठीक है। चलिए आज के विषय पर आप क्या कहेंगे?
3: अभी वो सभी ने, मैं यही कहता हूँ कि ये जीवन अपना और जीना सीखो, और बस ऐसे ही, और सूरज भाई ने बोला है तो वो भी सही है। चलो
2: हाँ जी हाँ जी, सुन रही हूँ मैं।
3: मेरा तो यही बस ये कहना है
2: जी।
3: ओम शांति, नमस्कार
2: जी,
3: सुनने वालों को, सुनाने वालों को, सभी को
2: जी, आपको भी नमस्कार जी, शुक्रिया रामा भाई। तो ये रामा भाई वासना से थे और प्रश्न का जवाब इन्होंने दिया है, देखते हैं अभी बहुत जल्दी हम आप सभी को जवाब भी सुनाएंगे। अभी आप भी जुड़ सकते हो और प्रश्न का जवाब दे सकते हो कि राजस्थान रोडवेज बसों में महिलाओं को कितने प्रतिशत की छूट है, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि महिलाओं को कितना टिकट लगता है। तो जवाब देने के लिए रेडियो मधुबन के नंबर है 94-14-15-14-15। हेलो, हमारे श्रोता बंधु जुड़ना चाहते रेडियो मधुबन से, उनसे बात करेंगे। हेलो नमस्कार, आज के विषय बहुत ही सुंदर है, आप भी जरूर जुड़िएगा, आपके पास 2 मिनट है। रेस चाहे गाड़ियों की हो या जिंदगी की, जीतते वही लोग हैं जो सही वक्त पर गियर बदलते हैं। आज का विषय बहुत ही सुंदर है कि समय पर आप जो गियर बदलेंगे तो एक्सीडेंट की संभावना खत्म हो जाएगी। ऐसे ही जिंदगी में सही समय पर सही डिसीजन लेना जरूरी है। जैसे मान लीजिए बच्चों को इंटरव्यू देना जाना है जॉब के लिए, ठीक है, अब आज का इंटरव्यू है और बच्चे सोचेंगे अरे हो जाएगा ना, कल जाएंगे परसों जाएंगे, तो आप सोचिए कि क्या इंटरव्यू हो पाएगा, क्या उनको जॉब लग पाएगी, नहीं लग पाएगी। समय के अनुसार फैसला लेना बहुत जरूरी है, चाहे कोई भी बात हो। देखिए जिंदगी में बहुत सारे डिसीजन की आवश्यकता रहती है ना, बहुत सारे क्षेत्र होते हैं, बहुत सारी बातें होती है, घर परिवार में भी बहुत सारी बातें होती है कि कभी कभी ऑन द स्पॉट भी हमको फैसला लेने की आवश्यकता पड़ जाती है, लेकिन कभी कभी वो फैसला हम गलत ले लेते हैं तो जिंदगी भर हमें पछताना पड़ता है, और कभी कभी समय के अनुसार हम सही फैसला ले लेते हैं तो जिंदगी भर पछताने की बारी नहीं आती है। तो ऐसा ही है मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं की, थोड़ा सा सोचिए, ऐसा नहीं है कि नहीं सोचना है, लेकिन सोच समझ कर समय के अनुसार जो भी फैसला लेते हैं उसको ध्यान से लीजिएगा। हेलो, हमारे श्रोता बंधु जुड़ना चाहते हैं, उनसे बात करेंगे। नमस्कार।
4: हेलो, नमस्कार जी मैडम जी।
2: हाँ जी नमस्कार, कमलेश बहन कैसे हो आप?
4: बस बढ़िया है मैडम जी, ठीक। आप कैसे हो?
2: हम एकदम अच्छे हैं, आप सभी की दुआओं से।
4: बस बाबा की दुआ है मैडम जी सबके साथ में।
2: वो तो है, ईश्वर की कृपा तो है,
4: बहनों भाइयों की दुआ है, बाबा की दुआ है, बस और क्या चाहिए।
2: जी जी जी बिल्कुल।
4: आज का विषय का मैडम जी थोड़ा कुछ बता रही थी मैं।
2: हाँ जी,
4: आज का विषय है कि जीवन एक गाड़ी है मैडम जी।
2: जी,
4: और आत्मा चलाने वाली है, और अपने को सोचना है किधर घुमाना है उसको, किस साइड अपने को घुमाना है, और किससे तुलना करनी, अच्छे लोगों से करनी है या गलत लोगों से करनी है।
2: जी,
4: अगर गलत साइड जाओगे तो एक्सीडेंट होने वाला है, अपने को ये हैंडल अपने हाथ में है, कैसे चलाना उसको, बस मैडम जी इतनी है बस मैम।
2: जी बहुत बहुत आभार कमलेश मैन, बहुत सुंदर आपने सुनाया है स्वीट एंड शॉर्ट शब्दों में कि किधर गाड़ी को ले जाना है वो अपने हाथ में है। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगी कि ध्यान रहे खुद का युग होकर विश्वास, जिंदगी को मायूस ना कर, मंजिलें चारों तरफ है, रास्ते की तलाश कर, यही खुशनुमा जीवन का राज है। आइए यहीं पर अब हम इस विषय को समाप्त करते हैं और एक गीत सुन करके पुनः लौट रहे हैं, तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

0: आप हो रेडिया रेडियो मधुबन 107.8 एफएम हबरता रेडियो ने मुस्कुराता रेडियो।
1: प्यारे श्रोता बंधुओं, समय हो चला है आप सभी से अनुमति लेने का। आज के कार्यक्रम तो आपने सुने ही हैं, काफी अच्छे रहे हैं। आज का सुंदर सा विचार जो आपने जाना है, जरूर आप ध्यान दीजिएगा कि बोलने से पहले 100 बार सोचना है, फिर किसी के सामने अपना मुख खोलना है, किसी का भी अपमान नहीं करना है। नुस्खे भी बहुत ही अच्छे दिए हैं कि अगर कान के रोगों से बचाव करना चाहते तो क्या करेंगे, तो आपने जाने हैं उपाय, जरूर आजमा सकते हैं। और भाई रेसिपी में तो आज आपने कुल्फी बनाना सीखा है, तो जरूर बना करके खाइएगा, और ज्यादा बना लो ना तो चिंता मत करना, भेज देना रेडियो मधुबन में, ठीक है। खुशनुमा जीवन की बातें भी बहुत अच्छी हुई, और आज का प्रश्न तो बहुत ही सुंदर था, जिसको मैं फिर से सुना रही हूँ कि राजस्थान में रोडवेज बसों में महिलाओं को कितने परसेंट की छूट है। जवाब दिया है सुरेश भाई जोटाना से, इनका जवाब सही है, लेकिन क्या जवाब है वो मैं बाद में दूंगी। कमलेश बहन, इन्होंने कहा है 30% की छूट है, तो अभी तक 30% की छूट थी, लेकिन अभी 1 अप्रैल से नियम बदल चुके हैं, मैं बहुत ही जल्दी जवाब दूंगी। दयाराम जी लाखनी से, इनका जवाब सही है। सुरेश भाई पिंडवाड़ा से, इन्होंने कहा है 20%, गलत जवाब है। फिरोज भाई पालनपुर से, इनका जवाब भी सही है। और रामा भाई वासना से, इनका जवाब है 10%, ये गलत है। सही जवाब है 50%। 1 अप्रैल से पहले 30% की छूट थी महिलाओं को, और अब 50% की छूट है। तो सही जवाब देने वालों के लिए ढेर सारी तालियां। और आप सभी ने भी बहुत ही अच्छी कोशिश की, इसलिए भाई कोशिश की है तो तालियां भी बजनी ही चाहिए। आज का सुंदर सा विचार भी आपको सुना रही हूँ कि जब तक हम स्वयं को व्यर्थ से मुक्त होने की शिक्षा नहीं दिलाएंगे, तब तक हम असली शिखर पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये हुआ आज का मीठा मोती। अब मैं आपको एक प्यारा सा भजन सुनाऊंगी, आप लेंगे भजन का आनंद और मुझे देंगे अनुमति। कल फिर मिलेंगे एक नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, गणिक खम्मा सा, रेडियो मधुबन सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, लत

0: हेलो सर, मैं स्वाति बोल रही हूँ आपके खाई बैंक से। सर आपका एटीएम कार्ड एक्सपायरी होने वाला है सर।
1: सावधान रहें, ये एक स्कैम कॉल है। अपना ओटीपी या एटीएम पिन किसी के साथ भी शेयर ना करें।
2: रेडियो 107.8 FM सुन रहे हैं आप। कार्यक्रम है लव यू जिंदगी। और सच में किस टोन में हम किस बात को कहते हैं ना, लोग कह देते हैं अरे आज बड़े उदास हो, आज बड़े गंभीर हो, या कभी कभी सेम सेंटेंस को ही अलग अलग तरीके से कहने से हमारी भावना को पहचान जाते हैं। लेकिन हम अपनी भावनाओं को कितना पहचान, इसकी कोशिश कर रहे हैं हम, खुद को जान रहे हैं हम इस कार्यक्रम के माध्यम से जिसका नाम है लव यू जिंदगी। और हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे एक्सपर्ट्स। सबसे पहले स्वागत करते हैं ग्लोबल अस्पताल से हमारे साथ जुड़ गई हैं कल्पना जी, जो कि साइकोथेरेपिस्ट हैं, साथ साथ स्पिरिचुअल काउंसलर भी हैं। दीदी आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: शुक्रिया आरुषि जी, बहुत बहुत खुशी होती है जब हम अपने श्रोताओं से मिलते हैं और अपने मन की बात उनके साथ शेयर कर पाते।
2: और हमें भी बहुत खुशी होती है क्योंकि हमारे साथ एक नहीं दो दो एक्सपर्ट्स हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं श्रीनिधि जी, जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, साथ साथ जाने माने एंकर और आरजे भी हैं। श्रीनिधि जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
4: बहुत बहुत शुक्रिया आरुषि जी। लव यू जिंदगी के हमारे सभी श्रोता मित्रों को नमस्कार। कल्पना जी आपको नमस्कार। और जैसे लव यू जिंदगी में एक और एपिसोड है, जानते हैं कि हम अलग अलग विषयों पर चर्चा करते हैं, मेरे सारे विषय ऐसे हैं जो हम सबके दिलों के करीब, और कम बार ही ऐसा होता है जब हम समय निकाल कर इन चीजों पर सोचते हैं तो शायद ये कोशिश यही काम करती है कि हम उन चीजों को तवज्जो देना शुरू करें जो चीज एक्चुअल में हमारे लिए।
2: बिल्कुल, और इसी चीज की कमी होती जा रही है आजकल, समय समय नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमें समझ में आया था पिछले एपिसोड को, अगर दोस्तों आपने भी सुना होगा, कि हीलिंग की प्रक्रिया में समझ और समय दोनों बहुत जरूरी है। तो हम बातचीत कर रहे थे भावनाओं के बारे में, हीलिंग के बारे में, और हमने पिछले एपिसोड में ये जान लिया था कि कहीं ना कहीं कोई बैगेज है जो हम शायद बचपन से कैरी कर रहे हैं, जिसके साइंस नजर आते हैं। हो सकता है गुस्सा जल्दी आ जाता है, बेवजह रोना आ जाता है, या फिर चिड़चिड़ापन लगता है, अकेलापन लगता है, डर लगता है, ऐसे बहुत सारे साइंस है। दीदी आप बता रहे थे कि हम थोड़े और कुछ साइंस के बारे में बात करेंगे, सोशल साइंस के क्या क्या होते हैं जी, उसके बारे में जानना चाहेंगे।
3: तो हमने भावनात्मक संकेत देखे थे, बिना कारण उदासी, छोटी छोटी बातों पर रोना, अत्यधिक गुस्सा आना, चिंता, डर, अकेलापन। मानसिक संकेत हमने देखे थे, बार बार वही बातें सोचते रहना, ओवरथिंकिंग है, नेगेटिव सोच आना, आत्मविश्वास की कमी होना, खुद के निर्णय लेने में कठिनाई उत्पन्न होना। अब हम शारीरिक संकेतों की बात करते हैं। शारीरिक संकेतों में पहला संकेत जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है नींद ना आना। आजकल भी सोशल मीडिया के ज्यादा यूज की वजह से, मोबाइल के ज्यादा यूज की वजह से लोगों के नींद में डिस्टर्बेंस क्रिएट होता जा रहा है, तो ये शारीरिक संकेत बहुत खतरनाक है। दूसरा है कि सारा दिन थकावट बनी रहे, देर से सोना, देर से उठना, और फिर सारा दिन थके थके महसूस कर, सिर दर्द अधिक होना। मेरे पास बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं स्कूल कॉलेज जाने वाले, क्योंकि पढ़ाई भी है तो पढ़ाई करते समय उनका सिर दर्द होने लगता है या कभी पेट दर्द होने लगता है, और जब डॉक्टर को दिखाओ तो पता चलता है ऐसी कोई बात है नहीं जिससे उनका सिर दर्द हो सके, बट रात की नींद नहीं, थकावट है, सिर दर्द होना, शरीर में जकड़न से क्रिएट होना, भूख कम लगना या ज्यादा लगना, ये शारीरिक संकेत हमें दर्शाते हैं कि हमारी भावनात्मक इम्बैलेंस है। फिर व्यावहारिक या सामाजिक संकेतों में हम देख सकते हैं कि हम अचानक लोगों से दूर होने लगे, हमें लोग अपने आसपास अच्छे नहीं लगते, हम ग्रुप से अलग हो जाते हैं, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, हम अक्सर लोगों से बचकर मोबाइल में घुसे रहते हैं या सोशल मीडिया में चले जाते हैं। एक बार एक यूथ से मैंने प्रश्न पूछा, क्या हुआ भाई आजकल आप दिखाई नहीं देते, तो उसने जवाब दिया, मैम आप ऑनलाइन आ जाए।
2: अच्छा।
3: मैं हमेशा वहां अवेलेबल रहूंगा।
2: अवेलेबल तो हूँ लेकिन ऑनलाइन।
3: सो इसके साथ साथ नशे के प्रति आकर्षित, नशे के प्रति, और कभी कभी क्या होता है, खुद में कॉन्फिडेंस नहीं होता है तो हम लोगों को खुश करने में लगे रहते हैं, पीपल प्लीजिंग बिहेवियर शुरू हो जाता है, या तो कट ऑफ करते हैं या पीपल प्लीजिंग रहते हैं। तो ये सारे संकेत जो हमें नजर आते हैं, अब इसको हमें न्यूट्रलाइज कैसे करना है ये बात हम आगे देखेंगे, बट मैं इस पर श्री जी के भी विचार सुनना चाहूंगी। So, जब हम इनके उपचार की, अभी हमें संकेत का पता चला, क्या साइंस होते हैं वो पता चला, अब हम इसके उपचार की बात करते हैं।
0: एक चीज मैं और जानना चाहूंगी यहाँ पे उपचार से पहले, अगर कि ये जो सारे आपने साइंस बताया, ये क्या कहीं ना कहीं बचपन से ही जुड़े हुए हैं, मतलब अलग अलग चीजों से जुड़े हैं, या जैसे किसी को माँ बाप का प्यार कम मिलता है, लगता है बड़े भाई बहन को ज्यादा मिला, या किसी के साथ टीजिंग होती है तो ऐसा होता है जिसके साथ टीजिंग हुई उसको ये वाला ज्यादा सिम्टम होगा, या जिसके साथ ये हुआ उसको ये वाला ज्यादा सिम्टम होगा, ऐसा कुछ होता है क्या कनेक्शन?
3: जी बिल्कुल, हमारे प्रेजेंट सभी प्रॉब्लम्स का अगर जड़ हम देखेंगे तो हमारे बचपन के एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई।
0: जैसे पीपल प्लीजिंग है तो उसका क्या कारण हो सकता है कि जो लोग कॉन्फिडेंस नहीं होता या दूसरों को ही खुश करने में लगे होते हैं, इसका क्या?
3: आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि जिस व्यक्ति के सारे अपने लोग उसको तिरस्कार करते होंगे, उसे प्यार नहीं करते होंगे, या उसे छोड़कर चले गए होंगे, या उसे हॉस्टल में डाल दिया गया होगा, उसको अकेलापन लग गया होगा, जब उसके रिलेशनशिप टूटते जाते हैं तब वो सोचता है कि मेरा हर रिलेशन मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए वो हर एक व्यक्ति को प्लीज करने की कोशिश करता है ताकि वो उसके साथ बनाए।
0: ओके, तो उनको वो होल्ड ऑन करने की कोशिश करते हैं, पकड़ने की कोशिश करते हैं, फिर उसके लिए कुछ भी करना पड़ेगा।
3: जी बिल्कुल बिल्कुल, कुछ भी करना पड़े कर लेते, बट मुझे वो व्यक्ति का साथ चाहिए।
0: डर होता है कि वो भी छोड़ के ना चला जाए।
3: हाँ।
0: तो मतलब, और जिनके साथ बुलिंग ज्यादा हुई होती है, चिढ़ाया होता है, उनका किस प्रकार का सिम्टम मतलब या साइन है?
3: बहुत गहराई तक मेरे पास ऐसे कई यूथ्स आए जो कॉलेज में बुलिंग का शिकार हुए, उनका पूरा लाइफ और पूरा करियर बर्बाद, इतने अच्छे पढ़ने वाले ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, लेकिन कॉलेज में इस तरह गलत तरीके से उनकी रैगिंग हुई है, उस वजह से उनका पूरा लाइफ मेंटल बीमारी के कारण शिकार हो गए है, और पढ़ाई भी रह गई, करियर भी रहे, और अभी हेल्पलेस होकर बैठे। सो बीच में ही मैं सभी श्रोताओं से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, चाहे वो जो स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, या ऑफिस में जाते हैं, किसी भी स्थान पर दूसरे को तंग करने की आदत को पहचान कर उसे तुरंत रोकें, क्योंकि आपके चिढ़ाने से, आपके तंग करने से, आपके बुली करने से या आपके रैगिंग करने से किसी की जिंदगी बर्बाद हो सकती है।
0: बिल्कुल दीदी, और ये बहुत सच बात है, बुलिंग होती है, मजाक लगता है लोगों को कि हम तो सिर्फ जोक कर रहे थे, प्रैंक जिसको बोलते हैं, प्रैंक कर रहे थे, पर वो दोनों लोग नहीं हंस रहे होते, एक ही हंस रहा होता है बस, सामने वाला तो बहुत रो रहा होता है, परेशान होता है। इस तरह की घटनाएं बहुत होती हैं आज भी। ये तो फिर जैसा आपने कहा साइंस अलग अलग है, किसी ट्रॉमा का कुछ और साइन है, किसी ट्रॉमा का कुछ और साइन है। जिस तरह से, एक और चीज आपसे पूछना चाहूंगी, जो नींद नहीं आने वाली बात है, ये ओवर थिंकिंग वाली बात है, ये क्यों होती है, मतलब ये कहाँ से शुरुआत होती है, इसकी नींद कहाँ से पड़ती
3: है? नींद का हमारा एक साइकिल होता है, जैसे जैसे अंधेरा होता है एटमॉस्फेयर में, हमारी आंखों में जो मेलानिन द्रव है वो क्रिएट होता है, उसकी वजह से हमको लगता है अंधेरा होता है, तब हमारी आंखें थोड़ी भारी हो जाती है और हमें नींद का आना हो जाता है। अब क्या हो रहा है कि रात तो हो जाती है बाहर, लेकिन हमारा स्क्रीन बंद नहीं होता है, चाहे वो टीवी का स्क्रीन हो, चाहे वो मोबाइल का स्क्रीन हो, जो हमारी आंखों में रोशनी देता रहे। तो एक बार मेरे नींद का साइकिल, हमारे शरीर का और मन का एक रिदम है, उस रिदम को अगर हम तोड़ देते हैं किसी कारण से, जिस समय सोना चाहिए, समझो रात को 10 बजे सोना चाहिए, पर एक या दो दिन मैंने वो रिदम तोड़ दिया और रात को 1-2 बजे सोना शुरू किया, मेरी बॉडी का सर्कैडियन रिदम टूट जाता और फिर मुझे दूसरे तीसरे दिन से 10 बजे नींद नहीं आती, तो फिर मैं शिकायत करती हूँ, अरे 10 बजे नींद नहीं आ रही। नींद न आने का कारण मैंने ही उसको डिस्टर्ब किया। तो और 2 दिन अगर आप कोशिश करके उसी टाइम पर सोएंगे, फिर से उस रिदम में हम आ सकते। नींद न आने के कई और भी कारण होते हैं जिनको हम बाद में जानेंगे, लेकिन युवाओं के लिए जो मेन कारण है वो है स्क्रीन टाइम का बढ़ जाना, क्योंकि रात में उनको पर्सनल टाइम मिल, उस समय कोई देख नहीं रहा होता है, कुछ काम नहीं होते हैं, तो उस टाइम पर मुझे देखना है
0: रिलैक्सेशन के लिए।
4: पूछना चाहूंगा, अक्सर ये चीज मेरे को सुनने को मिलता है जब युवा साथी कंप्लेन करते हैं और मैं उनको कहता हूँ कि आप अपना टाइम टेबल वापस रीसेट करो, तो वो बोलते हैं कि भाई नींद नहीं आ रही है इसलिए मैं मोबाइल देख रहा था। अब फिर मैं मोबाइल देख रहा हूँ, इसकी वजह से नींद नहीं आ रही है। दोनों में सत्य क्या है कि ये गोल गोल चक्कर है,
5: मुर्गी पहले या अंडा पहले। ये वही हाल है। परंतु यस, नींद के टाइम पर नींद करना इसलिए जरूरी क्योंकि अगर हमने सही नींद ली है तो ये सारे बैगेजेस जो है ना, केवल एक नींद करने से सारे बैगेजेस को हम विदा कर सकते हैं।
6: नींद इतनी पावरफुल
5: है। एक्चुअली आप सही सुन रहे हैं, केवल एक नींद के ठीक करने, नींद हमारे लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। क्यों 8 घंटे की नींद का इम्पोर्टेंस है? दिन में 24 घंटे होते हैं, 8 घंटे या 10 घंटे हम काम करते हैं, बाकी के घंटे हम एंटरटेनमेंट या अपने शरीर का ध्यान रखने के लिए, लेकिन 8 घंटे सबसे लंबा समय नींद को दिया गया। क्यों? क्योंकि उस दौरान हमारा ब्रेन, हमारी बॉडी और हमारा माइंड रिचार्ज होते हैं, रिपेयर होते हैं, और वो रिचार्ज और वो रिपेयर कंपल्सरी, उसका कोई और ऑप्शन या अल्टरनेटिव नहीं।
6: शिंदी जी आप कुछ कहना चाहें?
4: कल्पना जी की बात से मैं सहमत हूँ। ये तो समझते हैं कि नींद का अभाव कितना बड़ा नुकसान कर सकता है शारीरिक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। हम ये कहते हैं और शायद हमारे कई युवा साथी इस बात को पहले सुना होगा। श्रोता मित्रों, आपको ये जानकर हैरानी होगी, अगर एक व्यक्ति भोजन नहीं करता है, हमारे साथी शायद इस बात को जान के हैरान होंगे कि अगर एक व्यक्ति भोजन के बिना अगर उसको आप रखना चाहें तो कई लोगों को हमें हफ्ता 10-15 दिन तक स्टार्विंग पे रख सकते, यानी वो बिना भोजन किए उपवास पे जीवन जी सकते हैं, सिर्फ पानी पे जिया जा सकता। और ऐसे लोग हैं जिन्होंने कई दिन बिना भोजन के बिता दिए, सिर्फ पानी पर, फिर भी शरीर चलता रहा। अगर उसी के मुकाबले आप भोजन को भी काट दो और पानी को भी काट दो तो भी व्यक्ति बिना पानी के 2-3 दिन तो जी ही सकता है। कोशिश करके अगर कई लोग ऐसे हैं जो 5-5, 6-6 दिन एक हफ्ता भी बिना पानी के सिर्फ हवा पे जीते रहे। मगर अगर आप एक इंसान को सोने ही न दो, अगर 4 दिन लगातार उसको सोने न दें आप, तो आप ये जानकर हैरान होंगे कि कई सारे लोग जिंदा नहीं रह सकते। नींद का अभाव मौत का कराता है आप, यानी ये इतना इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है और अनेकों एक्सपेरिमेंट्स ने इस बात सिद्ध किया हुआ है। हालांकि इनमें से ज्यादातर लोग नींद की इस महत्व को नहीं जानते। मैं कल्पना जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। रूबरू और विज्ञान इस बात की पुष्टि करता है कि नींद हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को, हमारे मानसिक स्वास्थ्य को, दोनों को ठीक रखने में मदद करता है। और समझ लें, आज आपने बहुत गुस्सा कर लिया, आज आपका मूड बहुत खराब है, आपने कुछ भी कर लिया, आप सो जाइए। सोने के बाद कुछ घंटे की नींद से जब आप उठते हैं, आप एकदम रिलैक्स उठते हैं, तो एक प्राकृतिक रूप से मिले हुए तोहफे के रूप में आप नींद को देखें, जो आपको हील करने में मदद करता है, आपके वेलबींग को रिस्टोर करने में मदद करता है। अगर हमें वो मौका देना चाहिए, और अगर हम इस मौके को अपने आप को नहीं देते हैं, ये तोहफा जो हमारे पास है, अगर हम उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम अपने ही आप को हानि पहुंचा रहे हैं। ये बात सही है।
6: ओके, तो नींद का इतना महत्व है ये तो समझ में आया, लेकिन कई बार लोग सोते तो है ही लेकिन बस लेट। कई बार हम 1 बजे सोते हैं तो नींद पूरी होती है, 7-8 घंटे भी होती है, क्योंकि हम 10 बजे उठ रहे हैं या 11 बजे उठ रहे हैं या 9 बजे उठ रहे हैं, तो 7-8 घंटे की तो नींद हो रही है। तो क्या वो सेम वर्क कर रही है या यहाँ भी अंतर हो जाता है? क्योंकि लोग बहुत इरिटेट होते हैं कई बार जब पेरेंट्स बोलते हैं, अरे टाइम पे उठो, टाइम पे सो, टाइम पे उठो, टाइम पे सो, तो बहुत कई बार ये चीज इरिटेट करती है एक्चुअली।
4: इससे पहले कि मैं जानता हूँ कल्पना जी इसका उत्तर बेहतर दे सकती हैं, मैं अपने अनुभव से ये बात शेयर करना चाहता हूँ। मैं एक आईटी कंपनी के लिए काम करता था, और क्योंकि आईटी कंपनीज ग्लोबल इंडस्ट्री है, वो ग्लोबली काम करती हैं, अलग अलग क्लाइंट्स आपके दुनिया के दूसरे दूसरे कोने में होते हैं, तो हमारे क्लाइंट्स कैनेडा में, और मुझे उनके टाइमिंग्स के अनुसार काम करने की जरूरत पड़ती थी। कभी कभार मैं शाम को 7:30 बजे काम करना शुरू करता था और रात के 2-3 बजे तक काम करना पड़ता था, और कभी कभार मैं रात को 2:30-3 बजे सवेरे उठकर काम करना शुरू करता था, और दोपहर के 12 बजे तक मुझे वो काम करना पड़ता था। ये टाइम टेबल ऊपर नीचे होता रहता है। हालांकि हमको ऐसा लगता है कि हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मतलब जब मैं रात को 1-2 बजे तक सोता ही हूँ, वीडियो ही देख रहा हूँ, तो फिर उस समय पर तो मेरे पास मोबाइल फोन और इंटरनेट का जमाना नहीं था जब मैं काम करता था। बट आजकल के युवा ये समझ सकते हैं कि आज हम रात को 1-2 बजे तक तो ऐसे भी सोते हैं, 12 बजे तक तो सोना होता ही है, तो 2 घंटा और काम कर लिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई, ऐसा लग सकता है। अगर वास्तविकता में मैंने ये चीज देखी, जब मैंने ये चीज किया इस तरीके शिफ्ट किया, और क्योंकि मैं सोचता था कि मैं जवान हूँ, मेरा शरीर इन चीजों को मैनेज कर लेगा, और मुझे कोई ऐसी बात लगी नहीं क्योंकि मैं दिन में सो जाऊंगा इस बात, और मैं सोता भी था। तो मैंने ये चीज पाया कि इसकी वजह से मेरे स्वास्थ्य तब्दीली आने लगी, उसकी वजह से मैं बार बार बीमार पड़ने लगा। आए दिन मुझे ना कोई प्रकार की बीमारियां, या तो पेट दर्द, या तो बुखार, सर्दी, खांसी, कभी कभार तो इनडाइजेशन, कभी अस्पताल में भर्ती होना, ये सारी चीजें धीरे धीरे शुरू। और ये बॉडी के नेचुरल साइकिल को छेड़ने की वजह से होता है। प्रकृति में हर एक जीव अपने अपने समय के अनुसार काम करता है, सबका एक सिस्टम बना हुआ है, और उसी सिस्टम के अनुसार हमें चलने की जरूरत है।
6: लेकिन मतलब जैसे मैं स्कूल में पढ़ती थी तो मैं भी कई बार रात को पढ़ती थी, बड़ा पीसफुल लगता है, शांति होती है, कोई नहीं होता है डिस्टर्ब करने के लिए, 3-4 घंटे आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं या कुछ और कर सकते हैं। तो अगर ऐसा लग रहा है कि हमें ज्यादा पीसफुल लग रहा है उस टाइम पढ़ना या कुछ और काम करना, तो क्या करें फिर?
5: पढ़ने की जहां तक बात है वो थोड़े समय के लिए होता है, इसलिए कोई बात नहीं, उसके बाद आप अपने डेली रूटीन में आ जाते हो, रात की नींद आपकी पूरी हो जाती है। इम्पोर्टेंट रात की नींद का, जबकि प्रकृति भी अंधेरा करती है। आप दिन में 10 बजे तक 11 बजे तक सो रहे हैं तो आप कोशिश करना, देखना, ट्रायल करना, उसके बाद भी आपको थकावट महसूस होती है, भले आप 10 घंटा सोए फिर भी आपको थकावट महसूस होती है, ऊर्जा नहीं रहती, एनर्जी नहीं रहती है, थोड़ा सा काम करके उठने का मन नहीं करता है बिस्तर से।
6: ये तो है।
5: तो ये सारी चीजें दिन के सोने में, रात के सोने में आप 10 बजे सो जाओ और सुबह 6 बजे उठो, ये है राइट टाइम सोने। हमारे पास कहीं प्रॉब्लम लेकर आते हैं, नाइट ड्यूटीज करते हैं, जब हम देखते हैं जो श्री जी ने सिम्टम्स बताए उनकी रात की काम करने की आदत की वजह से, वो सारे सिम्टम्स लेकर आते हैं। जब हम उनको पूछते हैं कि आपका काम क्या है, तो मैं सालों से नाइट ड्यूटी कर रहा हूँ। अब ये इसकी वजह से पूरा मानसिक, शारीरिक और ब्रेन का संतुलन बिगड़ जाता है। हम उनकी कंपनी को फिर सलाह देते हैं कि हफ्ते में केवल 3 दिन का नाइट करवाएं और बाकी दिन उनको डे में आने के लिए चांस दे। इसीलिए कई जो क्षेत्र है उसमें ये रूल है, जैसे नर्सिंग में, क्योंकि पेशेंट को अटेंशन देने की जरूरत है, दवाइयां ठीक से देने की जरूरत है, उनको 2 नाइट्स के बाद एक छुट्टी मिलती है और उसके बाद उनकी नाइट एक हफ्ते के बाद लगती
6: है, बैलेंस
5: बैलेंस। इसलिए रात का सोना मस्ट है, इम्पोर्टेंट।
6: ओके, तो जो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं, जो बात चली आती है कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, ये बातें यानी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मायने रखती हैं, और इसको चेंज करना हमारी हेल्थ के साथ हम जैसे खिलवाड़ कर रहे हैं। और आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही थी शुरू में कि हीलिंग कर देती है नींद, जो पुराना बैगेज है उसको भी हील कर देती है। श्रीनिधि जी, आप भी कुछ क्या कहना चाहेंगे उस, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी ये बात, हीलिंग नींद कर सकती है, मतलब हम कॉन्शियसली एफर्ट के बिना क्या इतना पॉसिबिलिटी है उस हीलिंग के बारे में, आप कुछ कहना चाहेंगे?
4: बिल्कुल आरुषि जी, जब हम बॉडी के रिपेयर की भी बात करते हैं, ये बिल्कुल वैसा ही है कि जब गाड़ी अगर खराब हो गई है, या ये समझें कि भाई गाड़ी की सर्विसिंग कराने की जरूरत है, ऑयल चेंज करना है उसका, मरम्मत करनी है, तो आप गाड़ी को गैराज में ले जाते हैं। अब आप गैराज में गाड़ी चलाते नहीं है, गैराज में गाड़ी खड़ी रहती है और उस पर जो काम होना होता है वो होता है। उसी प्रकार शरीर की गाड़ी का भी ऐसा ही है, जो हमारा मस्तिष्क, उसके लिए भी रिलैक्सेशन की जरूरत है, और नींद रिपेयर का काम करता है, रिजुविनेट करने का काम करता है। तो नई स्फूर्ति, नई ऊर्जा देने के लिए प्रकृति ने जो समय बनाया है, उस समय के अनुसार हमें अपने क्लॉक को सेट करने की जरूरत है। मैं कहता हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, ये मेरे से नहीं हो सकता। मैं ये कहता हूँ कि आप करके देखें, जबरदस्ती ही सही, हर दिन आप कोशिश करें कि आप रात को जल्दी 10-11 बजे तक तो सो ही जाएं, और फिर 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता करके फिर बताएं कि आपके स्वास्थ्य में, आपके मनोस्थिति में क्या परिवर्तन आ रहा है। तो लोग जब उस परिवर्तन को देख लेते हैं तो अपने आप वो उस चीज को प्रायोरिटी देते। तो ये अनुभव वाली बात है, करके देखने वाली बात है। विज्ञान भी तो एक्सपेरिमेंट की बात करता है, हम बिना एक्सपेरिमेंट और उसके उस एक्सपेरिमेंट के बाद जो एक्सपीरियंस आता है उसके आधार पर विज्ञान को मानते हैं। तो यही चीज वैज्ञानिकों ने ऑलरेडी बता दिया है, साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, अनेक लोग इस चीज को वाउच कर, तो हमें भी वो चीज करके देखने की जरूरत है। और बिल्कुल ये ताकत है प्रकृति, और इसी चीज के लिए लोग कहते हैं, जब शरीर में व्याधि भी हो रही होती है तो लोग यही कहते हैं, डॉक्टर साहब नींद की गोली दे दो,
7: नींद का इंजेक्शन लगा दो, सो जाएंगे तो ठीक हो जाएगा। और अक्सर ये देखा जाता है व्यक्ति वेल रेस्टेड होता है तो उसके स्वास्थ्य में इजाफा होता है। कुछ ना करना ही अपने आप में हीलिंग प्रोसेस है। हम सोचते हैं कि क्या करें क्या करें, इसके लिए क्या करें, उसके लिए क्या करें। कभी कभार रिलैक्स करना, कुछ नहीं करना, वो हीलिंग प्रोसेस में बहुत बड़ा कारगर उपाय साबित होता है।
6: तो कभी कभी कुछ ना करना भी जरूरी है। हम पूछते हैं सवाल क्या करें, तो अभी कुछ नहीं करें बहुत जरूरी है, ये समझ में आया। और मुझे लगता है इस एपिसोड में तो हमने बहुत सारी नींद के बारे में बात कर ली है और किस तरह से नींद मदद करती है वो भी हमने समझा, और क्या क्या हीलिंग है, हम कैसे कैसे बैगेज कैरी कर रहे हैं, कैसे उसको हील करने की शुरुआत कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ जानेंगे आगे आने वाले एपिसोड्स में। फिलहाल जाते जाते दीदी आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अब नींद के बारे में क्योंकि बात हो रही है, तो क्या सोने के पहले हम कुछ मेडिटेशन कर सकते हैं जिससे नींद हमें अच्छी आए?
5: बिल्कुल कर सकती हूँ। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि मेडिटेशन की शुरुआत डीप ब्रीदिंग से होती है, रिलैक्सेशन से होती है,

0: अब मैं श्रोताओं से अनुरोध करूंगी कि वो किसी निश्चित स्थान पर बैठकर गहरी और लंबी सांस लेने का अभ्यास करें। जिन्हें अपनी सांसों को लंबी सांस गहराई तक भीतर ले और लंबा सांस छोड़े, पूरा ध्यान अपने सांसों पर एकाग्र करें। अपने संपूर्ण शरीर में रिलैक्सेशन को फील करें। एक एक बॉडी पार्ट को ढीला छोड़ दें। अपने सिर को और मस्तक को फील करें, कंप्लीटली रिलैक्स्ड। मन में विचार दोहराएं, मैं शांत स्वरूप हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, मैं बिल्कुल सुरक्षित, मैं प्रेम पाने और प्रेम देने के योग्य हूं। गहरी और लंबी सांस के साथ अपने आप को स्वीकार करें, सुरक्षित महसूस करें। चारों ओर से प्रकृति और परमात्मा के प्रेम से घिरा हुआ महसूस करें। और चलिए एक मिनट के लिए हम गहरी नींद का अनुभव करें। खुद को ऑर्डर दे, मुझे एक मिनट आंख बंद करके, सारे दरवाजों को बंद करके केवल गहरी नींद का अनुभव करूं। नींद मेरी फ्रेंड है, नींद मेरी दवाई है, नींद मुझे भीतर और बाहर से पूरी तरह से हील करती है। थैंक यू।
1: थैंक यू सो मच दीदी। नींद सबसे बड़ी हीलर है, चाहे शरीर हो चाहे मन, और दोनों की ही हीलिंग आज हमें करनी बहुत जरूरी हो गई है, चाहे बच्चे हैं, युवा हैं या बुजुर्ग हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि मेडिटेशन हम सबके लिए है। कोई सुन रहे हैं तो अपने घर वालों से भी ये जरूर शेयर करें और अभ्यास करें। जैसा श्रीनिधि जी ने भी बताया कि एक्सपेरिमेंट करके देखें कुछ हफ्तों का, फिर आपको उसका असर खुद समझ में आएगा, उसका जीता जागता प्रूफ आप ही बन जाएंगे। और इसी वादे के साथ कि आप इसका प्रयोग करेंगे, इसी आशा के साथ फिलहाल लेते हैं इजाजत और अपने एक्सपर्ट्स को कहते हैं बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों का हमें समय देने के लिए, जुड़ने के लिए, गाइड करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
0: शुक्रिया।
2: थैंक यू।
1: और दोस्तों, मुलाकात होगी लव्य जिंदगी के अगली कड़ी में। तब तक रेडियो मधुबन से जुड़े रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जिंदगी को दिल खोल के कहिए कि लव यू जिंदगी।

0: नमस्ते, राम राम, ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 FM पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माई विलेज माई एरिया। इस कार्यक्रम को लेकर जब हम गांव और अंचल में जाते हैं हमें बहुत खुशी मिलता है, क्योंकि अपना गांव और अपना अंचल कितना अच्छा है जिस गांव और अंचल में पले बड़े और यहाँ तक पहुंचे। हर रोज की तरह आज भी आपका पास रूबरू होने के लिए आए हैं। हर विद्यालय, हर गांव और आंगनबाड़ी, हर नरेगा में हम पहुंचते हैं, सभी को एक मंच मिलता है। तो रेडियो मधुबन एक सामुदायिक रेडियो होने के नाते सामुदायिक आवाज समुदाय तक पहुंचाने के लिए हम तत्पर रहते हैं। चाहे बारिश हो, चाहे धूप हो, चाहे ठंडी हो, हर जगह में समय को देखते हुए, वातावरण को देखते हुए, परिवेश को देखते हुए पहुंचते हैं। और कहाँ कहाँ सूचना देना पड़ता है और कहाँ कहाँ से भी हमें सूचना मिलता है हमारा स्कूल में कब आ रहे हैं सर। तो हर जगह का जो प्यार है, जो भावना है, तो उसको हम कैसे ठेस पहुंचाएंगे, क्योंकि सरकार हमें दिए हैं कम्युनिटी रेडियो, कम्युनिटी का आवाज को बुलंद करने के लिए, जन जन तक पहुंचाने के लिए। तो सिरोही जिला में एक वैल्यू बेस्ड रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन इस तरह कार्यक्रम को लेकर पहुंचता है। तो आज आप सबका पास हम रखने जा रहे हैं रेबदर तहसील के स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रेबदर का आवाज को आज बारी बारी सुनने को मिलेगा। विवेकानंद नाम सुनते हैं कितना खुशी लगता है, क्योंकि जिस महान पुरुष स्वामी जी दे भारत को कहाँ तक लेकर पहुंचाए, विदेश में भी उनका कदर है और भारत का परचम लहराया था। तो उसी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं और आज का जो कार्यक्रम को सजाएंगे वही स्कूल के ही स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे आज पार्टिसिपेंट करेंगे। कुछ बच्चे जो टैलेंट बच्चे, तो उनका प्रस्तुतियां बारी बारी आपको सुनने को मिलेगा। तो कहीं मत जाइए, अभी सुनते हैं उनका प्रस्तुति और अपना अपना नाम, क्लास और कहाँ से बिलोंग करते हैं और स्कूल का नाम जरूर बताएं, तो हमें खुशी होगी और हमारा श्रोता मित्र भी झूमेंगे और ये पहचान भी मिल जाएगा। तो शुरू करेंगे। ओके, चले शुरू करिए।
1: मेरा नाम लीलावती खंडेलवाल है। हम स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट मॉडल स्कूल से हैं। मेरे गांव का नाम रेवदर है।
2: मेरा नाम ऋषिका अग्रवाल है। मैं स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल में पढ़ती हूँ और मैं 10वीं में हूँ।
3: मेरा नाम मनीषा कुमारी है। मैं रेवदर से आती हूँ। मेरी कक्षा 10वीं है। मैं स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल में पढ़ती हूँ।
4: मेरा नाम खुशबू है। मैं क्लास 10th में पढ़ती हूँ। मैं स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट मॉडल स्कूल में अध्ययनरत हूँ और मेरा गांव जौलपुर है।
5: मेरा नाम जानवी चौधरी है। मैं कक्षा 10वीं में पढ़ती हूँ। मेरा स्कूल का नाम स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट मॉडल स्कूल है। मैं मलावा से आती हूँ।

बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए। नाम का साथ धन्यवाद देते हैं, अपना आवाज को बुलंद करके। और हमारा जो एडिटर है वो भी कम नहीं है, वह जहां भी इधर उधर का बात होता है वो भी उसको साफ सफाई करके एडिटिंग करते हैं, सफाई कर देते हैं, जिसका चलते हेल्दी वेल्दी और सुंदर प्रस्तुति हो जाती है और आपका पास हम परस्ते हैं जो आप सुन पा रहे हैं। तो ओलेक भाई को भी धन्यवाद देते हैं क्योंकि वो बच्चों को कोऑर्डिनेट करते हैं, कभी कभी रिकॉर्डिंग में भी पहुंच जाते हैं, एडिटिंग तो करते ही है, आरजे भी बन जाते हैं, एडिटर तो है ही है। और ओलेक भाई को भी धन्यवाद देते हैं सुंदर रूप में बच्चों को एकत्रित करके सभी को उमंग उत्साह भराते हैं और उनको कोऑर्डिनेट करते हैं, जिसका चलते बच्चे कर पाते। तो धन्यवाद ओलेक भाई को, सुंदर रूप में बच्चों को उमंग उत्साह से करा दिए हैं और बच्चे भी अपना उमंग उत्साह लेकर प्रस्तुतिकरण किए। सभी को नाम का साथ धन्यवाद देते हुए एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद पुनः मिलेंगे। सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज पर, 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए ब्रेक का पहले आप सब सुन पा रहे थे स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अरे अब्दर का आवाज को। इस कड़ी को ही आगे बढ़ाते हुए बच्चों से सुनेंगे और एक प्रस्तुति। सभी अपना नाम और कहाँ से और कौन सा क्लास और स्कूल का नाम जरूर बताएं।
1: उसका चलते हमें भी खुशी मिलेगा, हमारा श्रोता मित्र भी आपको पहचान पाएंगे, क्योंकि ऑडियो चैनल में, एफएम चैनल में आपका फेस तो नहीं, आपका चित्र तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन आवाज बुद्धि
0: ही सुनने को मिलेगा और आवाज को ही दिव्य दृष्टि से।
1: से पहचान पाएंगे। तो देर किस बात की, शुरू करें? ओके,
0: शुरू हो जाइए।
2: गुड मॉर्निंग ऑनरेबल प्रिंसिपल सर, रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड ऑल डियर माय ब्रदर एंड सिस्टर। माई नेम इज डिम्पल कुमारी, आई फ्रॉम क्लास 12th B, आई कम फ्रॉम देवधर। हे भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आई हूँ, हे भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आई हूँ, और 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आई हूँ। सुनो, हिमालय कैद हुआ है दुश्मन की जंजीरों में, आज बता दो कितना पानी है भारत के वीरों में। खड़ी शत्रु की फौज द्वार पर आज तुम्हें ललकार रही, सोए सिंह जागो भारत के माता तुम्हें पुकार रही। रण की भेरी बज रही, उठो मोह निंद्रा त्यागो, पहला शीश चढ़ाने वाले माँ के वीर पुत्र जागो। बलिदानों के वज्र दंड पर देशभक्त की ध्वजा जगे, रण के कंकर पहने हैं वे राष्ट्रहित की ध्वजा जगे। अग्नि पंथ के पंथी जागो, शीश हथेली पर रखकर, और जागो रक्त के भक्त लाडलो, जागो सिर के सौदागर। खप्पर वाली काली जागे, जागे दुर्गा बरबंडा, रक्त बीज का रक्त चाटने वाली जागे चामुंडा। नर मुंडों की माला वाला जगे कपाल कैलाशी, रावण का वध स्वयं करूंगा कहने वाला राम जगे, और कौरव शेष न बचेगा कहने वाला श्याम जगे। परशुराम का परसा जागे, रघुनंदन का बाण जगे, यजुनंदन का चक्र जगे, और अर्जुन का धनुष महान जगे। चोटी वाला चाणक जागे, पौरुष पुरुष महान जगे, सैल्यूकस को कसने वाला चंद्रगुप्त बलवान जगे। हठी हमीर जगे, जिसने झुकना कभी न जाना, जगे पद्मिनी का जौहर, जागे केसरिया बाना, देशभक्त का जीवित झंडा, आजादी का दीवाना, रण प्रताप का सिंह जगे, और हल्दी घाटी का राणा। कलवो है का जगे मोर्चा, पानीपत का मैदान जगे, भगत सिंह की फांसी जागे, राजगुरु के प्राण जगे, और जिसकी छोटी सी लंकुटी से संगी ने भी हार गई, कौन? रानी। हिटलर को जीता वो फौजे 7 समुंदर पार गई। मानवता का प्राण जगे और भारत का अभिमान जगे, उस लंकुटी और लंगोटी वाले बापू का बलिदान जगे। आजादी की दुल्हन को जो सबसे पहले चूम गया, स्वयं कफन की गांठ बांध कर सातों भावर घूम गया, उस सुभाष की आन जगे, उस सुभाष की शान जगे, ये भारत देश महान जगे, ये भारत की संतान जगे। क्या कहते हो, मेरे भारत से चीनी टकराएंगे? क्या कहते हो, मेरे भारत से चीनी टकराएंगे? अरे चीनी को तो हम पानी में घोल घोल पी जाएंगे। वह बर्बर था, वह अशुद्ध था, हमने उसको शुद्ध किया, हमने उसको बुद्ध दिया था, उसने हमको युद्ध दिया। और जिसके रण से बनता है केसरिया बाना, ओ कश्मीर हड़पने वालों, कान खोल सुते जाना। मेरे भारत के केसर की कीमत तो केवल सिर है, और भारत के कोहिनूर की कीमत जूते 5 अचर अमर है। जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, इस मिट्टी को छूने वाला मिट्टी में मिल जाएगा। मैं घर घर इंकलाब की आग जलाने आई हूँ, मैं घर घर इंकलाब की आग जलाने आई हूँ। हे भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आई हूँ, हे भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आई हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों को सुनते तो हमें भी खुशी होता है, बच्चों को जितने भी प्रशंसा करे कम ही होगा, क्योंकि बच्चों के अंदर में जो विशेषता है, जो भावना है, जो हृदय का तार है, जो प्रार्थना है, जो संगीत है, इस तरह कार्यक्रम का माध्यम से प्रकट करते हैं।
1: धन्यवाद देते हैं, नाम का साथ
0: लेते हैं छोटा सा ब्रेक।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: हम याद रखें कि वो एक बार भी जब हमें गुस्सा आया, हम इस विश्व को दूषित कर रहे हैं। हम मन को, शरीर को, रिश्तों को, प्रकृति को दूषित कर रहे हैं। और अगर एक बार भी हमने आज क्रोध को त्याग कर शांति को धारण किया, तो हम सिर्फ अपने मन को सुकून नहीं, रिश्तों में प्यार नहीं, प्रकृति को सद्भावना नहीं, हम विश्व को सुंदर बनाने की सेवा कर रहे हैं। तो क्या हम सेवा करने के लिए तैयार हैं?
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है और बच्चे भी खुशी से अपना आवाज को रेडियो कार्यक्रम में सजा रहे हैं। और एक प्रस्तुति के लिए उपस्थित है, शुरू करेंगे। 1 2 3 शुरू।

बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, क्या बात, क्या बात, बहुत खूब लगा। और आप सब तो है ही होनहार है, माँ बाप का चिराग है और कुल दीपक भी है, और देश को नाम रोशन करते हैं। कोई संगीत में कोई रुचि रखते हैं तो कोई पढ़ाई में भी ज्यादा रुचि रखते हैं, और बड़े होकर अपना भाव को भी पकड़ करते हैं। कोई डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, मैडम बनना चाहते हैं, तो लक्ष्य रखेंगे तो जरूर लक्षण दिखाई देगी। और माँ बाप भी जब सुनते हैं तो उनको भी खुशी लगता है, चलो हमारा बच्चे जो हमारा सपना को साकार करने में 20 नाखून लगाकर, जी जान लगाकर तत्पर रहते हैं। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद पुनः मिलेंगे। सुनते रहिए कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: चलती हुई गाड़ी में बिना किसी उचित कारण के चैन खींचना कानूनी अपराध है। कृपया उचित कारण के बगैर चैन ना खींचें। रेल यात्रा के दौरान किसी भी मदद के लिए रेलवे कर्मचारी या पुलिस की सहायता लें।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: नमस्ते। कार्यक्रम को आगे बढ़ा तो है, हमें बहुत खुशी हो रही है और खुशी क्यों नहीं होगा, बच्चे भी खुशी से अपना प्रस्तुति देते हैं। जब प्रस्तुतिकरण में इतना खुशी है तो हमें भी खुशी करा देते हैं, है ना बच्चे? वेरी गुड। बच्चे भी हंस रहे हैं क्योंकि बच्चे तो बच्चे ही होते हैं और हमें भी बच्चे बना देते हैं। और क्या कहे, रेडी सभी तो बोलो भाई, चलो रेडी करें। हाँ जी, ओके, रेडी कर रहते हैं, शुरू।
3: मेरा नाम संध्या है और मैं क्लास 12th की स्टूडेंट हूँ और मैं स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट मॉडल स्कूल में पढ़ती हूँ और मैं एक गाना प्रस्तुत करना चाहूंगी।

बहुत बहुत धन्यवाद, तालियों का साथ, आभार का साथ, धन्यवाद का साथ, और रेडियो मधुबन आपका साथ तो है ही है, और जिसका चलते आपका आवाज को हम जन जन तक पहुंचाने में खुशी मिलता है। तो धन्यवाद देते हुए एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद पुनः मिलेंगे। सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

चलिए कार्यक्रम को बढ़ाते हुए अगला कड़ी में अगले बच्चे रेडी है ये, तो सभी को नाम का साथ धन्यवाद देते हैं। क्यों धन्यवाद पहले दे देते हैं, क्योंकि आप तो धन्यवाद का पात्र ही है, क्योंकि इतना बच्चे हैं तब भी आप सिलेक्टेड होकर आए हैं और आपका विशेषता को हमारा संस्था प्रधान और सभी शिक्षक जानते हैं, मैम भी जानते हैं, जिसका चलते आपको यहाँ तक पहुंचाए जो आज इस कार्यक्रम को आप सजा पा रहे। तो शुरू करेंगे हाँ कि ना? हाँ अच्छा चलिए, ऐसे इशारा से कह रहे अपना सिर हिला रहे हैं और कोई कोई तो ऐसे दिखाते हैं अंगुली जैसे अंगूठा, बोले ओके। तो चलिए ओके।

ओके ओके ओके। और बच्चों को तो रोकना पड़ता है क्योंकि समय का सीमा को देखते हुए आज के लिए हमें दीजिए इजाजत। फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय और किसी बात को लेकर। और खासकर आप सब मेरा श्रोता मित्रों और मेरा बच्चे जो भी इस कार्यक्रम को सजाए, सुनने वाले सुनाने वाले सभी को नाम का साथ धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं। इस तरह कार्यक्रम को सुनने और सुनाने में मदद किए तो आज के लिए हमें दीजिए इजाजत। फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय और किसी बात को लेकर। तो ये था खासकर रेबदर स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के होगनहार बच्चों का आवाज। सबको तो अच्छा लगा होगा और बुरा लगा होगा तो हमें खुद बताइए, मैसेज करके भेज सकते व्हाट्सएप के माध्यम से। हमारा नंबर है 9414151415। फिर से 9414151415, यानी 9414151415। ये रेडियो मधुबन का नंबर है जो आप व्हाट्सएप करके अपना भाव को दे सकते हैं। नहीं तो हमारा पर्सनल नंबर में भी आप फोन कर सकते हैं। और आपका गांव में, आपका स्कूल में, चाहे आपका गांव में कुछ ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है बा ऐसे समाज में जब बैठक होता है, रीति रिवाज को भी आप अपना साझा कर सकते हैं, हमारा साथ रूबरू कर सकते हैं। तो पर्सनल नंबर से भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं। कभी इस तरह कोई कार्यक्रम होता है तो उसको सीधा कवरेज करने के लिए शाम का समय में आप हमें सूचना दे सकते हैं इस नंबर पर, चाहे मैसेज के माध्यम से, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से, या कॉल के माध्यम से। 24 घंटा आपका सेवा में हम तत्पर रहते हैं। तो हमारा नंबर है 8302352272। अच्छा, सभी को धन्यवाद, आभार, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

महिला स्वयं में है शक्ति और इसलिए आपकी सुरक्षा है आपके हाथ ही। कभी भी कहीं भी अगर आपको किसी प्रकार के खतरे का आभास हो तो डायल करिए 1090 या 1091। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

होंगे हम तो विघ्न हार जाएंगे, विघ्न हार जाएंगे। शिक्षा बनेगी बल, स्वस्थ होगा कल। सहयोग की ईंटों से सफलता बने।

0: तरुवां।
1: कार्यक्रम वंदे मातरम। वंदे मातरम सुनने वाले सभी श्रोता बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। वंदे मातरम ऐसी नारी शक्ति पर आधारित है जिनके जीवन में काफी उतार चढ़ाव या कुछ अलग उनके जीवन की कोई कहानी होती है, लेकिन किसी को पता नहीं होता है कि नारी शक्ति के साथ जो घर में रह रही है या बाहर जो भी करती है तो उनके साथ इस तरह की परिस्थितियां भी आ सकती है। लेकिन इस कार्यक्रम के माध्यम से आप नारी शक्ति की शक्ति को भी पहचान सकते हैं, उसके स्ट्रगल को भी आप महसूस कर सकते हैं। तो ऐसी ही नारी शक्ति से आपको मिलवाने जा रही हूँ जिनका नाम है मधु राठौड़। आप गुजरात जूनागढ़ जिला बांटवा गांव के रहने वाले हैं। आपकी उम्र 52 वर्ष है। आपने 12th तक पढ़ाई की हुई है। सिलाई कढ़ाई बुनाई का आपको बहुत ही शौक है, कुकिंग का और विशेष करके सफाई का बहुत ही शौक है और अध्यात्म में गहरी रुचि रखते हैं। तो ऐसी नारी शक्ति से आपसे मिलवाने जा रहे हैं। मधु जी नमस्कार।
2: धन्यवाद जी,
1: बहुत बहुत स्वागत आपका रेडियो मधुबन में।
2: धन्यवाद
1: मधु जी। चलिए, आपकी उम्र 52 है, मतलब पिचपन के आसपास पहुंच चुकी है। और कहते हैं ना, पिचपन में जब बचपन की बातें करते तो बड़ा अच्छा लगता है, क्या कहेंगे?
2: बहुत अच्छा लगता है। तो जैसे कि मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती थी
1: जी,
2: तब से मुझे कुछ ऐसे लगा, बचपन से तो वैसे माँ बाप, हम 5, 3 बहनें हैं, 2 भाई है, छोटा सा परिवार है और माता पिता है, दादी थी। फिर दादी तो अचानक से हार्ट अटैक आया और चली गई। उसके बाद सत्संग चला था घर में, जैसे कि तो सत्यनारायण की कथा हर 11 को होती थी। तो मम्मी सब कहती थी कि जाओ आप ना, सबको जो सगे संबंधी है उसको कहना कि हमारे यहाँ सत्संग है तो आ जाना। फिर सबको वो फूल लाना, प्रसाद लाना, वो सब मम्मी मुझे देती थी कि आप वो करो। फिर तो सब लाते थे, फिर ना बरसात आई, ये सब इकट्ठा करते हैं पैसा और उसका कुछ बड़ा करना था। तो मैं तो छोटी थी, तो एकदम बरसात आई तो सारा पैसा ऐसे पास रहता है, 25 पैसे का 30 पैसे का
1: जी
2: हाँ, तो वो सब इकट्ठा किया हुआ था और घर की जो कांधी कहते मतलब माड़िया कहते उसमें लगा था। तो बरसात आने की वजह से जोरदार वो बिक गया। फिर सब वो सुखाया बहनों ने, मेरी 2 बहनें हैं और भाभी है, सब सुखाया। फिर तो मम्मी ने और सत्संग की जो मंडली थी ना, बड़ी पहली बार मेरी मम्मी ने ही वो सत्संग चालू किया। तो कहते हैं कि अब ना कुछ उसका नया करे, हमारे यहाँ जो राजपूत के मंडली होती है ना बहनों की, तो उसमें सत्संग में से जो इतने पैसे इकट्ठे हुए थे तो उसका कुछ अच्छा सा करे जो सबको काम भी आए उसमें।
1: चलिए मधु जी, सत्संग की बातें हम जरूर जानेंगे, पहले हम बचपन की बात जानना चाहेंगे। आप जैसे बता रहे थे कि 5 भाई बहनों, ठीक है, अच्छा आप 3 बहनें और 2 भाई हो, आपका नंबर कौन सा आता है?
2: मेरा लास्ट का नंबर 5वां।
1: तो आप तो सबके चहेते रहे होंगे।
2: बहुत बहुत बहुत चहेते रहे।
1: आपके पिताजी क्या काम करते थे उस समय?
2: वो किसान थे, किसान। पहले तो मैं जब से आई ना तब से तो हमने बहुत खेती देखी। इससे पहले कहते थे कि हमारे 7 थे ना घर में, जैसे 5 बच्चे और 2 माँ बाप और दादी, उसमें बहुत एकदम करकसर से जीवन था
1: जी जी, मुश्किल से हाँ, चल पाते थे गृहस्थी की।
2: हाँ, नहीं, पापा का यही एक सपना था कि मैं बड़ी खेती लूँ। इसके लिए उसने करकसर से हम सबको ऐसे सिखाया कि करकसर से रहोगे, लोभ से नहीं, करकसर से।
1: जी जी।
2: तो उसने 100 बीघा, मतलब अभी उसका पैसा होता है वो 15 करोड़ होता है, तभी कभी कुछ नहीं था, फिर भी पापा ने, हम काका कहते थे, हम साथ में रहते थे,
1: जॉइंट परिवार था।
2: हाँ, जॉइंट परिवार था, मतलब मेरे जो बड़े पापा के बड़े भाई वो साथ में रहते थे, उसका 6 बेटा
1: जी
2: हाँ, और साथ में रहते थे। तो साथ में रहने की वजह से जो बड़े बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं
1: जी, काका बोलते हैं और बड़े पापा के बेटे,
2: हाँ पापा के बड़े भाई, उसको हम अदा बोलते हैं गुजराती में
1: जी।
2: तो वो अदा का सब बच्चे इकट्ठे रहते, तो वो मेरे पापा को काका कहते थे, तो हम भी काका ही कहते, लास्ट तक काका किया। तो काका का यही सपना था और मुझे बहुत पढ़ाया उसने, सब हमारे भाई बहन है ना, उसमें से मुझे ज्यादा पढ़ाया।
1: अच्छा, बाकी आपसे सब कम पढ़े लिखे हैं?
2: सब कम पढ़े लिखे,
1: भाई भी?
2: भाई भी।
1: तो सब क्या करते, खेती का काम?
2: हाँ, सब खेती का ही काम करते।
1: तो आपके सामने 100 बीघा जमीन का जो आपके पिताजी का
2: वो बनाया उसने अपने।
1: संकल्प था तो लिया?
2: हाँ, वो पूरा किया। पहले ऐसा नहीं था, फिर पूरा किया। फिर उसको तो इतना उमंग आया। उसके बाद सब, पहले भाई की शादी हुई, बड़े भाई की। उसके बाद तीन तीन के साथ में हुई और मेरी अकेली हुई।
1: अच्छा, आपकी शादी की बात तो जरूर करेंगे, लेकिन बात कर रहे थे आपके बचपन की, कि इस तरह आपके पिताजी खेती का काम करते थे, किसान थे। आपके माताजी भी कुछ करते थे?
2: हाँ, घर का काम करती थी और खेत में पिताजी को बहुत साथ देती थी। सारा पूरा काम करके, अपना बाता बना करके, और मुझे कहती थी कि आप ये घर संभालो, और पढ़ाई करने के बाद हम आएंगे तो आपको ये खिचड़ी बना के रखनी है, ये सफाई करनी है, और चूल्हा चूल्हा ये सब कुछ अच्छे से रखना है, ताकि आए तो सिर्फ हमें सब्जी और रोटी दोनों ही बनानी है, और पूरा घर का ख्याल रखना है, बाहर सब आपको करना है। और फिर आप ये सब पढ़ाई करने के बाद फिर पेड़ाई कर लेना और सफाई कर लेना। तो मम्मी भाता बनाकर, मतलब रसोई बनाकर जाती थी।
1: जी
2: हाँ, और साथ में पिताजी को बहुत बहुत साथ देती थी।
1: तो आपके भाई बहन भी जाते थे खेत में?
2: सब जाते थे, सब के सब।
1: आप अकेले घर पर रहते?
2: हाँ, मैं अकेली घर पर रहती। मैं डरती नहीं थी। मेरे से जो तीसरे नंबर की बहन है ना, जैसे हम तीन बहन हैं, तो तीसरे नंबर की बहन के, वो अकेली नहीं रहती थी। वो डरती थी, वो कहती थी मैं अकेली नहीं रहूंगी। मम्मी बहुत कहती थी कि आप रहो इसके साथ। फिर मैं कह देती हूँ कोई बात नहीं मम्मी, आप जाओ उसको भी ले जाओ, मैं अकेली रहूंगी। और मैं बहुत बड़ा था तो मैं उसमें अकेली रहती थी और सब काम कर लिया करती। और मम्मी मुझे ऐसी शाबाशी देती, देखो तो आपसे छोटी है तो भी वो अकेली रहती है, और सारा डरती भी नहीं है। कोई आते हैं तो ऊपर से देख लेती हूँ कि कौन आया है। अगर कोई हमारा संबंधी आते हैं तो मैं खिड़की खोलती हूँ, अगर कोई और है तो खिड़की भी नहीं खोलती। ऐसे में बहुत तैयार थी, तो मम्मी और पापा दोनों की चाहती थी।
1: जी
2: पापा पापा तो हमें साथ में ही सुलाते थे। वो तो मेरी सगड़ी है, जैसे बोलते। मैं इतनी गर्म रहती हूँ ना, तो वो खेत में से आते और पापा को मैं पानी देती हूँ, कुछ खाने को देती हूँ, तो पापा की बहुत चाहती थी। छोटी थी इसलिए बहुत बचपन प्यार से ही गुजरा, और सबका, भाई बहनों का अभी तक प्यार मिल रहा है।
1: जी जी
2: हाँ,
1: जी
2: बहुत प्यार मिल रहा है।
1: जी
2: और अभी वो पे दुलार देते तो कहते हैं कि तुम बड़ी भाग्यशाली हो, ऐसे कहते हैं अभी भी।
1: जी जी वो कहते हैं ना कि नमे सौने गमे, गुजराती कहावत है। तो
2: हाँ,
1: आपके अंदर नम्रता थी, तो आप सभी के दिलों पर राज करते थे।
2: अभी भी कर रही हूँ। और
1: बचपन से जो स्वभाव संस्कार जो हमारे अंदर पड़ जाते हैं, वो लाइफ टाइम चलता है।
2: हाँ, वो आगे ज्यादा हो जाता है बढ़कर। तो बचपन ऐसे ही गुजर गया, पता ही नहीं चला कि देखो सबने इतना साथ दिया। और मैं मेरा उत्साह और उमंग बहुत बढ़ाते थे भाई बहन है,
1: जी
2: जो मेरे से चारों भाई बहन है ना, बहुत उत्सव उमंग बढ़ाते थे। जैसे कि खेतों में बुनाई होती है, कटाई होती है, वो हम एक दो मजदूर रख करके हम स्वयं करते थे।
1: अच्छा,
2: मजदूर चार आते थे, वो चार बहनें आती थी, दो बहनें अपनी और दो भाई उसके, वो चार ही आते थे, और हम सब मिल करके ये सारा खेत संभालते थे।
1: सौ
2: तो
1: सौ बीघा जमीन में?
2: हाँ, सब
1: अच्छा,
2: मजदूर नहीं, ना कोई किराए का रखा, रात में कोई नहीं, सब अकेले ऐसे ही करते थे। तो हमने बचपन से यही सीखा कि मेहनत करो, और मेहनत से आगे बढ़े। और पापा का तो बहुत था कि ये ले वो ले, बहुत था को ना, मेहनत में बहुत विश्वास था।
1: जी चलिए मधु जी, आपसे और भी बातचीत करेंगे, आपके अनुभव और भी सुनेंगे, लेकिन समय हो चला है यहाँ पर एक गीत सुनने का। तो एक गीत सुन करके पुनः लौट रहे हैं, कहीं जाइएगा नहीं। मधु जी के अनुभव बहुत ही अच्छे हैं जो हम फिर से सुनेंगे। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: बहू बहू जल्दी तैयार हो जा, हमें डॉक्टर के पास जाना है।
1: जी आई माँ जी।
0: अरे जल्दी कर, इतनी देर से अभी अभी लगा रखा है।
1: जी माँ जी आ गई, चलिए।
0: नमस्ते डॉक्टरनी जी।
2: नमस्ते नमस्ते, बैठिए। जच्चा बच्चा दोनों ठीक है?
0: डॉक्टरनी साहिबा, हमें अपनी बहू का वो क्या कहते हैं जो टीवी पर देखकर पता चल जाता है कि लड़का है या लड़की, अपनी बहू का पता करना है।
2: सोनोग्राफी? मगर क्यों?
0: लड़की हमको नहीं चाहिए ना, इसलिए अगर पता चल जाएगा तो तुरंत निपटा देंगे।
2: मगर ऐसा करना तो गलत है। और बहू क्या तुम भी यही चाहती हो?
1: जी वो
0: न, न, अरे तू चुप रह बहू, तू क्या जाने।
2: देखिए भ्रूण हत्या एक कानूनन जुर्म है, इससे आपको उम्र कैद भी हो सकती है। और आजकल तो लड़कियां लड़कों से आगे बढ़कर काम कर रही हैं, जैसे सुनीता विलियम, कल्पना चावला, इंदिरा गांधी और मैं खुद एक सफल डॉक्टर हूँ।
3: आजकल हमारे समाज में भ्रूण हत्या तेजी से बढ़ रही है, उसे हमें रोकना होगा। यह कानूनी अपराध है, इसके लिए आप सभी को उम्र कैद भी हो सकती है।
4: बेटी वो खुशबू है जो आंगन महकाए, बेटी वो खुशबू है जो आंगन महकाए, हर रिश्ते में अपनापन जगाए, नन्हे कदमों से सपने बुनती, घर को स्वर्ग सा बना जाए, घर को स्वर्ग सा बना जाए। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदे मातरम, और वंदे मातरम में ऐसी ही बेटी जुड़ी हुई है, ऐसी ही मातृशक्ति जुड़ी हुई है, मधु राठौड़, जिनके अनुभव हमने सुने हैं। इसी कड़ी में और भी आगे बढ़ेंगे। मधु जी पुनः स्वागत है आपका वंदे मातरम कार्यक्रम में।
5: जी थैंक यू जी।
4: तो मधु जी आपके बचपन की बातें चल रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा स्कूल की बातें बताएंगे कि आपके टीचर्स के साथ, सखियों के साथ कैसा व्यवहार रहा?
5: हाँ मेरी सखिया भी बहुत बढ़िया थी, एक सखी तो बहुत अच्छी थी, मैंने उसे अपना माना था, उसका वो अलग था। फिर मैंने पहले आठवीं पढ़ी तो मम्मी होली का त्यौहार था, जैसे अभी होली आ रही है, तो होली का त्यौहार था तो मम्मी ने कहा कि अब ना सारा रसोई या भाता बोलते हैं ना, वो भाता कर रही हूँ, तो अपना आज जाओ शिव के मंदिर पर। और वहाँ से गुजरात में ये होता है कि बड़ा शिवरात्रि का महत्व होता है, शिवरात्रि के दिन उपवास करते हैं और भांग का प्रसाद मिलता है, और बड़ी उत्साह उमंग से शिवरात्रि पूरा दिन रहते हैं। और शिवरात्रि के दिन खाना कुछ नहीं होता है, सिर्फ थोड़ा सा फ्रूट लेना है, दूध लेना है, और वो प्रसाद लेना जरूरी है। तो प्रसाद नहीं माता जी लाई थी, तो उसने कहा आप जाओ तो मुझे मंदिर भेजा। तभी एक आध्यात्मिक प्रदर्शनी मिली और मैं आठवीं कक्षा में वो प्रदर्शनी देखी। तो वो प्रदर्शनी पहले तो कुछ समझ में नहीं आई, बाद में इतनी मन को भा गई कि बार बार वही आध्यात्मिक मार्ग पर चलने लगे। इसमें इतनी लगती थी कि मैं ही वही देवी हूँ, और मुझे इतना अच्छा अनुभव होने लगा कि मैं बस इसी मार्ग पर चलूँ। घर पर आई, प्रदर्शनी देखी, तो उस प्रदर्शनी में सुना कि मैं कौन हूँ, वही बहुत अच्छा लगा। फिर पहले तो कुछ समझ में नहीं आया, और माता जी तो चली गई खेत में, और मैं घर पे, तब स्कूल पे रजा होती है तो घर पे हूँ, घर पे थी। उसके बाद आध्यात्मिक में मेरा जुड़ाव बहुत रहा, मैं बहुत अच्छा लगता था कि मैं आध्यात्मिक में कैसे आगे चलूँ। फिर हर ग्यारस के दिन और पूनम के दिन मेरी माताजी कथा करती है, सत्संग सब बहनें आती है, सत्संग की 50 बहनें होती है, तो माताजी सत्संग में होने के कारण मैं इतनी आध्यात्मिक रही पहले से। भक्ति भाव उसमें प्रसाद होता है, महाप्रसाद की बहुत महिमा होती है सत्संग में, सत्यनारायण की कथा वो सत्संग, फिर पाठ पूरा हो जाता है, 5 अध्याय होता है, पूरा होने के बाद प्रसाद सबको बांटते।
4: अच्छा तो आप अध्यात्म में चलने लगे, तो फिर घर में किसी ने विरोध तो नहीं किया?
5: जी छोटी थी तब तो किसी ने विरोध नहीं किया, पर ऐसे कहा कि अच्छा है, मम्मी अध्यात्म से जुड़ी थी तो अध्यात्म में बहुत रुचि थी मेरी पहले से ही।
4: तो भक्ति के संस्कार आपको बचपन से?
5: बचपन से
4: जी। और आठवीं से आपको थोड़ा अध्यात्म स्पिरिचुअल नॉलेज मिल गया?
5: स्पिरिचुअल नॉलेज मिल गया।
4: अच्छा, मैं स्कूल की बात कर रही हूँ कि आपकी सखियों के साथ कैसा था?
5: सखियों के साथ तो इतना मैं सखी नहीं करती थी, मुझे ऐसे अध्यात्म में अच्छा लगता है बस।
4: अच्छा, ये बताइए आप स्कूल में कोई पार्टिसिपेट करते थे जैसे गाने? हाँ, में
5: हाँ, जो में? कोई स्पर्धा होती है, कोई भी स्पर्धा होती है तो पहले तो मैं लींबू चमची में वो स्पर्धा किया ना, तो मेरा वो उसमें फर्स्ट नंबर आया, पहला नंबर आया, जो अच्छा लगा कि आगे बहुत बढ़ना चाहिए, उत्सव उमंग बढ़ा। जैसे पहले नंबर आए ना तो अंदर से लगा कि बहुत आगे मेहनत करनी चाहिए, फिर तो आगे आगे नंबर आता ही गया।
4: अच्छा, तो हर साल आप भाग लेते थे?
5: हाँ, हर साल भाग लेते।
4: अच्छा, और डांस गरबा ये भी करते थे?
5: हाँ, गरबा करते, डांस तो अकेले अकेले करते।
4: तो करते थे अकेले स्टेज पर?
5: हाँ, अकेले अकेले स्टेज पर करते थे, पर थोड़ा हिचकिचाते पर कर लेते थे, फिर बाद में एक भी किया फिर तो अच्छा लगा तो करते रहते थे डांस भी।
4: कभी टूर्नामेंट में भी गए? गेम्स में कोई गेम्स खेलते थे?
5: गेम्स तो नहीं खेली।
4: अच्छा, पढ़ाई में कैसे थे आप?
5: पढ़ाई में बहुत बढ़िया था, और एक फोकस था कि आगे बढ़ना है, मतलब इतना तो लाना ही है, तो पढ़ाई में भी रुचि बहुत रही। दसवीं में भी बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, बारहवीं तक, पर बारहवीं तक में तो मेरी शादी हो गई थी, मैं बारहवीं तो वहाँ ससुराल में किया।
4: अच्छा, बारहवीं पढ़ रहे थे और शादी करवा दी?
5: हाँ, बारहवीं में तो मेरा जो रिजल्ट आया ना वो ससुराल में आया, पढ़ाई तो वहाँ, शादी तुरंत कर दी।
4: तो आपका ससुराल कहाँ है?
5: ससुराल भी वही बांटवा में ही है।
4: बांटवा में ही? कितना बड़ा शहर है बांटवा? शहर है या गांव है?
5: वैसे शहर भी कहो तो शहर भी है और गांव भी है,
4: तो वहीं पर आपका पियर भी और ससुराल भी? ससुर
5: गांव में, सब कई बाहर गई नहीं, रेल तो मैंने कहीं देखा नहीं, आध्यात्मिक में रहे और गांव में ही शादी हो गई।
4: तो आप बता रहे थे कि छोटे थे तब तो कोई विरोध नहीं करते थे, तो शादी के समय किसी ने विरोध किया क्या?
5: नहीं, फिर तो युगल को मैं आध्यात्मिक में ले गई तो उसको भी अच्छा लगा, फिर विरोध होगा आध्यात्मिक में,
4: फिर क्या हुआ? विरोध हुआ?
5: हाँ, ससुराल में कहते हैं कि नहीं, हम कोई पकड़ बकड़ नहीं है, हम आध्यात्मिक में नहीं चल सकते, अब तो हमें बेटा चाहिए बेटी चाहिए, ऐसे आप शादी की है तो ये करना है वो करना है।
4: कौन बोलता है?
5: सास ससुर बोलता है, पर हमारे में लाज प्रथा थी, घूंघट निकालने की प्रथा थी
4: जी।
5: तो मेरे पापा ने ही शादी के वक्त किया था कि आप घर जाके घूंघट उठाओ, वो अलग बात है, हमारे यहाँ तो शादी होगी तो घूंघट में ही होगी
4: जी।
5: पापा जी ने यही बोला था, और माता जी और बड़ी दो बहनें हैं वो भी अच्छे से शिक्षा देती रही कि हमें अपने मर्यादा में ही रहना है, कभी इधर उधर पाँव ना जाए, फिसल ना जाए, वो बड़ा ध्यान रखना है किसी के साथ, बहुत सारी हमें मदद की बातें मिली उसी से
4: जी।
5: बड़ी दो बहनें थी उसी से सब मिला।
4: तो फिर ससुराल में सब कैसे रहते थे? शादी के बाद आपके जीवन में क्या बदलाव आया?
5: सासी तो घूंघट निकालते थे और बहुत स्ट्रगल हुआ।
4: मतलब आपके हस्बैंड आपका सपोर्ट करते थे?
5: तभी तो करते थे, पर जब आध्यात्मिक में जुड़ी, आध्यात्मिक में मेरा मन रुचि लगी, तभी विरोध हुआ।
4: तो आपने कहा कि आपके हस्बैंड तो आपके साथ जाते थे
5: पहले, उसने थोड़े टाइम किया, थोड़े टाइम वो मेरे साथ चले, मैंने कहा प्यार से उसे बोला ना कि चलो हम जाते हैं, इसमें आध्यात्मिक में क्या बहुत अच्छा है लगता है, वो सत्संग में जाने लगे, अब मेरे साथ आए, उसमें साप्ताहिक होता है कोर्स, उस वो किया उसने, और उसके बाद विरोध किया, और घर में तो जाते हैं तो सबको पता चलता है ना ससुराल में, तो मैं कह कर के जाती थी कि मैं सत्संग में जा रही हूँ, तो फिर आने के बाद सबको अच्छा नहीं लगता है, मैं अपना काम टाइम पर करती थी, सबको बहुत प्यार से रखती थी, फिर भी उसको ये अच्छा नहीं लगता था।

0: दस जने रहते थे, चार भाई है, दो बहनें हैं, दो ननद है और सास ससुर है, जेठ जेठानी, उसके तीन बच्चे
1: जी जी
0: बच्चे थे। हाँ
1: तो इतना बड़ा परिवार था, आप कह रहे 10 जने थे, इतना बड़ा परिवार रहते थे साथ में।
0: हाँ, सबका काम भी हमें ही करता है, ऐसे कोई काम का भाग नहीं हुआ था, सब इकट्ठे काम करते थे। और मैं तब पानी की तंगी थी तो खेत में जाकर के कपड़े धोने होते हैं।
1: जी जी
0: हाँ,
1: जी
0: और वहाँ नहाने का सब सब मना होता है, नहाते नहीं थे, कहते कि नहीं हम थोड़ा ब्राह्मण लोग है, हम ब्राह्मण लोग नहीं है, वो क्या बोलते हैं, ब्राह्मण लोग नहाते हैं, हम नहीं नहाते। तो दो तीन दिन में नहाने देते थे और जैसे कि चलता था।
1: अच्छा, नाने रोज नहीं देते थे और आपको
0: नहीं,
1: स्वच्छता पसंद है तो फिर क्या करते हैं?
0: फिर मैं तो नहाती हूँ तो उसको विरोध होता है कि ये कैसी है ना, उसको अच्छा नहीं लगता है। वो कहते बोलते थे ना कि नहीं नाना नहीं है, हम थोड़ा ब्राह्मण है, ब्राह्मण होते ही वो नाते थे इस।
1: जी चलिए मधु जी, आपके और भी अनुभव सुनेंगे लेकिन यहाँ पर समय हो चला एक ब्रेक लेने का, तो एक ब्रेक लेकर के पुनः लौट रहे हैं। कहीं जाइएगा नहीं, कार्यक्रम अभी बाकी है, तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: मेजोरिटी पीपल सिर्फ अगर अपने जीवन और अपने मन की एक्सरे करनी है उस क्षण चेक करें जब सुबह उठते हैं। अगर सुबह उठते ही फर्स्ट थॉट आती है कि मुझे थोड़ा और सोना है, इसका मतलब मेरी जो 6 घंटे के 8 घंटे की नींद थी मेरी उसमें रेस्ट और रिचार्जिंग नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? शरीर सो रहा था लेकिन मन अभी भी कंटिन्यूसली चल रहा था। मन की बात का समाधान नहीं मिला उसको। अब हमारा मन अगर उसको उसकी बात का समाधान नहीं मिलता है तो वो 5 दिन नहीं 5 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ, 50 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ। और अगर फिर भी समाधान नहीं मिला तो आत्मा शरीर छोड़ेगी, दूसरा शरीर लेगी और वो ही सोच और संस्कार अपने साथ लेकर जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: बेटी जब आगे बढ़ती है तो कुल खानदान रोशन होता है। बेटी जब आगे बढ़ती है तो कुल खानदान रोशन होता है। उसकी एक मुस्कान से ही पूरा समाज प्रोत्साहित होता है। उसकी एक मुस्कान से ही पूरा समाज प्रोत्साहित होता है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदे मातरम और वंदे मातरम में मधु जी हमारे साथ बने हुए हैं। आइए, इनके अनुभव हमने काफी कुछ सुने हैं, इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे। तो मधु जी, जैसे आपकी शादी हो गई, आपको अध्यात्म में गहरी रुचि थी, सत्संग में आप जाते थे, ससुराल में फिर आप जाने लगे तो विरोध होने लगा, फिर आप रोज नाते तो नाने का भी विरोध होने लगा, तो पानी कहाँ से भर के लाते थे? घर पर नल था?
3: हाँ जी, नल तो था, पर ऐसे भी सबका मन भी देखना है ना। उसका मन नहीं है और हम ना रहे फिर भी नाना ही है, जरूरी है। फिर नहाते थे, नाना तो जरूरी लगा, तब भी लगा और अब भी लग रहा है।
2: नाते और रोज डांट खाते?
3: रोज डांट भी खाते, और उसको हम अच्छे नहीं लगते थे। क्यों? नहाने के लिए मना करते और हम नहाते, तो संबंध ऐसे प्यार से नहीं रहता है।
2: आपके हस्बैंड के साथ?
3: हाँ, वो तो बहुत अच्छे थे, अभी भी अच्छे है।
2: तो कौन मना करता है?
3: सासू, जेठानी, वो कहते कि नहीं नाना है, ये क्यों नाना है इसे।
2: तो फिर साथ में ही रहे या अलग हो गए?
3: नहीं, फिर तो साथ में रही, जब तक पहली बेटी आई, दूसरा बेटा आया, तब तक साथ थे।
2: अच्छा, आपके हस्बैंड क्या काम करते थे उस समय?
3: वो होम गार्ड में थे, अभी तो रिटायर हो गए।
2: अच्छा, तो आपके गांव में थे?
3: हाँ, गांव में ही सेवा होती है ना सरकारी होम गार्ड की, जैसे पुलिस के नीचे।
2: जी जी,
3: कॉन्स्टेबल के नीचे होती है।
2: अच्छा, तो जैसे आपका मायका भी वही था और
3: ससुराल भी गांव में?
2: जी, जैसे आप बता रहे थे कि कपड़े धोने आप खेत में जाते थे, तो पानी की कमी थी तो आपके मायके में भी कपड़े धोने आप खेत पर जाते थे?
3: जी नहीं, वहाँ तो घर पे ही था सब कुछ, घर पे ही कपड़े धोते थे, पर ससुराल में ना दुष्काल हुआ तो वहाँ थोड़ी तंगी हुई पानी की, तो कहते कि आप खेत में जाओ। तो मैंने तो जैसे शादी की आई और तुरंत कपड़े या जो चद्दर वो रजाई होती है ना, एक साथ 18 रजाई धोई, एक दिन भी मैंने बैठी नहीं हूँ।
2: इतना काम करते थे?
3: एक दिन भी बैठी नहीं हूँ, जैसे आज इधर पांव रखा, शाम को शादी करके आए, सुबह सब बोलने लगे इतना काम है, इतना काम है, वो है, इतना धोना है। तो मैंने सीधा कहा चलो मैं आती हूँ, मैं और मेरी जेठानी साथ में गए। फिर एक दिन आई, दूसरे दिन तो सास बोलने लगी कि इतना काम मैं अकेली क्या करूँगी, तो वो तो घर पर रही रसोई के लिए और मैं अकेली गई
2: कपड़े धोने।
3: हाँ,
2: तो शादी होते ही आपके काम में लगा देते हैं, नई नई बहू आई तो थोड़ा लाड़कोड़ भी तो करते हैं ना?
3: करते हैं ना, अभी हम भी कर रहे हैं, हमारी भी बहू है, हम भी बहुत करते हैं, क्योंकि ऐसे आध्यात्म में जाते हैं ना तो जैसे हम पर बीती है ना उस पर ना ही बीते, उसको तो इतना लाड प्यार करते, उसको तो आप करके, आप अभी भी मैं, मेरी बहू है, उसको आप कहकर ही बुलाती हूँ
2: जी,
3: उसको ऐसे तुकार के नहीं बुलाते, प्यार से ही उसे बुलाते, अगर बुलाना है तो प्यार से ही बुलाते।
2: जी जी। अच्छा, तो जैसे आपका काम में लगा दिया तो आपके मायके वालों ने कुछ नहीं कहा?
3: नहीं नहीं, माँ पापा का तो यही था कि मेहनत करो, मेहनत आपको जगह दे, मेहनत से ही आगे बढ़ना है ना।
2: तो इतना आप काम करते थे तो सास ससुर प्यार करते थे आपको?
3: नहीं, अपना अपना तरीका होता है ना, अपना अपना नजरिया होता है,
2: अच्छा, किसी का प्रेम नहीं मिला?
3: नहीं, आध्यात्मिक में बहुत रुचि इसलिए तो जगी ना।
2: अच्छा, तो इसलिए आपको थोड़ा सत्संग से प्रेम बढ़ा?
3: हाँ, प्रेम और बढ़ा।
2: फिर कितने समय में आप पियर जाते थे?
3: पियर तो गांव में ही था, क्योंकि वहाँ खाना मुझे, वहाँ तेल बहुत लगता था सब्जी में, और मायके में तेल नहीं था तो साग भाजी में मायके ही खाती थी। अब माता जी मेरी और मेरी भाभी थी, सब कहते थे अच्छा आपको अच्छा नहीं लगता, यहाँ खा लो, और खा करके वहाँ जाती हूँ ससुराल में।
2: तो रोज जाते थे खाना खाने?
3: हाँ, वहाँ रिवाज है, गांव में जो शादी होती है ना वो 4 बजे या 5 बजे मायके में रोज जाती है।
2: अच्छा,
3: अभी भी
2: टाइम मिल जाता है?
3: नहीं, टाइम निकालते, वो रिवाज हो गया है।
2: तो 5 बजे जा करके खाना खा के वापिस आ जाते हैं?
3: हाँ।
2: फिर ससुराल में खाना नहीं खाते थे?
3: नहीं, सब्जी में बहुत तेल होता है, कोई स्वाद नहीं। तो क्या,
2: तो आप नहीं बोलते कि सब्जी में थोड़ा तेल कम डालो, या आप खुद नहीं बनाते?
3: नहीं, सबको यही पसंद है, मेरी पसंद नहीं है तो इसमें क्या बड़ी बात है, हम मैं खा लेते।
2: नहीं तो जैसे नहीं कहते कि आपके चाहिए उत्ती अलग से बना दो?
3: अलग कोई नहीं बनता किसी का।
2: अच्छा, तो इस तरह आपके जीवन यात्रा रही। तो वो कहते हैं ना, गांव में पियर और गांव में ससुराल है, तो थोड़ी मुश्किल तो रहती है बैलेंस बनाने में। तो मुश्किल रहती थी आपके जीवन में भी?
3: हाँ, पर अध्यात्म में बहुत रुचि थी ना, तो मुश्किल नहीं लगा
2: जी। अच्छा, और आप बोल रहे थे कि आपके हस्बैंड का आपको सपोर्ट मिलता था?
3: तभी मिलता था, फिर वो आध्यात्मिक में जुड़े तो थोड़ा कम हुआ, फिर ससुराल में सास ने और बोला कि अब तो 3 साल हो गए, तो 3 साल में तो बच्चा होना चाहिए। मैके में भी यही कुछ रिस्पांस नहीं मिला, तो फिर तो बेटी हुई। बेटी हुई तो जेठानी थी वो खेत में चली जाती थी, पूरा काम मेरे पर आ जाता था, जैसे गायों को दोना, भैंस रखते थे इसको दोना, सब काम करना और बच्चे को रखना। थोड़ा ज्यादा सासू का साथ था, सासू थोड़ी बेटी को रखती थी, साथ में थे ना जॉइंट फैमिली में
2: जी,
3: तो रखती थी।
2: दूसरे और कोई सदस्य नहीं थे परिवार में?
3: हाँ थे ना, वो है, एक चूल्हे पर ही रसोई बनती थी, पर यहाँ से कटोरी में लेकर वो अपने घर में खाती थी, वो मेरी सास की सास थी ना वो।
2: अच्छा, तो मधु जी जैसे आप कह रहे थे कि आपको सत्संग का शौक था, इस वजह से परिवार वाले आपको सपोर्ट नहीं करते थे और काम की जिम्मेवारी काफ़ी रहती थी आपके ऊपर, और फिर आप कह रहे थे कि बच्चे होने के बाद आप अलग हो गए, तो सभी अलग हो गए, जेठानी, आप या फिर सास ससुर के साथ रहते थे आप?
3: सभी अलग हो गए, देवरानी भी अलग हो गई, मैं भी, फिर तो देवर की शादी हुई उसके बाद 1 साल में सब अलग हो गए
2: जी। फिर तो आपको सत्संग में जाने से कोई नहीं रोकता था?
3: नहीं, कोई नहीं रोकता था, मैं चुपके से ही जाती थी सत्संग में। वो जो मेरे पति है ना, उसको जाना अच्छा नहीं लगता है, फिर मैं अपना ढूंढती थी अंदर से कि भई क्या मेरी कमी है, मेरा कोई काम छूट ना जाए, उसको बराबर से टाइम देती हूँ, उसका खाना पीना सब काम करना।
2: अच्छा, आप सारा काम करते थे और भजन कीर्तन भी करते थे?
3: साथ में बहुत भजन कीर्तन साथ में ही रहता था।
2: अच्छा, और आप क्या करते थे?
3: कभी सिलाई करते थे? हाँ, बच्चों को पढ़ाई में।
2: आपको सिलाई का भी शौक रहा, तो सिलने में आप क्या क्या सिलते थे?
3: ब्लाउज सिलते थे, ड्रेस सिलते थे, सिलाई का काफी शौक था, मैं ब्लाउज भी बना लेती थी और अपना पूरा जो भी है वो सब मैं सिलाई कर लेती हूँ।
2: जी जी, तो आप जैसे सास जेठानी देरानी सबके साथ रहते थे, वहां पर भी सिलाई करते थे या अलग होने के बाद शुरू?
3: अलग होने के बाद, साथ में तो टाइम ही नहीं मिलता था क्योंकि 10 जने का काम था,
2: इसलिए आप अलग होने के बाद सिलाई का काम शुरू किया। तो आप अपना ही सिलते थे या मोल का भी सिलते थे?
3: मैं अपना ही सिलती थी, फिर दो थे, भैंस थी और खेत थी। अलग होने के बाद तो खेत को संभालना होता है, सुबह 8 बजे बाता बना करके 8 बजे निकल जाना, 1 घंटे का चलने का खेत दूर थी।
2: अच्छा,
3: तो वहाँ पहुँच के आध्यात्मिक में रुचि थी ना, तो वहाँ भी मैं पढ़ लेती थी, कुछ भजन भजन कर लेती थी।
2: वहाँ भजन किसके साथ करते थे?
3: ऐसे अपने ऐसे मन से। तो जब मजदूर आते ना, उससे पहले मैं पहुँच जाती थी।
2: अच्छा,
3: हाँ।
2: तो आपके हस्बैंड भी जाते थे?
3: वो दोपहर को रोटी लेकर आते थे, उसको क्या भाता बोलते हैं। हाँ, तो वो भात लेकर के आते, मैं अपने भाता लेकर के जाती थी सुबह, और बच्चों को मेरी माँ रखती थी।
2: अच्छा,
3: अलग होने के बाद।
2: जी जी
3: हाँ। और शाम को आती थी चल करके, साइकिल भी नहीं कुछ नहीं था, चल के आना चल के जाना, तो एक घंटा तो हो जाता है आने जाने में, दो घंटा।
2: तो खेत में क्या करते थे आप, कुछ बोते थे?
3: बोते तो वो
2: बुआई आप ही करते या मजदूर करते, आप देख रेख करते?
3: बुआई तो उसी से होती है, ट्रैक्टर से होती है।
2: जी,
3: पहले तो बेल था ना, बेल से होती बुआई तो। फिर उसमें सफाई होती है ना, वो हम करते थे।
2: अच्छा,
3: उसके बाद बड़े होकर के कटाई होती है ना, जैसे मूंगफली को पाड़ते हैं, भेगी करते हैं जैसे।
2: जी, खटी करते हैं और हाँ, फिर उसकी मिट्टी हटाते हैं।
3: हाँ,
2: मतलब खेत के काम में आप व्यस्त?
3: सारे काम, सारे काम करते थे।
2: जी जी
3: जो मजदूर वाला होता है ना, वो सारा काम करते थे।
2: जी जी और पढ़ाई में आपको शौक था, और उसी गांव में आपकी शादी हुई, तो आपके टीचर लोग नहीं कहते कि क्या तू इन कामों में लग गई, पढ़ाई कर लेती तो अच्छा रहता?
3: टीचर बहुत अच्छी थी, पढ़ने जाते थे तो भी वो ऐसे वार्ता बोलते हैं, ऐसे ही पढ़ाई की भार नहीं दिया, भणतर में तो बहुत अच्छा।
2: जी जी आप इस तरह खेत में जाते, खेत में आते, आपका टाइम पूरा हो जाता, फिर सिलाई कब करते हैं?
3: सिलाई तो मैं जिस दिन नहीं जाना होता है ना, तब करती हूँ, और कभी कभी तो खाने पीने के बाद टाइम निकाल करके जो बनाना है ना, वो मन से बना लेती हूँ, करना है कि यही करना है, यही चाहिए घर में और अपने पहनने में, तो रात को भी मैं सिल लेती थी।
2: अच्छा, जब जरूरत पड़ी कि हाँ मेरे को इस तरह के कपड़े चाहिए, तो आप खुद का सिल लेते थे?
3: खुद का सिल लेते।
2: चलिए, बहुत अच्छी बात है मधु जी, आपके अनुभव और भी सुनेंगे, लेकिन फिर से समय हो चला एक गीत सुनने का, तो एक गीत सुन करके पुनः लौट रहे हैं, कहीं जाइएगा नहीं, मधु जी के अनुभव और भी बाकी है, तो बने रहिएगा कार्यक्रम वंदे मातरम में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

मैं हूं अवधेश पंडित, जीएम फाइनेंस बेसिल, और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते

0: नारी की हंसी में ईश्वर बसता है, नारी की हंसी में ईश्वर बसता है, उसकी बातों में सच्चाई रहती है। जो नारी का मान रखे उसकी हर राह उजली रहती है, उसकी हर राह उजली रहती है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदे मातरम, और वंदे मातरम में मधु जी हमारे साथ बने हुए हैं। मधु जी के काफ़ी अनुभव सुने हैं, और भी हम कहना चाहेंगे, मधु जी आप पूरे जीवन, अभी तक 52 साल की उम्र है तब तक आप पाटवा गांव में ही रहे, उससे बाहर आपका जाना नहीं हुआ
1: कभी नहीं।
0: तो जैसे आपकी दो बहनें बड़ी है, कभी उनके यहाँ जाना हुआ होगा?
1: एक तो गांव में ही है, एक बाजू में मजेठी है, वहाँ है।
0: अच्छा, पास पास में ही है।
1: हाँ, कभी कभी जैसे कि प्रसंग होते हैं, उसकी बेटे की शादी है, बेटी की शादी है, तभी जाना हुआ।
0: जी, और आप कभी ट्रेन में बैठे ही नहीं?
1: नहीं, पहली बार एक आध्यात्मिक ही बैठे।
0: हाँ, पहले जब आप रहे अपने ससुराल में तब तक ट्रेन में नहीं बैठे?
1: ट्रेन देखा ही नहीं था, दूर बाटवे में तो ट्रेन नहीं है, जूनागढ़ से।
0: जूनागढ़ से मिलती है। अच्छा, और जैसे अब आपकी उम्र 52 साल की है, आपके भी बच्चे बड़े हो गए हैं, बहू भी आ गई है, बेटी की भी शादी हो गई होगी?
1: हाँ, बेटी की भी शादी हो गई है, वो उसका भी दो बेटी है, बेटा है छोटा।
0: अच्छा, तो आप नहीं पढ़ पाए तो आपने अपने बच्चों को पढ़ाया?
1: बहुत खूब पढ़ाया, यहाँ तक कि उसको तो नौकरी भी दिलाई, यहाँ तक
0: बेटी को?
1: बेटे को भी। अभी बेटा भी है, वो लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर वहाँ पाजोद में है।
0: अच्छा, दोनों बच्चे जॉब करते हैं आपके?
1: हाँ, बेटी नहीं करती, बेटी को तो अच्छा ससुराल मिला है तो उसको नहीं करने देते, पर अब वो विदेश जाने वाली है।
0: जी, शादी हो गई और बेटा जॉब करता है?
1: हाँ
0: अभी आपको कोई दिक्कत नहीं?
1: जी नहीं,
0: अभी कोई सत्संग से रोकता नहीं?
1: जी नहीं।
0: आपके हस्बैंड सहयोग करते हैं अब?
1: हाँ, वो सहयोग करते हैं थोड़ा, मैं बोलती हूँ कि मैं जा रही हूँ तो सत्संग में, तो मुस्कुरा देते हैं, कुछ बोलते नहीं है।
0: जी,
1: मैं उसको भी बोलती हूँ आप भी हमारे साथ चलो।
0: अभी भी आपके सास ससुर सभी है?
1: सास है अभी।
0: जी, अब अच्छे रहते हैं आपके साथ?
1: हाँ, बढ़िया रहते हैं, सबके साथ प्यार से मिलजुल कर रहते हैं।
0: जी,
1: हाँ,
0: एक समय था जब कोई आपके साथ अच्छे नहीं रहते थे तो
1: नहीं,
0: आपका दिल दुखता था?
1: एक समय तो यही था कि जब मैं अलग हुई ना, तब तो मेरे से सब विरोधी थे, फिर मेरी ये सत्संग की वजह से मैं सबसे साथ मिलजुल रही हूँ। मेरा स्वभाव ऐसा है कि मैं उसको स्वीकार लेती हूँ, जैसे भी है मैं मिल जाती हूँ उसके, हर प्रसंग में उसके आगे होती हूँ।
0: जी, बिल्कुल, तो आपने सबके साथ तालमेल बनाए रखा?
1: अभी भी बना ही रखा है।
0: जी, और बहू के साथ आपका कैसा व्यवहार है?
1: बहू तो बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, उसका नाम भी ऐसा है जैसा उसका काम है, उसका नाम है शीतल। तो बहुत प्यारी है, बहुत मासूम है, बहुत अच्छी है।
0: जी, तो आपने बहू और बेटी को समान समझा?
1: हाँ, बेटी से बढ़कर भी बहू को मैंने अपने दिल में रखा है।
0: जी,
1: कहते हैं ना, बेटी तो आती है तो जाती है,
0: जी
1: बेटी से हमारा क्या। हाँ, आती है, वो फोन भी करती है, सब हालचाल पूछती है, पर बेटी से बढ़कर है बहू,
0: जी जी बहुत
1: और बहू
0: बढ़िया
1: बहुत अच्छी है,
0: जी
1: बहुत प्यारी है, और उस जैसा इसका नाम है ना वैसा उसका गुण है।
0: जी और सिलाई काम आज भी आप करते हैं या
1: हाँ,
0: छोड़ दिया?
1: नहीं नहीं करती हूँ अभी भी, अभी तो बहुत अच्छा सिलाई काम हाथ में बैठ गया है।
0: तो आप अपना ही करते हैं या अभी भी मोल का करते हैं?
1: उनका बेटे ना बोलते हैं कि अभी कोई जरूरत नहीं मम्मी, वो गवर्नमेंट जॉब करता है, खेती है,
0: जी,
1: अभी बहुत अच्छा है।
0: तो पहले आप मोल का भी करते थे?
1: पहले पोल का नहीं, घर का पूरा करती थी, खेत करती थी और पशुपालन,
0: अच्छा
1: पशुपालन मेरे ऊपर था।
0: अच्छा कितनी गाय भेजते?
1: 3 गाय भैंसे थी और उसके बछड़े बच्चे होते हैं वो थे,
0: तो आप
1: और
0: अकेले संभालते थे?
1: हाँ, हस्बैंड का तभी थोड़ा कम था साथ सहयोग।
0: जी, तो वो क्यों सहयोग नहीं करते थे फिर? आपने इतना क्यों पाला, खेती को
1: पैसे
0: संभाला?
1: के लिए, पैसा तो चाहिए ना घर चलाने के लिए, तो खेत में से जो उत्पादन होता है वो तो इतना नहीं होता था तब।
0: लेकिन आपके हस्बैंड तो होमगार्ड थे ना, तो सैलरी तो आती होगी ना?
1: हाँ, वो उसके खाते में जमा होती है, वो घर पर नहीं देते थे ना,
0: अच्छा, घर में पैसे नहीं देते थे
1: नहीं देते थे
0: तो घर
1: इसलिए।
0: कैसे चलेगा?
1: हाँ बस दूध घर का है, सब्जी खेत की आती है, गेहूं भी खेत के आते हैं, तो और क्या चाहिए? जैसे कि बाहर से कुछ लेना है ना, तो वो गाय भैंस का जो दूध बेचने के बाद जो पैसा आता है ना, उसमें से मेरा घर चल जाता है।
0: इसलिए आपने गाय भैंस रखी कि
1: हाँ
0: आपके हस्बैंड पैसे नहीं देते थे?
1: हाँ तभी भी नहीं देते, अभी भी नहीं देते,
0: अभी भी नहीं देते?
1: नहीं देते।
0: तो फिर पैसों का क्या करेंगे वो?
1: वो तो क्या करेंगे, ले जाएंगे साथ में, कोई नहीं ले जाता है ना, यहाँ ही पड़ा रहेगा।
0: अच्छा, तो आप जैसे आबू आए अभी, आप रेडियो मधुबन में हमारे साथ है, तो किराया भी लगता है, पैसा भी चाहिए बाहर जाने पर, तो कौन देता है फिर आपको? अच्छा,
1: बेटा देता है ना,
0: बेटा देता है।
1: बेटे से मांगती हूँ, मेरा स्वभाव यही है कि मैं भांगती नहीं। वो सामने से बोलता है कि अभी तो आपका खलास हो गया होगा, इतना दिया था, अब खलास हो गया होगा तो लो मम्मी। मैं तो पहले तो ना ही बोलती थी, मुझे नहीं चाहिए, फिर यहाँ ये तो नहीं,
0: बाहर जाते हैं तो फिर पैसे दे देता है बेटा, लेकिन हस्बैंड आज भी नहीं देते, और आज भी जॉब उनकी जारी है,
1: नहीं वो रिटायर्ड हो गए,
0: रिटायर्ड हो गए, पेंशन आती होगी।
1: नहीं पेंशन नहीं आती उसमें, नहीं आती है, होमगार्ड में
0: अच्छा
1: नहीं आती है।
0: अच्छा फिर भी थोड़ा बहुत पैसा उनके हाथ में होगा, लेकिन देते नहीं है
1: हाँ वो सारा जमीन का पैसा तो आता ही है ना,
0: जी, खेती बाड़ी का।
1: खेती बाड़ी का
0: तो फिर खेती बाड़ी में से भी आपको नहीं मिलता, जबकि आप तो काम करते हैं।
1: से नहीं मिलता।
0: अच्छा
1: ये महिलाओं की जिंदगी ऐसी टगल वाली है।
0: फिर भी आप खुशी खुशी उसको बर्दाश्त करके चल रहे हैं।
1: स्वीकार लिया ना, जैसे भी है।
0: जी। तो चलिए, कार्यक्रम के अंत में आप हमारी बहनें सुन रही हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे?
1: मेहनत करना है, मेहनत से डरना नहीं है, और हर परिस्थिति का डट के सामना करना है। जब सामना करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तभी हमें अंदर से खुशी भी आएगी और आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा।
0: जी चलिए, बहुत सुंदर मैसेज आपने दिया है मधु जी, सभी नारी शक्ति को, कि मेहनत करना है और मेहनत के दम पर आगे बढ़ना है। जैसे आप पशुपालन करके थोड़ा बहुत पैसे बचा करके कहीं जाते हो तो लेके जाते हो, बाकी घर से नहीं मिलता
1: नहीं,
0: है।
1: और सहन शक्ति एक बड़ी शक्ति है, वो सहन शक्ति से हमारा सबके साथ संबंध अच्छा रहता है।
0: जी,
1: सहन करेंगे ना तो सबके प्यारे रहेंगे।
0: बिल्कुल, बहुत ही सुंदर मैसेज दिया है मधु जी ने, बहुत बहुत आभार। आप रेडियो मधुबन के स्टूडियो में पधारे और आपने अपने जीवन के अनुभव सभी के साथ शेयर किया, इसके लिए बहुत बहुत आभार।
1: थैंक यू जी, थैंक यू उषा दीदी जी, आपका बहुत बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, और बहुत बहुत दुआएं देती हूँ आपको।
0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम वंदे मातरम। वंदे मातरम में मधु जी राठौड़ हमारे साथ बने हुए थे। आप जूनागढ़ बांटवा से पधारे हैं और आपने अपने जीवन के अनुभव सुनाए हैं। देखिए, आपने जाना है कि नारी शक्ति कितनी मेहनत करती है, इतनी मेहनत करने के बाद भी उनका एक रुपये पर भी अधिकार नहीं होता है, फिर भी आप खुश है, परिवार को साथ में लेके चलते हैं, और सत्संग में जाना कोई गलत बात नहीं है, अच्छी बात है कि आप ईश्वर भजन करते हैं। तो परिवार वालों ने स्वीकार नहीं किया और आपके साथ अव्यवहार किया, फिर भी आप सहनशीलता के दम पर और मिलनसार संस्कार होने के दम पर सभी को साथ में लेके चले और हमेशा खुश रहे, और आज भी खुश है। तो ऐसी नारी शक्ति को, ऐसी मातृ शक्ति को रेडियो मधुबन सलाम करता है, वंदन करता है, नमन करता है। प्यारी बहनों, अगर आप भी अपने जीवन के अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और आप भी अपने जीवन के अनुभव शेयर कर सकते हैं। अब मैं उषा माहेश्वरी आप सभी से अनुमति चाहूंगी, अगले रविवार को फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

हर तरफ हर जगह हर कहीं पे है हाँ उसी का नूर। हर तरफ हर जगह

जो करता है मुश्किल हमारी दूर, हर तरफ हर जगह।

कोई दरिया तो है, हाँ कहीं पे जरूर रोशनी का कोई

0: The power to withdraw. I visualize myself within a deep blue circle of energy. I'm surrounded by a powerful silence, far stronger than the speed of my thoughts. And I get ready to take a journey through my vast inner world. I have the courage to continue through to the end, to be aware of the source of my feelings, of my motivation to live each day. Deep within me is the mirror of truth that helps me discover from where I can start to change. In that silence, and without the urge to escape, I realize who I am with all my nuances, some dark and others bright and full of life. I find in me all those contrasts. I experience the bitter and I don't like it. I sincerely recognize my faults, and with the help of the power of this silence, I renew the way I think, the way I think of how I feel about myself. No more ugliness when there is such beauty within. No more helplessness for not being able to alter what surrounds me. I change my feelings. They become so pure. I restart the road from my strongest power, and from my innocent heart I send goodwill. I feel great love for myself. I am love. I am benevolence, peace, and silence. This is the power to withdraw. Feel.
1: रुक, भाई रुक, भाई रुक। हेलमेट कहाँ है तुम्हारा?
2: सर वो सर
1: ओए क्या सर सर करके सरसरा रहा है भाई? आए ओए तुम्हारे सर के लिए ही बोल रहा हूँ। ओए चेहरे से तो समझदार लगते हो, पढ़े लिखे भी लगते हो। ओए इतनी धूप है धूल है, वो कम से कम अपने चेहरे का ही ख्याल रख लो। ओए ये चमकते हीरे जैसा चेहरा कहीं जीरे जैसा नहीं हो जाए।
2: सर आगे से ध्यान रखूंगा।
1: आगे से तो नहीं, मुझे तो तुम पीछे से निकलने वाले लगते हो हैं? पर मुझसे कोई नहीं बच सकता क्योंकि ये है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं हवलदार। सड़क पहले वो सामने की दुकान से लो हेलमेट फिर गाड़ी।
3: हमेशा बाइक पर हेलमेट पहनकर निकलना चाहिए, इसमें आपका ही भला है। जीवन अनमोल है, इसे यूं ही व्यर्थ न गंवाएं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: 24 घंटे का व्रत रखें, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सामने वाले का व्यवहार कैसा भी हो, मेरा मन वाणी और व्यवहार शांत और प्रेम से भरपूर। सिर्फ 24 घंटे का व्रत रखें तो भी हमने सृष्टि की कितनी सेवा की, और जो चीज़ हम एक दिन कर सकते हैं हम उसको हर रोज कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे पास पावर है।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: मम्मी मम्मी।
1: हाँ बेटा।
0: आज जब मैं स्कूल से आया तो मैंने पता क्या देखा कि एक बच्चा चाय बांट रहा है, वह फिसल गया और उसके हाथ से चाय का ग्लास गिर गया। उसे बहुत डांट पड़ी। मम्मी मैं सोच रहा हूँ कि हमारे घर के बाजू में जो शंभू है वह भी तो काम करता है, उसे भी तो ऐसी ही डांट पड़ती होगी, क्यों ना हम उसे पढ़ाएं।

ओम शांति। आज 19 अगस्त 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा हम बच्चों को बहुत सुंदर बात स्पष्ट करते हैं कि बच्चे रूहानी बाप जब रूहानी बच्चों को समझाते हैं तो यहां सारे रूहानी कारोबार है, दुनिया के अंदर जिस्मानी कारोबार है। अर्थात दुनिया में मनुष्य देह अभिमान के आधार से सारा कारोबार करते हैं, परंतु यहां रूहानी कारोबार में सबसे पहले बाबा यही शिक्षा देते हैं, बच्चे तुम अपने को आत्मा समझो और आत्म अभिमानी होकर के हर कर्म करो। जितना जितना देही अभिमानी बनते जाएंगे उतना आत्मा पवित्र बनती जाएंगी, निर्विकारी बनती जाएंगी। वास्तव में तो बाबा कहते सारा कारोबार रूह ही करती है, हर कर्म जो करती है चाहे अच्छा व बुरा वो सारा आत्मा ही करती है। इसीलिए आत्मा को कहा जाता है पाप आत्मा पतित आत्मा। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को अभी पढ़ाई अच्छी तरह से पढ़ना है और यह पढ़ाई पढ़ करके उच्च पद को प्राप्त करना है। शरीर के जो भी हिसाब किताब कर्म बंधन है उस कर्म बंधन को चुकतु करना है और चुकतु करके स्वयं को आत्म निश्चय करके हर कर्म करते रहना है। सब हिसाब किताब को चुकतु करना है और बाप की याद में रहने का अभ्यास करना है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे तुम्हें अब रूहानी कारोबार करनी है। रूह समझकर हर कर्म करने से आत्मा निर्विकारी बनती जाती है। आज की मुरली से प्रश्न है स्वर्ग का वर्षा लेने और स्वर्ग में उच्च पद पाने का आधार क्या है? उत्तर, ब्रह्मा कुमार कुमारी बने तो स्वर्ग का वर्षा मिल जाएगा, परंतु उच्च पद का आधार है पढ़ाई। अगर बाप का बनकर अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते रहे पूरा पवित्र बने तो राजाई पद मिलता है। कोई पूरा पढ़ते नहीं कर्म बंधन है, पूरा पवित्र नहीं बने और शरीर छूट गया तो प्रजा में भी साधारण पद पा लेंगे। ओम शांति। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझा रहे, यहां रूहानी कारोबार है, बाकी सारी दुनिया में जिस्मानी कारोबार है। वास्तव में कारोबार चलती है रूह की, सारा कर्म तो आत्मा ही करती है। भले कोई समझे या ना समझे लेकिन सारा कारोबार तो आत्मा ही करती है। आत्मा ही इस शरीर द्वारा पढ़ती है, चलती है, विकर्म करती है, इसलिए पतित आत्मा पाप आत्मा कहा जाता है। आत्मा ही सब कुछ करती है, जिस्मानी कारोबार भी करने वाली तो आत्मा ही है। लेकिन उनको जिस्मानी क्यों कहा गया है? बाबा कहते इस समय सब मनुष्य देह अभिमानी है। मैं आत्मा हूं समझने बदले समझते हैं मैं फलाना, ये व्यापार करता हूं, ये फलाने कामी क्रोधी है, शरीर का ही नाम लेते हैं। तो देह अभिमान के कारण कहा जाता है जिस्मानी कारोबार है, इसको कहा जाता है देह अभिमानी दुनिया, उतरती कला की दुनिया। सतयुग में ऐसा नहीं होता, वहां देही अभिमानी होते हैं, तुमको देही अभिमानी बनाया जाता है। कैसे?
तो बाबा सिखाते हैं अपने को आत्मनिश्चय करो। यहां इस वक्त हमें वो संस्कार भरने हैं, स्वयं को आत्मा निश्चय करना है, अर्थात आत्मा समझना है। मैं आत्मा ये शरीर रूपी चोला धारण कर पाठ बजाती हूं। वह एक्टर्स भी भिन्न भिन्न कपड़ा बदले कर पाठ बजाते हैं। बाप कहते हैं, तुम आत्माएं पहले शांति धाम में थी, तुम्हारा घर है शांति धाम। जैसे वह हद का नाटक होता है, यह फिर है बेहद का नाटक। सभी आत्माएं परमधाम से आकर शरीर धारण कर पाठ बजाती है। आत्माओं का असल घर है परमधाम। उन एक्टर्स का तो घर यहां ही होता है। हद के नाटक के जो एक्टर्स हैं, उनका घर तो यहां ही होता है। सिर्फ ड्रेस बदली कर आकर पाठ बजाते हैं। तो बाप बैठ समझाते हैं, तुम आत्माएं हो। आत्मा का पाठ पक्का कराते हैं। बाप तो बच्चे बच्चे ही कहेंगे, सन्यासी बच्चे बच्चे नहीं कहेंगे। बाप कहते हैं, मैं पतित पावन, तुम सभी आत्माओं का बाप हूं, जिसको तुम गॉड फादर कहते हो। गॉड फादर तो निराकार है, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी गॉड फादर नहीं कहेंगे। उनमें भी आत्मा है, परंतु उनको कहते हैं ब्रह्मा देवता नमः, विष्णु देवता नमः। देवताएं क्या करते हैं ये किसको भी पता नहीं है। बाप ही आकर समझाते हैं, तुम कैसे ड्रामा प्लान अनुसार पाठ बजाते हो। दुनिया एक ही है, ऐसे नहीं कोई नीचे पाताल व ऊपर में दुनिया है। दुनिया एक ही है, जिसका चक्र फिरता रहता है। लोग तो कह देते हैं मून में प्लॉट लेंगे। महत्वाकांक्षी लोग ये कहते हैं, हम मून में चंद्रमा में जाकर प्लॉट लेंगे। बाप समझाते हैं, बच्चे कितने इंसॉल्वेंट बन पड़े हैं। इंसॉल्वेंट अर्थात दिवालिया। तो बाबा कहते हैं, जब मनुष्य ये कहते हैं कि हम चंद्रमा पर प्लॉट लेंगे आदि आदि, तो ये बताता है कि बुद्धि का दिवालिया निकल चुका है। इसलिए बाबा कहते हैं, बाप समझाते हैं, बच्चे कितने इनसॉल्वेंट बन पड़े हैं। भारतवासियों के लिए ही कहते हैं, तुम कितने शाहूकार समझदार थे। इन लक्ष्मी नारायण का सारे विश्व पर राज्य था, जिसको कोई लूट ना सके। वहां कोई पार्टीशन आदि नहीं होती, यहां तो कितने पार्टीशन है। आपस में टुकड़े टुकड़े पर लड़ते रहते हैं। तुम सारे विश्व के मालिक थे, सारा आकाश पृथ्वी समुद्र सब तुम्हारा था। तुम उनके मालिक थे, अब तो टुकड़े हो गए हैं। यह किसको भी पता नहीं है, भारत ही विश्व का मालिक था। बाबा कहते, ये रहस्य कोई नहीं जानता कि भारत ही सारे विश्व का मालिक था। बाप समझाते हैं, आत्मा को जो पाठ मिला हुआ है वह कभी घिसता नहीं है, चलता ही रहता है। अभी तुम फिर से मनुष्य से देवता बन रहे हो, फिर 84 जन्म लेंगे, तुम्हारा पाठ चलता ही रहता है, कभी बंद नहीं होता है। कोई मोक्ष आदि पाते नहीं। जितने अनेक गुरु अनेक शास्त्र, उतनी अनेक मतें होती है। मनुष्य में कितनी अशांति है, जहां भी जाओ कहेंगे मन को शांति कैसे मिले। यह देह अभिमान में आकर कहते हैं। बाप समझाते हैं, मन और बुद्धि यह है आत्मा के ऑर्गन्स। जैसे
शरीर के विभिन्न ऑर्गन्स है, कर्मेंद्रिया है, हाथ पैर आदि, ऐसे बाबा समझाते हैं। आत्मा की भी मुख्य इंद्रिया है मन और बुद्धि, तो यह है आत्मा के ऑर्गन्स। बाकी यह सब शरीर की इंद्रिया है। आत्मा कहती है मेरे मन को शांति कैसे मिले। वास्तव में यह कहना गलत है। क्यों? तुम आत्मा हो और तुम्हारा स्वधर्म ही शांत है। तुम ऐसे कहो, मुझ आत्मा को शांति कैसे मिलेगी, मन को शांति कैसे मिले, ये नहीं कह सकते। मुझ आत्मा को शांति कैसे मिलेगी, इसमें कर्म तो करना ही है। यह बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। दुनिया में यह ज्ञान किसको भी नहीं है। वहां है भक्ति मार्ग, उनको ज्ञान का पता नहीं है। ज्ञान तो एक बाप ही देते हैं। बाप खुद कहते हैं, मैं कल्प कल्प कल्प के संगम युग पर आता हूं। कलयुग के अंत में सभी पतित हैं। यह है रावण राज्य। रावण को जलाते भी भारतवासी ही है। बाप पतित पावन का जन्म भी यहां है, तो रावण का जन्म भी यहां है। रावण जो सबको पतित बनाते हैं, इसलिए उनको जलाते हैं। ये बातें किसकी बुद्धि में नहीं है। अब भारत में श्री कृष्ण जयंती मनाते हैं, श्री कृष्ण की लीला भजन आदि करते हैं। अब बाप कहते, वास्तव में श्री कृष्ण लीला कुछ है ही नहीं। श्री कृष्ण ने क्या किया? कहते कंसपुरी में जन्म लिया। अब कंस तो डेविल को कहा जाता है, सतयुग में डेविल कहां से आए? तुम जानते हो श्री कृष्ण की आत्मा जो सतयुग में थी, वह अपने 84 जन्म भोग इस समय पतित से पावन बन रही है, अपना पद फिर से ले रही है। वैसे ही तुम कृष्णपुरी में रहने वाले थे, 84 जन्म ले अब फिर अपना पद ले रहे हो। जयंती मनानी है वास्तव में शिव बाबा की। जयंती किसकी मनानी है? एक शिव बाबा की, जो शिव बाबा सबको हेल से हेवन में ले जाते हैं। उनकी कोई लीला है नहीं। कहते हैं कि हे पतित पावन, आओ आकर हमको हेल से हेवन में ले जाओ, आकर हमको हेल से हेवन में ले जाओ। आप हमारे बाप हो तो हम स्वर्ग में होने चाहिए। हम विशेष दुनिया में क्यों हैं? इसलिए बुलाते हैं, हे गॉड फादर, हमको इस दुख की दुनिया से लिबरेट करो। यह भी ड्रामा में नोंद है। बाप कहते हैं इस ड्रामा को कोई जानते नहीं। शास्त्रों में ड्रामा की आयु लंबी लिख दी है। नई दुनिया को पुरानी बनना ही है, सतो रजो तमो में आना ही है। यह है बेहद की बात। अभी तुम फिर से विश्व के मालिक बन रहे हो। भारतवासी जो नई दुनिया में थे, वही 84 जन्म का पाठ बजाएंगे। अभी तुम पवित्र बनते हो, बाकी सब मनुष्य पतित है। तब तो पावन के आगे जाकर नमन करते हैं। पावन को पावन नमन क्यों करेंगे? पावन को कभी पावन आत्मा ही नमन नहीं करेंगे। सन्यासी पावन है, तब तो पतित मनुष्य उनके आगे माथा झुकाते हैं। कन्या पवित्र है तो सब उनके आगे सिर झुकाते हैं। वही कन्या शादी कर ससुर घर जाएंगी तो माथा टेकना पड़ता है। अभी बेहद का बाप आए हैं सबको पावन बनाने। वह सब है कलयुग में, तुम हो अभी संगम पर। अब तुमको पतित दुनिया में नहीं जाना है। यह है ही कल्याणकारी युग। बाप आकर सबका कल्याण करते हैं। तुम अभी श्री कृष्ण जयंती मनाएंगे, नहीं तो लोग समझेंगे ये तो नास्तिक है। नास्तिक वास्तव में उनको कहा जाता है
जो अपने बाप को और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं, इस समय सब निधन के ऑर्फन्स बन पड़े हैं। घर घर में झगड़ा है, एक दो को मारने में देरी नहीं करते हैं, इसीलिए इसको नास्तिकों की दुनिया कहा जाता है। अनाथों की दुनिया है, एक दूसरे को मारने में भी देरी नहीं करते हैं, बाबा कहते इसलिए इसको नास्तिकों की दुनिया कहा जाता है। बाप को न जानने वाले नास्तिक क्यों कहा? क्योंकि जो परमात्मा बाप को नहीं जानते हैं। तुम हो जानने वाले, अभी तुम समझते हो कि हम पत्थर बुद्धि थे, बाप हमको पारस बुद्धि बना रहे हैं और कोई तकलीफ की बात नहीं। बाप सिर्फ कहते हैं एक घंटा पढ़ो, अपने को आत्म समझ, मुझ बाप को याद करो। शरीर को याद करेंगे तो लौकिक संबंधों की याद आएगी, देही अभिमानी रहेंगे तो मुझ बाप की याद रहेगी। यह तो है ही विशेष दुनिया, मना पतित दुनिया। विषय सागर में गोते खाते रहते हैं, विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं, कहते हैं वहां घी की नदियां बहती हैं, यहां तो घासलेट भी नहीं मिलता है। फर्क है ना, कितना अंतर है। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, बाप ही खेवैया है ना। गाते भी है नैया मेरी पार लगाओ, ये सब नैयाएं हैं, सब आत्माएं नैयाएं हैं, खेवैया एक बाप ही है। ये शरीर यहां ही छोड़ देंगे, बाकी आत्माओं को पार ले जाएंगे शांति धाम, वहां से फिर भेज देंगे सुख धाम। परमपिता परमात्मा को ही खेवैया कहा जाता है, बाप की ही महिमा गाते हैं अनेक प्रकार से। अभी तुम पवित्र बन पवित्र दुनिया के मालिक बनते हो। श्री श्री शिव बाबा आए हैं श्रेष्ठ बनाने, खुद भगवान कहते हैं यह भ्रष्टाचारी दुनिया है। अभी तुम परमपिता परमात्मा की श्रीमत पर चल श्रेष्ठाचारी बनते हो। कितनी ये गुप्त रमणीक बातें हैं जो तुम बच्चों को ही समझ में आती है, औरों को समझ में आएगी ही नहीं। बाबा कहते औरों को तो ये बातें समझ में आएगी नहीं। तुम जानते हो कि अभी देवी देवता धर्म का कलम लग रहा है, जो भी देवी देवता धर्म वाले और धर्म में चले गए हैं वही आकर फिर ब्राह्मण बनेंगे। ब्रह्मा कुमार कुमारी बनने बिगर बाप से स्वर्ग का वर्षा ले नहीं सकते। अभी तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां स्वर्ग का वर्षा ले रहे हो, जितना पुरुषार्थ करेंगे कराएंगे उतना उच्च पद पाएंगे। सब तो इतना नहीं कर सकते, पूरा नहीं पढ़ेंगे तो उसका नतीजा क्या होगा? बाबा कहते जो पूरा नहीं पढ़ेंगे तो उसका नतीजा क्या होगा? अगर शरीर छूट जाए तो स्वर्ग में आ जाएंगे, लेकिन बाबा कहते अगर पूरा पढ़ेंगे नहीं तो नतीजा क्या होगा? अगर शरीर छूट जाए तो स्वर्ग में तो आ जाएंगे परंतु प्रजा में भी बिल्कुल ही साधारण। अगर बाप का बनकर अच्छी रीति पढ़े तो राजाई पद पा सकते हैं, नहीं पढ़ते हैं तो समझेंगे उनकी तकदीर में नहीं है। पवित्र रहेंगे पढ़ेंगे तो उच्च पद पाएंगे, अपवित्र होने से बाप को याद नहीं कर सकेंगे। ऐसे भी बहुत है, कर्म बंधन का हिसाब जब छूटे, बाबा कहते ऐसे भी बहुत है कर्म बंधन का हिसाब जब छूटे, गाड़ी के दोनों पहिया पवित्र होंगे तो ठीक चलेंगे। दोनों पवित्र रहेंगे तो ज्ञान चिता पर बैठ जाएंगे, नहीं तो खिटपिट होती है। कई बच्चे कहते

हैं कि बाबा हम तो जानते हैं श्री कृष्ण सतयुग का पहला प्रिंस है, तो क्यों नहीं कुछ मनाए। अच्छा, हम श्री कृष्ण की आत्मा को बुला भी सकते हैं, आकर खेल पाल करेगी, रास करेगी, और क्या करेगी। बाबा कहते हैं और क्या करेगी, गोप गोपियां तो यहां ही होते हैं, वहां तो प्रिंस प्रिंसेस आपस में मिलते हैं तो रास करते हैं, सोने की मुरली बजाते हैं, ये सब खेल पाल तुम पिछाड़ी में देखेंगे, साक्षात्कार के माध्यम से देखेंगे, ये सब पाठ चलेंगे। शुरू में दिखाया गया, फिर तुम पुरुषार्थ में लग गए हो, अब फिर पिछाड़ी में साक्षात्कार होना शुरू होगा। कौन कौन किस पद को पाएंगे ये तुम जानते हो, बाप बैठ ये सब राज समझाते हैं, तुमसे पूछते हैं, वेदों शास्त्र को मानते हो। बोलो हाँ, हम क्यों नहीं मानते हैं। ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है, इनमें कोई ज्ञान नहीं है, ज्ञान देने वाला तो एक है। ज्ञान मिलता है तो भक्ति आपे ही छूट जाती है। तुम मंदिर में भी जाएंगे तो बुद्धि में रहेगा कि ये लक्ष्मी नारायण फिर हम नई दुनिया में राज्य करेंगे। मंदिर में जाते हैं, चाहे लक्ष्मी नारायण का मंदिर हो, चाहे शिव बाबा का मंदिर हो, गर्व महसूस होता है शिव बाबा के मंदिर में भी जा करके कि कितने भक्त आकर के बाबा को याद करते हैं, पूजा करते हैं, पुकारते हैं। और ये मंदिरों की भी एक समय में कितनी सोने चांदी हीरे मोती से उनको सजे हुए थे, जैसे सोमनाथ का मंदिर कितने हीरा जड़ित शिवलिंग बनाया हुआ था, दीवारों में भी हीरे जड़े हुए थे। तो शिव बाबा के मंदिर को देखते भी बड़ा फक्र महसूस होता है। बाप बच्चों को समझाते हैं दोनों तरफ तोड़ निभाना है, गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है। श्रीमत कहती है पूरे पवित्र बनो, पूरा वैष्णव बनो और विष्णुपुरी का राज्य लो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, योग द्वारा कर्म बंधन का हिसाब किताब चुकतू कर पावन बनना है, ज्ञान चिता पर बैठना है, पूरा पूरा वैष्णव अर्थात पवित्र बनना है। दूसरी पॉइंट, अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है, सबको शांति धाम की याद दिलानी है, कभी भी अशांत नहीं होना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, आवाज से परे की स्थिति में स्थित हो सर्व गुणों का अनुभव करने वाले मास्टर बीज रूप भव। आवाज से परे की स्थिति में स्थित हो सर्व गुणों का अनुभव करने वाले मास्टर बीज रूप भव। जैसे बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ होता है, वैसे ही आवाज से परे की स्थिति में संगम युग के सर्व विशेष गुण अनुभव में आते हैं। मास्टर बीज रूप बनना अर्थात सिर्फ शांति नहीं, लेकिन शांति के साथ ज्ञान, अतींद्रिय सुख, प्रेम, आनंद, शक्ति आदि आदि सर्व मुख्य गुणों का अनुभव करना। यह अनुभव सिर्फ स्वयं को नहीं होता, लेकिन अन्य आत्माएं भी उनके चेहरे से सर्व गुणों का अनुभव करती है। एक गुण में सर्व गुण समाये हुए रहते हैं। आज का स्लोगन है, अच्छाई धारण करो,
लेकिन अच्छाई में प्रभावित नहीं हो जाओ। अच्छाई को धारण करो लेकिन अच्छाई में प्रभावित नहीं हो जाओ। आज का व्यक्त इशारा है, अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, पवित्रता अब्राह्मण आत्माओं का अनादि आदि संस्कार है। इस नेचुरल संस्कार से स्वप्न व संकल्प में भी अपवित्रता इमर्ज न हो, संकल्प आवे और विजयी बनो। इनसे भी ऊपर नेचुरल संस्कार बना लो, पवित्रता के नेचुरल संस्कार बना लो, तो इस सब्जेक्ट में पुरुषार्थ करने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। अच्छा,